राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम राम राम सीताराम सीताराम राम राम राम राम सीताराम दाना नारी दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना दाना

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वररंजनी में अभी आप सुन रहे थे विपुल छाबड़ा का ध्रुपद गायन, राग थी भैरव। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 6 बजने को हैं, अब से कुछ ही पलों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। इसके बाद आप सुन सकेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। तो आइए पहले सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार।

0: के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे मुद्दों पर सहयोग की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए थे।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्ज़ियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज़्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज़्बेकिस्तान।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व पर हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव से विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें से 320 से ज्यादा विदेशी नागरिक हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से भी दोबारा संपर्क हो गया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले 2 दिनों के लिए तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में भी आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर भी 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं जिद्दू कृष्णामूर्ति के विचार।

0: श्रोताओं नमस्कार। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे लघु वार्ता जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण मीना।
1: मैं अपनी राह जा रहा हूं, रास्ता मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि मैं दुख के इस दलदल से बाहर निकलने में लोगों की मदद कर सकूं। नहीं, यह पलायन नहीं है। यह कहना था विश्व प्रसिद्ध भारतीय आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक जिद्दू कृष्णमूर्ति का। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदन पल्लई में हुआ था। उनके पिता जिद्दू नारायणिया ब्रिटिश प्रशासन में सरकारी कर्मचारी थे। जिद्दू कृष्णमूर्ति केवल 10 साल के ही थे, तभी उनकी माता संजीव वामा का निधन हो गया। उनके और उनके भाई को युवावस्था में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की तात्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट ने गोद ले लिया था। डॉक्टर बेसेंट और अन्य लोगों ने घोषणा की कि कृष्णमूर्ति एक विश्व गुरु होंगे। इस आगमन के लिए दुनिया को तैयार करने हेतु ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक एक विश्वव्यापी संगठन का गठन किया गया और युवा कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया गया। लेकिन 1929 में कृष्णमूर्ति ने अपनी अपेक्षित भूमिका त्याग दी। संगठन जिसके विशाल अनुयायी थे उसे भंग कर दिया। तब से लेकर 17 फरवरी 1986 को मृत्यु तक लगभग 60 वर्षों तक उन्होंने पूरे विश्व की यात्रा की और बड़ी संख्या में लोगों को मानव जाति में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताया। कृष्णमूर्ति के अनुसार मनुष्य हिंसक है, आत्म केंद्रित है, सुख की तलाश में है, डरा हुआ है, असुरक्षित है, अपने आप में वह भ्रष्ट है और अपने संबंधों में चाहे अंतरतरंग हो या न हो उसने एक तथाकथित समाज का निर्माण किया है। कृष्णमूर्ति ने ईश्वर की अवधारणा को खारिज नहीं किया, लेकिन उन्होंने किसी भी धार्मिक या पारंपरिक ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास करने से इनकार किया। उनका मानना था कि ईश्वर एक असीम और कालातीत शक्ति है जिसे किसी इमारत या प्रतीक में कैद नहीं किया जा सकता। कृष्णमूर्ति ने किसी गुरु या शिक्षक के मार्गदर्शन में विश्वास करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि सत्य को किसी दूसरे के माध्यम से नहीं बल्कि स्वयं की जागरूकता और अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य एक पथहीन भूमि है। दुख और अभाव में किसी चीज का स्पष्ट बोध नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान चेतना द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का अर्थ केवल जानकारी का संचार करना नहीं बल्कि एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करना। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को न केवल ज्ञान और कौशल प्रदान करना है बल्कि उन्हें आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने, समस्याओं का समाधान करने और एक स्वतंत्र, जिम्मेदार और नैतिक व्यक्ति बनाने में मदद करना है। कृष्णमूर्ति ने राष्ट्रीयता और जाति जैसे सामाजिक विभाजनों को भी खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ये विभाजन मनुष्य को एक दूसरे से अलग करते हैं और उनमें भेदभाव पैदा करते हैं। कृष्णमूर्ति ने सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं और अंधविश्वासों से भी इनकार कर दिया। उनका मानना था कि ये रीति रिवाज अक्सर तर्कहीन होते हैं और मनुष्य को स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने से रोकते हैं। वे किसी भी स्थापित प्रणाली या विचारधारा का पालन करने के विरुद्ध थे। उनके भाषणों और संवादों को 60 से ज्यादा किताबों में संकलित और प्रकाशित किया गया है और अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है।
2: श्रोताओं चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है रामचरितमानस से संगीत में प्रस्तुति। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा

गंगा तट पर श्री राम तथा सीता को रात्रि विश्राम के लिए धरती पर सोते देख निषाद राज को बहुत दुख हुआ। उनके आहत मन को सांत्वना देने के उद्देश्य से रात भर लक्ष्मण ज्ञान वैराग्य की मीमांसा करते हुए भक्ति का उपदेश देते रहे। इस प्रकार श्री राम के गुणों की प्रशंसा करते हुए सवेरा हुआ। स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री राम ने बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। ये देख सुमंत्र की आंखों में आंसू उमड़ आए। महाराज दशरथ ने उन्हें यह कहकर श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भेजा था कि वन दिखाकर गंगा स्नान करा वो उन्हें साथ अयोध्या लौटा लाए। श्री राम को महाराज का यह संदेश सुनाकर सुमंत्र बालकों की भांति रो पड़े। राम ने अपने चरणों में गिरे सुमंत्र को उठाकर उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों का अध्ययन मनन किया है। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म पालन का अवसर सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश होगा। प्रतिष्ठावान व्यक्ति के लिए अपयश तो करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाला होता है।

0: अय्य अब सुनते हैं समाचार।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उज्बेकिस्तान देशस्य राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेव इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। उभौ नेतारौ राष्ट्रपति प्रासादे व्यापार निवेशः, रक्षा, डिजिटल संपर्कः, ऊर्जा, शिक्षा, जनानां संबंधादिषु क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षां करिष्यतः। अद्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वप्रथमं उज्बेकिस्तान देशस्य

0: क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। वहीं पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। PM सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। करीब 50 अन्य भारतीयों से दोबारा संपर्क स्थापित हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉ. भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है। भारत आज महिला क्रिकेट में थाईलैंड के साथ T20 एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय समय के अनुसार मैच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारत की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसके अंतर्गत आपने सुना भारत भूषण के गाय भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 7:30 और पूरे 15 सेकंड हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। और आज के गीतों भरे सफर में मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। दोस्तों, खूबसूरत सुबह है और कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। तो आइए स्वागत करते हैं आज की खूबसूरत सुबह का। कुछ गीत हो, कुछ बातें हो, कुछ यादों का हो साथ। कुछ गीत हो, कुछ बातें हो, कुछ यादों का हो साथ, यूं ही खो

जी हाँ, प्यार का नाम जीवन है, और क्यों ना हो, क्योंकि जीवन में अगर प्यार नहीं है तो वो जीवन जीवन नहीं रहता। इसीलिए आपसे कहते हैं कि जो सुबह का वक्त होता है, ये वक्त होता है अपने अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा को लेने का, क्योंकि नई सुबह, नई उम्मीद, नया एहसास रहे, आप जहाँ भी रहें चेहरे पर मुस्कान रहे। और अपने चेहरे पर मुस्कान तो सभी सजाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी और के चेहरे पर अगर आपकी वजह से मुस्कान आती है, कोई आपकी वजह से मुस्कुरा देता है, खुश हो जाता है, तो वो खुशी सबसे बड़ी होती है। तो अगर आप किसी की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं, उसका रीजन बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप जानते हैं कि इंसान ही सिर्फ एक ऐसा जीव है जो मुस्कुरा सकता है। आपने देखा है कि इंसान के अलावा किसी और को मुस्कुराते हुए? अगर नहीं देखा तो फिर वो चीज़ जो ऊपर वाले ने हमें दी है, सिर्फ हम ही मुस्कुरा सकते हैं, तो क्यों ना मुस्कुराएं और किसी और की मुस्कुराहट की वजह बने।

जी हाँ, आपने बहुत सुने इस गीत के। जीना इसी का नाम है, जब आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है तो उसे बड़ी खुशी कभी नहीं मिलती, क्योंकि कहते हैं कि उसके चेहरे की मुस्कान में कुछ ऐसा सुकून मिला जैसे मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मिल गया।

जी हाँ दोस्तों, खुशी अपनी नहीं किसी और के चेहरे पर देखी तब समझ में आया कि जिंदगी के असल मायने क्या हैं। तो यहाँ पर बात खुद जीने की नहीं है बल्कि दूसरों को जिंदगी देने की है। और देखिए ना, कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप अपने चारों ओर देखिए, इस दुनिया को देखिए, अपने चारों ओर पेड़ पौधों को देखिए, कैसे हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। कहते हैं कि सब कुछ हमें इस प्रकृति ने दिया है और इसके बदले हमने उसे क्या दिया, हमें उसे भी संवारना है। और चाहे वो इंसानियत की बात हो, चाहे प्रकृति देने की हो, जब आप देने की नियत रखते हैं तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है।

शायद इसीलिए कहते हैं कि जो बांट दे किसी के अंधेरों में अपनी रोशनी, असल जिंदगी उसी की है, बाकी तो उम्र को सरती है।

जी हाँ दोस्तों, जिंदगी लंबी होने से बड़ी नहीं होती, किसी के काम आ जाए तो बड़ी हो जाती है। और कहते भी हैं कि बब मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी के कई मायने हैं, जीने के कई तरीके हैं, लेकिन वो जिंदगी जो हम दूसरों के लिए जीते हैं वो हमेशा बड़ी होती है। और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए, आज क्यों ना ये कोशिश करके देखें कि आज किसी के काम आए, किसी के होठों पर मुस्कुराहट लाएं, उसे जीना सिखाएं। आप देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और शायद इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे।

इसलिए तो हम आपसे कहते हैं कि अपने लिए जीना कोई बड़ी बात नहीं, किसी और की खुशी में अपनी खुशी तलाशिए तो बात बड़ी हो जाती है।

0: न्याय की रोशनी फैले अपार।
1: नालसा का जागृति यूनिट मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में कानूनी सहायता के लिए कॉल करें 1500 पर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और इस गीतों भरी गुड मॉर्निंग में मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ, और हम बात कर रहे हैं जिंदगी की, जिंदगी दूसरों के लिए जीने के लिए, और बात कर रहे हैं किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आने के लिए, बात कर रहे हैं कि ये जीवन उसी का है जो अपना जीवन औरों के लिए जीता है, क्योंकि खुद के लिए तो सभी जीते हैं। और ऐसे में कई बार हमें निराश भी होना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें एक्सपेक्टेशन हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि मैंने किसी के लिए इतना किया लेकिन उसने मेरे लिए क्या किया। तो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ, किसी आशा के साथ किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो कर्म है वो हमें डिफाइन करता है, वो बताता है कि हम कैसे इंसान हैं। अगर हम उससे बहुत एक्सपेक्टेशन, तो इसका मतलब कि हम किसी पर्पस से कर रहे हैं कि अगर मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ तो बदले में इसे भी मेरे लिए कुछ करना होगा, तो ये तो बात नहीं हुई। हम अपना कार्य करें, अपना काम करें, और आप देखिएगा जब दूसरों के लिए हम कुछ करते हैं ना तो बहुत खुशी मिलती है। किसी उदास व्यक्ति को जब हम उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला देते हैं ना, हमारी छोटी सी कोशिश से किसी का काम हो जाता है, तो वो बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए मैं तो आपसे यही कहेंगे कि इसी तरह से जीवन में चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी जीते रहिए।

जी हाँ, तुझको चलते रहना होगा, क्योंकि राह में धूप मिले या छांव का साया मिले, चलते रहिए कि सफ़र ही जिंदगी का नाम है। और हम आपसे कहेंगे कि मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके हौसले जिंदा हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है, और आपके हौसलों के आगे तो हर मुश्किल शर्मिंदा है। मैं हूँ आपका दोस्त सिद्धार्थ, और धीरे धीरे घड़ी की सुइयां ये कह रही हैं कि आपसे विदा ली जाए, तो मुझे गीतों भरी गुड मॉर्निंग में दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

जी हाँ, बड़ी ही तेज है समय की ये धारा। तो समय तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार देश दुनिया के, तो बस थोड़ा सा इंतजार और सुनते हैं समाचार।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ

0: मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2400 लोग लापता। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, लोगों के बीच संपर्क और डिजिटल क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी कल शाम मध्य एशियाई देश उज़्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी ताशकंद पहुंचे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कवर करने गए हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत किया।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे। उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्ज़ियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाश पर दोनों देश जोर देंगे। प्रधानमंत्री के प्रयासों से पिछले 10 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई गुना बढ़ा है। ऐसे में अब दोनों देश मिलकर आने वाले समय में मौजूदा $1 बिलियन के कारोबार को दोगुना से ज्यादा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। प्रधानमंत्री इसके बाद यहां शास्त्र स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी केंद्र का दौरा भी करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण करेगा। इसके लिए गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। कार्यक्रम से पहले श्री सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास करता है।
2: एवरी नेशन हैज ए मिशन।
3: प्रत्येक राष्ट्र का एक मिशन होता है, प्रत्येक राष्ट्र की एक नियति होती है। भारत दुनिया को विविधता में एकता का एहसास कराता है। हम एक हैं और विविधता के कारण एक रूपता सुशोभित है, इसलिए विविधता का जश्न मनाया जाना चाहिए।
2: सो डाइवर्सिटी हैज टू बी सेलिब्रेटेड।
0: श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर दलित समुदाय को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर

0: करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का दलित समुदाय का अपमान करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया है।
1: हमारी प्रतिबद्धता, हमें कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी से किसी प्रकार को कोई प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन काल में, जन्म से लेकर के उनके देहांत तक, जहां जहां जिन जिन स्थानों पर उनका स्पर्श हुआ, उस स्थान को तीर्थ का दर्जा किसने दिया है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। स्कॉलरशिप हो, प्रतिनिधित्व हो, संस्थान हो, हर स्थान पे यदि वाकई में सामाजिक न्याय बढ़ा है तो पिछले 12 वर्षों में बढ़ा है।
0: नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दलित समुदाय के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद ये प्रतिक्रिया आई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। काठमांडू को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाला मुगलिंग काठमांडू राजमार्ग फिर खोल दिया गया है। इस बीच नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ के खतरे को देखते हुए नई चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रसुआ, नुवाकोट और धादिंग जिलों में नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। भोटे कोशी तिब्बत से निकलने वाली तेज बहाव वाली हिमालय से निकली नदी है। हाल ही में आई अचानक बाढ़ से रसुआ जिले में भारी तबाही हुई थी। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वे अलापुझा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरणमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। शाम को उपराष्ट्रपति तिरुवनंतपुरम में ओणम पर्यटन सप्ताह के समापन समारोह की परेड को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान आपत्तियां और शिकायतें दर्ज कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर मौजूदा 16 सितंबर की समय सीमा को 4 सप्ताह बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की निर्धारित तारीख 19 अक्टूबर को भी बदलने का अनुरोध किया है। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से शुरू होगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीमें हैं। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी तेज बारिश की संभावना है। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। नेपाल बाढ़ त्रासदी पर हिंदुस्तान ने लिखा है, भूटेकोशी नदी पर बनी नई झील में बढ़ रहा है पानी। अमर उजाला की सुर्खी है, जिंदगी बचाने का संघर्ष, भारत ने नेपाल के आग्रह पर भेजे 11 विशेषज्ञ। दैनिक भास्कर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मुख पृष्ठ पर छापते हुए लिखता है, भारत में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, ऐसा सोचने वाला हिंदू नहीं। पत्र ने कल जारी होने वाली प्रारूप मतदाता सूची पर सुर्खी दी है, दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 47,70,000 मतदाता बाहर, दावा आपत्ति 30 सितंबर तक। राजस्थान पत्रिका ने फोमो इकोनॉमी, दिखावे में गैर जरूरी चीजों पर भी खर्च करने की आदत को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, जरूरत नहीं, पीछे छूटने के डर से हो रही युवाओं की जेब ढीली। खरीदने से पहले खुद से पूछें 3 सवाल, क्या मुझे इसकी जरूरत है? अगर ये आज उपलब्ध नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदना चाहता? क्या मैं इसे अगले 7 दिन के बाद भी खरीदना चाहूंगा? सितारों से आगे देखने के लिए चिली में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, 260 फीट ऊंचा होगा गुंबद, 128 फीट का मुख्य लेंस, 2030 तक अंतरिक्ष में झांकने लगेगा टेलीस्कोप। नवभारत टाइम्स ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों में हाई फैट, हाई शुगर, हाई सॉल्ट या हाईली स्वीटेंड बेवरेज जैसी चेतावनी को पैकेट के ऊपर लाल चेतावनी वाले स्टिकर के रूप में छापने की खबर को प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने भी इस खबर पर लिखा है, FSSAI ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, अब दर्ज होगी चेतावनी, सावधान, इस पैकेट में नमक, शक्कर, तेल ज्यादा है।
1: धन्यवाद नवीन। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेफ के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हुई, 2,400 लोग लापता। नेपाल ने भूटेकोशी नदी के लिए बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। विदेश मंत्रालय ने बताया, नेपाल से 108 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया। बचाव दल सहित 11 टन राहत सामग्री की चौथी खेप भेजी गई। और महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: और अवाम से अवाम के ताल्लुक से वाबस्ता शोबों में बाहमी ताउन का जायजा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले उज़्बेकिस्तान की योगा फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम योगा प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो उज़्बेकिस्तान के सदारती महल जाएंगे, जहां दोनों रहनुमा दो तरफा बातचीत में शिरकत करेंगे। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम ताल्लुकात के शोबों में बाहमी ताउन का जायज़ा लेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा के शोबे में ताउन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अलबत्त दोनों ममालिक कानकनी, खासतौर पर कमियाब मादनियात, धातों जैसे सोना और दीगर अहम मादनियात समेत अद्वियात के शोबे, ज़िरात और हुनरमंदी की तरक्की, नीज़ कनेक्टिविटी के नए मौक़े की तलाश जैसे शोबों पर भी तवज्जो मरकूज़ करेंगे। वज़ीर आज़म की कोशिशों की बदौलत गुज़िश्ता 10 वर्षों में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 300% का इजाफा हुआ है। दोनों ममालिक एक साथ मिलकर आइंदा बरसों में बाहमी तिजारत को मौजूदा $1 अरब से बढ़ाकर 2 गुना करने का इरादा रखते हैं। इस सिलसिले में आज कुछ अहम माहिदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर आज़म जनाब मोदी उज़्बेकिस्तान के अपने 2 रोज़ा दौरे पर कल ताशकंद पहुंचे थे, जहां सदर शौकत मिर्ज़ियोयेफ ने हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने ताशकंद के यंगी उज़्बेकिस्तान पार्क में उज़्बेकिस्तान की मालामाल तारीख, विरासत और कौमी जज्बे के एहतराम में गुलहाए अकीदत नजर किए। इसके बाद भारत और उज़्बेक बिरादरी ने रिवायती अंदाज में जनाब मोदी का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 137वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स, AIR न्यूज़ की वेबसाइट्स और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज़, DT न्यूज़, वज़ीर आज़म के दफ्तर और इत्तला तो नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। बीजेपी ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात की 137वें नशरिये के लिए पूरे गुजरात में समाज के मुख्तलिफ तबकात पर मरकूज जलसे मुनाकिद करने का प्रोग्राम तैयार किया है। पार्टी के सीनियर लीडर, नौजवानों, किसानों, पेशावराना अफराद और समाज के मुख्तलिफ तबकात के अराकीन के साथ मिलकर मन की बात सुनेंगे। पार्टी के रहनुमाओं के मुताबिक वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद के घटोलदिया असेंबली हलके में ये प्रोग्राम सुनेंगे। बीजेपी के रियासती सदर जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर के कोडासन इलाके में प्रमुख आर्केड में नौजवानों के लिए मुनाकिद एक प्रोग्राम में शामिल होंगे। जल शक्ति के मरकजी वजीर CR पाटिल सूरत शहर के उधना में वाक बीजेपी के दफ्तर में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के साथ मन की बात सुनेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर दलित समाज को सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया है। नई दिल्ली में अखबारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने इल्जाम लगाया कि दलित समाज की तौहीन करने की कांग्रेस की तारीख रही है। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स नरेंद्र मोदी हुकूमत ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के विरसे की ताजीम के तौर पर उनसे वाबस्ता मकामात को मुकद्दस मकामात का दर्जा दिया है। बीजेपी के कौमी सदर डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर अपने सियासी फायदे के लिए हिंदुओं में फूट डालने का इल्जाम आयद किया है। दफा 370 का हवाला देते हुए जनाब त्रिवेदी ने कहा कि 370 के इंतजाम ने जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज के अराकीन के खिलाफ इम्तियाज पर मबनी डोमिसाइल पाबंदियां आयद कर रखी थीं।
2: अब यह बात बहुत साफ दिखाई पड़ती है कि कांग्रेस का असली चेहरा क्या है। कभी अगड़े पिछड़े का मुद्दा उठाना है, कभी सामान्य और दलित का मुद्दा उठाना है, हकीकत में एक ही एजेंडा है कि हिंदुओं को आपस में लड़ाना है और पीछे से मैकाले, मार्क और मौलाना के एजेंडा को आगे बढ़ाना है।
0: इससे पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दलित समाज के खिलाफ इम्तियाज से मुतालिक मामलात उठाए थे। नायब सदर CP राधाकृष्णन आज 2 रोज़ा दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलप्पुज़ा में एक नुमाया मलयाली रोजनामा केरला कौमुदी के 115वें यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करेंगे। वो अरनमुला वाटर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे, जो कि केरलम की सबसे मशहूर और कदीम कश्तियों की दौड़ में से एक है। पंपा नदी में होने वाले सालाना कश्ती दौड़ के मुकाबले में 51 कश्तियां हिस्सा लेंगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज लखनऊ में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से खिताब करेंगे। पीएम सेतु योजना के तहत मुनक्किद होने वाले इस प्रोग्राम में हुनरमंदी के फरोग, इंटरप्रोनियरशिप और पेशावराना तालीम जैसे मौजूदात पर तबादला ख्याल किया

0: जाएगा। कॉन्क्लेव में शिरकत से पहले जनाब सिंह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को सुनेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के साथ वो लखनऊ कंटोनमेंट इलाके में 101 करोड़ रुपए के 12 तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
1: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद 675 हो गई है। दोबारा शदीद बारिश और मजीद सैलाब के अंदेशों के दरमियान तलाश और बचाव का कार्रवाई जारी है। तकरीबन 2400 अफराद लापता हैं, जिनमें से कम 320 गैर मुल्की शहरी हैं। 261 गैर मुल्की सयाहों समेत 4400 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: नेपाल पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 8 जिलों से 675 लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद चितवन नवलपरासी ईस्ट और नवलपरासी वेस्ट से है। 15,000 से ज्यादा सिक्योरिटी अहलकारों को तैनात किया गया है, जबकि सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने और राहत का सामान पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद परवाजें कर रहे हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक तलाश और बदतरीन तौर पर मुतासर रसूबा ज़िले में कल बारिश और कोहरे के सबब बचाव कार्रवाई के आर्जी तौर पर रोके जाने के बाद तलाश और राहत रसानी की कार्रवाइयां दोबारा शुरू कर दी गई हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटेकोशी दरिया में सैलाब के मद्देनज़र ताज़ा अलर्ट जारी किया है और दरिया के करीब रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रसूबा ज़िला इंतजामिया ने कहा है कि उसे पानी के बहाव में इजाफे के तनाजुर में रसूबा नवाकोट और ढांढिंग ज़िलों में लोगों से इंतहाई एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। चीन से मुतसिल सरहद पर भी 7 अफराद हलाक हुए हैं और 550 से ज्यादा लापता हैं। मिगलिंग काठमांडू शाहराह को कल से खोल दिया गया है, जो राजधानी को मुल्क के दीगर हिस्सों से जोड़ने वाली अहम सड़क है। अलबत्ता कई दीगर सड़कें अब भी बंद हैं या उनके रसाई में रखना है। न्यूज डेस्क की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अब्दुल वाहिद।
0: वज़ारत खारजा ने कहा है कि नेपाल में बुध को आए अचानक सैलाब के सानहे के बाद अब तक वहां 108 भारतीय शहरियों को बचा लिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों जिनका राबता मुनक़ते हो गया था, उनसे दोबारा राबता कायम कर लिया गया है। वज़ारत ने कहा कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है, जबकि 128 भारत नजाद अफराद भी लापता हैं, जिनके पास दीगर ममालिक की शहरियत है। मकामी सरकारी ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दिनों में 598 भारतीय शहरी चीन के रास्ते नेपाल में पहुंच गए हैं। इस दौरान 900 भारतीय शहरी जिन्हें चीन से रवाना होना है, बीजिंग में भारतीय सफारतखाने में महफूज हैं और मकामी सरकार के जरिए या बराह रास्त राबते में हैं। इस दौरान भारतीय हुकूमत ने नेपाल के तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए आफात से निमटने के कौमी दस्ते को नेपाल भेजने की पेशकश की है। नीज भारतीय फजाइया के जरिए हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजकर फौरी इंसानी इमदाद भी फराहम की गई है। इस दौरान वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि चौथी इमदादी परवाज C-130J हरक्यूलियस 11 टन इमदादी सामान के साथ कल काठमांडू के लिए रवाना किया गया है और इमदादी सामान नेपाल हुकूमत को सौंप दिया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर खारजा ने कहा कि इस परवाज के जरिए जरूरी अशिया और तकनीकी साजो सामान भेजा गया है, ताकि नेपाल में जारी तलाश बचाव और राहत रसानी की कार्रवाइयों में मदद फराहम की जा सके। इससे पहले भारत ने 3 परवाजों के जरिए 57 टन से ज्यादा हंगामी इमदादी सामान नेपाल भेजा था। भारत की 11 रुकनी तकनीकी टीम ने कल नेपाल के सैलाब से मुतासर इलाकों में पनबिजली टनल्स का मौके पर जाकर मुआयना किया, ताकि टनल्स में फंसे अफराद की तलाश और बचाव कार्रवाइयों में सहूलत फराहम की जा सके। डॉक्टरों, नीम तिब्बी अमले और टनल इंजीनियरों पर मुश्तमिल ये टीम जुमे को काठमांडू पहुंची। नेपाल की हुकूमत ने भोटेकोशी नदी में सैलाब के ताल्लुक से ताज़ा अलर्ट जारी किया है और नदी के आसपास के लोगों को चौकस रहने की अपील की है। नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक नदी की तुगयानी में मजीद शिद्दत आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के सरबरा मोहन भागवत ने कहा है कि जो लोग ये समझते हैं कि भारत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुत्व हर इंसान का एहतराम करता है और राह हक की तरफ जाने वाले मुख्तलिफ रास्तों को भी तस्लीम करता है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक इंसानियत के मौजू पर मुख्तलिफ मजाहिब के रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब भागवत ने मुसलमानों की जानिब से 2018 में दिल्ली में एक लेक्चर सीरीज के दौरान पूछे गए सवाल का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने यही जवाब दिया था। आरएसएस के 100 साल मुकम्मल होने के मौके पर जनाब भागवत ने न्यूयॉर्क में ये बयान दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात की यूएई सेंट्रल बैंक ने अमारात में बैंक के मिस्र की शाखों का फौरी तौर पर खसूसी मुआयना करने का फैसला किया है। अमरीकी ट्रेजरी की जानिब से मुमकिन तौर पर दरेपर्दा ईरानी बैंकिंग नेटवर्क लेन देन किए जाने के तनाजुर में ये कार्रवाई की गई है। भारत के महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश और कुछ इलाकों में इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और गंगा के मगरबी बंगाल के इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश मुतवक्का है। महकमे मौसमियात ने आज बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जेली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। भारत आज थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ खवातीन के T20 एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर भारतीय टीम की कप्तानी करेंगी, जबकि स्मृति मंदना नायब कप्तान होंगी। T20 एशिया कप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब तक हुए 5 एडिशन में से 3 में भारत जीत दर्ज कर चुका है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
3: शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उज्बेकिस्तान दौरे के तहत ताशकंद पहुंचने की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वजीर आजम मोदी का ये उज्बेकिस्तान का चौथा दौरा है। 4 रोजा गैर मुल्की दौरे के तहत वजीर आजम मोदी उज्बेकिस्तान से किर्गिस्तान जाएंगे। वहीं रोजनामा इनकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के उस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि भारत आज मरीख तक पहुंच गया है और खला में प्राइवेट स्टेशन और इंसानी मिशन की जानिब कदम बढ़ा रहा है। रोजनामा प्रताप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि अमेरिका वेनेजुएला के साथ दुनिया के सबसे बड़े तेल माहिदे पर पहुंच गया है, जिससे वेनेजुएला के 65 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल के जखायर पर अमेरिका का कंट्रोल हो गया है।
0: और अब खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्जियोयेव से बातचीत करेंगे। वजीर आजम आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के प्रोग्राम मन की बात के जरिए अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। नेपाल में अचानक सैलाब में मरने वालों की तादाद बढ़कर 675 हो गई है और 2400 अफराद अब भी लापता है। नेपाल ने भूटेकोशी नदी में सैलाब से मुतालिक ताजा वार्निंग जारी की है। वजारत खारजा ने कहा है कि नेपाल के अचानक सैलाब के हादसे में अब तक 108 भारतीयों को बचा लिया गया है। भारत ने नेपाल को इंसानी हमदर्दी के तहत 11 टन इमदाद पर मबनी चौथी खेप बजरिया तैयारा रवाना की है। और खवातीन क्रिकेट के T20 एशिया कप में आज शाम दुबई में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के जरिए अपनी मुहिम की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम साहित्य की।
5: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, साहित्य केवल शब्दों का संकलन नहीं बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और जीवन दृष्टि की यात्रा है। मेरा साहित्यिक सफर क्रम में वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामशरण गौड़ आज हमसे साझा करेंगे अपनी रचनात्मक यात्रा के शुरुआती पड़ाव, लेखन की प्रेरणा, समकालीन साहित्य की चुनौतियां और जीवन के प्रेरक अनुभव। आपसे भेंट कर रही हैं नीलम मलकानिया।
6: नमस्कार, मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ साहित्यकार और चिंतक डॉक्टर रामशरण गौड़। आप हिंदी अकादमी दिल्ली के सचिव रहे हैं, स्वतंत्र लेखन के अलावा आप आज कई स्वयंसेवी, समाजसेवी और साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं। साथ ही संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत वरिष्ठ अध्येता के रूप में आपने विशेष शोध कार्य भी किया है। 40 से अधिक आपकी पुस्तकें हैं और आपकी लेखनी ने केवल प्रशंसा ही नहीं बटोरी बल्कि कई सम्मान और पुरस्कार भी अर्जित किए हैं। आप लगातार साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। रामचरण जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। जब हम किसी के साहित्य यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारे मन में आता है वो ये कि किन परिस्थितियों में आपका लेखन से जुड़ाव हुआ होगा। तो मैं शुरुआत यहाँ से करूंगी कि आप भारत के किस हिस्से में जन्मे और आरंभिक शिक्षा दीक्षा कैसी थी आपकी?
7: मेरा जन्म जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश का गाँव है अंडला
6: जी,
7: वहाँ पर हुआ। बड़ा प्रसिद्ध गाँव है, वहाँ पर इंटर कॉलेज था पंडित मदन मोहन मालवीय ब्रह्माश्रम अंडला
6: जी,
7: अंडला को ब्रह्माश्रम नाम से जानते थे। वह शिक्षा का गढ़ था। उस समय आसपास के गांवों में विद्यालय नहीं थे
6: जी,
7: तो उस गांव में ही आकर के बच्चे गांव में रहते थे और वहां शिक्षा ग्रहण करते थे। उस समय शिक्षा का ही वातावरण था
6: जी,
7: और व्यक्तित्व निर्माण का वातावरण था। अध्यापक शिक्षक अपने विद्यालय के बाद भी विद्यार्थियों से संवाद करते थे, परिचर्चा करते थे, पढ़ाते थे, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनकी दृष्टि व्यवसाय में नहीं थी
6: जी।
7: अब तो इतने पुराने अध्यापक रहे नहीं है, लेकिन उस समय जब दिल्ली में भी आ गया मैं और मिल जाते थे, हमारे हाथ उनको चरणों पर ही जाते थे
6: जी,
7: और उनका स्नेह मिलता था।
6: तो क्या बचपन में ही आपका रुझान साहित्य की ओर हो गया था? लेखन कैसे आरंभ हुआ?
7: इसमें विद्यालय का बड़ा सहयोग हुआ। हमारे समय में बाल सभाएं होती थी
6: जी,
7: प्रतियोगिताएं होती थी और अंताक्षरी हुआ करती थी। अंताक्षरी साहित्य के आधार पर होती थी, उसमें रामचरितमानस है और एक झांसी की रानी है ना सुभद्रा कुमारी चौहान की
6: जी,
7: जो था पर ही कोई भी हम जो पद बोलते थे या चौपाई बोलते थे तो ये प्रयास करते थे कि दूसरी टीम को हम किसी तरह उड़ जाए। तो झांसी की रानी का हर पत्थी पर टूटता है
6: जी।
7: तो विद्यालय में जो हमारे शिक्षक थे, अध्यापक थे, वो प्रत्येक विद्यार्थी को अक्षर बांट देते थे
6: जी,
7: आपने था को तैयार करना है, आपने टा को तैयार करना है, झा को तैयार करना है, क्योंकि इन पर कम पद्यांश होते हैं, दोहे कम होते हैं, चौपाइयां कम होती है
6: जी।
7: तो एक एक करके बांटते थे, हम रात दिन रटते थे। अब भी याद है, अच्छा जैसे जहाँ पर है झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चवेना, था पर थर थर कापे सब नन नारी, छोट कुमार खोट अतवारी। तो हमारे को स्मरण कराई जाती थी
6: जी।
7: फिर जब हमारे को कोई पद्य याद नहीं होती थी, कोई चौपाई याद नहीं होती थी, तो क्या करते थे कि हम अपने आप भी बना करके चौपाई दे देते थे या दोहा देते थे या कोई न कोई पद्यांश बना देते थे, लेकिन पकड़े जाते थे
6: जी।
7: तो उससे रुचि जो है लेखन की तरफ गई। और एक साथ बाल सभा में भी बोलने के लिए कहा जाता था, अध्यापक अपने आप नाम लिख देते थे, इस विषय पर ये बोलेगा। तो पहले तैयार करके जाते थे, बोलते थे, बुलवाते थे और हमारे को कहते थे कि पढ़ रहे हो तो आप नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, या तो अध्यापक बनोगे तुम या किसी कार्यालय में काम करोगे। और उस समय केवल साक्षात्कार होता था, लिखित परीक्षा नहीं होती थी
6: जी।
7: तो हमारे को वो बोलने के लिए तैयार करते थे कि कल तुम्हारा साक्षात्कार होगा तो क्या बोलोगे जाकर। तो इस तरह से व्यक्तित्व निर्माण के प्रति और ये प्रयास करते थे कि हमारा छात्र, हमारा विद्यालय एक अच्छा स्थान प्राप्त करे, उस प्रयास करते थे
6: जी।
7: तो धीरे धीरे मैं लिखने लगा और उस समय मैं 12वीं पास करके दिल्ली में आ गया। तो बारहवीं पास करने के बाद मैंने प्रभाकर परीक्षा की पंजाब विश्वविद्यालय से, साहित्य रत्न परीक्षा पास की। तो क्योंकि उस समय पढ़ने लिखने का साधन नहीं था, जिस व्यक्ति को काम करने की आवश्यकता करती थी। अब तो सांध विद्यालय भी स्थापित हो गए हैं, मुक्त विद्यालय भी स्थापित हो गए, मुक्त विश्वविद्यालय भी है, पत्राचार पाठ

0: जी
1: उस समय पत्राचार पाठ्यक्रम आया है था, तो साहित्य रत्न के बाद में हम लोग एमए में जा सकते थे, ऑनर्स माना जाता था, साहित्य रत्न को उस समय मान्यता प्राप्त था।
0: जी
1: फिर मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए में हिंदी किया और पीएचडी हिंदी से मैंने की, और मेरा विषय था आधुनिक कृषि काम में पौराणिक आख्यान।

0: सामने वो क्या थी, और कोई पहली रचना जो आपकी प्रकाशित हुई या मंच प्रस्तुति आपने उसकी दी, उसके बारे में जरूर हमें बताएं।
1: मुझे अच्छी तरह से स्मरण है
0: जी
1: कि जब लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया था
0: जी
1: तो उस दिन वर्षा हो रही थी 1965-66 में, मुझे याद है। तो मैंने पहली कविता लिखी थी लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ चले वो लाल हमारे। तो वहां से मैंने पहले कविता लिखना प्रारंभ हुआ, वो पत्रिकाओं में छपी, पुस्तकों में भी छपी, मथुरा से पत्रिका निकलती थी एक उसमें छपी, और दिल्ली में भी पत्रिका निकलती थी उसमें छपने लगी। फिर धीरे धीरे मेरा रुझान गद्य की तरफ ज्यादा बढ़ता चला गया
0: जी।
1: तो लेख लिखता था, उस समय हिंदुस्तान में भी छपे, तो यदि लेख अच्छा होता था और कविता अच्छी होती थी, छपती थी, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं आता था और उस समय कोई कमी भी रह जाती थी तो हम दिखा लेते थे पहले लोगों को, जो हमारे विद्वान थे उनसे हम पर चर्चा करते थे, हमें वो बताते थे कि इसमें कमी ये रह गई।
0: जी
1: तो जैसे कि जैनेन्द्र कुमार जी थे कहानीकार, मैं तो कहानी कम ही लिखता था, लेकिन बहुत बच्चे बहुत युवा कहानी लिखते थे तो वो समझाते थे बिठा करके। और इसी तरह से दूसरे जो हमारे वरिष्ठ लेखक थे वो सारे के सारे हमें रास्ता बताते थे कि इस तरह से चलो आगे। फिर हमें पुस्तक पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते थे कि ये पुस्तक पढ़ो, ये पुस्तक पढ़ो, इसमें से ये संदर्भ जोड़ो।
0: जी, तो लेखन के प्रति रुझान भी था और आपने लगातार लिखना भी शुरू किया, साथ में पठन पाठन आपका चल भी रहा था, आपने MA किया, फिर PhD भी की। नौकरी में आते हुए ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पर होती हैं, तो ऐसे में पठन पाठन थोड़ा रुक जाता है या लेखन कार्य अवरुद्ध होता है, आपका कैसा अनुभव रहा?
1: मेरे को कोई व्यवधान नहीं हुआ किसी तरह से, यद्यपि मेरा विवाह हो गया था लेकिन पत्नी भी प्रोत्साहित करती, पढ़िए लिखिए, आप घर के काम की तरफ काम ध्यान दीजिए, हम संभालेंगे।
0: जी,
1: तो मुझे घर की तरफ पूरा का पूरा, भाइयों की तरफ से, पिताजी जी की तरफ से पूरा का पूरा मुझे योगदान रहा और किसी तरह का व्यवधान नहीं।
0: अभी तक आपके 4 उपन्यास, 9 कोश हैं, 27 समीक्षा ग्रंथ हैं और हर विधा में आपने लिखा है। आप साहित्यिक गतिविधियों का संचालन भी करते रहे हैं, आयोजन आप करवाते रहे हैं, लगातार उसमें सक्रियता आपकी बनी रही है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपने शुरुआत की थी एक लेखक के रूप में, उस समय साहित्यिक गतिविधियों का क्या स्वरूप होता था, कौन से मूर्धन्य साहित्यकार होते थे जिनसे आपको मिलने का अवसर मिला, जिनसे बातचीत करने का अवसर मिला, जिनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, वो समय हमारे लिए थोड़ा सा याद कीजिए एक बार।
1: उस समय जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार थे वो विशेष रूप से युवाओं से मिलने के लिए उन्हें कोई किसी तरह का संकोच नहीं रहता था
0: जी,
1: और वो मिलते थे। मेरा मिलना रामधारी सिंह दिनकर जी से भी हुआ
0: जी,
1: वो लाल किले के एक कवि से मिलन में आए थे तो हम लाल किले का कवि से मन सुनने के लिए गए थे। तो उस समय गोपाल प्रसाद व्यास थे हिंदी साहित्य सम्मेलन के, मेरे से अच्छी तरह से परिचित थे वो
0: जी।
1: वो उस समय आयोजन करते थे तो मंच पर आए थे, हम आगे बैठे थे, जब उतरे तो मैंने उनको प्रणाम किया, बातचीत करने लगे, क्या कर रहे हो, क्या है, तो उनसे भी मिलना होगा। सोहनलाल दुबे जी से भी राष्ट्रीय कवि थे
0: जी,
1: और वो मुझे हिंदी साहित्यकार का सम्मेलन था उसमें आई थी, तो उसमें हम उनसे मिले। और महादेवी जी वर्मा से प्रयागराज में भी मिले, उस समय छात्र होते थे, युवा होते थे या लेखक होते थे तो वो जाते थे कि चलें मिल के आए, दर्शन करें, तो जाते थे बड़े सम्मान पूर्वक, बड़े प्रेम से, स्नेह से। माधवी वर्मा भी मिली और निराला जी से भी मिलने का अवसर मिला
0: जी।
1: कई ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार थे उस समय, उनसे मिलने का अवसर मिला और वो प्रोत्साहित करते थे, स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, बढ़ाने का प्रयास करते थे।
0: जी, आपकी रचनाओं को

0: बहुत ही पसंद किया जाता रहा है और कई सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। श्री आराधक सम्मान, प्रशांत वेदालंकार सम्मान है, श्री प्रकाश वीर शास्त्री सम्मान और साथ ही दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का साहित्य श्री सम्मान आपको मिला है। साहित्य भारती है, एक लंबी फहरिस्त है इसकी। तमिलनाडु हिंदी अकादमी का सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस साहित्यिक यात्रा में जो रचनाएं पुरस्कृत हुई हैं, सम्मानित हुई हैं, इनमें से किसी की रचना के बारे में आप अपना अनुभव हमसे साझा करना चाहेंगे? कौन सी रचना आपके हृदय के विशेष नजदीक है?
1: वैसे तो एक लेखक के लिए सभी रचनाएं ठीक ही होती है
0: जी,
1: लेकिन एक मैंने संकलन किया है खुद के निबंधों का लिख करके, और मैंने उसमें विभिन्न प्रकार के निबंध लिखे थे
0: जी।
1: तो जैसे लोक व्यवहार के समर्थक वृद्ध जन, क्योंकि साहित्य को व्यवहारिक समाज कार्य भी कहा जाता है
0: जी।
1: लिटरेचर इज द अप्लाइड सोशल वर्क। हमारे यहाँ पर जो काव्य शास्त्री हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से संकेत किया है, काव्यम यशसे व्यवहार विदे। काव्य उस समय साहित्य का ही पर्याय था
0: जी।
1: काव्य साहित्य यश तो देता ही है, लेकिन व्यवहार करना भी सिखाता है लोगों। जो कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता करता है, वही लेखक कार्य करता है
0: जी।
1: हमारे यहाँ कहा भी जाता है, जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कवि। उसकी दृष्टि होती है, जैसे चिड़िया हर जगह से दाना चुगती है, इसीलिए लेखक की दृष्टि जगह जगह जागती है
0: जी।
1: लोगों ने उसे पसंद किया कि आपने जो लेख लिखे हैं वो अत्यंत ही प्रासंगिक है। जैसे तुलसी की धार्मिक चेतना है, तो मैंने प्रासंगिकता के आधार पर उसको लिखा। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आज के समय के अनुकूल जो प्रासंगिक है, वो मैंने सारी रचनाओं को उस दृष्टि से लिखा है
0: जी।
1: और इसके साथ साथ एक मैं अवश्य आपसे बात करना चाहूंगा, मैंने एक जो हमारी प्राचीन कथाएं हैं
0: जी,
1: उनका, भारत की प्राचीन कथाएं, मैंने इनका संकलन किया है। क्यों संकलन किया? भारत की कोई भी भाषा हो, क्योंकि हमारे सभी जो साहित्य है
0: जी,
1: साहित्य के लेखन में, चाहे गद्य का लेखन हो चाहे पद्य लेखन हो, हमारी अंतर कथाएं उसमें बहुत समाहित है। जब तक उन अंतर कथाओं को विद्यार्थियों को नहीं बताया जाएगा, तब तक उसका भाव और अर्थ स्पष्ट नहीं होता है
0: जी। वो संदर्भ पता होना चाहिए।
1: हाँ,
0: जी।
1: तो अब तुलसी है, सूर है, या जो आधुनिक कवि हैं, वो जो प्रयोग का स्वरूप है, उसमें अलंकार की दृष्टि से, दृष्टांत की दृष्टि से, औचित्य की दृष्टि से, वक्रोक्ति की दृष्टि से, स्थान स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: तो मेरी दृष्टि उधर गई कि मुझे कोई कोष पर काम करना चाहिए। तो मैंने कोष बनाया भारतीय प्राचीन कथा कोष, तीन खंडों में
0: जी।
1: पहली में हमने वैदिक काल से लेकर के पौराणिक काल तक सारे के सारे ग्रंथों के जो हमारी कथाएं हैं उनको उसमें लिया है। इसके बाद जो बौद्ध काल का जाति कथाओं का बहुत उदाहरण दिया जाता है
0: जी,
1: तो दूसरा खंड मैंने जातक कथाओं का लिया। तीसरा खंड मैंने लोक कथाओं, जैसे कथा सरित सार है
0: जी। इनके अलावा और भी आपकी कई रचनाएं जो हैं वो बेहद चर्चित रही हैं, जैसे लोक संस्कृति के उन्नायक सूरदास, पौराणिक कथा कोश है, हिंदी साहित्य पूर्व पीठिका कोश, या आधुनिक गीति काव्य में जीवन मूल्य इसकी बात करें, या भारत राष्ट्र वैभव की बात करें। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही है, कई पुस्तकें हैं, सम्मान आपके खाते में आते हैं, विभिन्न संस्थागत दायित्वों का आपने निर्वाह किया है, ऐसे में भाषा का प्रचार प्रसार रचनाओं के माध्यम से, आपने अलग अलग विधाओं में लिखा, अलग अलग शैलियों में लिखा, लगातार आपका ये प्रयास रहा कि भाषा का प्रचार प्रसार होता रहे, ये आपको क्यों जरूरी लगा और इस बारे में आपका क्या अनुभव रहा?
1: विशेष रूप से मुझे हिंदी अकादमी के सचिव पद पर कार्य करने का उत्तरदायित्व मिला
0: जी।
1: तो मैंने ये देखा कि हिंदी साहित्य के साथ साथ जब तक हिंदी को एक

0: एक दृष्टि नहीं दी जाएगी व्यवसायिक रूप की।
1: जी
0: हमारे से लोग खुद कहें हमारा हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी के लोग इतने समर्थ होने चाहिए कि
1: जी
0: उनकी आवश्यकता पड़े लोगों को और खुद बुलाएं। तो मैंने हिंदी अकादमी में प्रशासनिक प्रतियोगिता कक्ष प्रारंभ किया,
1: जी
0: उसमें IAS क्लासेज को हिंदी माध्यम से पढ़ाने का प्रारंभ शुरू किया। बाहर से हम अतिथि अध्यापक बुलाते थे और इसके साथ साथ उस समय कंप्यूटर आ गया था, तो मेरी दृष्टि गई कि कंप्यूटर का हिंदी टाइपिंग शुरू करना चाहिए हमें। तो मैंने 10 केंद्र स्थापित किए दिल्ली में, और इसे मैं एक अच्छाई ही कहना चाहूंगा कि हमारे पहले बैच के सारे विद्यार्थी को नौकरी मिल गई।
1: जी
0: समाचार पत्रों के पत्रिकाएं बहुत निकलती थीं, उनको ले गए और अच्छी अच्छी नौकरी, उस समय 5,000-7,000 रुपया मिलता था, वो बहुत था उस समय, आज के भी 25-30 लाख रुपए के बराबर है, उनको नौकरी मिल जाती थी। फिर उनका ये अनुवाद प्रक्रिया भी शुरू होनी चाहिए, तो माखनलाल विश्वविद्यालय है भोपाल का,
1: जी
0: वहाँ के जो वाइस चांसलर थे, उप कुलपति मेरे परिचित थे, तो मैंने उनसे बातचीत की। नोएडा में उसका केंद्र है, तो मैंने कहा आप हमारे को मान्यता दे दीजिए अनुवाद की,
1: जी
0: तो हिंदी अनुवाद की मान्यता उन्होंने दे दी, तो अनुवाद की कक्षाएं शुरू कराई। इसी तरह से उन्होंने पत्रकारिता की मान्यता दे दी, मास मीडिया की, उसमें विद्यार्थियों को हिंदी के माध्यम से तैयार किया कि आप समाचार पत्रों में जाइए, पत्रिकाओं में जाइए, और इसके बाद जब दूरदर्शन भी आ गया था तो आप वहाँ भी जाइए, तो बच्चों को सफलता मिलती थी। तो इस तरह हमने निरंतर प्रयास किया। अच्छा, एक और बात कहना चाहूँगा, जो प्रूफ पाठन की बड़ी समस्या है, लोग ठीक तरह से वर्तनी को नहीं देख पाते हैं,
1: जी
0: तो हमने प्रूफ पाठन का भी पाठ्यक्रम चलाया, और उसमें विद्यार्थी प्रकाशकों के पास चले जाते थे, कुछ लेख कविता इन सारे का प्रूफ पठन करके आ जाता थे, कुछ पैसा मिल जाते थे।
1: जी
0: इस तरह से उस तरफ भी बच्चे जाने लगे।
1: यानी भाषा को ही रोजगार का माध्यम आपने
0: हाँ,
1: बनाया और
0: उससे
1: इसे
0: बड़ा
1: लेकर
0: आवश्यक है,
1: जी
0: साहित्य तो चाहिए ही चाहिए। आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हम तो किताबें मंगा मंगा के पढ़ते थे, अध्यापक पढ़ते थे, हम 9-9 मील पैदल जाकर के पुस्तक खरीद के लाते थे।
1: जी
0: मुझे अच्छी तरह से याद है दिनकर जी की 1962 के समय परशुराम की प्रतीक्षा उनकी पुस्तक आई थी, बड़ी चर्चित हुई थी, उसको लेने के लिए हमारे यहाँ से अलीगढ़ 9 मील है, अब तो 19 किलोमीटर हो गया, वहाँ पैदल गए, पैदल आए पुस्तक लेने के लिए। उसमें बच्चों को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की एक रुचि थी,
1: जी
0: और हमारे अध्यापक बढ़ाते थे ये पुस्तक आई है इसे पढ़ो।
1: तो बहुत प्रयास जो है उस समय किया जाता था।
0: हाँ
1: आपने अपनी बातचीत में हमें बताया कि निराला जी को आप सुनने गए लाल किले पर, जो गणतंत्र दिवस कवि सम्मेलन होता था, और एक समय वो भी आया जब स्वयं आपने वहां पर साहित्य कार्यक्रमों और संगोष्ठियों का आयोजन करवाया, संचालन भी करवाया। और एक आज का दौर भी है जब हमारे युवा लेखक जो हैं हमारे साथी, वो डिजिटल दौर का सामना कर रहे हैं और सब कुछ एक स्क्रीन तक सिमटता जा रहा है, किताबों से थोड़ी सी दूरियां हमारी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं पठन पाठन संस्कृति को बचाए रखने की?
0: ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आज की मैं पीढ़ी को देखता हूँ, क्योंकि आज भी मैं नोएडा पब्लिक लाइब्रेरी का चेयरमैन का मेरे पास उत्तरदायित्व तो है,
1: जी
0: वहाँ पर भी मैं बच्चों को देखता हूँ, तो हमारे यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी तो बहुत आते हैं। जो सामान्य पाठक है निरंतर कम होता जा रहा है, युवा कम होते जा रहे हैं, बच्चे कम होते जा रहे हैं। मैं जब हिंदी अकादमी में था तो मैंने युवाओं को खींचने के लिए अलग से युवा काव्य प्रतियोगिता करा दी
1: जी
0: या लेख की प्रतियोगिता करा दी, फिर हम उसका प्रकाशन करते थे और उसमें डालते थे, और छप जाती थी पुस्तक, उगती किरण नाम से निकालते थे, तो सारे बच्चों को देते थे। कि पढ़ो अपने साथियों को पढ़वाओ। तो बच्चे प्रसन्न होकर के ले जाते थे, सबको पढ़वाते थे और प्रतियोगिता में हम उनको

0: प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार भी देते थे।
1: जी
0: तो विश्वविद्यालय के महाविद्यालय के युवा लेखक कवि उगते हुए कवि सब उसमें जुड़ते थे। तो ये परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। इसी तरह से हिंदी साहित्य सम्मेलन में मुझे वहाँ का उपाध्यक्ष रहने का अवसर मिला, फिर मार्गदर्शक बन गया मैं। तो मैंने ये कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़िए, तो उसके लिए भी हमने कार्य किया, युवाओं की प्रतियोगिताएं कराई, युवाओं के कवि सम्मेलन छोटी छोटी जगहों पर कराए। तो ये होने चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने बाल साहित्य के कुछ जो कहानी है उनका भी संकलन किया, भारत की प्राचीन कथा नाम से। तो उसमें जो कथाएं हैं हमारी प्राचीन, कथाओं के माध्यम से उनके चित्र दिए, जैसे नचकेता की कथा आती है
1: जी,
0: तो उसमें जो व्यवहार के पक्ष है उसको लिया गया। इसी तरह से अनेक कथाएं हैं जो बच्चों को व्यवहारिक पक्ष समझाती हैं और संस्कार देती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी लेखन हुआ, अब भी हो रहा है, जो अच्छे अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार हैं उनके लेखन का समाहार
1: जी
0: किसी न किसी संदेश के साथ होता है, मूल्य के साथ होता है। मैं भी साहित्य उसी को मानता हूँ जिसमें सत्य हो, शिव हो और सौंदर्य हो।
1: जी वाह।
0: जिसमें शिवत्व तो नहीं हुआ, हमारे आचार्य मणमठ हुए हैं, शिवेतर छते, उन्होंने कहा अपने उद्देश्य में, यज्ञ लोगों ने विभिन्न प्रकार के उसके अर्थ किए कि संदर्भ में कहा है, पर ये मानता हूँ मैं कि उन्होंने लोक मंगल को दृष्टि में रखा कि हमारा साहित्य लोक मंगलकारी होना चाहिए। जो समाज का कल्याण नहीं कर सकता है, हमारे बच्चों को संस्कार नहीं दे सकता है, हमारे युवाओं को संस्कार नहीं दे सकता है, इसलिए जब तक पुस्तकें पढ़ी गईं तब तक बच्चों में संस्कार आए। माँ बाप बच्चों को बिठा करके उनको सुनाते थे। अब आपने अभी लोक संस्कृति की बात की,
1: जी
0: मैंने लोक संस्कृति पर भी काम किया है। हमारे यहाँ पर जो लोक उत्सव होते थे या जो हमारे यहाँ लोक संगीत वगैरह होता था, उसमें कोई न कोई संदेश निहित था।
1: जी
0: मैंने अभी संकलन किया है भारतीय लोक में श्री राम, पूरे भारत के लोक कथाओं के अंतर्गत, लोकगीतों के अंतर्गत श्री राम कहाँ कहाँ।
1: जी
0: सिबरी देखे बार बार श्री राम कब आएंगे। अब महिला हमारे यहाँ पर गाती थी, या अंगूठी मोई सांच बता दे कहाँ तो छोड़े लक्ष्मण, इस तरह का लोक संगीत होता था। उसमें सारा का सारी हमारी राम कथा भी निहित है, कृष्ण कथा भी निहित है
1: जी,
0: वो सारे के सारे पूरी हमारी भारतीय संस्कृति निहित थी
1: जी। और इनके माध्यम से जीवन मूल्य हम सीख रहे हैं, चरित्र निर्माण हो रहा है।
0: हाँ, संस्कार सारे के सारे
1: जी,
0: क्योंकि कोई न कोई लोक कथा है
1: जी,
0: उसका समाहार संदेश में मूल्य में होता है।
1: जी डॉक्टर रामशरण गौड़ जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारे आज के नवोदित साहित्यकार हैं, जो कि गंभीरता से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और उनका ये प्रयास भी है कि उनकी रचनाएं लगातार जनमानस तक पहुंचती रहें, उनके लिए आपका क्या संदेश है? इस डिजिटल युग में उनकी चुनौतियां थोड़ी अलग हैं, एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी है, लगातार बने रहने का संघर्ष है, क्या उनके लिए आपका संदेश है?
0: मेरा यही कहना है अपने युवा लेखकों को कि आप निरंतर लिखे रहिए, साहस के साथ आके बढ़ते रहिए। अच्छी पुस्तकें अब भी पढ़ी जा रही हैं, अच्छे लेखन को अब भी लोग पढ़ रहे हैं, पुस्तकालयों से पुस्तकें ले जाते हैं, यद्यपि संख्या कम हो रही है
1: जी,
0: परंतु अब जैसे जैसे समस्याएं समाज में आ रही हैं, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, जानते हैं, समाचार पत्र पूरे के पूरे भरे रहते हैं, रोज जितनी श्रृंखलता समाज में बढ़ रही है
1: जी,
0: वरिष्ठों का इतना सम्मान घट रहा है,
1: बहुत तरह की
0: परिवारों का हमारा विघटन हो रहा है, ये सारा का सारा क्यों है? कि हमारा सामाजिक मूल्यों के प्रति जो आग्रह था परिवारों में कम होता जा रहा है
1: जी।
0: इसलिए आज युवा पीढ़ी के सामने जो चुनौती है उसे युवा पीढ़ी ही समाप्त करेगी। वो लिखे छपती हैं किताबें, हम प्रोत्साहित करते हैं। मैं पत्रकार भी रहा हूँ, बहुत सारी पत्रिकाएं का संपादन करता रहा हूँ
1: जी।
0: एक पांचवा स्तंभ पत्रिका निकलती थी, उसका मैंने साल तक संपादन करता रहा। तो मैं प्रयास ये करता था कि उसमें युवाओं की अधिक से अधिक रचनाएं हो जाती थी। एक गौरव घोष निकलती थी पत्रिका, उसमें हमारे शहीदों का, उसमें हमारे जितने भी महापुरुष हैं
1: जी।
0: क्योंकि जब से युवा पीढ़ी के सामने से हमारे महापुरुष अलग कर दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, तो अनुकरण किसका करेंगे
1: जी।
0: अनुकरण करते हैं गलत लोगों का और वो आधुनिकता के नाम पर भटक रहे
1: जी। सही आदर्श हमारे सामने होगा तभी हम अनुकरण कर पाएंगे।
0: सही आदर्श सामने होना चाहिए।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगी आपका 1942 का जन्म है,
0: ये
1: जन्म का वर्ष क्या है आपका?
0: हमारे जो कहना चाहिए पंडरी कहते थे हम
1: जी,
0: तो हमारे मुख्य अध्यापक थे प्राइमरी स्कूल, तो उन्होंने 1942 लिख दिया। उनमें उस समय जो है किसी के पास जन्म तिथि का तो कोई प्रमाण होता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसका जन्म कम लिख देता हूँ ताकि नौकरी ज्यादा देर तक करे। तो उनका मुख से ऐसा आशीर्वाद निकला कि मैंने 40 साल सरकारी नौकरी की
1: जी, बहुत अच्छे।
0: तो उन्होंने लिख दिया वैसे 1.5 साल से पहले मेरा जन्म
1: जी। लेकिन फिर भी मैं असल में इसलिए आपसे जानना चाहती थी कि 80 वर्ष से अधिक आपकी आयु है और आज भी आप साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय हैं, आप लगातार पठन पाठन को प्रेरित करते रहे हैं। आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और लगातार इसी तरह सक्रिय रहे, क्योंकि जब आप सक्रिय रहेंगे तो आपको देखकर हमारे बहुत सारे नवोदित कलाकार जो हैं और साथ ही जो साहित्यकार हैं वो प्रेरित होते रहेंगे। जब हम किसी वरिष्ठ साहित्यकार की साहित्यिक यात्रा के बारे में जानना शुरू करते हैं तो समय की एक खिड़की हमारे सामने खुलती है जिसमें से हम झांकते हैं और अपना गुजरा हुआ कल देखते हैं जो हमें प्रेरित करता है आने वाले कल के लिए। तो डॉक्टर रामशरण गौड़, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं नीलम मलकानिया, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा के साथ इस कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग रहा कीर्ति बैद का और मार्गदर्शन राम अवतार बैरवा जी का।
2: इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यही संपन्न होता है।
3: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
4: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई से। इनसे बातचीत कर रही हैं काजल सूरी। संगीत में बसती है साधना, शुरू में छिपा है इबादत का संसार। नमस्कार, हमारे अतिथि कार्यक्रम में एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ काजल। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने जा रहे हैं जिनकी मधुर आवाज, अथक साधना और भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रति समर्पण ने अनेक श्रोताओं के हृदय को स्पर्श किया है। कहते हैं ना, नाद ही ब्रह्म है, संगीत ही साधना। सुरों की आराधना से मिलता है आत्मा का दर्पण। इन्हीं सुरों की इस पावन यात्रा को और नजदीक से जानने के लिए आज हमारे साथ हैं शास्त्रीय संगीत की जानी मानी गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई। डॉक्टर सुभद्रा देसाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका है जिनकी प्रस्तुतियां अपने चिंतनशील स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है। एक शोधकर्ता और शिक्षाविद के रूप में उन्होंने सामवेदिक गायन की मौखिक परंपराओं पर कार्य किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन किया है। आइए उनके संगीत सफर अनुभवों को सुनें।
5: यहाँ बुलाने के लिए और नमस्कार सभी श्रोताओं को।
4: तो सबसे पहले मेरा यही सवाल होगा कि जो आपका संगीत का सफर रहा है वो कैसे शुरू हुआ?
5: बहुत छोटी थी, हमारे घर में संगीत का माहौल था
4: जी।
5: मेरी माँ गाती थी, मेरे पिताजी भी मेरे बचपन में मैंने सुना है कि वो इसराज बजाते थे। मेरे सभी जो ताए जी बुआ जी ये लोग सब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे।

0: ऑर्गन बजाती थी मेरी बुआ, वायलिन बजाते थे ताई जी, तो घर में संगीत था जी। और मेरे नाना जी के यहाँ भी सभी गाते थे, तो मेरे पेरेंट्स मुझे 5 साल की उम्र में सिखाने के लिए ले गई किसी के पास, कोई वहाँ पे बहुत पास में ही रहती थी, तो उनके पास, उनका नाम था भारती दास, तो उनके पास मैंने जाके अपना संगीत का शुरुआत किया
1: 5 साल की उम्र में।
0: 5 साल की उम्र में
1: जी।
0: फिर उसके बाद पास में कहीं एक इंस्टीट्यूट था संगीत का, तो वहाँ जाके भी 3-4 साल सीखा। लेकिन मैं ये सोच समझती हूँ कि जो मेरा विधिवत शिक्षा जो कहें वो गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली में हुआ
1: जी।
0: पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी और पद्मा देवी जी के पास शुरुआत हुई, शुभा जी से भी कुछ समय सीखा। मेरे गुरु पंडित मधुप मुदगल जी के पास मैंने वर्षों तक, अनेक वर्षों तक उनके पास गुरु शिष्य परंपरा में सीखा।
1: क्या बात। गुरु शिष्य परंपरा के बारे में मैं आपसे और विस्तार से जानना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं के लिए क्या कहेंगी आप, क्योंकि मुझे लगता है कि ये परंपरा कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, आपका क्या मानना है इस बारे में?
0: देखिए, समय के साथ साथ तो कुछ ना कुछ अंतर आता जाता है, लेकिन जो गुरु शिष्य परंपरा में जिस तरह से गुरु मुख से सीखना, मतलब ये कोई किताबी विद्या तो है नहीं, गुरु के सामने बैठ के उनके सान्निध्य जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: बहुत कुछ सिखा देते
0: बहुत हैं। हाँ, क्योंकि संगीत मतलब स्वरों की साधना है, तो है ही, रागों का समझ है, ये सभी चीज रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो गुरु का सान्निध्य होता है, कैसे बैठना, कैसे चलना, कैसे बोलना, हर चीज उसमें आता है, बात कैसे करना, या संगीत के विषय में कैसे सोचना, राग के बारे में किस तरह से उसमें कौन कौन सी चीजों में ध्यान देना, तो ये सब चीजें गुरुमुख से ही मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो घंटों तक, वो ऐसा नहीं कि 1 घंटा सिखाया, 1.5 घंटा सिखाया, घंटों तक बैठ के वो सिखाते थे, और हम 3-4 लड़कियां एक साथ बैठ के सीखती थी, लेकिन बड़ा पावरफुल था वो समय, बहुत स्ट्रांग वाइब्स उसके मेरी मेमोरीज में हैं, शुरुआत की जो मेरी शिक्षा है। बाद में तो वो बहुत कठिन होता गया और उसमें मन रमता गया, और ये सभी संभव हुआ क्योंकि मैं उनसे सीख रही थी उस तरह से। देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैनर में सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल भर में आपको इतने राग आने चाहिए या उसमें आलापतान आने चाहिए, ये भी जरूरी है
1: जी।
0: और हजारों बच्चे इस तरह से सीख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें कोई भी कमी है, बट मैं इंस्टीट्यूशन में रहते हुए, मैंने विशारद वहीं से किया, गांधर्व महाविद्यालय से, लेकिन वहां रहते हुए भी मुझे ये, मेरे गुरु मुख से वो विद्या मुझे मिली, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ।
1: और मुझे लगता है कि एक अच्छा गुरु मिलना भी एक सौभाग्य की बात होती है।
0: बिल्कुल,
1: गुरु का हाथ अगर सर पे हो तो वो एक अपने आप में एक सौभाग्य की बात हो जाती है।
0: वो जैसे माता पिता उंगली पकड़ के बच्चों को अक्षर परिचय कराते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि स्वरों का परिचय उस तरह से मुझे गुरुजी से, अपने गुरुजी से मुझे मिला है।
1: क्या बात, क्या बात। 5 साल की उम्र से जो आपका सफर शुरू हुआ, तो आप आज इस मकाम तक पहुंची हैं, तो ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि रियाज का आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या ये रेगुलर होता है?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल, उसके बिना कोई चारा ही नहीं है। रियाज क्या, उसको हम लोग के यहाँ, मेरे गुरुजी के यहाँ, उस अभ्यास कहते हैं, अभ्यास
1: जी,
0: करना
1: जी।
0: रियाज करना ऐसे ज्यादा नहीं कहते थे, अभ्यास करना, क्योंकि रियाज, वो कब रियाज बनता है, ये वो धीरे धीरे एक छात्र को समझ में आता है। अभ्यास करना किस तरह से, एक सिर्फ रागों का नहीं, पहले तो स्वरों का, स्वर, 7 स्वर तो सभी संगीत में है, हमारे राग संगीत में 12 स्वर है, 5 कोमल और तीव्र स्वर भी हैं, तो 12 स्वरों का अभ्यास, उसके बाद जो भी राग चल रहा है, जो राग सीख रहे हैं, उस राग का अभ्यास, उस राग में किस तरह से, कैसी कैसी बंदिशें अलग अलग हैं, उन बंदिशों में कैसे उसको बढ़ाना है आलापतान के जरिए, तो ये इसका अभ्यास, तानों का अभ्यास, तो अभ्यास के बिना तो रास्ता ही नहीं मालूम कोई,
1: ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ पॉसिबल ही नहीं हो सकता। और पकड़ भी तभी आती है सुरों पे जब हम अभ्यास करते हैं, तो कौन सा वक्त अभ्यास के लिए, रियाज के लिए सबसे सही रहता है?
0: सबसे अच्छा समय स्वर अभ्यास के लिए तो सुबह का है
1: जी।
0: तो सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो उस समय जैसे सूर्योदय से पहले का जो समय है वो बहुत अच्छा समय माना जाता है। एक तो ये भी है कि उस समय बिल्कुल शांत रहता है वातावरण, निःशब्द, कोई आवाज नहीं रहती है बाहर, तो और घर में भी सब लोग सोए हुए होते हैं
1: जी जी।
0: तो उस समय तानपुरा मिला के स्वर अभ्यास करना ये एक बहुत जरूरी काम है किसी भी संगीत के विद्यार्थी के लिए
1: जी।
0: और इसके अलावा बाकी चीजें जो है राग का अभ्यास वगैरह वो किसी भी समय हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, शाम को भोजन से पहले हो सकता है या रात को सोने से पहले भी, जिस गायक को जैसी सुविधा होती है वो उस तरह से करते हैं।
1: ये साधना है,
0: वो चलता ही रहता है कहीं ना किसी ना किसी तरह से
1: जी। तो डॉक्टर सुभद्रा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी पसंद के जो राग हैं वो कौन कौन से हैं और क्यों आप उनको इतना पसंद करती हैं, कोई खास बात?
0: दो तीन राग तो हैं जो मुझे बहुत पसंद है। एक राग है रागश्री, उसके जो कोमल ऋषभ है वो बड़ा बहुत स्ट्रांग, उसका इफेक्ट गाने में भी, उसको ढूंढने में बहुत समय लगा और अभी भी हमेशा वो स्वर मुझे मिलते हैं, ऐसे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी वो स्वर लग जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। तो लग जाने की मतलब ये नहीं कि हाँ, नॉर्मली कोई श्रोता तो सुन के नहीं उसका अंतर बता पाएगा, लेकिन जिस तरह से हमारे गुरु ने हमको सुर बताया है कि देखो श्री राग में ये इस तरह से ये स्वर लगाना है कि कोमल ऋषभ, तो वो मेरे मन में उसका बड़ा बहुत गहरा प्रभाव है। और भी राग हैं, एक शाम के रागों में एक मुझे शुद्ध कल्याण बहुत पसंद है, बहुत मीठा राग है, और सुबह के रागों में मुझे भैरव, आही भैरव, बिलास खानी, ये सब राग मुझे बहुत पसंद है।
1: तो क्या आप हमारे श्रोताओं के कुछ थोड़ा सा सुना दीजिए?
0: अच्छा, तो एक बंदिश थोड़ी सी छोटी सी।

0: बहुत ही खूबसूरत,
1: इतनी सुंदर,
0: बहुत ही खूबसूरत। तो आपने बहुत सारी यादगार मंच प्रस्तुतियां दी हैं, मंच पे आपने परफॉर्मेंसेस दी हैं, कोई ऐसी प्रस्तुति जो आपके दिल के बहुत करीब रही हो और आप अभी तक उसको याद करती हैं, कुछ ऐसा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगी?
1: हाँ, कई ऐसे कॉन्सर्ट्स मुझे मेरे बहुत दिल के करीबी हैं। उसमें से एक तो है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती समारोह। तो वहाँ पे जब मैं छोटी थी तब से मैंने वहाँ पे हमारे देश के सब मूर्धन्य कलाकारों को सुना है। तो वहाँ तीन तीन चार चार घंटे बैठे रहते थे और बड़े बड़े गायकों को सुनते थे। कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमको कभी वहाँ पे गाने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए जब वो अवसर मिला
0: जी,
1: तो वो मेरे लिए मेरे जीवन का, मैं कह सकती हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा एक तोहफा था। मतलब इट वॉज अ प्राइज फॉर मी। मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि मैं वहाँ उस मुकाम पे गाने का मुझे अवसर कभी मिलेगा
0: जी।
1: और बहुत जल्दी ही आया वो। तो ये सब चीजें ऐसे हैं कि एक एप्रिहेंशन होता है कि क्या होगा, अप्रिहेंसिवनेस जो है कि मैं गा पाऊंगी क्या, इतना बड़ा प्रोग्राम है, इतने बड़े बड़े लोग आएंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ गाया और वहाँ इतना सुंदर सुरीला हारमोनियम और इतना बढ़िया तबला और साथ में मंजीरे पे भी थे, तो वो गाना फिर उस समय मुझे नहीं लग रहा था कि इतने ऐसे श्रोता के सामने बैठ के गा रही हूँ। मेरे गुरुजी वहाँ सामने बैठे हुए थे,
0: डिवाइन एक्सपीरियंस।
1: तो मैं अगर आँख खोल रही थी तो मैं उनको ही देख रही थी कि उनको कैसा लग रहा होगा। तो इस तरह से। और एक और बहुत मुझे जो

0: यादगार मेरा एक कॉन्सर्ट था, वो यहाँ भक्ति उत्सव में था।
1: जी
0: तो भक्ति उत्सव में एक साथ 5-6 हज़ार 7 हज़ार लोग बैठते हैं वहाँ पे नेहरू पार्क में। तो वहाँ पे मुझे गाने का अवसर मिला था, तो वो भी एक बड़ा यादगार रहा।
1: तो कुछ और थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को आप
0: क्या सुनाओ बताइए,
1: कुछ भी जो आपको अभी तक आपने इतना खूबसूरत सुनाया, कुछ और अगर आप सुनाना चाहें।
0: ये बंदिश भी मैंने मेरे गुरु पंडित विदुषी मालिनी राजूरकर जी से सीखी थी। उनके पास मुझे एक फेलोशिप मिला था, नेशनल फेलोशिप, उसके जरिए मैं उनके पास गई थी
1: जी।
0: और उनके पास मैंने ये बंदिश सीखी थी।

0: बहुत खूबसूरत।
1: डॉक्टर सुभद्रा देसाई, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन हमारी दूसरी कड़ी में। तो श्रोताओं, डॉक्टर सुभद्रा देसाई के शख्सियत के और पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे अपनी दूसरी कड़ी में। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के कार्यक्रम। हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी शास्त्रीय गायिका और शिक्षाविद डॉक्टर सुभद्रा देसाई, भेंटकर्ता और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके हाजिर हाँ मैं इंद्रप्रीत कौर। अज दे प्रोग्राम विच असी सुनांगे एक वार्ता जिसका विशा होएगा सागर माला प्रोजेक्ट ते वार्ताकार होंगे अरविंदर कौर। इस तो इलावा असी सुनांगे प्रोग्राम एक आवाज़ ते अज दे कलाकार होंगे नरिंदर बीबा। ते आओ हुण प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हाँ ते गल करदे हाँ साइबर फ्रॉड तो सावधान इस विषय बारे। अजकल असीं वेखदे हां कि हर पासे डिजिटल फ्रॉड दीआं जिहड़ीआं खबरां ने उह सुणन नूं मिल रहीआं ने, जिवें कि किसे दे खाते विचों पैसे निकल गए, किसे कंपनी दा डाटा लीक हो गया, डिजिटल अरैसट करके लखां पैसे लुट्टे गए। सो जो डिजिटल फ्रॉड है उस करके लोग बड़े परेशान ने, बड़े दुखी ने, ते इस करके समस्या तो बचा जिहड़ा है बड़ा जरूरी है ते सानू ऐसे तरीके अपनाने चाहिए ने जिस नाल असीं सुरक्षित हो सकीए। जिवें कि साइबर फ्रॉड तो बचण लई सानू अपनी जिहड़ी निजी जानकारी है उसनू सुरक्षित रखना चाहिए है। अपने पासवर्ड जिहड़े ने उह किसे नाल भी सांझे ना करो, उसनू गुप्त रखो ते उहनां नू नियमित तौर ते बदलो भी। अपने कंप्यूटर जां मोबाइल ते बैंकिंग जां जिहड़ा वित्ती डाटा है उसनू असुरक्षित ना छड्डो। जनतक जां असुरक्षित वाईफाई ते ऑनलाइन बैंकिंग तो बचो। इस तों इलावा अनजाण लिंकां तो भी सावधान रहो। अपनी निजी जिहड़ी जानकारी है उसनू अणचाहे लिंकां, ईमेलां, कॉलां जां सुनेहां ते सांझा ना करो। हमेशा सावधान रहो। जेकर कोई बैंक जां किसी भी होर संस्था तों होण दा दावा करदा है तां उस संस्था दी अधिकारित जिहड़ी वैबसाइट हुंदी है ना उस तों नंबर लो ते कॉल करो। बहुत ज़्यादा जिहड़े आकर्षक पेशकशां हुंदियां ने जां बहुत ज़्यादा व्याज दरां वाले लोकां तों जिहड़ा है उस तों सावधान रहो, क्योंकि ये अक्सर घोटाले हुंदे हन। अपने डिवाइसां ते खातिआं नूं जिहड़ा है सुरक्षित रखो। अपने सारे डिवाइसां ते चंगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उस नूं स्थापित करो अते इस नूं अपडेट रखो। अपने मोबाइल नंबर अते ईमेल अलर्ट जिहड़े ने उस नूं अपने बैंक ना रजिस्टर करो तां जो तुहानू तुरंत सूचनावां मिल सकन। जेकर तुहाडा कार्ड गुम हो जांदा है तां इस नूं तुरंत ब्लॉक करवाओ। इस तों इलावा सुरक्षित वैबसाइटां दी जिहड़ी है उस दी वरतों करो। सिर्फ सुरक्षित अते भरोसेयोग जिहड़ियां वैबसाइटां हुंदियां ने ना उस राहीं ही ऑनलाइन जिहड़ा है लैण देण करो। लैण देण करदे समय वैबसाइट URL विच HTTPS अते पैडलॉक आइकॉन दी भी जांच करो। फिर भी जेकर तुहाडे नाल कोई डिजिटल फ्रॉड जिहड़ा है उह हुंदा है तां तुरंत रिपोर्ट करो। धोखाधड़ी दे मामले विच तुरंत साइबर क्राइम हैल्पलाइन ते कॉल करो जां नैशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ते शिकायत दर्ज करो। तुसीं जिहड़े अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन है ना उस ते भी शिकायत दर्ज करवा सकदे हो। नाल ही जिहड़ा कोई फ्रॉड है उस बारे अपने बैंक नूं भी तुसीं तुरंत सूचित करो। सो सानूं खुद नूं भी जागरूक होना चाहीदा है ते इस बारे दूजियां नूं भी जिहड़ा है जागरूक करना चाहीदा है। ते आओ हुण सुणदे हां इक वार्ता जिसका विशा है सागरमाला प्रोजेक्ट ते वार्ताकार ने अरविंदर कौर।
1: भारत तीन पासियां समुंदर नाल घिरिया होया देश है। भारत दी समुंदरी तट रेखा लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है। इस करके समुंदर भारत दे व्यापार, आवाजाई, मच्छी पालन, उद्योग अते रोजगार लई बहुत महत्वपूर्ण है। भारत दा बहुत सारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्ते राही हुंदा है। इस लई जेकर बंदरगाहां दी कारगुजारी चंगी होवे अते उहनां नूं सड़कां, रेलवे अते उद्योगिक खेत्रां नाल चंगी तरह जोड़िया जावे तां देश विच माल दी आवाजाई तेज अते प्रभावशाली हो सकती है। इसे विचार नूं ध्यान विच रखदे होए भारत सरकार ने सागर माला प्रोग्राम शुरू किया। इस दा मुख विचार बंदरगाहां नूं देश दे आर्थिक विकास नाल जोड़ना है। सागर माला दा उद्देश सिर्फ नवे बंदरगाह बनाउणा नहीं है, इस विच मौजूदा बंदरगाहां नूं आधुनिक बनाउणा है, उहनां दी समर्था वधाउणा, बंदरगाहां नूं सड़क अते रेल नाल जोड़ना अते तटे इलाकियां विच उद्योग ते रोजगार नूं उत्साहित करना भी शामिल है। सागर माला प्रोजेक्ट दी शुरुआत अते इस दी लोड़ क्यों पई? सागर माला प्रोग्राम दी धारणा भारत दे बंदरगाहां नूं विकास दा केंद्र बनाउण लई नाल जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने 2015 विच सागर माला प्रोग्राम नू मंजूरी दिती। इस नू बंदरगाह आधारित विकास लई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोग्राम वजों विकसित किया गया। इस प्रोग्राम दी लोड़ इस लई महसूस हुई क्योंकि किसी देश दे बंदरगाहां दी कारगुजारी उस दे समुद्री व्यापार उत्ते सीधा प्रभाव पाउंदी है। जे बंदरगाह उत्ते माल दी लोडिंग अते अनलोडिंग विच ज़्यादा समा लगे तां आवाजाई महंगी अते होली हो जांदी है। एक होर समस्या ऐसी कि बंदरगाहां तक पहुंचण लई सड़क अते रेलवे दा संपर्क हर थां इक्को जिहा मजबूत नहीं सी। इस करके बंदरगाहां तो आउण वाले माल नूं देश दे अंदरूनी हिस्सियां तक पहुंचाण विच वाधू समा अते खर्चा हो सकदा सी। सागर माला दा विचार इन्हां समस्यावां नूं घटाउण लई बनाया गया। इस विच बंदरगाह अते आवाजाई दे होर साधनां नूं एक दूजे नाल जोड़ के पोर्ट लैड डिवेलपमेंट नूं उत्साहित करन दी कोशिश कीती जांदी है। सागर माला दे कई महत्वपूर्ण उद्देश हन। बंदरगाहां दा आधुनिकरण करना, पुरानियां बंदरगाहां सहूलतां नूं सुधार के उहनां नूं वधेरे प्रभावशाली बनाउणा इस दा महत्वपूर्ण उद्देश।

है। इस विच नवी टेक्नोलॉजी, बेहतर मशीनरी अते माल संभालन दियां सहूलतां शामिल हन। बंदरगाह नूं राष्ट्रीय हाईवे, रेलवे अते होर आवाजाई दे साधनां नाल जोड़ना जरूरी है। इस नाल माल नूं बंदरगाह तों देश दे वख-वख हिस्सों तक आसानी नाल भेजा जा सकदा है। समुंदर दे नेड़े उद्योग, लॉजिस्टिक्स अते होर आर्थिक गतिविधियां नूं विकसित करना भी सागरमाला दा हिस्सा है। तटीय खेत्रां विच रहण वाले लोकां विच हुनर विकास अते रोजगार दे मौके वधाउण उत्ते ध्यान दित्ता जांदा है। सड़कां अते रेलवे दे नाल समुंदरी आवाजाई दी वरतों वधाउण नाल वड्डी मात्रा विच माल नूं इक थां तों दूजी थां लिजाउण विच सहायता मिल सकदी है। सागरमाला दा पहला मुख खेतर पोर्ट मॉडर्नाइजेशन है। इस दा अर्थ है बंदरगाहां दियां मौजूदा सहूलतां नूं सुधारना अते उहनां नूं आधुनिक टेक्नोलॉजी नाल मजबूत करना। एक बंदरगाह विच जहाज आउंदे हन, माल उतारिया जांदा है, स्टोर कीता जांदा है अते फिर उस नूं सड़क जां रेल राहीं अग्गे भेजिया जांदा है। जे इह सारी प्रक्रिया हौली होवे तां जहाजां नूं ज़्यादा समां बंदरगाह उत्ते रहना पैंदा है। आधुनिक बंदरगाहां विच माल दी तेज़ संभाल लई आधुनिक मशीनां, वधिया टर्मिनल स्टोरेज अते डिजिटल प्रणालियां दी वरतों कीती जा सकदी है। बंदरगाहां दी समर्था वधाउण नाल एक निर्धारित समें विच वध माल संभालिया जा सकदा है। इस नाल व्यापार दी गति वध सकदी है। इस तो इलावा बंदरगाहां विच सुरक्षा, सफाई अते वातावरण संबंधी मापदंडां नूं भी महत्व देना जरूरी है। बंदरगाहां दा विकास उदों ही पूरा मन्निया जा सकदा है जदों ओह देश दे होर हिस्सों नाल चंगी तरहां जुड़िया होवे। इस लई सागरमाला प्रोजैक्ट विच सड़क अते रेल नाल जोड़न नूं महत्वपूर्ण स्थान दित्ता गया है। बंदरगाहां नूं राष्ट्रीय हाईवे, रेलवे अते होर आवाजाई दे रस्ते नाल जोड़न नाल माल दी आवाजाई विच सुधार आ सकदा है। उदाहरण वजों जे किसे बंदरगाह उत्ते विदेश तों मशीनां आउंदियां हन तां उहनां नूं सिर्फ बंदरगाह उत्ते रखणा काफ़ी नहीं, उहनां नूं फैक्ट्री जां शहर तक पहुँचाउणा पैंदा है। इस लई बंदरगाहां तों अग्गे जाण लई सड़क अते रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है। वधिया कनैक्टिविटी नाल माल दी आवाजाई तेज़ हो सकदी है, समें दी बचत हो सकदी है, आवाजाई दी कुशलता वध सकदी है, उद्योगां नूं बाज़ारां नाल जोड़ना आसान हो सकदा है। बंदरगाह दी वरतों होर प्रभावशाली बन सकदी है। सागरमाला दा एक महत्वपूर्ण विचार पोर्ट लैड डिवेलपमेंट है। इस दा मतलब है कि बंदरगाह दे आले दुआले उहनां गतियां विधियां नूं विकसित कीता जावे जो समुंदरी आवाजाई तों लाभ लै सकदियां हन। कई उद्योगां नूं कच्चा माल वड्डी मात्रा विच चाहीदा है। जे इह कच्चा माल समुंदर राहीं आउंदा है तां बंदरगाहां दे नेड़े उद्योगिक खेतर होण नाल माल नूं लंबी दूरी तक लिजाउण दी लोड़ घट सकदी है। इस नाल लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, स्टोरेज, प्रोसैसिंग अते होर उद्योगिक गतिविधियां नूं उत्साह मिल सकदा है। इसे तर्हां बंदरगाह सिर्फ जहाज़ां दे आउण जाउण दी थां नहीं रहिंदा, सगों उस दे आले दुआले इक वड्डा आर्थिक खेतर विकसित हो सकदा है। इस किस्म दे विकास नाल स्थानक लोकां लई रोजगार दे मौके भी वध सकदे हन अते तटीय खेतर दी अर्थव्यवस्था नूं मजबूती मिल सकदी है। सागरमाला प्रोग्राम दा लाभ सिर्फ बंदरगाहां अते उद्योगां तक सीमित नहीं होना चाहिदा।
ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ

0: रहने वाले लोग भी इस विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तटीय खेतरां विच बहुत सारे लोग मच्छी पालन, समुद्री गतिविधियां, छोटे व्यापार अते होर रवायती कम्मां नाल जुड़े हुए हैं। हुनर विकास राही नौजवानों नू बंदरगाह, लॉजिस्टिक, आवाजाई और मशीनरी, समुद्री सेवावां अते होर खेतरां लई तैयार किया जा सकता है। जे किसी खेतर विच नवा उद्योग जा लॉजिस्टिक्स केंद्र बनता है तो उत्ते वक वक किस्म दे रोजगार पैदा हो सकते हैं। इसलिए सागरमाला प्रोजेक्ट का समाजिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। विकास का लाभ स्थानक भाईचारियां तक पहुँचाना अते उन्होंने नवे मौकियां नाल जोड़ना है। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विच समुद्री रस्ते की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बंदरगाहां की कारगुजारी का देश की अर्थव्यवस्था उत्ते भी प्रभाव पैंदा है। जे माल तेजी नाल बंदरगाह तो देश के अंदरूनी हिस्सों तक पहुँचता है तो उद्योगिक अते व्यापारिक सहूलत मिल सकदियां हन। इस नाल भारत के निर्यातरू की भी मदद मिल सकती है। भारतीय उत्पाद जदों विदेशी बाजार विच भेजे जाते हैं तो बंदरगाह अते समुद्री आवाजाई भी महत्वपूर्ण भूमिका होंदी है। इस तरह सागरमाला प्रोजेक्ट का प्रभाव सिर्फ समुद्री खेतर तक नहीं रहता बल्कि यह उद्योग, व्यापार, आवाजाई अते रोजगार नाल भी जुड़िया होया है। समुद्री खेतर विच विकास करते समय वातावरण की सुरक्षा बहुत जरूरी है। समुद्र अते तटे इलाके विच कई किस्म दे पौधियां, जीवां अते कुदरती परिस्थितियां दी तंत्रां दा घर हन। बंदरगाह अते उद्योगिक गतिविधियां दे विकास नाल वातावरण उत्ते प्रभाव पै सकदा है। इसलिए किसी भी विकासी काम तो पहला वातावरण प्रभावां दा ध्यान रखना जरूरी है। सागरमाला प्रोजेक्ट विच भी इन्हां गल्लां दा ध्यान रखा जा रहा है, जिवें तटीय परिस्थितियां तंत्रां दी सुरक्षा, समुद्री प्रदूषण नूं घटाउणा, स्थानक भाईचारियां दे हितां दी रक्षा, विकास अते वातावरण विचकार संतुलन बनाउणा, प्रोजेक्टां दी योजना बनाउंदे समय कुदरती स्रोतां दा ध्यान रखना। टिकाऊ विकास दा मतलब है कि असी अज विकास करिए पर भविख दियां पीढ़ियां लई कुदरती स्रोतां नूं नुकसान ना पहुंचाइए। सागरमाला प्रोजेक्ट राही भारत दे समुद्री खेतर विच कई तरह दे विकास दी संभावना पैदा हुंदी है। बंदरगाहां दी समर्था अते कारगुजारी विच सुधार, बंदरगाहां नूं सड़क अते रेलवे नाल वधिका जोड़ना, माल दी आवाजाई विच सुधार, तटीय खेतरां विच उद्योगिक विकास, नौजवानां लई हुनर विकास दे मौके, रोजगार दे नवे मौके, समुद्री व्यापार नूं उत्साह देना, देश दी आर्थिक गतिविधि नूं मजबूती मिलेगी। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत दे बंदरगाह अते समुद्री खेतर दे विकास लई एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोग्राम है। इस दा मुख विचार बंदरगाहां नूं देश दी आर्थिक विकास नाल जोड़ना है। बंदरगाहां दा आधुनिकीकरण, वधिया कनेक्टिविटी, तटीय उद्योग, लॉजिस्टिक्स हुनर विकास अते रोजगार इस प्रोग्राम दे महत्वपूर्ण हिस्से हन। भारत वर्गे समुद्री तट वाले देश लई समुंदर एक वड्डा आर्थिक स्रोत है। इसलिए इस स्रोत दी समझदारी नाल वरतों करदे हुए विकास करना जरूरी है। सागरमाला प्रोजेक्ट भारत दे भविख दे समुद्री अते आर्थिक विकास विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
1: हुणे असीं सुन रहे सी एक वार्ता जिसका विशा सी सागरमाला प्रोजेक्ट ते वार्ताकार सन अरविंदर कौर। ते हुण सुनदे हां प्रोग्राम एक आवाज ते अज दे कलाकार ने नरिंदर बीबा। सब तो पहला नरिंदर बीबा दी आवाज विच सुनदे हां ए गीत।

हुणे असी नरेंद्र बिबा दी आवाज विच ए गीत सुन रहे सी। सो एसी प्रोग्राम एक आवाज कलाकार सी नरेंद्र बिबा। इस दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा ए। हुण इंद्रप्रीत कौर नू इजाजत दियो।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी थी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 10 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ताशकंद से हमारे संवाददाता ने बताया कि हवाई अड्डे पर उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले योगा फेडरेशन ऑफ उज़्बेकिस्तान की ओर से आयोजित योग कार्यक्रम से रूबरू होंगे और उसके बाद वो सीधे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के महल जाएंगे, जहां दोनों नेता द्विपक्षीय बातचीत में हिस्सा लेंगे। रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है, लेकिन खनन, रेयर अर्थ मिनरल, सोने जैसी धातुएं, अन्य उपयोगी खनिज पदार्थ, इसके अलावा मेडिकल, कृषि और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ कनेक्टिविटी के नए रास्ते तलाशने पर दोनों देश जोर देंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। गुजरात में इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा गांधीनगर में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सूरत में लोगों के साथ मन की बात सुनेंगे। पार्टी नेताओं की ओर से युवाओं, किसानों, महिलाओं और विभिन्न सामाजिक समुदाय के साथ भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भारत का हिस्सा न मानने की सोच हिंदुत्व की भावना के विपरीत है। न्यूयॉर्क में एक दुनिया एक मानवता सम्मेलन में श्री भागवत ने कहा कि हिंदुत्व हर व्यक्ति के सम्मान और सभी धर्मों के प्रति समान भाव में विश्वास रखता है। श्री भागवत ने कहा कि धार्मिक नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो समाज में मानव एकता और आपसी सद्भाव का संदेश लगातार पहुंचाते रहें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर केरलम पहुंचेंगे। वो अलापुज़ा में केरल कौमुदी दैनिक के जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद श्री राधाकृष्णन पथनमथिट्टा जिले में अरनमुला नौका दौड़ का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ

0: सिंह आज लखनऊ में उद्योग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में कौशल विकास, उद्यमिता और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में लखनऊ छावनी क्षेत्र में 101 करोड़ रुपए की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। नेपाल में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 675 हो गई है। लगातार बारिश के बीच राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 2400 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें 320 से अधिक विदेशी नागरिक शामिल हैं। अब तक 4400 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने कहा है कि सरकार की पहली प्राथमिकता हर नागरिक की जान बचाना है। नेपाल के लिए 11 टन राहत सामग्री को लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है और नेपाल सरकार को सौंप दी गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों को सफल और सुचारू बनाने के लिए सही सामग्री और तकनीकी क्षमताओं का होना महत्वपूर्ण कदम है। इससे पहले भारत 3 उड़ानों के जरिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने बैंक मिस्र की अमीरात स्थित शाखाओं की विशेष और तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। यह कदम अमरीकी वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जिसमें बैंक की शाखाओं पर ईरान के कथित गुप्त बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े लेनदेन की प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑनलाइन के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज भारतीय महिला टीम का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev in Tashkent today. The two leaders will review cooperation in trade and investment, defense, digital technology, energy, education and people-to-people domains at the Presidential Palace. More from our correspondent.
2: Today, Prime Minister Narendra Modi will first attend a yoga program organized by Yoga Federation of Uzbekistan, and after that, he will directly go to the palace of Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev, where both the leaders will participate in bilateral talks. The leaders will review cooperation in the areas of trade and investment, defense, digital connectivity, energy, education, and people-to-people relations. Cooperation between the two countries is continuously increasing in the field of defense, but both the countries will focus on mining, especially rare earth minerals, metals like gold, other useful minerals. Besides this, the field of medicine, agriculture and skill development, as well as finding new avenues of connectivity, can be focus of discussion between the two leaders. Due to the Prime Minister's efforts, trade between the two countries has increased by 300% in the last 10 years. Together, the two countries are aiming to double the current $1 billion trade in the coming years. In this regard, some important agreements may be signed today. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
1: Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in Mann Ki Baat program on Akashwani at 11 a.m. today. It will be the 137th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashwani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashwani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. Nepal's flash flood death toll has risen to 675 as search and rescue operations continue amid renewed rainfall and fears of further flooding. Nearly 2,400 people remain missing, including at least 320 foreign nationals. More than 4,400 people have been rescued or evacuated, including 261 foreign tourists who had lost contact. Nepal police reported that 675 bodies have been recovered from 8 districts, with the highest numbers reported in Chitwan, Nawalparasi East and Nawalparasi West. Meanwhile, Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River and urged residents living along the river to remain cautious. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority has reported an increased flood flow in the river. The External Affairs Ministry has said that 108 Indian nationals have been rescued so far in Nepal following flash flood tragedy on Wednesday. In a social media post, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said that the contact was re-established with around 50 Indian nationals who were earlier uncontactable. Defence Minister Rajnath Singh will address the industry conclave in Lucknow today on the third and last day of his three-day visit to the city. The conclave is being organised under the PM Setu Yojana, where discussions will be held on topics related to skill development, entrepreneurship and vocational education. Before attending the conclave, Mr. Singh will listen to the Prime Minister's Mann Ki Baat programme. He will also lay the foundation stone for 12 development projects worth Rs. 101 crore in the Lucknow cantonment area in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. Union Minister of Youth Affairs and Sports Dr. Mansukh Mandaviya today participated in the 88th edition of Fit India Sundays on Cycle in New Delhi. The event was a special National Sports Day edition of the initiative organized in collaboration with BRICS at the Jawaharlal Nehru Stadium. Talking to media, Dr. Mandaviya said cycling has become popular among citizens. In women's cricket, India will begin the T20 Asia Cup campaign against Thailand today at Dubai International Cricket Stadium. The match will start at 8:30 p.m. Indian time. The India Meteorological Department has issued red colour warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha today. Places over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh and Gangetic West Bengal are expected to witness heavy to very heavy rainfall today. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 19 सेकंड, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आपका मनपसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। फिल्म गीतों पर आधारित कार्यक्रम ये आप सुनेंगे इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद।

0: ड्रग से मुक्ति पाएं, नालसा का साथ अपनाएं। नालसा की डॉन यूनिट से संबंधित जानकारी के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये KYC अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर KYC अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या ATM या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी BC के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर KYC अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।
2: दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने सुनी और अब आप सुनेंगे अपना मन पसंद कार्यक्रम आपकी पसंद। आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। और इस प्यारे से खूबसूरत संडे मॉर्निंग में आपके मनपसंद शो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आजकल हमारे घरों में छोटा सा मेहमान सब पर भारी पड़ रहा है। अब सोचिए जरा कौन सा है ये छोटा सा मेहमान जिसने सबका जीना कर रखा है हराम। अरे वही तो है जो सोने नहीं देता है, जिसने सबका लाइफस्टाइल बदल दिया है। ऐसे लगता है कि दुनिया जो है उसके हाथ में आते ही एकदम से मुट्ठी में आ जाती है। रात रात पर रील्स देखना, चुपके से कोने में बैठे रहना और मुस्कुराते रहना, समझ के कौन है वो नन्ना सा मेहमान? नहीं, थोड़ा सोचिए जरा। नहीं नहीं नहीं समझ आ रहा, तो चलो कोई नहीं, हम आपको थोड़ा सा और हिंट देते हैं। आजकल छोटे बच्चे जो है ना, वो सबसे ज़्यादा उसके एडिक्शन में आ चुके हैं। बस अगर उनकी मम्मियों को उसे चुप कराना हो, खाना खिलाना हो, या लग रहा है कि भई उनकी मम्मियों को या घर के लोगों को काम करना है, तो बच्चे के हाथ में थमा देते हैं उस छोटे से नन्हे से मेहमान को। मुझे लगता है अब तो आपको समझ आ चुका होगा, लेकिन अगर नहीं समझ आया अभी भी तो आपको बता दूं कि वो है हमारा स्मार्टफोन, जिसने हमारा सबका जीना हराम कर रखा है। या कहें कि तकनीक तो अच्छी है, चीज़ भी अच्छी है, लेकिन हम उसका ज़्यादा ही मिसयूज़ कर लेते हैं। तो बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह जो स्क्रीन ने ले ली, बाहर मैदान की धूप और दोस्तों के साथ भाग दौड़ की जगह अब बस एक कोने में बैठकर बच्चे उंगलियां चलाते रहते हैं, चुप चुप मुस्कुराते रहते हैं, कभी जॉम्बी की तरह अपने कार्टून्स देखते रहते हैं। सच में बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ा अत्याचार है। तकनीक काम की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब ये हमारे बच्चों का बचपन छीनने लगे तो थोड़ा ठहरना जरूरी है। आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने नन्हे मुन्नों को इस डिजिटल दुनिया से बाहर निकाल कर फिर से असली दुनिया के रंगों से जोड़ें, और यही है आज का हमारा सवाल। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े iprediodelhi@gmail.com पर। आपके घरों में भी अगर बच्चों को आप फोन देकर चुप करा देते हैं, या बस आपको लगता है कि बच्चा जिद कर रहा है, इसको फोन दे दो, उसकी मनमानी को आप मान लेते हैं, तो आप थोड़ा अलर्ट हो जाइए और आप हमारे प्रोग्राम के साथ जरूर जुड़े, अपने अनुभव भी साझा करें और बच्चों को किस तरह से हम इस लत से निकाल सकते हैं वो भी हम इसमें जिक्र करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस खास सफर की एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ।

तो आज है आपकी दोस्त हर बार की तरह सुषमा। जी हाँ सुषमा, संडे को तो अक्सर मुलाकात हो ही जाती है, कल भी हुई थी, आज भी इंतजार है आपके बहुत सारे संदेशों का।

जी हाँ, हम तो यही कहेंगे कि क्यों इस कदर बच्चों पर इतना जुल्म, इतना अत्याचार कर रहे हैं आजकल हम सभी, क्योंकि बच्चों की जिंदगी को हमने सच में एक पिंजरे में कैद करके रख दिया है। सोचिए, आखिरी बार आपने कब अपने बच्चे के हाथों में मिट्टी के दाग या फिर कहें कि घुटनों पर खेल कूद की धूल देखी थी? याद करिए, शायद आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल मम्मियाँ बड़ी सफाई तो पहले भी होती थी, लेकिन उन्हें लगता है नहीं नहीं क्या है भाई, हमारी रील छूट जाएगी, बच्चा बाहर जाएगा, उसके साथ जाना पड़ेगा, ये तो मजाक है। लेकिन इस मजाक से हटकर मैं एक ही बात कहूँगी आपसे कि भाई बच्चों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा भविष्य है, और उनको संवारना, उनके जीवन को संवारना, ये हम सबका कर्तव्य है। क्योंकि आज मिट्टी की जगह बच्चों ने ले ली है, बच्चों के लिए ले ली है टच स्क्रीन ने, तो बच्चे पार्क में जाने के बजाय रील्स और गेम्स में खोए रहते हैं। माता पिता जो हैं उनके वो अपनी जिम्मेदारी बस इतनी करके निभा देते हैं कि उनके हाथ में थमा देते हैं फोन, उनका अगर हाथ से फोन नहीं छीना तो बच्चे फिर आपको पता ही है किस राह पर चलते हैं। और अगर आप उन्हें बेहतर विकल्प देना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स को लगता है कि जो उनका हफ्ते भर का जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉशन हो गया उनका, या इतना थकान है, उनके और भी काम है, इनके चलते वो बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे, तो ले दे के उनके पास एक ही सॉल्यूशन बचता है कि चलो बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, अपनी पसंद के गेम्स या कार्टून्स देख लेंगे। और इससे कितने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं आप सोचिए, बच्चों को बर्नआउट भी होता है, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता, इतनी देर तक वो स्क्रीन देखते रहते हैं, उससे उनके उनकी सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है, उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है, बच्चे बस दब्बू से बन जाते हैं, घुल मिल नहीं पाते। और बच्चों को इससे बाहर निकालने के लिए क्या विकल्प है, ये मैं कह रही हूँ, आप इसके अलावा क्या विकल्प ढूंढ सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। हमने आपको बताया कि हमारी मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। तो वीकेंड पर आप बच्चों के साथ बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं, उन्हें कहानियां सुना सकते हैं, या रोज भी उनका होमवर्क हो जाए उसके बाद रात को सोने से पहले ऐसा रूटीन बनाएं कि उन्हें कहानियां सुनाएं, उनके साथ थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करें, खेलें, बैट बॉल खेलना बच्चों को पसंद होता है, लड़कियां हैं तो उन्हें गेम्स खेलना, गुड़ियों को उनको खेलना, गुड़ियों से उनके कपड़े बदलना, उनको सजाना संवारना, और इस तरह की बहुत सारी गेम्स पसंद है। अगर आप मॉडर्न गेम्स जो आजकल बहुत सारी हैं वो भी बच्चों के साथ उन्हें खिलाना चाहते हैं, तो उनके साथ बैठिए, आप साथ उन्हें पार्क में घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं। जब बच्चे आपको अपने साथ मुस्कुराते और खेलते देखेंगे ना, तो यकीन मानिए उन्हें उस बेजान स्क्रीन की जरूरत महसूस ही नहीं होगी। बदलाव की शुरुआत हमेशा अपने घर से होती है, तो ये शुरुआत आप अपने घर से करिए, ना कि किसी और का इंतजार करिए। और एक चीज और बता दूं, चिंता का विषय है, आजकल के जो बच्चे हैं वो जो हैं वो ज्यादातर टाइम स्क्रीन पर बिताते हैं, और दिल्ली जैसे शहर में एम्स का नाम तो आपने सुना ही है, एम्स में भी मोबाइल डिटॉक्स सेंटर खुल चुका है। समस्या कितनी गंभीर है, विदेशों में तो खुले ही हैं, लेकिन भारत में भी मोबाइल डिटॉक्स सेंटर कई जगह खुल चुके हैं, और दिल्ली में भी खुल चुका है। तो ये अलार्म देता है कि बच्चों के प्रति सजग होइए, सचेत होइए, और उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज से जरूर जोड़ें। उनकी पाठशाला जो है ना वो मस्ती की होनी चाहिए, उन्हें पार्क ले जाइए, उनके दोस्तों के साथ एक अच्छी सी पिकनिक मनाएं, खुद भी जाएं, और उनकी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होएं।

तो दोस्तों, इतने खूबसूरत गीत और बच्चे बच्चे इतने मासूम होते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं है, बस हम सबको ही तो सिखाना है उन सब बच्चों को। और देखिए, अब संदेश बहुत सारे आ चुके हैं और समय भी, आज आप जानते हैं कि आज सिर्फ 10:55 तक ही हमारा शो जाएगा। आप 11 बजे सुनेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम मन की बात, तो उस कार्यक्रम से आप जरूर जुड़ें। और अब हम जुड़ चुके हैं अपने श्रोताओं के साथ, उनकी मेल्स बहुत सारी आ चुकी है। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छावड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छावड़ा का संदेश हम तक पहुंचा है। इन्होंने लिखा है कि बच्चों को मोबाइल के अलावा रचनात्मक और सक्रिय गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए, जैसे कहानी और किताबें पढ़ना, चित्रकारी, क्राफ्ट और रंग भरना, खेल कूद और आउटडोर गेम्स, संगीत और गायन, वाद्य यंत्र सीखना, परिवार के साथ बातचीत और खेल आदि। रियली आपने बहुत अच्छी बात कही है, मतलब दिल खुश हो गया। और ये सजेशन जो जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें मानना भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को फोन देके दुलारना नहीं चाहिए। अगला संदेश है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरहान सलमान इरफान इसरोर और नरगिस का, और इन्होंने लिखा कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें। मुकेश कुमार कश्यप का भी अभी अभी संदेश आया है, इन्होंने मुरादाबाद दुल्हापुर से ही संदेश भेजा। शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह के साथ अशोक कुंवर हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है और ये भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से प्रमिला, श्याम कुंवर और चीनू आसमा, दीपक और अनुश्री के साथ इन्होंने संदेश भेजा है। तुलसी मस्किन है हमारे श्रोता, उन्होंने भी भेजा, ये लिखते हैं कि मेरा देहता है बहुत शरारती है, रात को कभी भी जल्दी नहीं सोता, कोई राय बताएं। वो 1.5 साल का मोबाइल पे उंगली तो ऐसे चलाता है, बस मत पूछो। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से इन्होंने संदेश भेजा है। बीना मस्किन, आशीष राजा और सम्राट चंडीगढ़ से साथियों के नाम लिखे हैं, जैसे राहुल खुराना, रचित और केशु। तो भाई, हम तो यही कहेंगे, इतना छोटा बच्चा है, आप इसे मोबाइल की आदत तो बिल्कुल मत डालें, इसे ऐसे ही खिलाएं, आप इसको लोरियां सुनाएं, क्योंकि 1.5 साल का बच्चा है तो बहुत समझने आता है, तो थोड़ा थोड़ा इसके साथ खेलें, अलग अलग गेम्स, बैट बॉल या फिर बच्चों के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, वो लाकर आप इस बच्चे के साथ खेल सकते हैं। रमेश चौहान है, इन्होंने भी हमें जोधपुर राजस्थान सूर्यनगरी से संदेश भेजा है। चौहान हैं ये, मोहिनी और कल्पित चौहान के साथ साथ ही इन्होंने अपनी बेटी और बेटा गर्वी और हिमाक्ष के साथ भी संदेश भेजा है। बौधराज खोरबाल जी हैं, इन्होंने उत्तम नगर दिल्ली से गीतिका और कमला रानी भानु प्रकाश के साथ संदेश भेजा और अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनना चाहा है। आज बच्चों की बात हो रही है तो बच्चों से ही जुड़े हम गीत सुनेंगे। आप इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं, बुरा ना माने, क्योंकि देखिए बच्चों का तो बनता है ना कि बच्चों की बात हो। और एक भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा और कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार की तरफ से संदेश आया है। ये लिखते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए अनेक उपाय हैं, उनको बाहर पार्क में घूमने ले जा सकते हैं, वैसी सारी जानकारी आप दे सकते हैं। बहुत ही इन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही जुड़े रहे और अपने सारे परिवार के साथ, जैसे आपने लिखा कि आप प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आपके जो शब्द है ना, सच में हौसला बढ़ाते हैं और हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम आपके लिए और बेहतर प्रोग्राम लेकर आए। अगला जो संदेश है ये मैं देख रही हूँ सतीश अनेजा जी का है। ये लिखते हैं कि निसंदेह मोबाइल फोन से अपनों से दूर किया है, मोबाइल फोन ने अपनों से दूर किया है और एक दूसरे का हाल चाल पूछने की इसने प्रथा ही लुप्त कर दी है और बच्चों के लिए भी घातक है, जो छोटी सी उम्र में उनकी नजरों पर प्रहार कर रहा है और उनका भविष्य भी दांव पर लगा रहा है और लगा भी चुका है। कैसे भी करके माँ बाप को इस कुरीति से बचाना होगा, तभी बच्चों को दुनियादारी का पता चलेगा, नहीं तो इसी के होकर बच्चे रह जाएंगे। बिल्कुल सही कहा और ये संदेश इन्होंने बिमला अनेजा के साथ भी भेजा है। अगला संदेश मैं लेना चाहूंगी प्रकाश वर्मा का, इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। छत्तीसगढ़ पलारी से इन्होंने निखिल और यशस्वी और प्रिंस के साथ ये संदेश भेजा है। और नीटू मल्होत्रा है, इन्होंने खैल बाजार पानीपत से संदेश भेजा है। नरेश मल्होत्रा और
लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल नानक चंद मल्होत्रा जी के साथ, और इनके कुछ साथी हैं जो रोहतक में रहते हैं शिवाजी कॉलोनी में, जैसे कि पीयूष, सिक्का, कोयल और भाविका और दुग्गू। उनकी तरफ से भी इन्होंने संदेश भेजा है और इन्होंने भी अपनी पसंद का ही गीत सुनना चाहा है। रोशन देवांगन है, इन्होंने लिखा कि आजकल बच्चों को चुप कराने या खाना खिलाने के लिए मोबाइल देना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन ज्यादा

समय तक मोबाइल देखने से बच्चों की आंखों पर असर पड़ सकता है। नींद और शारीरिक गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं तथा उनका ध्यान और बातचीत की आदत भी कमजोर हो सकती है। हो नहीं सकती बल्कि हो रही है रोशन जी, तभी ये विषय हम लेकर आए हैं। जब बच्चा रोए तो तुरंत मोबाइल हाथ में देने के बजाय उसे प्यार से समझाएं और उसका ध्यान किसी रचनात्मक खिलौने की ओर लगाएं, जैसे लकड़ी के बॉक्स, पजल्स लिख रहे हैं, ये रंग भरने की किताब, गेंद, गुड़िया, खिलौना गाड़ी, मिट्टी से आकृतियां बनाने वाले खिलौने या उम्र के अनुसार कोई बोर्ड गेम दिया जा सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि माता पिता खुद भी बच्चे के साथ खेलें, कहानी सुनाएं और बातचीत करें। इससे बच्चे का मनोरंजन भी होगा और उनका मानसिक व शारीरिक विकास भी बेहतर होगा। मोबाइल से थोड़ी दूरी, खिलौनों और अपनों से नजदीकी, यही बच्चे के खुशहाल बचपन की सही तस्वीर। बिल्कुल सही लिखा है आपने। और जो हमारे श्रोता थे ना मस्किन जी, आपने कहा बताएं क्या करें, मुझे लगता है आपको इस संदेश से बहुत सारा आइडिया, बहुत सारे ऐसे सुझाव मिल चुके होंगे जिन्हें आप अपने पड़पोते पर अप्लाई कर सकते हैं, उसके साथ आप खेल सकते हैं। बिलाई छत्तीसगढ़ से भेजा है ये कौशल्या देवांगन और हेमलता डिम्पल देवांगन के साथ संदेश, बहुत बढ़िया। प्रोग्राम के साथ आप जुड़े हैं, सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है और आपकी हौसला अफजाई हमेशा प्रेरित करती है कि हर एक प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा करें।

गीत इस मैसेज के अनुसार बहुत सही बैठता है। अनिल मोहन जी ने संदेश भेजा और लिखते हैं कि वाकई ये लगभग हर परिवार की समस्या बन गई है। आमतौर पर हर परिवार में ये देखने में मिल रहा है कि छोटे बच्चे ज्यादातर स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते हैं। हमारा तो यही मानना है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए छोटे बच्चों को स्मार्टफोन से दूर रखने के लिए माता पिता को खुद अपने स्क्रीन टाइम को कम करना होगा और बच्चों को रचनात्मक गतिविधियों व आउटडोर गेम्स में व्यस्त रखना होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि छोटे छोटे चट्टे बट्टे बहुत तेज, बहुत शरारती, बहुत ही मासूम होते हैं।

0: करते हैं।
1: जी हाँ, आजकल सभी का यही हाल, जैसे हमने कहा इस मैसेज के थ्रू सभी की दशा व्यक्त कर दी है। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से उषा मोहन और टिल्लो नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक के साथ इन्होंने ये संदेश भेजा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, पर्ल रोजी और विलिस डिकेस्ट्रो का भी संदेश आया है और ये लिखते हैं कि अपनी पसंद का ही कोई गीत सुना दे। तो देखिए, सारे गीत आप सभी की पसंद के और सभी के लिए डेडिकेटेड हैं। रविंद्र मोहन दास ने भी संदेश भेजा किशनगंज बिहार से आशा देवी के साथ। और एक और साथी हैं हमारे, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा तंत्रेगी से ये संदेश हमारे पास आया है। इन्होंने भी किसी भी गीत में शामिल होने के लिए कहा है।

बच्चों की बात हो रही है और बच्चे तो सबके दिल के करीब होते हैं। अगला संदेश रघुनाथपुरा जिला गंगानगर राजस्थान से, तो उनकी फिक्र करना भी हमारे लिए लाजमी है और इसीलिए आज हमने आपसे पूछा कि मोबाइल से आप बच्चों को दूर रखें और उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं, ये हमें जरूर बताएं। और आप करते हैं अगर बार बार बच्चों को फोन देकर चुप करा देते हैं, उन्हें खुश कर देते हैं, तो इस आदत को भी अपनी दूर करें। ये जो संदेश आया है ये तो मेरी लाइन्स थी लेकिन अब संदेश मैं पढ़ रही हूँ। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हेमलता, हीना और लालगिरी गोस्वामी ने ये संदेश भेजा है और ये क्या लिखते हैं, इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इन्होंने भी लिखा कि किसी भी गीत में हमें शामिल करें, समय भी कम है क्योंकि आज प्रोग्राम सिर्फ 10:55 तक ही जाएगा। और हमारे साथी हैं मोहम्मद सईद आवासी जी, इन्होंने भी अपने परिवार निखत, परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान आवासी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संदेश भेजा और इन्हें यही लगता है कि हम इनके संदेशों को नजरअंदाज करते हैं। इन्होंने ऊपरकोट मोहल्ला चुखंटी बुलंदशहर से ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और अगला संदेश हम ले रहे हैं मोहम्मद कमर का। ये लिखते हैं कि अपने बच्चों को प्यार मोहम्मद अखलाक तहजीब सिखाएं। आदिल कमर के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। इसके साथ ही अगला संदेश हम ले रहे हैं और ये संदेश हमारे पास आया है सालार पहलगाम से, कश्मीर से। और इन्होंने लिखा, इन्होंने अपने साथी पीरजादा मिराज और निज़ाम केसर इनके साथ संदेश भेजा और अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनना चाहा है। एसपी गोयल हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है सतप्रकाश सनोटिया रोहिणी दिल्ली से, इनका ये पूरा नाम है जो कि इन्होंने एसपी गोयल करके लिखा था। इसके साथ ही एक और संदेश हम शामिल करेंगे जिसके बाद हम सुनवाएंगे आपको एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत। हरजिंदर सिंह भाटिया हैं, ये लिखते हैं कि इनका संदेश काफी देर पहले शायद आया है तो इन्हें लग रहा है कि हमने इनके संदेश को इग्नोर किया है। तो जमशेदपुर स्टेशन से इन्होंने अपने साथी एंजल भाटिया और सोनू तमन्ना भाटिया के साथ ये संदेश भेजा है। साथियों आप बने रहें और इस गीत के बाद और साथियों के संदेशों को भी हम शामिल जरूर करेंगे।

और अब कुछ संदेश भी हम शामिल करते जाएंगे साथ साथ। मुरादाबाद ग्राम धूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश, शीतल, सोनू, राजपाल, पंकज, और शायद इनका संदेश मैं दूसरी बार गलती से शामिल कर रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, आपकी तो आज लकी दिन बन गया, आपकी लॉटरी लग गई। सुभाष योगी हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा। सुशील योगी डब्बू और राजू मिगलानी के साथ कृष्णा कॉलोनी हांसी से। साथ ही साथ हम अगला संदेश देख रहे हैं कि ये जो हमारे साथी हैं ताज मोहम्मद जी, इन्होंने हमें संदेश भेजा है लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और ये लिखते हैं कि इन्हें प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो शुक्रिया। साथ ही साथ अगला संदेश हम लेंगे उषा मोहन जी का, इन्हें भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई संसद मार्ग दिल्ली से अनिल मोहन के साथ इन्होंने संदेश भेजा। अश्विनी चुग हैं जो कि हमें भेज रहे हैं अपना संदेश पंचकुला सेक्टर से, अतुल शर्मा और आशु, अश्विनी, गोविंद, टोनी।

दीवान, लव दीवान और राधे भाविका ढिंगरा के साथ इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। राजेश शर्मा है, इन्होंने आदर्श नगर मलौट पंजाब से मीना, योगेश, निर्वाण और मैंडी, सौरव और साइना के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। देवशंकर तुमरिया से इन्होंने भेजा है, ये देवशंकर तामुरिया हैं जिन्होंने अपने साथी बेबी, डॉली, पूजा, तुषार और राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और अल कबीर के साथ ये संदेश भेजा है। कबीर रेडियो श्रोता संघ ढोंडी लोहारा बालौद छत्तीसगढ़ से अनूप सिंह नाथावत हैं, ये संदेश भेजते हैं गांव कलमड़ी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान से। अनूप सिंह ने अपने समस्त परिवार के सदस्यों के साथ ये संदेश हम तक पहुंचाया है। इसके साथ साथ हमारे एक और साथी हैं संदीप मक्कड़, ये लिखते हैं कि हमने समय के साथ साथ खर्चे बढ़ा रखे हैं, इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें अधिक समय तक अधिक काम करना पड़ता है और बच्चों को हम समय नहीं दे पाते, इसलिए खर्चे सीमित रखें, बच्चों को समय दें, मोबाइल से उन्हें दूर रखें। ज्योति मन्नत और भारत मक्कड़ के साथ इन्होंने कमल साहिनी पिंगावाला जो चौक है गोराया जलंधर से वहाँ से संदेश भेजा है। जीतू प्रसाद हैं, इन्होंने भी अपना संदेश हमें भेजा और किसी भी गीत में लिखा इन्होंने शामिल करें। बक्सर से इन्होंने आशीष, सतीश, आयुषी और सानवी और आयुष गुप्ता के साथ ये संदेश पहुंचाया है। सुदर्शन मुखी जी ने भी हमें संदेश भेजा है शांति नगर सोनीपत से अपने साथियों के साथ जो कि हैं अनीता और सिमरन। और दोस्तों अब जैसे कि हमने आपसे कहा कि समय कम है तो कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी साथी हैं उनके संदेशों को तो मैं ज़रूर शामिल ही करूँ, और किसी साथी का संदेश रह गया तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम आप इतने दिल से सुनते हैं और आपके संदेशों को भी हम ज़रूर शामिल करें। अगला संदेश मैं देख रही हूँ बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने हम तक ये पहुँचाया है गाँव शोभापुर से। और इसके साथ साथ कोई साथी जो रहना हो उसकी नज़र मार रही हूँ एक बार, ये हैं हमारे एक साथी, बच्चों को मोबाइल के अलावा रचनात्मकता और सक्रिय गतिविधियों में व्यस्त रखना चाहिए जैसे कहानी और किताबें पढ़ना, चित्रकारी, क्राफ्ट और रंग भरना, खेल कूद। और ये हैं हमारे छावड़ा रविंद्र छावड़ा जी हैं साथी जिन्होंने इंद्रजीत छावड़ा के साथ ये संदेश भेजा है। निसार अली जी ने भी भेजा, हीरामणि वर्मा जी ने भी संदेश भेजा पारसमणि और पुष्पेंद्र नोखे लाल वर्मा के साथ। जाकिर ने संदेश भेजा है हमें और इन्होंने ये संदेश हमें भेजा है मुंगीसा से लिसनर क्लब की तरफ से। और ये अगला खूबसूरत गीत ये संदेश दे रहा है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, हंसते हंसते जीवन को गुजारना चाहिए और बच्चों को भी हंसी खुशी के साथ रहना सिखाना चाहिए। अशोक दले जी हैं जिनका संदेश हमारे पास आया है, सविता, अनिकेत, ऋषिकेश और जीविका दले के साथ इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। और कोई साथी अगर रहा है तो फिर एक बार हम नज़र दौड़ा लेते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उत्तम कुमार भगत जी हैं जिनका संदेश आया था श्वेता भगत की सु ताशु अर्णव और सत्यम आनंद के साथ पाकुड़ झारखंड से, इन्होंने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा था। और जाते जाते दोस्तों हाँ एक और साथी जो बसंत अकीला है अलिका, बसंत अलिंका डब्बवाली से इन्होंने भेजा राजकुमार और कुलदीप गांधी के साथ संदेश, अपनी पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। चंदू कुलकर्णी जी हैं, अक्रम प्रिंस हैं इनके संदेश भी, और राजेश जैन, दक्षा सुनील इन्होंने गोटाना से ये संदेश भेजा है। राधेश्याम देवांगन जी का भी संदेश आया है, राजकुमार जी का भी संदेश आया, सिद्धार्थ गोडाने का संदेश भी हम तक पहुंचा है। तो साथियों अब समय है, घड़ी इशारा कर रही है कि ज्यादा बातें अब नहीं कर सकते, तो इस शो का कुल अगर बात करें कि आज के इस शो का लबोलुआब जो था वो बस इतना ही कि स्क्रीन पर दिखने वाली रंग बिरंगी दुनिया नकली है, असली रंग तो बाहर की धूप, हवा और अपनों के साथ में है। आज ही अपने बच्चों से फोन थोड़ा दूर कीजिए और उन्हें उनका खोया हुआ बचपन वापस लौटाइए, क्योंकि बचपन स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के लिए नहीं खुलकर जीने के लिए होता है। और इसी खूबसूरत सोच के साथ अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते रहिए। मैं फिर मिलूंगी अगले शो में कुछ नई बातों,
और ढेर सारे बेहतरीन गानों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
1: बड़ी बहू ये तुम्हारे नाम,
2: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे नाम,
3: और ये
4: मेरी गुड़िया के नाम।
5: पर दादी हाँ? आपके नाम
6: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
3: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
8: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
9: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं। इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है। साथियों कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला ये काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे फिर कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
10: नमस्ते सर। नमस्ते
9: भाई। मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
10: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
9: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
10: सर अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से उसके नजरिए से सिखाया जाता है और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस

0: चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, तरकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी 3 लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
0: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनालिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनालिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे, उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया। और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है, इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़ी उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
0: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशन आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो, तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि आपने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इंप्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टैटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सकें, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे हम, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टाइम लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो और आगे जाके सारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाएं जो अगले कुछ साल तक इतिहास सीखने एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
0: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी है सर,

0: हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है।
2: साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते।

इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती है, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती है। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभर बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर

हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ, यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के एक जिले की वैशालु पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालु जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालु जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालु जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकल कर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालु पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, ढोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत
ऐसे

सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कल्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं। नई फसल, वैज्ञानिक सलाह और सीधी मार्केटिंग से उनके छोटे से फार्म की कमाई पूरी तरह बदल गई है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल के किसान चंद्रशेखरन जी ने आधी हेक्टर जमीन पर एवोकाडो उगाना शुरू किया। उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है। इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है। यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने

0: उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरदिन मानुषे हृदये राज करबेन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
4: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्यस्य नूतन प्रकरणे भवतां सर्वेषां पुनरेकवारं हार्दिकं स्वागतं करोमि। भवन्तः सर्वे जानन्ति यत् इदमेकं एतादृशं मञ्चं यत्र वयं नूतनान् प्रयत्नान् समक्षम् आनयामः, देशवासिनां नवोन्मेषपूर्ण विचाराणां च चर्चां कुर्मः। एतेषु कियन्तोऽपि विचाराः एवं विधाः भवन्ति येषां नेपथ्ये जनैः जीवनस्य श्रमपूर्णशक्तिः विनियोजिता भवति। सखायः, किञ्चित् कालपूर्वं जनसञ्चारमाध्यमे कश्चित् लिखितवान् आसीत्, आषाढमासस्य एकादश्याः पावनेऽवसरे अहमिदं निवेदयितुं महतीं प्रसन्नतामनुभवामि यत् इतिहासं रुचिकरं कर्तुं स्वप्रयत्नस्य शुभारम्भं करोमि। सः अग्रे लिखितवान् यत् अयं विचारः अत्यन्तं सरलः अस्ति।

ये आकाशवाणी दिल्ली का चैनल है और आइए अब सुनते हैं ग्रामीण महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: त्योहारों की उमंग के साथ, खुशियों की बहार के साथ, गृह के तानों बानों को बुनकर हम हाजिर हैं हमारी प्यारी ग्रामीण बहनों और सखियों के लिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी, जिसमें आज मैं हूं आपके साथ रेनू तवर और मेरे साथ सहभागी
1: रेनू सैनी। ग्रामीण बहनों, साथियों और सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा
0: राम राम। तो भाई, कितनी सारी तैयारी शुरू हो गई। सावन जैसे खत्म होता है तो सावन के साथ आगमन हो जाते हैं नए नए त्योहारों की।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, जन्माष्टमी का पर्व मनाकर आए हैं, जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है। हाँ। रक्षाबंधन का पर्व मनाया। तुम्हारी सही नहीं
0: और... कितने सारे त्योहार, देखो ओणम भी गया था अभी। हाँ, ईद भी मनाई और अब रक्षाबंधन मनाया। और रक्षाबंधन कैसा रहा रेनू? वैसे
1: रक्षाबंधन अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा भाई। देखो, भाई बहनों के साथ साथ मुझे तो लगता है कि हमको सभी की रक्षा का, जिनकी हम कर सकते हैं उन सभी को रक्षा सूत्र बांध के मतलब ये वचन लेना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे, जो हमारे वृद्ध लोग होते हैं उनकी भी सुरक्षा करेंगे, वो भी बहुत जरूरी होती है, बच्चों की और सभी की, मतलब देश में हम जितना सहयोग कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
0: कितना अच्छा है ना, कितने बिजी हम लोग रहते थे, लेकिन एक ये त्योहार बनाकर ना अच्छा कर दिया। जिसने भी शुरू किया बहुत अच्छा शुरू किया कि इस तरह से हम भीड़ भाड़ भाग दौड़ वाली लाइफ से बचकर भी हम कैसे भी करके मिलने जरूर जाते हैं अपनों से।
1: सही बात है ना। और देखो रेनु, अभी जैसे हमने इसकी बात की रक्षाबंधन की, अब जन्माष्टमी पर्व आने वाला है। और जन्माष्टमी पर्व में तो मुझे लगता है हर जो त्योहार होता है ना, उसका आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। अब जैसे हम इसमें उपवास रखते हैं तो देखो, हम सभी जान रहे हैं मौसम बदल रहा है और बारिश मौसम में कुछ भी हम ऐसा खा लें, पेट खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है,
0: तो उपवास भी उतना ही जरूरी। कहते हैं ना, 12 घंटे अगर उपवास रखेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो सही बात कही तुमने कि हमारे साथ ये आध्यात्मिकता तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारे स्वास्थ्य का भी बेहद ख्याल रखा गया। और ये जो जन्माष्टमी का भावप्रद मास के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि को, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे, तो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप हम बहुत अच्छे से मनाते, पूजा पाठ करते हैं और कितना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे जब तैयार होते हैं
1: बहुत अच्छे लगते हैं। और देखो, इसमें दही हांडी उत्सव होता है, झांकियां निकलती हैं तरह तरह की और मन को बहुत ही आकर्षित करती हैं।

0: हम अपने बच्चों को भी जब हम ले जाते हैं झांकियां दिखाने, तो उनसे वो सीखते हैं, क्योंकि कई बार होता है बातों से इंसान नहीं सीखता, बच्चे नहीं सीखते, लेकिन जब दिखता है उन्हें तब उन्हें पता चलता है कि कृष्ण भगवान की लीलाएं क्या थी
1: क्या थी। बिल्कुल, तो चलो हम अपनी बहन को एक कृष्ण पर ही बहुत अच्छा गीत सुनवा देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: मुझे पूरा विश्वास है कि सुनने वाले जो हमारे ग्रामीण महिलाएं ना रेनू, वो जरूर इस भजन पर नाच चुकी होंगी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम खुद यहाँ दोनों नाच रहे थे,
1: दोनों नाच रहे थे। और रेनू देखो कि जो ये भजन के बोल थे, इनको लिखना भी तो कितना श्रम साध्य कार्य है जो इनको लिखते होंगे। पता नहीं कितना मतलब सोच कर समझ कर और तब इतनी सुंदर धुने, इतना सुंदर लेखन बाहर आता होगा।
0: बिल्कुल। और तुम्हारी इस बात से ना एक बात याद आ गई, जैसे कि आज भगवती चरण वर्मा जी की बात की जाए, वो हिंदी साहित्य की एक महान उपन्यासकार, कवि और कथाकार थे। और कहते हैं ना उनका जन्म 30 अगस्त यानी कि आज ही के दिन हुआ था। और इनकी जो बात करें उपन्यास की, तो चित्रलेखा सबसे प्रसिद्ध और कालजयी उपन्यास,
1: बिल्कुल,
0: और भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ऐसे बहुत उपन्यास इन्होंने लिखे। और
1: देखो इनकी लेखन क्षमता के कारण ही रेनू इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिले थे। रेनू एक तो मुझे लग रहा है कि आज जो हमारी बहनें और भाई कार्यक्रम सुन रहे होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये भी रेनू वो भी रेनू भाई। तो देखो आज हम दोनों ही रेनू आपके साथ हैं और आपके साथ बातें कर रहे हैं। तो बात हम भगवती चरण वर्मा की कर रहे हैं, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी रेनू दिया गया था क्योंकि लेखन इनका इतना अच्छा था। और हमारी जो बहनें हैं अगर वो इनका चित्रलेखा उपन्यास जरूर पढ़ें और भी इनके जो जितनी भी रचनाएं हैं उनको पढ़ें, इनको पद्म भूषण भी सम्मानित किया गया था।
0: क्या बात है। देखिए महिलाओं की अगर बात की जाए तो हर क्षेत्र में
1: बिल्कुल
0: आगे बढ़ती जा रही हैं। पहले का जमाना कुछ और था, जैसे कहते हैं ना कि शिक्षा, आधुनिकीकरण हो और एक आर्थिक स्वतंत्रता मिले,
1: बिल्कुल,
0: तो इंसान और समाज सभी बदल जाते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखो अगर परिवार और रिश्तों में बदलाव आता है ना रेनू, तो निर्णय लेने में भी दोनों की सहभागिता होती है। पहले क्या होता था कि पुरुष अधिकतर सारे जो निर्णय थे वो लेते थे, मगर अब बड़े फैसलों में महिलाओं की राय को महत्व मिलने लगा है, यानी जो हमारी बहनें हैं उनकी राय को भी उतनी ही प्रमुखता दी जाती है। और पारंपरिक सोच भी टूट रही है जो कि समय के साथ टूटनी भी चाहिए, क्योंकि देखो हम जानते हैं आजकल जो हमारी बहनें भी हैं, चाहे वो खेती का काम संभाल रही हैं या ऑफिसों में काम कर रही हैं, दोहरी जिम्मेदारी संभाल रही हैं।
0: और वो हर तरह की दोहरी जिंदगी में देखो अपने आप को इस तरह से सजो कर रखती हैं कि परिवार को भी सजोना है, बाहर की सारी चीजों को भी सजोना है, बच्चों को भी संभाल कर रखना है और बड़ों को भी। इसलिए वित्तीय आत्मनिर्भरता भी बढ़ रही है, घर में बैठकर वो जो रोजगार कर पा रही है, शिक्षा ले पा रही है। तो ये जो चेंज आया ना, जो बदलाव आया समाज में, बहुत ही अच्छा बदलाव है।
1: बिल्कुल।
0: और इससे नई पीढ़ी जो है वो भी प्रेरित हो रही है कि हमें महिलाओं को पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, कंधे से कंधा मिलाकर।
1: सही बात है रेनू। और देखो महिलाएं आगे आ रही हैं तो उनमें नेतृत्व की क्षमता भी उजागर हो रही है, जिससे वो राजनीति की तरफ जा रही हैं। और इस तरह से देखा जाए तो जो महिलाएं जब प्राचीन काल में जब वो नौकरी पेशा नहीं थी तो एक एक पैसे के लिए अगर वो मांगती थी रुपया तो मिलती थी चवन्नी।
0: चवन्नी। चलो सुनते हैं ये वाला प्यारा सा गीत।

0: रीनू भाई देखो, गीत के बोल बज रहे थे, गीत बज रहा था और मैं देख रही थी कि तुम्हारा झूमना नाचना गाना बंद ही नहीं हो रहा था।
1: बिल्कुल, देखिए हमारा कार्यक्रम इतना प्यारा है कि यहाँ पर मनोरंजन भी होता है और ज्ञानवर्धक बातें भी होती हैं हमारे ग्रामीण सखियों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए। तो आज क्या खजाना है हमारे श्रोताओं के लिए?
0: बिल्कुल, देखो रीनू बिल्कुल सही बात कही, आखिर मनोरंजन के साथ साथ जानकारी होनी भी बहुत जरूरी है। तो आज हम अपनी बहनों के लिए एक रेडियो रिपोर्ट लेकर आए हैं, खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, और ये बहुत जरूरी है। और इसमें जो केंद्र के प्रभारी हैं श्री राकेश कुमार नेगी जी, वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो वहां पर महिलाएं और युवाएं हैं उनको स्वरोजगार प्रशिक्षण दिया जाता है और किस तरह से फिर वो उनका लाभ उठाते हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: खादी ग्रामोद्योग आयोग समय समय पर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य करता है। पिछले दिनों नई दिल्ली स्थित बहुउद्देशीय प्रशिक्षण संस्थान में जाने का मौका मिला। बहुउद्देशीय प्रशिक्षण केंद्र पर होने वाली क्रियाकलापों के बारे में जानकारी ली केंद्र के प्रभारी श्री राकेश कुमार नेगी से। तो उन्होंने बताया,
3: खादी ग्रामोद्योग आयोग का हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली में राजघाट के पास, इसे बोलते हैं MDTC, मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग सेंटर। ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करता है, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है, ताकि लोग जो यहाँ ट्रेनिंग करके जाएं वो अपना बिजनेस सेटअप कर सकें और दूसरे को रोजगार भी दे सकें। एक्चुअली खादी और ग्रामोद्योग आयोग का जब नाम आता है तो बेसिकली एक तो खादी हो गया जिसका कपड़ा हो गया, दूसरा ग्रामोद्योग, तो यहाँ जो है हमारी ग्रामोद्योग से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होती हैं। बहुत तरह की ट्रेनिंग्स यहाँ देते हैं, जैसे सोप मेकिंग हो गई, डिटर्जेंट मेकिंग हो गई, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, परफ्यूम मेकिंग, कॉस्मेटिक्स, मसाला, अगरबत्ती, और नया ज़माना है डिजिटल मार्केटिंग को एनकरेज किया जाता है, तो हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग के भी एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं, ताकि हमारे जो ट्रेनीज हैं वो डिजिटल स्पेस पर भी अपनी मार्केट ले लें और डिजिटल स्पेस पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकें। इसके अलावा हमारे खादी ग्रामोद्योग की एक और स्कीम है जिसको बोलते हैं PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि हम PMEGP के

0: तहत लोन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करके जाता है तो वो PMEGP लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें क्या होता है कि 15% से लेके 25% 30% तक हम लोग उसको सब्सिडी देते हैं। वो सब्सिडी हम इस तरह से देते हैं, मान लीजिए 1,00,000 का किसी ने लोन लिया और अगर उसको 25% सब्सिडी KVIC ने दिया है तो उसका 25,000 रुपया KVIC देगा बैंक को, और उसको जो बैंक को लौटाना होगा सिर्फ 75,000 लौटाना होगा 1,00,000 के लोन पर। और इस लोन लेने के बाद उसका एक तरह से लिंक हो जाता है खादी ग्रामोद्योग के साथ। तो हम उसके बाद क्या करते हैं कि जैसे हमारा खादी भवन है कनॉट प्लेस दिल्ली में, और भी हर स्टेट में हमारे खादी ग्रामोद्योग भवन है, तो हम उनका प्रोडक्ट वहाँ भी रख सकते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उसको मिल गया हमारे साथ रजिस्टर होने के बाद, तो वो अपना प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर जगह पर भी रख सकता है, मतलब हमारे खादी ग्रामोद्योग भवन में। तो ये एक अलग तरह की उनको मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी भी मिलती है। तो यहाँ से ट्रेनिंग का इनको एक और फ़ायदा होता है खादी के साथ जुड़ने का। और हमारा फोकस मैक्सिमम ये रहता है कि जितनी भी हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम उनको सिखा सकें। उसके अलावा हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने बेकरी की किसी ने यहाँ से ट्रेनिंग करी, किसी कंपनी से बात करके अगर प्लेसमेंट हो सकता है तो उसके लिए भी हम लोग ट्राई करते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाके अपनी नौकरी अगर करना चाहता है तो नौकरी कर सके। लेकिन हमारे यहाँ से मैंने मैक्सिमम देखा है कि जो लोग ट्रेनिंग करके जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपना छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ट्रेनीज मिल गए तो उन्होंने अपना एक ग्रुप शुरू कर लिया। इसके अलावा हमारा NGOs के साथ भी टाई अप होता है, जहाँ उनका NGO होता है वहीं जाके ट्रेनिंग देकर आते हैं। और इसके अलावा हमारा एक दिल्ली सरकार से भी टाई अप है। उसमें क्या है कि दिल्ली में जो जुवेनाइल होम्स हैं, जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, उन बच्चों को भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि बाहर निकलने के बाद अगर वो अपना कोई कारोबार शुरू कर सकें तो उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। ट्रेनिंग के बाद हम लोग फॉलोअप भी करते हैं। जो हमारा KVIC के साथ जुड़ा हुआ एंटरप्राइज होता है वो कंटिन्यूस हमारे टच में रहता है, और प्लस जो फैसिलिटीज़ हम देते हैं, जैसे ट्रेड फेयर में इस बार हमने 150 लोगों को फ्री में स्टॉल्स प्रोवाइड करे थे। इसी तरह से दिल्ली हार्ट INA और दिल्ली हार्ट पीतमपुरा में भी हम लोग जब एग्जीबिशन करते हैं तो अपने कुछ सेलेक्टेड लोगों को बेसिकली ड्रॉप लॉट्स करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट्स होते हैं। लेकिन कोशिश हम ये करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को उसमें मौका मिले, तो ताकि उनको अपनी आइटम सेल करने का वहाँ मौका मिले। और हम लोग इनके रेगुलर टच में रहते हैं, जो हमारे लोग अपना काम शुरू करते हैं तो वो हमको ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू ये बताते रहते हैं कि हमने ये नई शुरुआत की है, हमारा ये वाला ब्रांड है, तो हम उनका एक उस हिसाब से डेटाबेस रखते हैं अपने पास। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो मैक्सिमम ट्रेनिंग्स होती हैं वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, और कुछ इस तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो अगर हम मार्केट में जाएंगे अगर वो 1,00,000 की है तो हमारे यहाँ सिर्फ 1,000 की ट्रेनिंग है। तो हमारे यहाँ मैक्सिमम जो फीस है बेसिकली 1,000 रुपया अभी तक, और किसी भी कोर्स के लिए, और कोर्स की ड्यूरेशन बेसिकली 1 हफ्ते से लेके 1 महीने तक की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो मैं लोगों को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ आइए और ट्रेनिंग लीजिए। और जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग है उसमें 1,000 रुपये तो जनरल कैंडिडेट के लिए है, उसके अलावा महिलाओं को हम 50% की रिबेट देते हैं, तो उनके लिए 500 हो गई, प्लस SC ST के लिए भी 50% रिबेट है, उनके लिए भी 500 रुपये फीस हो गई। तो हमारे यहाँ आके आप प्रैक्टिकली अपना हुनर यहाँ तराश सकते हैं, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करने के बाद अपना एंटरप्राइज डेवलप कर सकते हैं।
1: इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं और युवाओं से बात की तो उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए हमें बताया।
2: मेरा नाम सपना है और मैं पिछले 15 साल से एज ए ब्यूटिशियन मैं काम करती हूँ। लेकिन अभी मुझे ये फील हुआ था कि भाई मुझे अपने काम को और आगे बढ़ाना है और ऊपर जाना है, तब मुझे न्यूज़पेपर पे मैंने यहाँ KVIC का ये कोर्स ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत सारी करवाई जाती है, जो कि मैं खुद से करना ये चाह रही थी कि भाई अगर मुझे आगे बढ़ना है तो कुछ नया करना चाहिए, सीखना चाहिए, जिस पर्पज से मैं आई थी तो वो मैंने यहाँ पे किया। मैंने कॉस्मेटिक मेकिंग, सोप मेकिंग और अभी मैं डिटर्जेंट मेकिंग की क्लास मैं यहाँ से कर रही हूँ, और अभी मैं 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं, कॉस्मेटिक का, स्किन केयर का, जिसमें हेयर का आएगा, शैम्पू है, कंडीशनर, सीरम, और उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यानी वो सर्टिफाइड कोर्स है और लैब अप्रूवल है, टेस्टिंग वगैरह सब कुछ हो रखा है, तो हमें उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता। और टीचर इतने अच्छे से हमें करवा रहे और वो चीज़ों को हम खुद पे भी यूज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना एक ब्रांड बनाएं और उसी पे मैं काम कर रही हूं। और जब मैं खुद यूज कर रही हूं तो मैं चाहती हूं कि सबको ओरिजिनल, जेन्युइन और अच्छा प्रोडक्ट मिले।
3: मेरा नाम रश्मि मंगल है।
2: मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ, बट मेरे को यहाँ पर किसी ने बताया था कि खादी ग्राम उद्योग का एक सेंटर है जहाँ पे बहुत तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पे हम छोटे बजट में कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, जो फाइनेंशियली पुअर है या लो मिडिल क्लास है उनको एक अवसर दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे हमें फाइनेंस की और बाकी चीज़ों की नॉलेज दी जाती है, साइबर सिक्योरिटी से हम कैसे बच सकते हैं मिसहैप से वो सिखाया जाता है हमें, और यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और क्लीनलीनेस पे खासकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अभी तक मैंने यहाँ पर बेकिंग सीखी है, 2 ट्रेनिंग सेशंस ले चुकी हूँ मैं यहाँ पर, अभी 5 डेज की है, मैंने 3 दिन की अटेंड की है। बाकी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला है और कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली है। सर हमें खासकर ये चीज़ें बताते हैं कि आप कोई भी मिलावट से बनी हुई चीज़ें ना बनाएं, प्राकृतिक चीज़ों से आप कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और लोगों को अवेयर करा सकते हैं।
1: बेकरी का क्षेत्र आजकल काफी विकसित हो रहा है। बेकरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने वाले प्रतिभागियों से बात की तो उन्होंने बताया,
3: मेरा नाम प्रशांत रोथान है, मैं यहाँ पे बेकरी का ट्रेनिंग कोर्स करने आया हूँ, अभी 4 दिन हुए हैं। ये जो कोर्स के बारे में मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था, और ये कोर्स बहुत अच्छी जगह पे है खादी ग्राम के में, और सबसे अच्छी बात कि ये कोर्स बहुत रीजनेबल, फीस बहुत कम है यहाँ की। कि बाकी मैंने डिप्लोमा कोर्स भी कर रखा है अशोका सेटी से, गवर्नमेंट के थ्रू किया है, वहाँ की फीस 10 साल पहले 50,000 थी, यहाँ तो हमारे सरकार की तरफ से बहुत सस्ते में बहुत अच्छे कोर्स करने को मिल रहा है हमें। बाकी कोर्स के इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करे गए हैं, मैं सारे हमारे बहुत हेल्प करते हैं करने में, और बाकी और भी क्लासेस यहाँ पे होती रहती है, वातावरण यहाँ का अच्छा है। बाकी मेरे खुद का रेस्टोरेंट है पिज्जा का, तो मैं इसलिए आया हूँ कि बेकरी में कुछ चीज़ ऐड कर सकूँ बेकरी के आइटम में। यहाँ पे मैम ने बहुत अच्छी तरह सिखाती है, 4 दिन में हुए हैं, कुकीज़ का हमें सिखाया, अभी और आगे हम केक का, पेस्ट्रीज का, बाकी और भी चीज़ का काम यहाँ सीखेंगे यहाँ पे।
4: मेरा नाम शाहिना परवीन है। खादी और ग्राम उद्योग के बारे में काफ़ी लोगों से मैंने सुना था, तो एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ आई तो मैंने देखा यहाँ काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्सेज हो रहे हैं, तो उनमें से मैंने एक बेकरी का सोचा कि वो करती हूँ। बेकरी का एक पर्सनली भी अपने घर के नहीं भी कर सकते हैं, दूसरा मैंने सोचा कि अपना भी हम कुछ काम कर सकते हैं। जब यहाँ आई तो काफ़ी हमें बताया गया कि हमें किस किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, इसमें काफ़ी हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, इससे अब कुकीज़ है, ब्रेड्स है, मफिन्स है और पेटीज है, तो इससे हम इनिशियल अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने ये देखा है कि बाहर जो अनहेल्दी खाने को ज़्यादा मिलता है, बीइंग अ फीमेल मैं सोचती हूँ जैसे मैं अपने बच्चों को खिलाऊँ तो कल को सोसाइटी कम्युनिटी में ऐसे कस्टमर को सामान दूँ, खाने को दूँ कि वो उन्हें अच्छा लगे, चाहे कॉस्टली हो, उनसे हम डिमांड भी ऐसे कर रहे हैं तो हेल्दी हमारी सोसाइटी कम्युनिटी को जाए एज वेल एज हमारी फैमिली को भी। तो मुझे यहाँ काम करके अच्छा लग रहा है और यहाँ इतना रीजनेबल प्राइस पर आई थिंक कहीं नहीं होगा, और सेकेंडली यहाँ के एनवायरमेंट अच्छा है, और यहाँ हमको आकर यही बताया कि आपको हेल्थ पर काम करना है, ना कि ये नहीं कि आप घटिया क्वालिटी का सामान लें ताकि कस्टमर को नुकसान हो, ऐसा नहीं, आप अच्छा बनाइए और अच्छा देंगे तो अच्छा ही मिलेगा। मैंने अभी तक यहाँ पर कुकीज सीखी हैं और ओट्स बहुत बेनिफिशियल है कि ओट्स है, रागी है, इस टाइप के किस तरह से मिलेट्स बना सकते हैं या बिस्किट्स बना सकते हैं जो कि शुगर फ्री भी हो एज वेल एज अगर आप हेल्दी भी हैं तो हम हेल्दी ही खाएं, कि हम उस कंडीशन तक ही ना पहुंचे कि हमें कोई बीमारी हो, तो उसी प्रिकॉशंस के लिए भी इस टाइप की कुकीज या हम जो मटेरियल सिखाया जाएगा हम उसको यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में।
1: केंद्र पर काफी युवा परफ्यूम मेकिंग का प्रशिक्षण ले रहे थे, कुछ परीक्षार्थियों से बात की तो उन्होंने हमें बताया,
5: मेरा नाम शिवम सरोवा है और मैंने यहाँ से परफ्यूम की, सोप की और डिटर्जेंट की ट्रेनिंग ली है, जिसके हमने थोड़ा सा आगे काम किया है। परफ्यूम का मेरा चल रहा है, परफ्यूम में रिस्पांस अच्छा है, तो बेसिकली हमने बिल्कुल ही जड़ में से फॉर्मुलेशन सीखा है, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ करके अपने भी एक्सपीरियंस के साथ कुछ फॉर्मुलेशन के साथ हमने अलग फॉर्मूले बना करके उसमें हमने अपनी रिसर्च की है, तो उसके हिसाब से हमें नई, यानी यहाँ से हमें रिसर्च करना सिखाया गया है। जब मैंने ज्वाइन किया था मेरे को परफ्यूमरी के बारे में ABCD बिल्कुल भी नहीं पता थी, यहाँ पे आया तो मेरे को सारा रिएक्शन कैसे कैसे होता है, अल्कोहल कौन सा डालना होता है, इथेनॉल मेथाइल कैसे होता है, IPA कब डालना होता है, थिनर कैसे बनाते हैं, तो उसको हमें सेपरेट करना सिखाया गया कि आपको अगर अपने क्लाइंट को कुछ माल देना है तो ताकि उनके ऊपर कोई बैड इफेक्ट ना पड़े। ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, एटमोसफेयर भी अच्छा है यहाँ पे, एक तो पार्किंग की जगह मिल जाती है पूरी दिल्ली में जहाँ नहीं मिलती।
1: इसी के साथ खादी ग्राम उद्योग आयोग के नई दिल्ली स्थित बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र पर आधारित रेडियो रिपोर्ट संपन्न होती है। नमस्कार।
6: तो हमारी बहनों ने और सभी श्रोताओं ने जो सुना अभी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही खास जो बातचीत थी, रिपोर्ट थी, खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण, नई दिल्ली स्थित बहुउद्देश्य प्रशिक्षण संस्थान केंद्र के प्रभारी से ये जानकारी मिल रही थी, वो दे रहे थे श्री राकेश कुमार नेगी जी।
7: बिल्कुल, और रेनू हमारी बहनों ने इस बातचीत को सुन, इस जो रेडियो रिपोर्ट थी इसको सुनकर वो लाभ उठाएंगी, क्योंकि कई बातचीत भी सुनवाई गई थी जिन युवाओं को उनसे लाभ मिला। और देखो मुझे सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि वाकई में तो बहुत अच्छी बात है जो युवा बता रहे थे

0: कि उनको कितना लाभ हुआ
1: और
0: है।
1: मुझे तो लग रहा है कि हमें भी ये कर लेना चाहिए,
0: हाँ
1: ये तो बहुत जरूरी है।
0: कहीं ना कहीं अलग से और इनकम भी आना बहुत जरूरी है भाई।
1: इनकम आना जरूरी है, और साथ साथ मुझे लगता है कि हुनर तो कैसा भी हो भाई ले लेना चाहिए
0: बिल्कुल।
1: और अगर प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो सोने पे सुहागा।
0: और कहते हैं ना हर उम्र में सीखना चाहिए, ये ना सोचे कि हम सीखे ना सीखे, हर हर समय।
1: और देखो हमें जितने भी हुनर आते जाते हैं तो ऐसे लगता है बाहरें आती जाती हैं,
0: तो मिलकर करें तो कितना मजा आ जाता है।

0: झांसी की गलियों में गलियों में एक शेरनी सी वो धाड़ी थी, लक्ष्मी बाई की हम शक्ल बनकर वो रणभूमि में जो अड़ी थी। छल कपट की गोरी फौज को जिसने तिनके सा बिखेर दिया, थी वो स्वाभिमान की मूरत जिसने दुश्मन को घेर लिया।
1: हाथों में तलवार लिए वो काल का रूप दिखाती थी, मातृभूमि की रक्षा हित वो हर पल शीश झुकाती थी। गोरे समझे थे लक्ष्मी भाई पर वो तो झलकारी थी, भारत माँ की लाज बचाने आई दुर्गा उतारी थी।
0: बिल्कुल, और आज हमारे श्रोता समझ ही गए होंगे कि हम किस वीरांगना की बात कर रहे हैं, वीरांगना झलकारी।

0: गई, जिनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के पास भोसला गांव में हुआ था। और वो एक 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान महिला योद्धा थी।
1: बिल्कुल, और रेनो उनका जो रूप था, जैसे कि हमारी बहनें जानती भी होंगी, झलकारी बाई जैसा जो उनका रूप रानी लक्ष्मी बाई से बहुत मिलता जुलता था। और यही कारण था कि खुद रानी बनकर उन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया, जिससे कि असली रानी ज्योति लक्ष्मी बाई वो सुरक्षित बाहर निकल गई और इन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी।
0: बिल्कुल, और ऐसी वीरांगना को हमारा नमन,
1: शत नमन।

0: रेनो देखो, जैसे स्वतंत्रता संग्राम में वीरांगनाओं ने और हमारे क्रांतिकारियों ने योगदान दिया था, उसी के कारण आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और अब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी युवाओं को हर तरह से प्रेरित कर रहे हैं। जैसे कि आज मन की ही बात करें, तो मन की बात में हमारे युवा अनेक ऐसा काम भी कर रहे हैं, जैसे कि रेनो उन्होंने कृष्णा की बड़ी प्रशंसा की कि उन्होंने इतिहास को रोचक बनाने से के लिए एक वेबसाइट बनाई है, और बहुत अच्छी बात है। रेनो, यहाँ पर जितनी बहनें हमारी सुन रही होंगी वो जरूर ये बात जानती होंगी कि उनके बच्चे इतिहास को देख के नागवों सिकोड़ते हैं।
1: तो बिल्कुल, और इसी तरीके से हमारे मन की बात में कही गई नशा मुक्ति अभियान जो कि तेजी से बढ़ रहा है,
0: बिल्कुल,
1: और हर जगह युवा जो है अब नशा के उसमें चलते जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं, तो उस पर भविष्य पे ऐसा ना हो, युवा इससे बाहर आए, मुक्त हुए, तो नशा मुक्त एक मोटिवेशन कोई यंग जो आजकल के बच्चे हैं वो कैसे सीखते हैं, गानों से या उनके जो कहते हैं ना क्रिएटर्स जो होते हैं, उनको प्रभावित करने के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे क्रिएटर्स आए, आगे आए, और ऐसे यंगस्टर्स जो म्यूजिशियंस हैं वो आगे आए, जब इस तरह के गीत बनाए, इस तरह के क्रिएटिविटी करें ताकि जो यंग जनरेशन है वो इस नशा मुक्ति से
0: दूर हो और प्रेरित भी रहे। और इसी तरह से हर घर तिरंगा अभियान, तिरंगा हमारे देश की शान है, मान है, तो 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी डाली गई जो कि एक बहुत ही सराहनीय बात है। और इसी तरह से स्वच्छता अभियान भी बहुत तेजी से जा रहा है, और सब लोग देखिए घर स्वच्छ होगा तभी तो हर चीज स्वच्छ होगी। और रेनू, एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिशन शक्ति शर्ट के बारे में बात की, जो कि हजारों बेटियों को एक साथ आज जोड़ रहा है। 108 देशों की 12,000 छात्राओं को टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन में क्षेत्र में आगे बढ़ने का नए नए अवसर इसके माध्यम से मिल रहे हैं।
1: और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली, और गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत भी हुई है। और इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देश हो, भारत हो, आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुड़े, और भारत की दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि छात्राओं को भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की ये तैयारी की जा रही है। तो हमें पूरा विश्वास है कि इनसे जो छात्र हैं आने वाले साइंस और टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगी।
0: तो रेनो देखो कितना अच्छा लगता है जब हमारे देश की बेटियां, पूरे विश्व की बेटियां एक साथ आगे बढ़ती हैं, और ऐसे लगता है कि बस अब पूरा आसमान उनका हो गया।
1: बिल्कुल, और इसी तरीके से आसमान को छूने की कोशिश हमेशा जारी रहेगी।
0: बिल्कुल।

और रेनू, जैसे कि बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, अभी आज मन की बात में भी यही बात हुई, तो ऐसे ही पीएम यशस्वी योजना जो है इस

0: योजना भी ऐसी ही योजना है।
1: बिल्कुल। और इसे कैसे लाभ मिल सकता है? इसे लाभ मिलेगा 9वीं और 10वीं कक्षा के जो क्षेत्र के जो छात्र हैं, जैसे प्रतिवर्ष उनको 75,000 की आर्थिक सहायता मिल सकती है, 11वीं 12वीं के लिए 1,25,000, और ये ज्यादा से ज्यादा राशि का उपयोग ट्यूशन फीस, किताबें, स्टेशनरी और अन्य पढ़ाई के भी माध्यम से भी उनको मिल सकती है।
0: और देखो, इसके लिए जो विद्यार्थी होंगे उनको कुछ आवश्यक दस्तावेज चाहिए होते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया, आय प्रमाण पत्र, भाई ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आय प्रमाण पत्र का तो अगर पूरा दस्तावेज नहीं होगा तो योजना से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, तो वो भी होना जरूरी है। और फिर पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी बहुत जरूरी है, बैंक खाता विवरण और संस्थान में प्रवेश का प्रमाण होना बहुत जरूरी है।
1: और आवेदन आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर कर सकते हैं और अपनी जो भी जानकारी है ध्यान से भरिएगा।
0: बिल्कुल। तो देखो रेनो, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा और तरक्की के रास्ते खोलेगा नए नए, और विज्ञान की तरफ हमारे कदम और तेजी से बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल।

0: तो हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपने बहुमूल्य सुझाव आप हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नया प्रसारण भवन, नई दिल्ली 11001। और हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है feedback@gmail.com।
1: तो रेनू, आज तो हमारी बहनों को बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी बातें जानने को मिली। और भाई देखो, मन तो नहीं चाहता कि बहनों से विदा लें, लेकिन घड़ी की सुई इशारा कर रही है। तो इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं खत्म होता है। हमारे आज के कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: और सुनना ना बोले हमेशा आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल, जिस पर हर संडे 12:10 पर हमारा शुरू हो जाता है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।
1: बिल्कुल।
0: और कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहनों को हमारा
1: राम राम, राम।

0: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। उन्होंने कहा कि देश में उत्कृष्ट कंटेंट क्रिएटर्स की कोई कमी नहीं है। श्री मोदी ने उनसे इस प्रयास में विभिन्न भाषाओं में कंटेंट तैयार करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि लगभग 46% महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कारोबार आगे बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
2: उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ीसा के देवरीगढ़ क्षेत्र के धोड़रो कुसुम के मैथिली भुए ने ये दिखा दिया है कि जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के साथ साथ प्रकृति की रक्षा करना भी संभव है। श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
2: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज और तमिलनाडु में कोडाई कनाल के चंद्रशेखरन के उल्लेख किया जो एवोकाडो की खेती के जरिए अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच ताशकंद में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। राष्ट्रपति भवन में दोनों नेता व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा कर रहे हैं। वार्ता के बाद कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उज्बेकिस्तान योग महासंघ के योग कार्यक्रम में भाग लिया। बाद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने अपने आवास पर श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2,500 लोग लापता हैं। आपदा के पांचवें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। भारत से अब तक 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथा विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी। उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बालेश्वर में लगातार वर्षा के कारण सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिमी बंगाल और उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये बारिश तेज हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न दबाव का क्षेत्र और अधिक तीव्र होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: and 0086183-0802-6705. In hockey, defending champions Germany will take on Spain in the men's FIH World Cup final in Wavre, Belgium at 8 p.m. Indian Standard Time today. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरप्रेस चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके सामने यानी कि आपके साथ, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1:10 जब जब होते हैं तब तब एक ही बात दिल में आती है। जी हाँ, आपका खास कार्यक्रम का आपका विशेष कार्यक्रम हम लेकर हाजिर हो जाते हैं। और आज भी एक विशेष कार्यक्रम है एक ही फिल्म से, और फिल्म मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि आप जब गीत सुनेंगे तब खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस फिल्म के बारे में अब बातें करने वाली हूँ आपसे आगे। लेकिन उससे पहले आप ये गीत सुनेंगे ना, तभी आपको अंदाजा होगा।

और दोस्तों जब सावन की बात हम करते हैं ना, तो सावन का नाम आते ही मन में क्या आता है? घने बादल, काले बादल, बारिश की रिमझिम फुहारें, पेड़ों पर पड़े झूले, मिट्टी की सांधी खुशबू और प्यार से भरा हुआ एक खूबसूरत मौसम। और जब बात होती है किसी फिल्म की, तो पहले गीत सुन लीजिए, फिर बातें करते हैं खूब ढेर सारी।

और अब आपको समझ आ गया होगा कि हम किस फिल्म की आज बात कर रहे हैं। और जब बात हो हिंदी सिनेमा की तो सावन के सुहाने मौसम की याद दिलाने वाली फिल्मों में एक खास और प्यारा नाम याद आता है, आया सावन झूमके। आज हम इसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, खूबसूरत सी, जिसने अपने समय की संगीत और भावनाओं को ऐसा मेल पेश किया जिसका नाम आज भी पुरानी हिंदी फिल्म संगीत के चाहने वालों को वो अपनी ओर खींचता रहता है और ये गीत सुनाता रहता है।

खूबसूरत गीत भी आया सावन झूम से था, यानी कि आया सावन झूम के साल 1969 में रिलीज हुई थी और फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झालानी और फिल्म के प्रमुख कलाकारों में धर्मेंद्र, आशा पारेख और नज़ीर हुसैन जैसे जाने माने कलाकार शामिल थे। फिल्म की कहानी में प्रेम, रिश्ते, गलतफहमियां और भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। उस दौर की फिल्मों की खासियत यही थी कि कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं होती थी, बल्कि उसमें परिवार, रिश्तों और समाज की भावनाओं को भी खूबसूरती से पिरोया जाता था।

किसी ने कहा है मेरे दोस्तों, बुरा मत सुनो।

जी हाँ, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, ये तो सच्चाई भी है जीवन की। और इसी जीवन की सच्चाई के साथ फिल्म के नाम में भी सावन की मस्ती छिपी हुई है। आया सावन झूम के, सावन यानी ऐसा मौसम जिसमें प्रकृति की जैसे पूरे अपने रंग में आ जाती है। और सिनेमा के इस मौसम को हमेशा प्रेम के साथ जोड़ कर देखा जाता है, और इस फिल्म में भी यही खूबसूरत एहसास दिखाई देता है। फिल्म के संगीत की बात करें तो उस दौर का संगीत अपने आप में एक बहुत ही अलग पहचान रखता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की संगीत जोड़ी ने फिल्म को मधुर संगीत दिया, और गीतों ने फिल्म की लोकप्रियता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई, और फिल्म का एक बड़ा आकर्षण इसके गीत हमेशा से रहे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं आया सावन झूम के फिल्म से। उस समय आज की तरह मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, इंटरनेट नहीं था। फिल्मों के गीत रेडियो पर बजते थे और लोग गीत सुनकर ही फिल्म के प्रति आकर्षित हो जाते थे। जी हाँ, और यही वजह थी कि उस दौर के फिल्मी गीत लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। और आया सावन झूम की भी इसी फिल्मी दौर की खूबसूरत याद है।

आया सावन झूम के जैसे शीर्षक से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में मौसम, प्रेम और संगीत का कितना खूबसूरत संगम रहा होगा। जी हाँ, उस दौर की फिल्म थी ही ऐसी। और सच में, और क्या कोई ऐसा गीत है जिसे सुनते ही आपको अपनी कोई खास याद आ जाती है? तो हमें जरूर बताइएगा और इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनिए ये गीत।

जी हाँ, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, यानी अपनी होस्ट सिमरन कौर को, और फिर मिलेंगे एक और पुरानी फिल्म, एक पुरानी कहानी और कुछ मीठी यादों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहलां बुलेटिन दीआं खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज आकाशवाणी ते मन की बात प्रोग्राम च अपने विचार सांझे कीते। कहा, विकसित भारत लई नशा मुक्त नौजवानां दी मुहिम देश भर विच तेजी नाल अगे वध रही है। प्रधानमंत्री मोदी अज ताशकंद विच उज़्बेकिस्तान दे राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नाल दुवल्ली गल्लबात करदे ने। मध्य नेपाल च हड़ां कारण मरण वालियां दी गिनती अज 734 हुई। विदेश मंत्रालय ने दसिया, नेपाल तो 108 भारतीय नागरिकां नूं सुरक्षित बचाया गया। बचाव टीम समेत 11 टन राहत समग्री की चौथी खेप भेजी गई। केंद्रीय खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली च आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल च हिस्सा लिया। महिला 2020 एशिया कप विच भारत का मुकाबला रात 8:30 बजे थाईलैंड नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत लई नशा मुक्त नौजवानों की मुहिम देश भर विच तेजी नाल अगे वध रही है। अज आकाशवाणी ते अपने मन की बात प्रोग्राम च श्री मोदी ने खुशी का इजहार किया कि नशा मुक्त नौजवान ते नशा मुक्त भारत सिर्फ रस्मी कार्रवाईयां ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग खास करके नौजवान वड्डी गिनती विच इस च हिस्सा ले रहे ने।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त नौजवान न सिर्फ एक व्यक्ति नूं प्रभावित करता है, सगों पूरे परिवार ते समाज नूं भी प्रभावित करता है। उन्होंने उन्हां लोकां दी शलाघा कीती जो नशियां खिलाफ जागरूकता फैलाउण ते नशा नाल जूझ रहे लोकां दी मदद करन लई अगे आए ने। श्री मोदी ने लोकां नूं नशा मुक्त भारत वास्ते प्रभावशाली नारे बनाउण ते नौजवान संगीतकारां नूं नशा मुक्त जीवन दा सुनेहा देण वाले गीत लिखण दी अपील कीती। उन्होंने कहा कि देश च शानदार समग्री सृजनहारां दी कोई कमी नहीं है। उन्होंने इस उपराले लई वख-वख भाषावां च कंटेंट बनाउण दी अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना राही लखां औरतां नवी शक्ति प्राप्त कर रही ने। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के इस पहलू नूं उन्हां ध्यान नहीं दिता गया जिन्हां इस नूं दिता जाना चाहिदा सी। श्री मोदी ने कहा कि करीब 46% औरतां प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना दीआं लाभपात्री ने। श्री मोदी ने कहा कि सफाई एक बहुत शक्ति हुंदी है। उन्होंने कहा कि जदों लोग किसी जगह नूं साफ रखने का संकल्प लैंदे ने तां इह उस जगह की पछाण नूं पूरी तरह बदल दिंदा है। श्री मोदी ने कहा कि देश के वख-वख हिस्सों च सफाई के अजिहे उपराले लोगों नूं प्रेरित करते ने। श्री मोदी ने कहा कि अज देश दीआं धीआं दे सुपने धरती तों पुलाड़ तक उड़ रहे ने। उन्होंने कहा,
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि अगस्त का महीना अपने नाल देशभक्ति दे कई रंग लेके आंदा है। उन्होंने कहा कि हर घर मुहिम च तिरंगे ने देशभक्ति की भावना नूं होर मजबूत कीता है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे मातरम की 115वीं वरेगंढ ने इस साल नूं होर भी खास बना दिता है। उन्होंने कहा कि मेले ते त्यौहार न सिर्फ रिवायतां नूं जिउंदिआं रखते ने बल्कि एक दूजे नाल जुड़न का मौका भी प्रदान करते ने। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों च भारत में जन्माष्टमी ते विश्वकर्मा पूजा मनाई जाएगी, कुछ महीनों च दिवाली भी मनाई जाएगी ते इस दीआं तैयारियां पहलां ही शुरू हो चुकियां ने। उन्होंने लोगों नूं इस त्यौहार सीजन दौरान वोकल फॉर लोकल बनने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका मतलब सिर्फ मिट्टी के दीवे खरीदना नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत का आत्म निर्भरता का रस्ता भारत में बने उत्पादों की मांग करने नाल ही पधरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद विच उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव नाल दुवल्ली गल्लबात कर रहे ने। दोवें नेता राष्ट्रपति भवन विखे व्यापार ते निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, सिक्ख्या ते लोकां तों लोकां दे संबंधां दे खेतर विच सहयोग की समीक्षा कर रहे ने। अज समझौतियां ते दस्तखत होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला उज़्बेकिस्तान योग फेडरेशन वालों आयोजित योग प्रोग्राम च हिस्सा लिया। इस मौके प्रधानमंत्री ने कहा,
1: आप लोगों ने बहुत बढ़िया योगा करके दिखाया, आज सभी उम्र के लोग हैं यहाँ। मैं मेरे मित्र राष्ट्रपति जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने उज्बेकिस्तान को योगा से जोड़ दिया है। बहुत बहुत बधाई।
0: ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @RNUJalandhar। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR Jalandhar ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR Jalandhar। ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 734 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 2500 ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਕਰ ਚਾਰੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ 8 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 85 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ 320 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ 2498 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ 8186 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 227 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਟੋਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਹੜ੍ਹ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 160 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 50 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 275 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕਰੀਬ 128 ਲੋਕ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਚ 598 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 900 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੀਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜ਼ਿੰਗ ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇਪਾਲ ਚ ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹੈ। 11 ਟਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੀ ਉਡਾਨ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿੱਬਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਚ ਹਾਲ ਹੀ ਚਾਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਤਘਰ ਨੇ ਕਿਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 00086-891-6-8-65 ਅਤੇ 00086-183-08-02-05 ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਫਟ ਸੰਯੁਕਤ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ 2026 ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨਿਫਟ ਦੇ 18 ਕੈਂਪਸਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਇਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਨ। ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਕਰਵਾਈ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਸੰਡੇ ਆਨ ਸਾਈਕਲ ਦੇ 88ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਦਿਵਸ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਸਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੋਚ ਗੌਤਮ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਥਾਈਲੈਂਡ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ 2020 ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਤ 8:30 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਪਤਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਮੰਧਾਨਾ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਮੈਚਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿਚ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ताशकंद विच उज़्बेकिस्तान दे राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव नाल दुवल्ली गलबात कर रहे ने। मध्य नेपाल विच हड़ां कारण मरण वालों की गिनती 734 हुई। विदेश मंत्रालय ने दसिया नेपाल तो 108 भारतीय नागरिकों नूं सुरक्षित बाहर कढ़िया गया। बचाव टीम समेत 11 टन राहत समगरी की चौथी खेप भेजी गई। केंद्रीय खेड मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने अज नवी दिल्ली च आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल च लिया हिस्सा। महिला 2020 एशिया कप च भारत का मुकाबला रात 8:30 थाईलैंड नाल होगा। इस नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुनोगे शाम 6:20। नमस्कार।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पीएम स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सैट को उजागर किया। जनाब मोदी ने नौजवानों, मौसीकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए जिंगल्स, नारे और प्रोग्राम तैयार करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरे मुल्क में ये मुहिम जोर पकड़ रही है। नेपाल में अचानक सैलाब से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। तकरीबन 2,500 लोग अब भी लापता हैं। भारत ने नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 11 टन इमदादी सामान के साथ बजरिए तैयारा चौथी खेप भेजी है। उड़ीसा में बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया गया है और आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ दो तरफा बातचीत की है। सदारती महल में होने वाली इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायजा लिया। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, डिजिटल कनेक्टिविटी, तवानाई, तालीम और अवाम से अवाम के राबते शामिल हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक योग प्रोग्राम में शिरकत की जिसका एहतमाम उज़्बेकिस्तान की योग फेडरेशन ने किया था। इसके बाद जनाब मोदी सदारती महल पहुंचे जहां उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव ने बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम पूरे मुल्क में तेजी के साथ रफ्तार पकड़ रही है। आज आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नौजवानों को मुनशियात से दूर रखने और मुल्क से मुनशियात के खात्मे के मकसद से शुरू की गई ये मुहिम कोई सतही प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग, खासतौर पर नौजवान, बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुनशियात की लानत महज फर्द वाहिद को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरे कुंबे और मुआशरे को इसके मुज़मरात का सामना करना पड़ता है। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो मुल्क से मुनशियात के खात्मे के लिए बाअसर नारा तैयार करें, जबकि नौजवान मौसीकार ऐसे नगमे मुरतब करें जो मुनशियात से पाक जिंदगी गुजारने के पैगाम की तशहीर करें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लाखों ख्वातीन को पीएम स्वनिधि योजना से नई क़ुव्वत मिल रही है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के इस पहलू पर उतनी बात नहीं की जाती जितनी की होनी चाहिए थी। जनाब मोदी ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना से मुस्तफीद होने वालों में तकरीबन 46% ख्वातीन हैं।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी, फूल दिए अगरबत्ती नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद

0: लेकर बाहरी खला तक पहुंच रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत दुनिया भर से उन हजारों बेटियों को एक साथ ला रहा है जो इस तरह के ख्वाब रखती हैं। जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा पहल को मिशन शक्ति सेट का नाम दिया गया है और इसके जरिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों को इख्तरा के शोबे में सैटेलाइट तकनीक सीखने का मौका मिल रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे त्यौहार और तकरीबात सिर्फ रवायात को बरकरार रखने के लिए नहीं बल्कि इनसे एक दूसरे के साथ मुंसलिक होने का मौका भी मिलता है। जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में मुल्क में जन्माष्टमी और विश्वकर्मा पूजा जैसे कई और बड़े त्यौहार मनाए जाएंगे। कुछ ही माह में दीपावली भी आने वाली है और इसके लिए तैयारियां पहले ही शुरू हो चुकी हैं। जनाब मोदी ने लोगों पर जोर दिया कि वो त्यौहारों के इस सीजन में वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो मरकूज करें।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वस्ती नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 734 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2,500 अफराद अब भी लापता हैं। इमदादी कारकुन इस सानहे के आज पांचवें दिन लापता होने वाले अफराद को तलाश करने और वहां फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं। इधर वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के बाद से अब तक 108 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। भारत से 11 टन इमदादी सामान लेकर चौथी परवाज काठमांडू में उतरी और ये इमदादी सामान नेपाल सरकार के हवाले कर दिया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि नेपाल में जारी बचाव और राहत कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए जरूरी रसद और तकनीकी साजो सामान के साथ ये परवाज वहां पहुंची है। शुमाली उड़ीसा में फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो रहा है। लगातार बारिश होने के तनाजुर में बालासोर में स्वर्ण रेखा दरिया में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और इससे मुत्तसिल मगरबी बंगाल शुमाली उड़ीसा के साहली इलाकों पर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर बारिश का जोर बढ़ गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज और कल उड़ीसा में इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख माडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें प्रोग्राम में हिस्सा लिया जो खेलों के कौमी दिन से मुंसलिक एक खसूसी प्रोग्राम भी था। ब्रिक्स के इश्तराक से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका एहतमाम किया गया। मीडिया से बात करते हुए जनाब माडविया ने कहा कि साइकिलिंग लोगों में काफ़ी मकबूल हो गई है। इसकी अहमियत को उजागर करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक उम्दा वर्जिश है और फिजाई आलूदगी से पाक माहौल कायम करने नीज ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने का एक मौसर हल भी है। आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप में भारत थाईलैंड के खिलाफ मैच के साथ अपनी मुहिम का आगाज करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के साथ बातचीत की है। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में PM स्वनिधि योजना के जरिए ख्वातीन को बाइख्तियार बनाए जाने को उजागर करते हुए कहा कि मज़कूरा स्कीम से 35 लाख ख्वातीन को फायदा हो रहा है। वजीर आजम ने सैटेलाइट तकनीक सीखने और इख्तरा के शोबे में आगे बढ़ने के लिए 108 मुल्कों की 12,000 लड़कियों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिशन शक्ति सेट को उजागर किया। जनाब मोदी ने नौजवानों मौसीकारों और कंटेंट क्रिएटर से अपील की कि वो नशा मुक्त भारत मुहिम के लिए जिंगल्स नारे और प्रोग्राम तैयार करें। वजीर आजम ने कहा कि पूरे मुल्क में ये मुहिम जोर पकड़ रही है। और आज शाम बेल्जियम में मर्दों के FIH हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अनुजा कुमार विद द मिड डे न्यूज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। उड़ीसा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और उज्बेकिस्तान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जा रहे हैं। वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच सहयोग के सभी स्तरों की समीक्षा के लिए विदेश मंत्रियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा।
1: हम विदेश मंत्रियों के स्तर पर कोऑर्डिनेशन काउंसिल का गठन करेंगे जो सहयोग के सभी पहलुओं को करीबी समन्वय से दिशा देगी। हम हमारे ज्वाइंट कमीशन के स्तर को सेक्रेटरी लेवल से बढ़ाते हुए मिनिस्टर लेवल पर लेकर जाएंगे। दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे।
0: ताशकंद में प्रधानमंत्री ने रणनीतिक साझेदारी की 15वीं वर्षगांठ और उज्बेकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की 35वीं वर्षगांठ के सहयोग पर भी खुशी व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश इस वर्ष सामरिक भागीदारी की 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: सुखद संयोग से हम इस वर्ष अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 15th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं। मुझे खुशी है इस विशेष अवसर पर हम अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने जा रहे हैं। हम इसके अंतर्गत ठोस लक्ष्य निर्धारित करते हुए आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेष रूप से युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
1: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
1: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: श्री मोदी ने कहा कि जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो उससे उस जगह की पहचान पूरी तरह बदल जाती है। श्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के पटवाई के आकाश और रोहन का उल्लेख किया।
1: उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है, बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगस्त का महीना अपने साथ देशभक्ति की कई रंग लेकर आया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान ने देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है।
1: वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक तिरंगा लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं।
0: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया।
1: आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। आंध्र प्रदेश में कडप्पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने यूट्यूब से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब 4 टन एवोकाडो का उत्पादन कर चुके हैं। आज वे सीधे स्थानीय दुकानों को इसकी सप्लाई कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हो गई है। लगभग 2500 लोग अब भी लापता हैं। आपदा के 5वें दिन भी बचावकर्मी लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान आज नेपाल पहुंचा। एक रिपोर्ट।
3: बचाव दल ने अब तक 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटेकाशी नदी में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। भोटेकाशी नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 275 भारतीय और अन्य देशों के भारतीय मूल के 128 लोग भी लापता हैं। वहीं चीन में 900 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और पेइचिंग में भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार प्रभावित लोगों के शीघ्र बचाव और राहत कार्यों के लिए नेपाल और चीन के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है। भारत से 11 टन राहत सामग्री लेकर 4था विमान काठमांडू पहुंच चुका है। इससे पहले भारत ने 3 विमानों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी थी। समाचार कक्ष से अंजुम आलम।
0: उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी उड़ीसा तटों पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण ये वर्षा तेज हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज और कल उड़ीसा में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी दी है।
4: बालेश्वर जिले में बाढ़ का नया खतरा पैदा हो रहा है क्योंकि लगातार बारिश के बीच सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ताजा जानकारी के अनुसार राजघाट पर नदी का जलस्तर 8.84 मीटर था जबकि इसका खतरे का निशान 10.36 मीटर है। झारखंड में गुलडीह बैरेज के 6 गेट खोल दिए गए हैं।

0: जिससे नदी का जलस्तर और बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। जलेश्वर, भोगराई और बालियापाल के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ सकती है। आईएमडी का कहना है कि अगले 48 घंटों के दौरान इस सिस्टम के और मजबूत होने और पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: ये आकाशवाणी है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। जर्मनी की टीम 2023 में जीती अपनी ट्रॉफी को बरकरार रखते हुए चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं स्पेन अपना पहला हॉकी विश्व कप खिताब जीतने की कोशिश करेगा। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत प्रतियोगिता में अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्मृति मानधना उपकप्तान होंगी। प्रतियोगिता में 8 टीम है। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में भाग लिया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना नागरिकों के बीच लोकप्रिय हो गया है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ और तंदुरुस्त रहने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए समर्पित करने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सरदार हुकुम सिंह की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री बिरला ने कहा कि सरदार हुकुम सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ, कानूनी विशेषज्ञ और उत्कृष्ट वक्ता थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि विश्वसनीयता पत्रकारिता का मुख्य नैतिक मूल्य है। उन्होंने आज केरलम के अलप्पुरा में दैनिक केरल कौमुदी की 115वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने नैतिकता का उल्लंघन किए बिना 1 सदी से अधिक समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवा करने के लिए केरल कौमुदी को बधाई भी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। देश भर के 18 परिसरों के स्नातक छात्र इसमें शामिल होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। उपभोक्ता कार्य विभाग ने कानूनी मापन भारतीय मानक समय नियम 2026 को अधिसूचित कर दिया है। इन नियमों के अनुसार भारतीय मानक समय को देश में कानूनी, प्रशासनिक, वाणिज्यिक और अन्य आधिकारिक कार्यों के लिए एक समान समय संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाएगा। ये नियम राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से 180 दिन में लागू होंगे। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बहुत कम ब्याज दर पर ऋण देने वाले दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य इकाई ने बताया कि यह पत्र फर्जी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ताशकंद में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव से वार्ता की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। प्रधानमंत्री ने मिशन शक्ति सेट को 108 देशों की 12,000 छात्राओं के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी सीखने और नवाचार को बढ़ावा देने का मंच बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं, संगीतकारों और कंटेंट क्यूरेटर्स से नशा मुक्त भारत अभियान के लिए जिंगल्स, स्लोगन और सामग्री तैयार करने की अपील की। कहा, अभियान पूरे देश में गति पकड़ रहा है। नेपाल बाढ़ में मृतकों की संख्या 734 हुई, लगभग 2,500 लोग अब भी लापता। भारत का चौथा विमान 11 टन सहायता सामग्री लेकर काठमांडू पहुंचा। और बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन जर्मनी का मुकाबला स्पेन से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में समय हुआ है 2:30। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। एक ही कलाकार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं लेखन की दुनिया में, या यूं कहें कि गीत लिखने की दुनिया में बेताज बादशाह, जिसे हम कह सकते हैं, और उनका नाम है शैलेंद्र। एक ऐसा नाम जिसकी कलम से निकले शब्दों ने भारतीय सिनेमा के संगीत को वो रूह दी जो आज भी हमारे दिलों में बसती है। जब हम उनकी फिल्मी सफर को याद करते हैं और उन पन्नों को पलटते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हर मोड़ पर उनका कोई अमर गीत हमारा हाथ थाम लेता है। शैलेंद्र साहब का सफर उस समय शुरू हुआ जब राज कपूर साहब ने एक कवि सम्मेलन में उनकी कविता जलता पंजाब सुनी। राज कपूर ने उनके शब्दों की धार से जब उनके भाव को समझा तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी फिल्म में गीत लिखने के लिए शैलेंद्र को न्योता दिया। शैलेंद्र साहब ने अपनी सादगी और गहराई से बनी अपनी कलम को जब सिनेमा का सहारा बनाया तो पहला ही नगमा एक अमर दर्शन बन गया। फिल्म थी आवारा और इस फिल्म में जो गीत लिखा गया वो आज भी श्रोताओं के दिलों में बसा हुआ है।

श्रोताओं, इस गीत ने भटके हुए नौजवानों की व्यथा कही, बल्कि शैलेंद्र को अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी दिलाई। जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ा, शैलेंद्र ने आम आदमी के संघर्ष और उनकी मासूम खुशियों को अपनी लिखावट का केंद्र बनाया। जीवन में जितनी भी तंगी और गम क्यों ना हो, मुस्कुराते रहने का जो हौसला उन्होंने दिया, वो था मेरा जूता है जापानी। फिल्म थी श्री 420।

मेरा जूता है जापानी। श्रोताओं, ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि भारतीय स्वाभिमान और फकीराना अंदाज का प्रतीक बन गया। शैलेंद्र साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दर्शन को बहुत ही सरल शब्दों में पिरोते थे। जीवन की आपाधापी, झूठे रिश्तों और दुनिया की बेवफाई के बीच जब कोई थक जाए तो उनकी कलम से निकला ये गीत हमें जीवन की राह दिखाता है। इसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार।

किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। श्रोताओं, इस गीत ने सिखाया है कि दूसरों के दुखों को बांटना ही असली जीना है। प्रेम की गलियों में भी शैलेंद्र का कोई सानी नहीं था। जब रात की खामोशी में प्यार की पहली दस्तक होती है तो उनके शब्द किसी हल्की फुहार की तरह दिल को गुनगुनाने लगते हैं।

ये रात भीगी भीगी, इस गीत में जो रूहानी कशिश थी उसने शैलेंद्र को हर आशिक के दिल की आवाज बना दिया। हमारे श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आप सभी जानते हैं हम बात कर रहे हैं महान गीतकार शैलेंद्र साहब की। श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं और आप भी इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। इसके लिए आपको हमें ईमेल करना होगा। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com।

श्रोताओं, गीतकार के रूप में अपार सफलता पाने के बाद शैलेंद्र ने अपनी रूह को सिनेमा के पर्दे पर उतारने का फैसला किया। उन्होंने फिल्म बनाने का जोखिम उठाया और बतौर निर्माता मैदान में उतरे। इस सफर की खूबसूरत और दर्द भरी झलक हमें उनके विचारशील इस गीत में मिलती है। फिल्म थी तीसरी कसम और इस गीत के बोल थे, आप खुद ही सुनिए।

सज्जन रे झूठ मत बोलो। श्रोताओं, फिल्म तीसरी कसम एक फिल्म नहीं थी बल्कि शैलेंद्र की आत्मा का कलात्मक निचोड़ थी। हालांकि तीसरी कसम के निर्माण के दौरान उन्हें बहुत सी आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, दुनियादारी के इस कठोर ताने बाने ने उनके दिल को छलनी कर दिया। लेकिन एक सच्चे कलाकार की तरह उनका विद्रोही और बेपरवाह स्वभाव कभी नहीं बदला। उनका ये जज्बा इस नगमे में साफ झलकता है। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी।

सच में श्रोता हूँ, शैलेंद्र साहब ने दुनियादारी नहीं सीखी बल्कि चालाकियों से हमेशा दूर रहे और अपनी गीत में मगन रहे। जीवन के आखिरी पड़ाव पर जब उनका शरीर साथ छोड़ रहा था, तब भी उन्होंने अपने गीतों के जरिए दुनिया को अलविदा कहने का सबसे हसीन और अमर तरीका चुना, अपनी लेखनी। जीना यहां, मरना यहां। भले ही ये गीत उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुआ हो, लेकिन इसके एक एक शब्द में शैलेंद्र का पूरा जीवन सिमटा हुआ था। एक ऐसा कलाकार जिसने अपना सब कुछ मंच पर अपने श्रोताओं के नाम समर्पित कर दिया। शैलेंद्र आज शारीरिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब भी रेडियो पर कोई सदाबहार नगमा बजता है और वो नगमा दिल को छू लेता है, तो लगता है कवि शैलेंद्र अपने कलम से एक बार फिर मुस्कुरा रहे हैं।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम एक एक कलाकार, जिसमें हम महान गीतकार शैलेन साहब का जिक्र कर रहे थे, अब संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, ब्रजमाधुरी।

0: ब्रज को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और यहाँ के काजे तैयारी अभी ते है रही है। और सखी हम ब्रजवासिन के काजे तो जन्माष्टमी का त्योहार बहुत महत्व राखे।
1: बिल्कुल सही कह रही हो बहना। ब्रज शिरोमणि श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लेके हम सभी ब्रजवासियों को धन्य कर दियो है। जब श्री कृष्ण मथुरा ते गोकुल पहुंचाए गए बहना, तो नंद बाबा ने कृष्ण जन्म अष्टमी को उत्सव कई दिनांत तक मनायो।
0: सखी कहे हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्मे श्री कृष्ण जन्मते ही अद्भुत बालक थे।
1: बिल्कुल, 64 कलांते परिपूर्ण बालक अद्भुत तो होइगो ही बहना।
0: और सखी बिनकी सभी लीला संदेश वाहक बनी।
1: बिल्कुल, धर्म की गहराई और ऊंचाई पे है के हूँ बिन्ने जीवन को खुल के जियो।
0: मतलब सांसारिक है के वो योगी हते।
1: बिल्कुल, वे गीता जैसे ग्रंथ को रच के दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक बने और राजनीति को अध्यात्म ते जोड़ के दोष रहित बनायो।
0: हाँ सखी, जो विषय दर्शन आध्यात्म से जुड़ जाए वो दोष रहित है जाए। बिन के जीवन की हर अवस्था शिक्षा प्रद है।
1: हाँ, और का बिन की बाल लीलान में ऐसो लगे है जैसे प्रकृति की सबरी चंचलता बिनन ने अपने अंदर समेट ली हुई।
0: और सखी मित्रता में बिन के जैसा कोई सानी नायब है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता तो उदाहरण बन गई।
1: और का अहिंसक चित्त करुणा के सागर है के हूँ महाभारत के रचयिता भई, क्योंकि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े है ना हो धर्म होए। वे पूर्ण है, निर्लिप्त है, वे अतीत में हूँ हते और वर्तमान में हूँ, हमारे ही में बसे हैं छोटे से नंदलाला लड्डू गोपाला बन के।
0: सखी बिन के भोलेपन में ही तो चंचलता छिपी ही। सुनो जब अजन को अनूप जरोटा के स्वर में।

0: बजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को वंदना जोहरी को
1: और वंदना को
0: प्रेम भरो अभिवंदन।
2: वंदना सखी, देखो भादो मास को प्रमुख त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी, जो के मथुरा में और घर घर में हर मंदिर में जगह जगह 4 तारीख को मनाई जाएगी। जाकी तैयारी देखो अभी ते हैवे लगी है।

0: देखो सखी, तुमने कही ना कि वे सांसारिक है के वो योगी है
1: हाँ
0: और जीवन को बिना खुल के जियो। और यही ते जे समझ में आए है कि भले ही समस्याएं जीवन में कितनी होए पर हम सबको व्यथित ना रहना चाहिए, बल्कि शांत मन ते बाकू सुलझाना चाहिए। ना तो बिन बात ब्लड प्रेशर हाई है जाएगो और दिल की बीमारी पाल लेंगे।
1: मैं

0: तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ बहना। मतलब यह है कि आज हम एक नई नाटिका सुनवाई जा रहे हैं, मैडम जी को ब्लड प्रेशर।
1: हाँ पकड़ ली बात तुमने। तो आओ श्रोताओ, आनंद लियो या हास्य नाटिका को।
0: ब्रजमाधुरी में प्रस्तुत है रेडियो हास्य नाटक मैडम जी को ब्लड प्रेशर, या के लेखक हैं राजेश श्रीवास्तव।
2: लफ्जों की तरह तुझे किताबों में मिलेंगे, बन के महक तुझे गुलाबों में मिलेंगे। खुद को कभी अकेला मत समझना, हम तुझे तेरे दिल या ख्वाबों में मिलेंगे।
3: ओ तेरी बाकी अदा पे मैं खुद हूँ फिदा, अपनी चाहत का दिल भर बयां क्या करूं, यही ख्वाहिश है तुम।

0: अरे चंद्र प्रकाश जी, ओ चंद्र प्रकाश जी।
1: बोलो मदन लाल जी।
0: अरे मैडम जी आई गई हैं का?
1: भाई डाई
0: तो ठीक है, मैं न्यों कह रहे हूं कि मैं नए खबा लेके आऊं। मैडम जी अगर पूछें तो कह दियो।
1: आओ, पर जल्दी आ जाइयो, आए तो यहीं पर छोड़ के जाएंगे तुम्हें।
0: ऐसा मजाक काहे क्यों कर रहे हो?
1: मजाक ना कर रहे, पर जल्दी आ जाइयो, नहीं
0: अरे
1: तो।
0: ना तो बस यूं गयो और यूं आयो।
1: चलो ठीक है, गो एंड गॉन।
0: ओके।
2: अरे अंज, सबरी लटकिया आ गई।
0: हाँ आए गई।
2: शकील,
0: आप उसका रवैया बोलो।
2: सबरे गांव बारिन की कस्तुम है गई पूरी।
0: भैया दो लोगन की रह गई हैं, वो छिद्दा लाल लेके आओगे?
2: अच्छा चल ठीक है, पर ध्यान रखियो कहीं ऐसा ना है जाए कि गांव बारे सबरे दिल्ली पहुंच गए और बिनकी कॉस्ट्यूम नहीं बक्सा में बैठी डांस करती रह जाए। धनचिक धनचिक।
0: ए नाय पुष्कर भैया, ऐसा कैसे है जाएगो?
2: देख तेरी जिम्मेवारी है, मैडम जी आवे वारी हैं।
0: ए पुष्कर भैया तुम चिंता मती ना करो, सिद्धा भैया ने कह दई है तो जरूर लेके आएंगे।
2: चल ठीक है, पर एक बार सबरे आर्टिस्टन की कॉस्ट्यूम चेक कर लियो।
0: आओ कर लूंगो।
1: राधे राधे सब भैयन को।
0: अरे लो सिद्धा भैया भी आए गए। अरे सिद्धा भैया गांव वारन की कॉस्ट्यूम ले आए,
1: आओ भैया ले आए हो।
0: बहुत बढ़िया, लाओ जमा कराए दो।
1: जे लियो तुम्हारे गांव बारंगी कॉस्ट्यूम।
2: जाय के में है जिम्मेवारी बेटा, सीख ले, नाटक जिम्मेवारी लेना भी सिखावे है, समझ गए सब छोरा?
3: राधे राधे, जय श्री कृष्णा सबन को। राधे
1: राधे राधे मैडम
4: राधे
1: जी, जय
4: राधे
1: श्री
4: राधे, श्री
1: कृष्णा।
3: जय श्री कृष्णा। अरे वाह, आज तो सभी लोग पूरी तैयारी के संग यहाँ पे मौजूद है। छिंदालाल जी आपको नक्कारो आए गए हो,
2: हाँ जी मैडम जी आए गए हो।
3: और मदनलाल जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं?
2: वो आवे ही बारे हैं, बिनकी सहनाई को उनते ही कोई मांग के ले गए हो तो अवाई तक ना दई भाई, भाई ले भी गए बस।
3: ओहो, और ये हरि भजन कहाँ है?
2: मैडम जी वो भीतर प्रॉपर्टी बारे के संग बिनकी हेल्प करा रहे हो।
3: अच्छा ठीक है। और चमन भाई ना दिखाई दे रहे?
0: मैडम जी वो अंदर हॉल में गायकी की रिहर्सल कराए रहे हैं।
3: अच्छा, रावत जी, शर्मा जी, किशन पाल, माधुरी, मिथिलेश, आरती, ये सब लोग अंदर ही है ना?
2: जी जी मैडम जी।
3: अच्छा देखो, आज अभी फुल रिहर्सल के बाद अपने अपने घरन को निकल जाइए, और कल सुबह ठीक 6 बजे सभी लोग यहाँ मौजूद चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से ठीक 6:30 बजे तक बस से दिल्ली को प्रस्थान करेंगे। ओके, अंडरस्टैंड?
1: जी मैडम जी।
3: वेरी गुड। देखो लंच से पहले हम सब वहां पहुंच जाएंगे, और शाम को वहां एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑडियंस के बीच आप लोगन को अपना शो परफॉर्म करना
2: जी
3: है
2: जी
3: ना?
2: जी जी
3: अब चूंकि हम सब ब्रज वाले हैं, तो जा लिए ब्रज की लोक कला से सजे हमारे कार्यक्रम को लेके लोगन में बहुत उत्सुकता है, इसीलिए हमें अपनो द बेस्ट देना है। इज इट क्लियर? सभी समझ गए?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और राजीव भाई, राजीव भाई दिखाई नहीं दे रहे?
5: जी मैडम।
3: राजीव भाई आप उधर पीछे क्यों बैठे हैं, आगे आइए ना। राजीव भाई आप इन सब के इंचार्ज हैं, आज एक रिहर्सल करावे के बाद कल सुबह सकुशल इन सबन को लेकर दिल्ली पहुंचावे की जिम्मेदारी आप पर है।
5: आप चिंता मत करो मैडम, सब कछु बहुत अच्छो है जाएगो।
3: ओके गुड, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट आवर रिहर्सल। ओके चले हम सभी।
1: जी मैडम चलिए।
3: बोल श्री बांके बिहारी लाल की
1: जय, जो ना बोले बामे
6: दे, और लड्डू चार कचौड़ी छह।

0: और भैया मदन लाल, क्या हाल चाल है?
1: बोई हड्डी बोई खाल है।
0: अच्छा चल बढ़िया है भैया, पर ये हड्डी और यही खाल रखियो, बदल मत दियो।
1: ए ना है, बदलूंगो ना है।
0: यार ये सड़क तो बहुत बढ़िया बना दी है, और ये बसऊ बहुत बढ़िया है, मस्त है एकदम।
1: हमे न कुछ को लो ना आए रे, मक्खन सी जा रही है बस।
0: बेटा पैसा खर्च में तभी जामे मजा आए रो, समझ गो?
1: हमे सो तो है चिद्दा भैया,
0: दिल्ली आवे ही बारी है।
1: ठीक है भैया, जय गोपाल की, जय गोपाल की।
0: वाह क्या शानदार होटल है। अरे भैया मैडम जी ने तो बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखे है।
2: अरे मैडम जी के तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क आते हैं, पता है?
3: अरे मैडम जी तो बहुत बड़ी कलाकार हैं, सब इनकी बहुत इज्जत करे हैं।
2: भैया जय मारे तो कलाकारन की कदर करे हैं। अब देखो ना, एक बढ़िया होटल में ठहरवे की व्यवस्था करी है हम लोगों की।
3: कछु भी कहो, मजा आ जाएगा जावार की ट्रिप में।
2: बिल्कुल, जीवारी ट्रिप तो याद रहेगी।
3: अरे शकील, बस में ते प्रॉपर्टी को सारा सामान उतार लियो।
4: हाँ पुष्कर भैया ले लियो, अंजू और मनमोहन पीछे लेके आ रहे हैं।
3: ठीक है, कॉस्ट्यूम सबन की चेक कर लियो।
4: ठीक है कर लूंगा।
5: फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री।
6: या यस आई नो इट सर।
7: राधे राधे बहन जी।
8: नमस्कार। राधे राधे, होटल के रिसेप्शन काउंटर पर आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ?
7: बहन जी यहाँ पे बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते हुए दिख रहे हैं, पर हमारी मैडम जी ना दिखाई पड़ रही, मुझ शिवानी मैडम जी से मिलना है।
8: अच्छा मैडम शिवानी श्रीधर जी से?
7: मैं बहन जी।
8: मैडम शिवानी जी वो सामने खड़ी हुई हैं, आप उनसे वहां जाकर मिल लीजिए।
7: ठीक है बहन जी, थैंक यू। राधे राधे।
8: वेलकम। राधे राधे।
7: शिवानी मैडम जी।
9: क्लोजर टू एज मेनी पीपल।
7: शिवानी मैडम जी।
9: सो दैट
7: मैडम जी, शिवानी मैडम जी।
9: एक्सक्यूज मी सर, आई एम जस्ट कमिंग।
8: मदन जी क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हैं आप, क्या हुआ?
7: अरे मैडम जी एक मिनट, संग मेरी कमरा में चलो।
8: अरे अरे अरे मदन जी, मेरा हाथ पकड़कर कहां ले जा रहे हैं आप मुझे?
7: अरे मैडम जी आप लग मेरे संग मेरी कमरा में तो चलो, फिर देखियो आप का गजब है वजह होटल में।
8: ऐसा भी क्या गजब हो गया है होटल में भाई, जरा मुझे मालूम तो पड़े।
7: मैडम जी जा होटल के कमरा में एक पोखर होता है।
8: क्या पोखर? आपका मतलब है कि गांव में जो एक छोटा सा तालाब होता है वो?
7: मैं मैडम जी बोई, और जा बजे थे हमारे कमरा में भैंसिया आ जाएगी।
8: क्या मदन जी भैंसिया और यहाँ?
7: मैडम जी आप तो जानो ही हो, अगर भैंसिया को कहीं पे पोखर दिख गई ना तो समझो कि गई भैंस पानी में।
8: मदन जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मदन जी आपने यहाँ पे ऐसा कहा देख लिया है, चलो देखते हैं अब कहा है गो। यहाँ बताइए कौन सा है आपका कमरा?
7: मैडम जी मोए तो जी वारी गैल लगे कमरा वारी, पता ही ना पर मैं कितमऊ से आया हूँ, कितमऊ जाऊंगो, मेरी कमरा वाली गैल कितकू चली गई।
8: अच्छा पहले आप मुझे अपना रूम नंबर बताइए।
7: मैडम जी कमरा को नंबर तो ध्यान है मुकू, हाँ क्योंकि वहां में कानूनी धारा लगी भैया ना।
8: कानूनी धारा?
7: हाँ धारा 302 जी है मेरे कमरा को नंबर।
8: ओके आइए अभी देखते हैं। ये वाला है रूम नंबर 306543 और ये रहा आपका रूम नंबर 302, यही है ना?
7: हाँ मैडम जी जी है जी है।
8: आइए चलते हैं कमरे के अंदर, चलिए दिखाइए।
7: देखो मैडम जी जहाँ तरफ देखो, मैं जब पर्दा को हटाए रहे हूँ, तो जैसे ही पर्दा हटेगा तो मैं बाकी पीछे सब दिख जाएगा पोखर।
8: चलिए हटाइए पर्दा, देखते हैं।
7: देखो जी रहो पोखर
8: ये।
7: हाँ भैया मैडम जी आपने जोर जोर से काहे को हंस रही
8: हैं? मदन जी आप भी कमाल के व्यक्ति हैं, आप भी ना वास्तव में बहुत भोले हैं, बहुत फनी आप। अरे ये पोखर नहीं है, ये बाथिंग टब है मदन जी, ये ना सभी अच्छे बड़े होटल्स में होता है। और ये बाथरूम यानी कि स्नान घर का एक हिस्सा है, लोग इसमें नहाते हैं।
7: मैडम जी हमारे गांव में तो जाए पोखर के में और जामे भैंसिया नाम है, जाए लिए मैं डरप गया।
8: इट्स ओके, अब आप ना नेको चिंता मती करो और जल्दी तक नहाए धोए के तैयार है के आ जाओ नीचे। मदन जी, संजा को आप है बढ़िया सो शो करना है, ठीक है? अब मैं चलू हूँ। ओके, आ जाइयो जल्दी।
7: जी मैडम जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
8: राधे राधे मदन जी।
7: राधे राधे। गोपाल जी, अब भाई जिंदगी में और कहाँ कहाँ देखना पड़ेगा। जय हो बंसी वाली।
10: अरे किशन पाल, या मैडम जी कार में बैठ के काय को हंस रहे हो भाई, इतनी आवाज है गई।
11: अरे बदल जे देख, का बढ़िया चटकुल्ला आयो जा मोबाइल में।
10: अबे कौन सा चटकुल्ला, मोई भी तो बता।
11: दो छोरी एक बस में सीट पे बैठ के झगड़ रही थी, तभी वहाँ पे बस को कंडक्टर आयो और छोरी ने बोला, अरे लड़ो मत, जो छोरी उम्र में बड़ी हो वो बैठ जाए। हाँ। बस फिर कहा तो पूरा रास्ता दोनों छोरी खड़ी खड़ी चली गई, दोनों में तो एक और सीट पर ना बैठी। अरे मदन, तू जावाखन यहाँ पे क्या कर रहा है? वो तो रिहर्सल में होना चाहिए।
10: अरे हाँ किशन, याद आ गई, वो मैडम जी ने यहाँ तेरे पास गाड़ी पे भेजो है।
11: मेरे पास क्यों?
10: मैडम जी को ब्लड प्रेशर जा गाड़ी में है, वो मुकू दे दे।
11: कहा मैडम जी को ब्लड प्रेशर?
10: मैं लाला।
11: अबे मदन, देखो मतलब मैडम जी को फिर से ब्लड प्रेशर है को?
10: मतबल?
11: अरे लाला तू ना जाने, मैडम जी को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, इनकी तबीयत बिगड़ जाए है, लगे बिनको फिर से ब्लड प्रेशर है को। लाला मदन, अब अगर बिन की तबीयत ठीक ना है भाई, तो शाम को हमारे प्रोग्राम को कहा होगा?
10: भाई जी तो बहुत चिंता वाली बात है गई, अब हमें कहा करना चाहिए भाई?
11: लाला हमें फौरन ही काउ डॉक्टर को लेके तुरंत मैडम जी के पास पहुँचना चाहिए।
10: मैं लाला जी ठीक रहेगा, चल चल फटाफट चल, तू डॉक्टर लेके आमे और मैडम जी को दिखामे।
11: जल्दी चल, आजा, चल चल आजा, चल चल। डॉक्टर साहब, राम राम।
12: राम राम, राम। आइए श्रीमान, बताइए क्या है काम?
11: डॉक्टर साहब, हम लोग कलाकार हैं, बाहर के रहवे वाले हते, जहाँ शहर में प्रोग्राम करवे को आए।
12: कौन है आप दोनों महानुभाव, कृपया पहले अपना परिचय दें।
11: डॉक्टर साहब, मैं हूँ किशन पाल और जी है मदन लाल। हम लोग संगीत नाटक मंडी के हैं कलाकार।
12: किशन पाल मदन लाल, कितनी प्यारी जोड़ी है, जैसे लक्ष्मीकांत प्यारे लाल, मगर जो कहना है गा कर कहिए।
11: अच्छा डॉक्टर साहब, लाला मदन।
10: हाँ
11: चल है जा शुरू।

0: अरे है गई है बीमार, झट ते अपनों बैगी उठाओ और लेके अपनों आला हमरे पीछे पीछे
1: डिंग डिंग टक टक डिंग।
2: बस बस बस, म्यूजिक ओवर हो रहा है। कहाँ है पेशेंट, जल्दी बुलाओ।
3: डॉक्टर साहब, बाकी लिए तो आपको हमारे संग चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मैडम जी की तबीयत ठीक ना है, ते बिनको ब्लड प्रेशर है गो है। अब जालिए मैडम जी तो अपने कमरा में ही है।
2: ओ हो, ब्लड प्रेशर, ये तो बहुत ही खौफनाक बीमारी है। मुझे जल्दी से पेशेंट के पास पहुंचना चाहिए। आप दोनों जल्दी मेरे साथ आइए।
3: चलो चलो, आ जाओ डॉक्टर साहब।
2: ये पकड़ो मेरा बैग, ये पकड़ो मेरा आला, मेरे पीछे पीछे चले आओ। दुखियारी है कोई बाला।
3: इलाज करवा लो, इलाज इवन वाला डॉक्टर लाए हैं, बढ़िया वाला।
2: फुटेज मत खाओ, मेरे पीछे चले आओ, शीघ्र चले आओ।

0: आओ डॉक्टर साहब, ना जल्दी जल्दी आओ।
1: ये देखो डॉक्टर साहब, ये देखो, ये रही हमारी मैडम जी।
2: ओके, मैं अभी देखता हूँ।
3: अरे मदन, किशन, क्या हो गया? इतने घबराए हुए से क्यों हो? और ये साहब कौन है?
2: मैडम जी, जे मैडम, मैं आपको परिचय अपना खुद दे देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर SS खुराना। ये दोनों आपके शुभ चिंतक सहकर्मी मेरे पास मेरे क्लिनिक पर आए थे।
3: हुँ?
2: और इन्होंने मुझे बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है।
3: What?
2: और इनके अनुसार आपका ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है।
3: क्या?
2: इनकी वरीज यानी चिंता और आकुलता को हास परिहास के द्वारा थोड़ा कम करते हुए और स्थिति की गंभीरता को महसूस करते हुए मैं बिना समय गवाए इन लोगों के साथ तुरंत चला आया। अब आप बताइए अपनी तबीयत के बारे में, आपका ब्लड प्रेशर कैसा है?
3: What? मेरा ब्लड प्रेशर? नो डॉक्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, फिट हूँ, फाइन हूँ, भला मुझे क्या हुआ है। बट एनीवे, आप एक पेशेंट के बारे में सोचकर तुरंत यहाँ चले आए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
2: यू आर मोस्ट वेलकम।
3: और रही बात मेरी तबीयत की, तो मदन किशन, तुमसे कौन ने कही कि मेरा ब्लड प्रेशर बिगड़ गया?
1: मैडम जी, मेरे पास तो जी मदन आयो और आके मुँह तो बोलो कि मैडम जी ने मुँह तो कही है कि मेरे गाड़ी में ब्लड प्रेशर रहता है। भाई ले या?
3: क्या?
1: मैंने समझी कि आपने आते जे कही होगी कि आपको ब्लड प्रेशर बिगड़ गया है और आपको गाड़ी में बैठ के इलाज के लिए जानो है। तो हम दोनों ने जे सोची कि अगर मैडम जी आज बीमार पड़ गई तो शाम को हमारा प्रोग्राम कैसे हो पाएगा। तो हमने सोची कि क्यों ना हम ही डॉक्टर साहब को मैडम जी के पास ले आवे। बस ये ही सोच के मैडम जी हम दोनों झट से डॉक्टर साहब के पास चले गए और उन्हें यहाँ फटते आपके पास ले आए।
3: ओफो मदन जी, फिर से वही नादानी।
2: आ गई मुझे।
3: अरे बाबा, ब्लड नहीं, ब्रेड। ब्रेड यानी जिसे आप डबल रोटी कहते हैं। अच्छा। वो ब्रेड।
1: अच्छा।
3: हाँ, और उस ब्रेड पैकेट को मैंने आपसे लाने को कहा था। और माय गॉड मदन जी, चूंकि आपके दिमाग में ब्लड प्रेशर शब्द बैठा हुआ है, इसलिए हुआ क्या?
1: क्या
3: कि आप गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते ब्रेड पैकेट शब्द भूल गए और आपके दिमाग में बैठा ब्लड प्रेशर शब्द आपको याद रहा और बस इसी के चलते आपने किशन को जाके कह दिया कि मैडम जी को ब्लड प्रेशर गाड़ी में हत है, वाय दे दो। अब समझे? और किशन पाल, तुम भी उसमें शामिल हो गए। राम मिलाए जोड़ी। आई एम रियली वेरी सॉरी डॉक्टर, मेरे लोगों की जरा सी नासमझी से आपको इतना परेशान होना पड़ा।
2: कोई बात
3: डॉक्टर, मैं दिल से आपका धन्यवाद कहती हूँ।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
3: मिस जी शिवानी, शिवानी श्रीधर नाम है मेरा।
2: नाइस नेम। ओके शिवानी जी, चलिए कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला।
3: दरअसल डॉक्टर साहब, मेरे ये सभी साथी बहुत अच्छे लोक कलाकार हैं और ब्रज के ग्रामीण परिवेश का इन पर बहुत प्रभाव रहता है। मगर ये सभी ना, मदन, किशन और अन्य सभी साथी मन के बहुत ही सरल और स्वभाव से बहुत भोले हैं और सच्चे ब्रजवासी हैं। बस कभी कभी छोटी मोटी नादानी कर जाते हैं।
2: इसीलिए ब्रेड को ब्लड और ब्रेड पैकेट को ब्लड प्रेशर बना देते हैं।
3: जी।
4: अरे ना मैडम जी, मैं तो देहात को आदमी हतूं, कम पढ़ो लिखाऊ जाई बजे ते मिस्टेक है जावे। डॉक्टर साहब मोको माफ कर दो भाई, मैं तो मूल बुद्धि का हतूं। आई एम टू सॉरी बेरी साहब। डॉक्टर साहब,
2: मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरी फीस चाहिए और फीस में रुपया पैसा नहीं, कुछ गा बजा कर दिखाइए।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात है तो चल ले मदन, है जा शुरू।
4: ठीक है भाई किसान, हवाल ले।

0: What a song, what a sound.
1: वाह वाह मेरे चुनमुनो, इतना प्यारा म्यूजिक सेंस तुमने कहाँ से पाया?
2: ऑनरेबल डॉक्टर साहब, ये सब है ऊपर वाले की माया, उसने ही ये खेल दिखाया, मैडम जी के ब्रेड पैकेट को मैडम जी का ब्लड प्रेशर बनाया।
3: किशन किशन, अरे नाम मत ले दोबारा मैडम जी के ब्लड प्रेशर को, चाहे सुनते ही मेरा बीपी बढ़ जावे।
1: मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू, तुम दोनों का ध्यान किधर है? चिंता की अब कोई बात नहीं, सुंदर टिकाऊ डॉक्टर इधर है, डॉक्टर SSS खुराना।
4: डॉक्टर साहब, ये SSS बोले तो?
1: SSS डॉक्टर शिव शंकर सहाय खुराना। मेरे सामने टिक नहीं।

0: अरे वाह भाई डाक साहब, ये तो जई बात पे सब भैया एक बार प्रेम ते बोलो भुलवा के बिहारी लाल की जय।
1: जय। और मदन लाल की पीठ पे धौल दे
0: अरे अरे
1: दे
0: भैया,
1: दे।
0: अरे मारे हो, अरे चौरे किसान तने मेरी पीठ पर 3 बार चो मारो भाई।
1: देख पहली धौल जावाद की कि तेरी वजह ते डॉक्टर साहब इतने परेशान भाई कितने।
0: इते
1: और दूसरी धौल
0: जी कौन सी बात की भाई?
1: ये जावाद की कि तेने हमारी रेस्पेक्टेड मैडम जी की इंसलेट करवाई। और तीसरी धौल
0: अब जा मैं कहां बताई?
1: सिर्फ तेरी वजह ते मदन लाल मैं भी बुद्धू बन गो, याई लिए तेरी पीठ पे मैंने 3 धौल लगाई।
0: ठीक है बच्चू, अब तू अपने घर जाके देखियो, तो ये मारेगी तेरी लुगाई।
1: ना
0: मैडम जी, अब मैं जाके गाड़ी में थी आपको, मेरा मतलब ब्रेड पैकेट ले आऊंगा।
2: नहीं मेरे भाई, नहीं, मुझे अब अपना ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ाना।
3: वो कहते हैं ना, इफ द एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो कुछ गाना बजाना हो जाए,
0: अच्छा होना है।
3: आइए।

0: अभी आप रेडियो हास्य नाटक सुन रहे हैं मैडम जी को ब्लड प्रेशर, जाके लेखक है राजेश श्रीवास्तव। कलाकारन को परिचय या प्रकार दे है अनुराग अरोड़ा, उमेश दीक्षित, सविता शर्मा नागर, साजन चतुर्वेदी, आकाश शर्मा, मनोज राठौर, दिनेश दिवाकर, वंदना उमंग, सिद्धांत पावस और प्रतिभा नागपाल। यह हास्य नाटिका को निर्देशन किया हो दक्षपुरी ने। अभियाई के संग आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुए है। मोय यानी वंदना जोहरी को और मोय यानी के वंदना को देव अनुमति नमस्कार।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: दोस्तों, हम डॉक्टर वी आर अम्बेडकर सीएम श्री स्कूल सेक्टर 21 रोहिणी के विद्यार्थी हैं। जैसा कि हमने पिछली बार वादा किया था कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे, तो अब हम आ गए हैं फिर से आकाशवाणी केंद्र के एफएम गोल्ड चैनल के रेडियो किड्स प्रोग्राम में। मैं हूं अनन्या, आपकी रेडियो दोस्त क्लास 9 से। चलिए मेरे दोस्तों से मिलते हैं।
1: मैं अक्षत कक्षा 8वीं से।
2: मैं सौम्या कक्षा 7वीं से।
3: मैं अक्षिता कक्षा 7वीं से।
4: मैं तन्मय कक्षा 8वीं से।
5: मैं सबरीन कक्षा 8वीं से।
3: आज हम आप सबके साथ ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे विद्यालय की म्यूजिक टीम आपको कई कमाल संगीत भी सुनाएंगे। हमारे भारत देश का मतलब है भा से भाव, रा से राग, ता से ताल, यह सबका संगम है हमारा भारत।
1: अच्छा सबरीन, तुम भी तो कहानी लाई थी, क्या तुम हमें सुनाना पसंद करोगी?
5: हाँ हाँ, अभी सुनाती हूँ। आज की मेरी कहानी है उस भारत की, जहाँ भाषाएं अनेक हैं पर दिलों की धड़कन एक है। ईश्वर ने सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या बनाई है? एक ऐसा देश जहाँ किसी की पहचान उसकी भाषा से नहीं, उसके दिल से होती है। जहाँ कोई पूछता नहीं तुम कौन हो, बस मुस्कुरा कर कहता है आओ साथ चलें। ऐसी ही एक ट्रेन दिल्ली से कन्याकुमारी की ओर बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर बदलता भारत था और डिब्बे अंदर बसता हुआ भारत। उसे डिब्बे में बैठा था अरुण। वह चुपचाप अपने आसपास देख रहा था। किसी के सिर पर पगड़ी थी, कोई टोपी पहने था, कोई धोती कुर्ते में था, तो कोई अपने राज्य के पारंपरिक परिधान में। बातें भी अलग थी, कहीं पंजाबी की मिठास थी, कहीं गुजराती का लय, कहीं बंगाली की मिठास, तो कहीं दक्षिण भारतीय भाषाओं की मधुर ध्वनि। अरुण के मन में सवाल उठा, इतने अलग लोग, अलग पहनावा, अलग खान पान, फिर भी दिल से इतने अपने क्यों लग रहे हैं? तभी एक पंजाबी परिवार ने अपना लंच बॉक्स खोला और कहा, आओ जी खाना खाइए। शब्द शायद समझ नहीं आए, लेकिन मुस्कान समझ आ गई। एक यात्री ने ढोकला निकाला, दूसरे ने इडली बढ़ाई, किसी ने पूरी सब्जी बाटी, तो किसी ने अपनी खास मिठाई। जो डिब्बा अलग अलग लोगों से भरा था, वह एक परिवार जैसा लगने लगा। भाषाएं अलग थी पर अपनापन एक था। खाने अलग थे पर बांटने की खुशी एक थी। पहनावे अलग थे पर मुस्कान एक थी। अरुण बस देखता रहा। फिर उसकी नजर बाहर गई, कहीं हरे भरे खेत तो कहीं ऊंचे पहाड़, कहीं बहती नदियां तो कहीं दूर तक फैली धरती। अचानक अरुण मुस्कुराया, उसे समझ आ गया, जो बाहर दिखाई दे रहा है वही तो इस डिब्बे के अंदर भी है। भारत की धरती अलग अलग रंगों से सजी है और भारत के लोग अलग अलग संस्कृतियों में, लेकिन सब मिलकर भारत है। अरुण ने चारों ओर देखा, अलग धर्म, अलग राज्य, अलग भाषाएं, अलग परंपराएं, फिर भी एक दूसरे के लिए वही मुस्कान, वही सम्मान, वही अपनापन। उसने मन ही मन कहा, भारत की खूबसूरती इस बात में नहीं कि हम सब एक जैसे हैं, भारत की खूबसूरती तो इस बात में है कि हम इतने अलग होकर भी एक हैं। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही और अरुण की सोच भी। उस दिन उसने जाना, भारत सिर्फ एक देश नहीं, भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर फूल का रंग अलग है, हर फूल की खुशबू अलग है, लेकिन जब ये सारे फूल साथ होते हैं तभी तो गुलदस्ता खूबसूरत बनता है। और शायद यही भारत की असली पहचान है। अनेक भाषाएं, अनेक संस्कृतियां, अनेक परंपराएं, अनेक पहचान, लेकिन दिल एक और देश एक, मेरा भारत। यही है हमारे देश की खूबसूरती, विविधता में एकता। धन्यवाद।

0: तन में तुमने भी तो एक कहानी तैयार की थी।
1: हाँ हाँ जरूर जरूर, मैं अभी सुनाता हूँ।
2: तो बिना किसी विलंब के प्रस्तुत है मेरी कविता स्वच्छता की पुकार। मत फेंको कूड़ा राहों में, मत गंदा करो ये आंगन, धरती माँ की आंखों में क्यों भरते हो तुम सावन। ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, ये मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, इसमें भी जीवन पलता है। जिस धरती पर हम चलते हैं उसका भी तो दिल होता है। एक माँ अपने बच्चों को साफ सुथरा घर देती है, फिर क्यों हम उस धरती माँ को गंदगी का दुख देते हैं। नदी हमारी बहन है जैसी, पेड़ हमारे साथी हैं, हवा हमारे सांसें हैं, इनसे ही कुछ हाल ही है। एक छोटा सा कूड़ा उठाना शायद काम लगे छोटा, लेकिन इसी छोटे कदम से बदल सकता है कल का रास्ता। आज अगर हम जाग जाएं तो कल मुस्काएगा, स्वच्छ गली और निर्मल आंगन से हर चेहरा खिल जाएगा। आओ मिलकर शपथ लें, गंदगी नहीं फैलाएंगे, अपने घर से अपनी गली से स्वच्छता को अपनाएंगे। सिर्फ दूसरों के कहने से बदलाव नहीं आएगा, जब हर कोई अपना फर्ज निभाए तभी देश मुस्काएगा। मेरी धरती मेरा आंगन, मेरी अपनी जिम्मेदारी, स्वच्छ भारत का स्वप्न लेकर करें आज से तैयारी। एक कदम मेरा एक कदम तुम्हारा, मिलकर बन जाए रहा, स्वच्छ रहे हम स्वस्थ रहे हम, यही हमारी सच्ची था। आओ धरती माँ से कह दे, अब तेरा मान रखेंगे, तेरी गोद को स्वच्छ रखकर तेरा सम्मान करेंगे। धन्यवाद।

0: अनन्या दीदी, आप भी हमें कोई कविता सुनाइए ना।
1: जरूर जरूर, मैं आज आपके समक्ष अपनी स्वरचित कविता सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है छोटा कदम बड़े बदलाव। छोटा सा कदम जब विश्वास से उठता है तो इतिहास के पन्नों में नया अध्याय रचता है। जैसे गांधी जी ने चरखा चलाकर यही सिखाया, अपने हाथों से स्वदेशी का दीप जलाया। एक कदम था उनका, एक कदम था उनका खुद वस्त्र बनाना, पर उससे जुड़ा था देश को आत्मनिर्भर बनाना। जैसे एक चरखे की आवाज ने यही था संदेश सुनाया कि बदलाव दूसरों से नहीं स्वयं में है पाया। आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं कि आज भी हम एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं, अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। एक पेड़ लगाएं, एक बूंद जल बचाएं, एक जरूरतमंद की मदद को हाथ बढ़ाएं, कूड़ा ना फैलाएं, स्वच्छता को अपनाएं, प्लास्टिक छोड़ प्रकृति से रिश्ता बनाएं। जब छोटी सी आदत सबकी बन जाएगी तो यही धरती एक सुंदर कल की तस्वीर बनाएगी। ना कोई कदम छोटा है, ना कोई प्रयास व्यर्थ, हर कोशिश में छिपा है बदलाव का अर्थ। आज का छोटा कदम कल की पहचान बनेगा, हमारा वर्तमान ही कल का उज्जवल भविष्य गढ़ेगा। तो चलो शुरुआत अभी और यहीं से करें, बदलाव की राह पर पहला कदम धरें, क्योंकि बड़े बदलाव की यही तो निशानी है। बड़े बदलाव की यही तो निशानी है, छोटे कदमों से ही रचती बड़ी निशानियां हैं।
0: मन कर रहा है अनन्या दीदी एक गजल भी हो जाए।
1: हाँ जरूर,
0: तो हमारे साथ रक्षित भैया है ना, उनसे अच्छी गजल कौन सुना सकता है, तो चलो सुनते हैं।
2: मेरा नाम रक्षित शर्मा है और आज मैं एक गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

0: आज मैं अक्षत आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो हमें यह सिखाती है कि बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से भी होती है। मेरी कहानी का नाम है छोटा कदम बड़ा बदलाव। तो आइए सुनते हैं यह प्रेरणादायक कहानी। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक बच्चा रहता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था और उसे अपने शहर से बहुत प्यार था, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती थी। उसके घर के पास एक छोटा सा पार्क था। कभी वहां बच्चे खेलते थे, बुजुर्ग टहलते थे और लोग शाम को बैठकर बातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्क की हालत खराब होती जा रही थी। जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था। एक दिन आरव स्कूल से घर लौट रहा था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा पार्क में खेलते खेलते केले का छिलका वहीं जमीन पर फेंक कर चला गया। आरव ने उसे आवाज लगाई, अरे रुको, कूड़ा जमीन पर क्यों फेंका? बच्चे ने पीछे मुड़कर कहा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, सिर्फ एक छिलका ही तो है। आरव कुछ नहीं बोला। वह छिलका उठाकर पास के कूड़ेदान में डाल आया। तभी उसके दोस्त विवान ने पूछा, तुमने क्यों उठाया? सफाई कर्मचारी आएंगे और साफ कर देंगे। आरव मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन अगर हम ही गंदगी फैलाएंगे और सफाई की जिम्मेदारी किसी और की समझेंगे तो हमारा पार्क कभी साफ नहीं हो पाएगा। विवान ने कहा, लेकिन हम दो बच्चे क्या बदल सकते हैं? आरव ने कहा, शायद हम पूरी दुनिया ना बदल सके, लेकिन अपने आसपास की शुरुआत तो कर ही सकते हैं। अगले दिन आरव और विवान ने पार्क में पड़े कुछ कागज और प्लास्टिक उठाए। पहले उन्हें देखकर लोग हंसने लगे। एक आदमी ने कहा, अरे बेटा, तुम दोनों से पूरा पार्क थोड़ी साफ हो जाएगा। आरव ने जवाब दिया, अंकल, पूरा पार्क आज नहीं तो कल साफ हो जाएगा, लेकिन अगर कोई शुरुआत न करे तो कभी साफ नहीं होगा। यह बात उस आदमी के मन में बैठ गई। अगले दिन वह आदमी भी अपने साथ एक थैली लेकर आया और बच्चों के साथ कूड़ा उठाने लगा। अब 3 लोग थे, फिर 5 लोग हुए, फिर 10। धीरे धीरे पार्क में रहने वाले लोगों ने तय किया कि हर रविवार वे मिलकर पार्क की सफाई करेंगे। कुछ दिनों बाद पार्क का रूप ही बदल गया। जहां पहले कूड़ा दिखाई देता, वहां अब साफ रास्ते थे। जहां प्लास्टिक की बोतलें पड़ी रहती थीं, वहां पौधे लगाए गए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि अब लोग पार्क में कूड़ा फेंकने से पहले 2 बार सोचते थे। एक दिन वही छोटा बच्चा जिसने केले का छिलका फेंका था आरव के पास गया। उसने कहा, भैया, उस दिन मैंने ये सोचकर छिलका फेंक दिया कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, लेकिन अब समझ आया कि एक छोटी सी गलती भी बड़ी गंदगी की शुरुआत बन सकती है और एक छोटा सा अच्छा काम भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन सकती है। आरव ने कहा, बस यही तो बात है, बदलाव हमेशा बड़े काम से शुरू नहीं होता, कभी कभी एक छोटा सा कदम भी काफी होता है। कुछ समय बाद शहर के लोगों ने उस पार्क का नाम रख दिया छोटे कदम बड़ा बदलाव पार्क, क्योंकि उस पार्क की कहानी सिर्फ सफाई की कहानी नहीं थी, वह कहानी थी जिम्मेदारी की। वह कहानी थी कि हमें यह सोचकर पीछे नहीं हटना चाहिए कि मेरे अकेले करने से क्या होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का छोटा सा कदम दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है और दूसरे का कदम तीसरे को। वह यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। उस दिन आरव पार्क के कोने में बैठा था। उसने चारों तरफ देखा और मन ही मन कहा, अगर हर इंसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी अच्छे से निभाए तो किसी जगह को बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच ही तो है, हम अपने घर को साफ रखते हैं तो अपने आसपास को भी साफ रख सकते हैं। हम कूड़ा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़े दाग में डाल सकते हैं। हम दूसरों को इंतजार करने के बजाय ही खुद शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा कदम किसी एक जगह को बदल सकता है। एक अच्छी आदत एक परिवार को बदल सकती है और लाखों लोगों के छोटे छोटे प्रयास पूरे देश को बदल सकते हैं। इसलिए हमें यह नहीं पूछना चाहिए बदलाव कौन लाएगा, हमें कहना चाहिए बदलाव की शुरुआत मैं करूंगा। और यही है छोटे कदम बड़ा बदलाव। धन्यवाद।
1: भारत विभिन्न कला, संस्कृति और तीज त्योहारों का देश है। और हाँ, तीज त्योहारों से याद आया, 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार है, जब बाल गोपाल जी का जन्म और उनके बाल लीलाएं देखकर मन खुश हो जाता है। और कान्हा की बाल लीलाओं को अपने भजन में समेट कर ला रही हैं हमारे विद्यालय की बहुत सुरीली छात्र स्मृति झा। तो आइए जन्माष्टमी के अवसर पर उनका भजन सुनते हैं। मेरा नाम स्मृति झा है और मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
2: मेरा नाम रक्षित है और आज मैं हारमोनियम पे संगत करने जा रहा हूँ।
3: मेरा नाम अभिषेक है, मैं ढोलक पे संगत देने जा रहा हूँ।
4: मेरा नाम यश राजपूत है, मैं तबले पे संगत करने जा रहा हूँ।
5: मेरा नाम यश जैन है, मैं मंजीरे पे संगत देने जा रहा हूँ।

0: वाह दीदी, गाना सुन के तो बहुत मजा आ गया।
1: हाँ तो यही तो था इतना अच्छा गाना।
0: तो दोस्तों अब चलते हैं घर, क्योंकि हमें जन्माष्टमी की तैयारी भी तो करनी है। बाय।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो किड्स। श्रोताओं, हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वांग।
1: नमस्कार, संगीतमय कार्यक्रम में आप सभी संगीत प्रेमियों का स्वागत अभिनंदन। आज इस कार्यक्रम में महाभारत काल के महादानी राजा मोरध्वज की दानवीरता का किस्सा। ऐसा यह है कि आज की स्वांग में कि धनुर्धारी अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में जब जब विजय प्राप्त की, तब तब श्री कृष्ण से कहा कि आपके भक्तों में मुझसे बड़ा कोई योद्धा नहीं और भ्राता युधिष्ठिर से बड़ा कोई दानी नहीं। अश्वमेध यज्ञ के उपरांत पांडवों ने दिग्विजयी घोड़ा को छोड़ा, घोड़े की सुरक्षा में विश्व विजेता अर्जुन को भेज दिया गया। जैसे ही घोड़ा अवधपुरी की सीमा में पहुंचा, राजा मोरध्वज के इकलौते पुत्र तामरध्वज ने घोड़े को पकड़कर रोक लिया और प्रतिद्वंदिता में अर्जुन को पराजित कर दिया। अर्जुन लौटकर श्री कृष्ण को सारा हाल बताते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें तुमसे बड़ा योद्धा मिल गया है, चलो उनकी परीक्षा लेते हैं। एक बनावटी शेर लेकर उसी राजकुंवर के महल में पहुंचकर उस भूखे शेर का बहाना बनाकर लेकर उसे उस नादान बालक को उसी के माता पिता के हाथों पैनी धार के आरे से चिरवाएंगे। तो ये एक कहानी है और

0: आज के इस कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये एक बहुत ही भावुक करने वाला क्षण होगा। और इन सब किस्सा को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ऋषिपाल सिंह जी, राजा मोरध्वज की भूमिका में होंगे। विद्याधर रानी का किरदार निभाएंगी पूजा शर्मा, साधु के रूप में अमित खदाना जी, प्रमोद गिरी जी ताम्रध्वज की भूमिका में होंगे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। आज के लोकगीत स्वांग को संगीत से सजाएंगे हारमोनियम पर बब्बर भारती। जी हाँ, ढोलक पर होंगे देवेंद्र जी, नगाड़े पर कुल्लू और ऑक्टोपैड पर सुभाष जी। बहुत ही खूबसूरत, तो आइए सुनते हैं स्वांग किस्सा राजा मोरध्वज।
1: महाराज
2: जी, महारानी,
1: ये बताइए कि आज आप बहुत चिंतित लग रहे हैं, चिंतित का कारण क्या है?
2: महारानी, गजब हो गया।
1: क्या कारण?
2: रात बड़ा अजीब सपना दिखाई दिया है।
1: सपना? कैसा सपना दिखाई दिया महाराज?
2: सुनोगी तो कांप उठोगी महारानी, कांप उठोगी।
1: अपने सपने का हाल बताइए महाराज।

0: मुझे झूठा नहीं लग रहा है महारानी।
1: महाराज घबराने की कोई भी बात नहीं है।
0: वो सपना मेरी आंखों के सामने तस्वीर बनकर आ रहा है महारानी।

0: महारानी,
1: कहिए महाराज,
0: मुझे आभास हो रहा है
2: कुछ ना कुछ अनहोनी होने वाली है महारानी।
1: महाराज मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आपको हो क्या गया है।
0: क्या हो गया है महाराज, क्या बताऊं? साधु महाराज,
3: महाराज प्रणाम।
4: प्रणाम महाराज।
0: आज धनी राजा मोरध्वज के राज दरबार में
2: आपका हृदय से स्वागत है महाराज,
0: और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप मेरे राज दरबार में कुछ मांगने के लिए आए हो।
4: जी हाँ राजन।
0: कहिए।

0: महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैं क्या देख रहा हूँ? कभी मैंने साधु संतों के साथ कोई जंगली जानवर को नहीं देखा, ये पीछे क्या दिखाई दे रहा है?
2: ये 30 रोज का भूखा हमारा शेर है, सभी पता चल जाएगा, अभी सुनिएगा।

0: महाराज।
1: कहिए राजन।
2: मेरा नाम दानी राजा मोरध्वज के नाम से जाना जाता है।
3: मैं उस वंश से पैदा हूँ जिस कुल में
2: सतयुग में दानी राजा हरिश्चंद्र पैदा हुए थे और जिन्हें सतवादी के नाम से ये संसार जानता था।
4: महाराज अब चिंता न करिए।
1: तो राजन हमारे आदेश के अनुसार जाइए किसी बाली के यहाँ से पैनी धार का आरा लेकर के आइए और अपने बेटे को अपने हाथों से चीरने की तैयारी कीजिए।
3: जैसा आदेश महाराज, आपके प्रत्येक आदेश का
4: पालन किया जाएगा।
3: बड़ी
5: अवधपुरी नरेश को मेरा करवद्ध प्रणाम।
2: बड़ी
5: कहिए महाराज।
2: मैं राजा मोरध्वज आज तेरे दरवाजे पर भिखारी बन के आया हूँ।
5: कहिए महाराज, आज मुझे अदना गरीब की टूटी फूटी झोंपड़ी पर आपका कैसे आना हुआ?
2: मुझे एक आरा चाहिए।
5: वो किस लिए
2: पूछोगे
5: जरूर
2: तो बताऊंगा।

0: आरा मुझे दो।
1: ठीक है महाराज,
0: ये आज मेरी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज इस तिरवाचा के संकट में तुझ अदना गरीब का ये आरा बहुत बड़ा काम करेगा।
1: ठीक है राजन,
0: साधुओं को ये आरा पकड़ाऊंगा, बड़े खुश होंगे। मैंने उनके आदेश का पालन कर लिया है।
2: दानी राजा।

0: ध्वज, ऐसा प्रतीत होता है कि आरा लेकर के आ गए हो।
1: जी महाराज, धनी राजा मोरध्वज आपके आदेशों का पालन करता हुआ आपकी सेवा में उपस्थित है। महाराज, कोई आदेश है, आरा लीजिए।

0: अरे महाराज
1: कहिए,
0: ये पैनी धार का आ रहा मेरे बेटे की काया पर चलेगा ये कलेजा।
2: कांप उठेगा लेकिन तुमने
0: एक शर्त और लगा दी।

0: आज मुझे
1: तुमने मेरे पुरखों की याद दिला दी।
0: मेरे वो पुरखे
1: सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे और उन्हें
0: सत्यवादी होने के कारण
1: बड़ा दुख भरना पड़ा।

0: हे साधु महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैंने तीन वचन भरे हैं और मैं त्रिवचन हूं। मैं वचन हार नहीं हो सकता, मैं वचनबद्ध हूं। इसलिए मेरा एक अनुरोध है, मेरी एक प्रार्थना है।
1: कहिए राजन।
0: जो आपका आदेश है, मुझे अपनी पतवर तारिणी विद्याधरणी को बताना चाहिए।
1: बिल्कुल महाराज।
0: और मुझे आदेश दीजिए कि मैं अपनी महारानी से ये सारी बातें बता सकूं।
1: आदेश है महाराज, आप जा सकते हैं।
0: महारानी विद्याधरणी।
2: कहिए महाराज।
0: आज हमारे ऊपर एक संकट का पहाड़ टूट रहा है महाराज।
2: कैसा संकट महाराज?
0: दो साधु महारानी, वो सपना साचा साबित होने जा रहा है।
2: साचा सपना?
0: हाँ, जो मैंने तुझे बताया था, जो मुझे राज दिखाई दिया।
2: लेकिन ऐसा क्या हो गया महाराज?
0: दो साधु एक भूखा शेर लेकर के हमारे राजमहल में बैठे हैं महारानी। उन्होंने दान मांगा है, दान में हमारे इकलौते पुत्र को मांग लिया है महारानी।
2: नहीं नहीं महाराज नहीं, आप ये क्या कह रहे हो महाराज?
0: इतना ही नहीं महारानी, वो तीन रोज का मांसाहारी भूखा शेर हमारे इकलौते पुत्र के मांस का भोजन करे।
2: नहीं महाराज, ये आपने क्या कर दिया महाराज, क्या कर दिया?
0: महारानी मैं त्रिवचन हूँ।
2: लेकिन महाराज हमारा इकलौता,
0: मैं दानी हूँ महारानी।
2: नहीं महाराज,
0: तुम पतवरता स्त्री हो और पतवरता स्त्री का
2: नहीं महाराज
0: धर्म बनता है महारानी, कर्तव्य बनता है कि अपने पति के संकट में जैसा भी दुख हो उसके साथ उसमें साथी हो जाना चाहिए, वो दुख बांट लेना चाहिए महारानी।
2: तो कहिए महाराज, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ
0: महारानी?
2: जी,
0: पैनीधार कारा मंगाया है, यह है मेरे पास महारानी, और मैंने अभी राजकुमार से पूछा नहीं।
2: तो महाराज पहले आप राजकुमार से तो पूछ लीजिए।
0: महारानी विद्याधरणी, हम भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वही हमारे इष्ट देव हैं।
2: वो बात तो ठीक है महाराज, लेकिन हमारा एक लौता पुत्र है, पहले आप मेरे पुत्र से पूछ लीजिए एक बार।
0: धर्म के अखाड़े में ना कोई पुत्र होता है, ना कोई पिता होता है, ना कोई स्त्री होती है, धर्म सबसे बड़ा होता है महारानी। कलेजा थामो और मुझे कहो कि मैं अपने पुत्र से साधुओं के आदेश के बारे में कहूं। ये कहो, थामो कलेजा अपना।
2: थाम लिया कलेजा महाराज, थाम लिया। जैसा आप करना चाहो ऐसे आप कर सकते हो।
0: मैं पुत्र से मिलता हूं महारानी।
2: मिल लीजिए महाराज।
0: राजकुमार तामरध्वज।
3: जी प्राता जी।
0: मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम मेरे पुत्र हो, और आज एक ऐसा आदेश दे रहा हूं कि कोई पुत्र उस आदेश को स्वीकार कर पाएगा। सुनो मेरी बात को, मैंने तुम्हें दान में दे दिया है, और दान में भी

0: भूखे शेर का भोजन तुम्हारा तुम्हारी मां से होगा।
1: कहिए पिताश्री।

0: मरे बचनों का उद्धार।
1: यदि तेने मेरे आदेश का पालन कर लिया तो मैं तिर जाऊंगा राजकुमार।
0: तामा धज, मैं तिर जाऊंगा।
2: कहिए पिताश्री।
3: मेरे कमर तेरे ऊपर होनी है,

0: मैं धन हो गया बेटी, तेरे जैसा पुत्र कुल और वंश की मर्यादा को हमेशा हमेशा रखाए। अब मैं महारानी को ये कहूंगा, बेटे
1: बैठ जाओ, ये आरा तुम्हारे पिता और माता
0: दोनों
1: पत्थर का दिल करके
0: बेटे तेरी काया को छेड़ेंगे। महारानी
2: कहिए महाराज।
0: तुम्हें एक छोर से पकड़ना होगा महारानी।
2: लेकिन महाराज मैं ये कैसे कर सकती हूँ?
0: ये साधुओं का आदेश है महारानी।
2: लेकिन महाराज
0: तुम्हारे पतिव्रता धर्म का।
2: लेकिन महाराज वो मेरा एक लौता पुत्र है, मैं उसकी माता हूँ, मैं ऐसा अन्याय नहीं कर सकती महाराज।
0: विद्याधरणी यदि तुम उस पुत्र की माता हो तो मैं भी उसका एक पिता हूँ, इसलिए पतिव्रता स्त्री का जो फर्ज और कर्तव्य होता है यदि वो तुमने नहीं निभाया तो मैं कुल कलंकित भी हो जाऊंगा।
2: नहीं,
0: और निर्वाचन नहीं रह पाऊंगा, वचनहार भी हो जाऊंगा।
2: नहीं महाराज नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
0: इसलिए भगवान कृष्ण को याद करते हुए आरा तोरणी खींचना ही पड़ेगा।
2: दीजिए महाराज।
0: लेकिन महारानी
2: कहिए महाराज।
0: आरे को थामने से पहले मेरी कुछ बातें हैं।
2: कहिए आप क्या कहना चाहते हैं महाराज।
0: पत्थर का कलेजा करना पड़ेगा महारानी। ये ममता कांचल इसमें बड़ा स्नेह होता है।

0: महारानी।
1: कहिए महाराज।
2: तेरी आँखियाँ में आंसू ना आ जा, मेरी विद

0: महाराज।
1: साधु हमारे दाएं बाएं घूम रहे हैं और वो सुन रहे हैं, रह रह कर सुन रहे हैं।
0: तो मुझे क्या करना होगा?
2: आँखों में आंसू आ गए तो मांस से

0: करने से मैं अपने बेटे को कैसे जीरूंगी महाराज?
1: मेरी लाज रखना महारानी, मैं वचन हार न हो
0: जाऊं। ऐसा मत करिए महाराज, ऐसा मत करिए।
1: दिल बज्जर करके महारानी

0: उठे भभू के भीतर ले मैं माँ की ममता रोई।
1: वो ही जन्मे वो ही मारे

0: चाहिए महाराज।
1: अब आर्य को एक छोर से पकड़िए, जब बेटे पर यारा चले,
2: खींच धर्म के आरे नर, खींच धर्म के आरे नर, मत खींचते बरिया।

0: महारानी।
1: कहिए महाराज।
0: तुमने मेरी उम्मीद और भरोसे को कायम रखा है, इसलिए मैं धन्य हो गया महारानी।
1: ठीक है महाराज।
0: ये हमने अपने इकलौते राजकुमार तामर ध्वज को दो फाड़ों में चीर दिया है, अब मैं साधुओं के पास जाता हूँ।
1: जय
0: साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: मैंने आपके आदेश का पालन कर लिया है, अपने राजकुमार को मैंने और मेरी पतवरता रानी विद्याधरनी ने दो हिस्सों में चीर दिया है। क्या आदेश है महाराज?
2: हे दानी राजा मोरध्वज, अपने बेटे के शरीर के आधे हिस्से को ले जा करके महलों में डाल लीजिए।
0: जो आदेश है महाराज, आता हूं। हे साधु महाराज।
2: कहिए राजन।
0: आपके आदेश का यह भी पालन हो गया, मैंने अपने बेटे के अपने हाथों से चीरा हुआ आधा हिस्सा महलों में डाल दिया है। महाराज, जो यह आधा हिस्सा राजकुमार की काया का तुम्हारे शेर के भूखे के सामने था, अब वो नहीं, लगता है तुम्हारे भूखे शेर का भी भोजन हो गया है। यदि भूखे शेर की भूख की तृप्ति हो गई है तो महाराज आप भी भोजन कर लीजिए।
3: उसे तामर ध्वज।

साधु महाराज, जो पांच तत्वों में काया विलीन हो चुकी हो, तुम्हारी आंखों के सामने जिसे दो हिस्सों में चीर दिया गया हो और दुनिया में अब वो है नहीं, वो वापस कैसे हो सकता है?

0: दशा बदल देगा, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे,
1: पत्थर पानी में तैरने लगेंगे। महाराज, क्या विधि का विधान बदल सकता है?

0: महाराज, हे साधु महाराज।
1: कहिए राजन।
0: मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ
1: महाराज।
0: क्या देश है?
1: हम तो आपके बेटे के साथ ही भोजन करेंगे। आप अपने बेटे को आवाज लगाइए।
0: क्या ये संभव हो सकता है?
1: हाँ राजन, आज हर वो चीज संभव होगी जो आज तक नहीं हुई होगी।
0: परंतु महाराज, आज तक कोई असंभव कार्य मैंने अपने जीवन में संभव होते नहीं देखा है।
1: लेकिन ये होगा महाराज, अवश्य होगा।
0: पुत्र तामरध्वज, राजकुमार, यदि विधि के विधान बदल गए हैं, प्रकृति ने अपना स्वरूप ही बदल दिया है, यदि इन दो साधुओं की भगवान बाने में यदि वाणी सत्य हो रही है, तो अपने अभागी पिताश्री दानी राजा मोरध्वज की आवाज तुम्हारे कानों में जा रही हो, तो पुत्र राज दरबार में उपस्थित हो।
1: देखा राजा मोरध्वज, ये आपका बेटा सकुशल आपके सामने है।
0: महाराज, बड़ा अचंभित, बड़ा भ्रमित हूं। विडंबनाओं ने मेरे मन को घेर रखा है। मैं पहले भी कह रहा था, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? महाराज
1: कहिए।
0: मेरे हृदय के उद्गार कुछ प्रश्न बनकर तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं महाराज।
1: पूछिए महाराज।

0: जी हाँ महाराज।
1: ये महाभारत के विश्व विजेता आचार्य द्रोण के परम शिष्य और कुंती के पुत्र हैं।
0: जी हाँ महाराज।

0: आज कार्यक्रम में आपने सुनी ये सुंदर प्रस्तुति स्वांग किस्सा राजा मोरध्वज। ऋषिपाल सिंह जी ने राजा मोरध्वज का किरदार निभाया। विद्याधरणी रानी की भूमिका में थी पूजा शर्मा। साधु के रूप में अमित खदाना जी। प्रमोद गिरी जी ताम्रध्वज की भूमिका में थे और कुंज बिहारी बाड़ी के रूप में। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे बब्बर भारती। ढोलक पर देवेंद्र। नगाड़ा पर कुल्लू और ऑक्टोपैड पर थे सुभाष जी। प्रस्तुति सहयोग दिया दिनेश कुमार मीना, विशाल कुमार और दिव्या ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिव नंदन लाल।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम स्वांग। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। शाम के 5 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
3: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती हैं। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
3: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम

करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थायी प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गया है। इससे पहले भारत 57 टन अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में बहुत मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, पश्चिम मध्य प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडे जोन साइकिल के 88वें संस्करण में शामिल हुए। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट में आज रात 8 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। वहीं बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब बचाना चाहेगी, वहीं स्पेन अपना पहला खिताब मेजी दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार। तो सुनील भाई कैसे हैं आप?
0: अरुणेश भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए लोकगीत हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए गीत हैं। ये किसी एक इंसान के नहीं बल्कि पूरे समाज की रचना होते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, इन्हें गाने के लिए किसी विशेष शास्त्रीय संगीत की आवश्यकता नहीं हो सकती और ये सीधे दिल से निकलते हैं और सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं।
1: बिल्कुल सुनील भाई, और जैसा कि हमने बोला कि आप भी अच्छे हैं और लोकगीत का आनंद उठा रहे हैं और हमारे श्रोता भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि लोकगीत और संगीत हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति और हमारे देश की मिट्टी की पहचान है और इसी पहचान से जुड़ी हुई परंपराएं हमारे देश को आगे बढ़ा रही हैं। तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन कराते हैं और पहला कौन सा लोकगीत सुनवाते हैं?
0: चलिए आइए सुनते हैं बबीता चौधरी से ये लोकगीत।

0: की बात नहीं, खेतों की बात, शादी ब्याह की बात, या फिर हम देखिए खुशी हो कोई की, कोई भी रीति रिवाज हो, कोई त्यौहार हो, यानी रोजमर्रा की जिंदगी की झलक इनमें मिलती है। और लोकगीत सही मायने में हमारे समाज का दर्पण है।
1: बिल्कुल सही कहा सुनील भाई। और आजकल तो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और त्योहारों, शादियों और बच्चों के जन्म के समय से लेकर या फिर खेतों में काम करते हुए हमारे जो अलग अलग लोकगीत होते हैं वो वास्तव में दिल को बहुत सुकून देते हैं। तो क्यों ना हम भी अभी हम जो सावन का पवित्र महीना चल रहा है और जो बारिश हो रही है इसी को समर्पित रवि और साथियों की आवाज़ में सुन लेते हैं ये लोकगीत।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे श्रोताओं ने सुना पानी की कहानी, और ये जो पानी पर आधारित लोकगीत था, इसके जो गायक थे वो हमारे रवि और उनके साथी थे। तो अब हम अपने श्रोताओं का मनोरंजन एक और कराते हैं, और अब किस कलाकार को सुनवाते हैं?
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंत में सुन लेते हैं रचना शर्मा से ये लोकगीत।

सारी कमाई गवाई रसिया, ये प्यारा सा लोकगीत सुना रचना शर्मा से, और रचना शर्मा के गाइस लोकगीत के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिव नंदन लाल, लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। शाम के 5:30 होने को है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की खबरों का खास कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी।
3: नमस्ते श्रोताओं, मैं हूं अभिषेक कपिल।
2: और अभिषेक, आज हम अपने श्रोताओं के लिए ढेर सारी खेलों की खबरें लाए हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप की। और हॉकी वर्ल्ड कप में भी सबसे पहले बात करेंगे महिला सेगमेंट की, और जिस तरह से शानदार मैच हुआ और उस मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को हराकर जिस तरह से बाजी मारी है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है।
3: हाँ, इसके अलावा एक मुकाबला और काफी रोमांचक रहा है, वो हुआ था कांस्य पदक का, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसने ऑस्ट्रेलिया को बेल्जियम ने 1-0 से हरा दिया। और इस मुकाबले की सबसे खास बात यह है कि बेल्जियम को 48 साल बाद पोडियम पर जगह मिली है।
2: और जिस तरह से इतने बड़े मुकाबले में इतनी बड़ी बड़ी टीमें खेली और भारतीय टीम भी वहां पर खेली थी, 5वें स्थान पर रही, लेकिन एक कहीं ना कहीं हमने अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी है कि हम 5 से 4-3-2-1 कभी भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारा खेल अच्छा था। ठीक है, हम 5वें स्थान पर रहे, लेकिन ये भी एक बड़ी उपलब्धि है।
3: हाँ, क्योंकि अगर हम देखें भारतीय टीम की जो परफॉर्मेंस रही है, उसमें सबसे जो रोमांचक मुकाबला था वो जर्मनी के खिलाफ, भारत ने जर्मनी को हराया है।
2: और हॉकी तो हमेशा से ही भारतीय खेल माना जाता रहा है, और एक समय ये भी था कि जब भारतीय खिलाड़ी दूसरे देशों में जाकर उनको हॉकी सिखाते थे, खास तौर से जो ड्रिबलिंग का आर्ट है। आज भी पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर भारत से अच्छी ड्रिबलिंग करती हो खिलाड़ी। हालांकि एस्ट्रोटर्फ पे अब ड्रिबलिंग थोड़ी कम हो गई है, लोग लंबे पास और एक दूसरे के साथ समन्वय में ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन ड्रिबलिंग का जो आर्ट है वो भारतीय खिलाड़ियों ने उसके ऊपर बहुत काम किया, और दुनिया को सही मायने में ड्रिबलिंग सिखाने वाले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। लेकिन अभिषेक कपिल ने बहुत ही शानदार रिपोर्ट बनाई है इस हॉकी वर्ल्ड कप के महिला सेगमेंट पर, आइए सुनते हैं।
3: हॉकी के मैदान पर 2026 का महिला वर्ल्ड कप कई यादगार कहानियां छोड़ गया है। एक तरफ अर्जेंटीना ने 16 साल बाद महिला हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया, दूसरी तरफ बेल्जियम ने 48 साल के लंबे इंतजार के बाद वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और भारतीय महिला टीम ने भी 52 साल बाद वर्ल्ड कप में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया। महिला हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हुआ, जहां दुनिया की सबसे टॉप महिला टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरी, और फाइनल में आमना सामना था मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना का। एम्स्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेले गए फाइनल में नीदरलैंड्स ने घरेलू दर्शकों के सामने शानदार शुरुआत की। पहले हाफ के खत्म होने से सिर्फ 51 सेकंड पहले स्टार ड्रैग फ्लिकर यिबी यानसेन ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर नीदरलैंड्स को 1-0 की बढ़त दिला दी, लेकिन अर्जेंटीना ने हार नहीं मानी। चौथे क्वार्टर में मैच खत्म होने से करीब 6 मिनट पहले मारिया ग्रानातो ने पेनल्टी कॉर्नर के रिबाउंड पर गोल करके मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद निर्धारित समय में कोई और गोल नहीं हुआ और फैसला हुआ पेनल्टी शूटआउट में। यहां अर्जेंटीना ने बाजी मारते हुए शूटआउट 3-1 से जीत लिया और महिला वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। ये अर्जेंटीना का 3रा वर्ल्ड कप खिताब है। इससे पहले टीम ने 2002 और 2010 में विश्व कप जीता था, यानी 2010 के बाद पहली बार अर्जेंटीना विश्व चैंपियन बना है। वहीं नीदरलैंड्स का लगातार खिताब जीतने का सिलसिला यहीं खत्म हुआ। अर्जेंटीना के मुख्य कोच फर्नांडो फेरारा ने इस जीत को पूरे देश और अर्जेंटीना हॉकी से जुड़े लोगों की मेहनत का परिणाम बताया। उन्होंने कहा,
4: इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल द पीपल, द फेडरेशन इन अर्जेंटीना, द प्लेयर्स एंड आल्सो द टीम, द कंप्लीट टीम, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हॉकी इन अर्जेंटीना। वी हैव सपोर्ट इन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, we play. So we are very happy. We are very grateful for the people. Also the tacticals and technical is important. Physically is important, but the health and to believe that it's possible. This is the first condition. The second is that we have the tools to do it. And the third is that the building of the team and that depend of us.
3: यानी ये सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं बल्कि अर्जेंटीना में हॉकी के लिए काम कर रहे हर व्यक्ति और फेडरेशन की जीत है। अर्जेंटीना की कप्तान मारिया ग्रानातो ने भी ऐतिहासिक जीत से बेहद खुश हुई। उन्होंने कहा,
5: I think it's really important for us. We fight together all the time and I think we are really happy for finally win this final. I think we deserve this because we do a really good World Cup, so I'm really happy for the team. I think that the Argentina people is really passionate and we really feel our colors. So, I love it.
3: ग्रानातो ने कहा कि टीम ने पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें लगता है कि टीम इस खिताब की हकदार थी। दूसरी ओर नीदरलैंड्स के स्टार खिलाड़ी और ड्रैग फ्लिकर यिबी यानसे ने हार के बाद निराशा जताई। उन्होंने कहा,
6: really amazing, they stand behind us and we really felt that, but it was too tough to really create some chances in their circle, so it was not enough. They were really tight, defending very well.
3: यानसेन के लिए व्यक्तिगत तौर पर टूर्नामेंट शानदार रहा। वे 8 गोल के साथ टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर रही। अब बात करते हैं बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक ब्रोंज मेडल मुकाबले की। फाइनल से पहले ब्रोंज मेडल के लिए मुकाबला हुआ बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की हॉकी रूस टीम थी तो दूसरी तरफ

0: मेजबान बेल्जियम की रेड पैंथर्स। मुकाबला बेहद कड़ा रहा और पहले क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, लेकिन दूसरे क्वार्टर में बेल्जियम को पेनल्टी कॉर्नर मिला और शार्लोट एंगलबर्ट ने शानदार ड्रैक फ्लिक के जरिए गोल कर बेल्जियम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने बराबरी की पूरी कोशिश की। आखिरी क्वार्टर में हुकीरूज ने लगातार दबाव बनाया और मैच खत्म होने से करीब 4 मिनट पहले अपने गोलकीपर को भी बाहर कर अतिरिक्त आउटफील्ड खिलाड़ी उतारा, लेकिन बेल्जियम के डिफेंस ने शानदार संयम दिखाया। अंतिम सीटी बजते ही स्कोर रहा बेल्जियम 1-0। इस जीत के साथ बेल्जियम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और बेल्जियम के लिए बेहद खास उपलब्धि थी। टीम ने 1978 के बाद पहली बार महिला हॉकी वर्ल्ड कप में पदक जीता, यानी करीब 48 साल बाद बेल्जियम वर्ल्ड कप पोडियम पर लौटा। इस मैच की प्लेयर ऑफ द मैच शार्लोट एंगलबर्ट रही, वहीं उन्हें पूरे टूर्नामेंट की बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार भी मिला। अब बात भारतीय महिला टीम की। भारत ने इस वर्ल्ड कप में शानदार जुझारूपन दिखाया। पूल स्टेज में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 6-1 की शानदार जीत और इंग्लैंड के खिलाफ 0-0 का ड्रॉ खेला। इसके बाद भारत को मौजूदा चैंपियन नीदरलैंड्स के खिलाफ 0-2 से हार मिली। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत जरूरी थी, लेकिन ये मुकाबला भी 0-0 से ड्रॉ रहा। बेहतर गोल अंतर के आधार पर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गया, लेकिन भारतीय टीम ने अपना अभियान निराशा के साथ खत्म नहीं किया। 5वें स्थान के मुकाबले में भारत का सामना मजबूत जर्मनी से हुआ और यहां भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। भारत के लिए इशिका ने गोल किया, जबकि नवनीत कौर ने 2 गोल दागे। जर्मनी की ओर से 1 गोल आया, लेकिन भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने 5वां स्थान हासिल किया। ये महिला हॉकी वर्ल्ड कप में 1974 के बाद भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन है, यानी 52 साल बाद भारतीय महिला टीम ने वर्ल्ड कप में नया बेंचमार्क बनाया है। तो 2026 महिला हॉकी वर्ल्ड कप की तस्वीर बिल्कुल साफ है। अर्जेंटीना चैंपियन, नीदरलैंड सिल्वर मेडल, बेल्जियम ब्रॉन्ज मेडल और भारत 5वें स्थान पर। अर्जेंटीना के लिए ये 16 साल के इंतजार का अंत था, बेल्जियम के लिए 48 साल बाद पोडियम पर वापसी और भारत के लिए एक ऐसी उपलब्धि जो आने वाले वर्षों में भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए नई उम्मीद पैदा करती है।
1: और इस पूरे वर्ल्ड कप में एक बात बहुत अच्छी ये थी कि 177 गोल हुए महिलाओं के सेगमेंट में, 80 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, 97 ग्रीन कार्ड और 10 येलो कार्ड, लेकिन रेड कार्ड किसी भी खिलाड़ी को नहीं दिया गया, यानी कि खेल का स्तर और खेल अनुशासन से खेला गया, ये इस बात को दर्शाता है। और वहीं ये भी यानसेन ने 8 गोल किए, नीदरलैंड्स की खिलाड़ी हैं, सबसे अधिक गोल करने में वो सफल रहीं। और वहीं दूसरी तरफ नीदरलैंड की टीम भी सर्वाधिक गोल करने की अगर हम बात करें तो उन्होंने 23 गोल किए। तो महिला विश्व कप हॉकी में बहुत ही बेहतरीन मुकाबले खेले गए। और एक और इस समय मुकाबला चल रहा है, वो भी मुकाबला चल रहा है अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच में, लेकिन ये पुरुषों का मुकाबला है, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का ये ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला है जो इस समय चल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोबारा से दोनों टीमें आमने सामने हैं। एक बार महिला सेगमेंट में तो अर्जेंटीना ने बाजी मार ली है, तो अभिषेक क्या लगता है पुरुषों में क्या होगा?
0: पुरुषों में भी ये भी मतलब एक कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि वो फाइनल मुकाबला अर्जेंटीना वर्सेस नीदरलैंड था, और मेन सेक्शन की बात करें तो ये ब्रॉन्ज मुकाबले के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना आमने सामने है। लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए मुकाबला हो रहा है। सेमीफाइनल में नीदरलैंड्स को स्पेन के हाथों 4-3 की करीबी हार मिली थी, जबकि अर्जेंटीना को जर्मनी ने 2-1 से हराया था। दोनों टीमों की नज़र अब कांस्य पदक पर है। नीदरलैंड्स अपने घरेलू दर्शकों के सामने टूर्नामेंट का अंत जीत के साथ करना चाहेगी, वहीं अर्जेंटीना सेमीफाइनल की निराशा को पीछे छोड़कर पोडियम पर जगह बनाने के इरादे से मैदान में उतरेगा, क्योंकि अर्जेंटीना का एक लक्ष्य यह होगा कि उनकी वुमेन्स टीम तो जीत के साथ चल देश की ओर रवाना हो गई है, तो वो चाहते हैं कि पीछे से हम भी पोडियम पर चढ़कर आएं।
1: जी हाँ बिल्कुल, और पोडियम पर चढ़ने का मतलब है कि पदक लेकर आप घर वापसी करें। और स्पेन और जर्मनी के बीच होगा फाइनल मुकाबला, और जिस तरह से दोनों ही टीमें खेली हैं तो बहुत ही शानदार यह मुकाबला हो सकता है। और इस पूरे वर्ल्ड कप में 244 गोल हुए मैन सेक्शन में, 244 गोल हुए, 96 पेनल्टी कॉर्नर्स, 100 ग्रीन कार्ड, 28 येलो कार्ड, लेकिन अभिषेक अच्छी बात यह है कि रेड कार्ड यहां पर भी किसी को नहीं दिया गया। और

0: अर्जेंटीना के जो खिलाड़ी हैं थॉमस डोमिने, उन्होंने 9 गोल किए, सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं अभी तक के। और न्यूजीलैंड ने सर्वाधिक 21 गोल किए पुरुषों के वर्ग में इस वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं अभिषेक, एक बात तो साफ है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में हॉकी का स्तर बहुत अच्छा था और अनुशासित हॉकी खेली गई।
1: बिल्कुल, जैसा कहते हैं ना कि जो मुकाबले मुकाबलों की तरह होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं था कि किसी ने अनावश्यक रूप से प्लान किया हो कि हम ऐसे नहीं वैसे करेंगे। सबकी स्ट्रेटेजी थी, सब अपनी स्ट्रेटेजी पे चले, वो ही चले। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें तो जर्मनी ने सेमीफाइनल में अर्जेंटीना को 2-1 हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप में जगह बनाई है। उनके सामने स्पेन है जिसने बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में मेजबान नीदरलैंड्स को 4-3 शिकस्त दी थी, ठीक है। और स्पेन की जीत में जोसे बास्तेरा की हैट्रिक ने अहम भूमिका निभाई। अब जर्मनी के पास अपने खिताब का बचाव करने का मौका है, जबकि स्पेन पहली बार पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने की कोशिश करेगा। दोनों टीमों के हालिया मुकाबले भी स्पेन के पक्ष में रहे हैं, इसलिए फाइनल में मुकाबला बेहद कड़ा होने की उम्मीद है, जो आज रात 8 से शुरू होगा।
0: और जिस तरह से स्पेन कोशिश करेगा मुकाबले को जीतने की, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी मुकाबला जीतने की कोशिश करेगा। हालांकि अपेक्षाकृत थाईलैंड की जो महिला क्रिकेट टीम है वो भारतीय टीम के सामने है, हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर टीम मानी जा सकती है, कमज़ोर या ये कह सकते हैं कि थोड़ा नई टीम है, लेकिन भारतीय टीम पूरी तरह से सुसज्जित है। हरमनप्रीत कौर कप्तान है, ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, अनुरति रेड्डी, क्रांति गौड़, श्री चढ़नी, नंदिनी शर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, प्रतिका रावल, राधा यादव, गुणालन कामिलिनी और प्रेमा रावत। तो कुल मिलाकर सुसज्जित टीम है भारतीय महिला क्रिकेट टीम, और आज अपना अभियान एशिया कप में शुरू होने वाला है भारतीय टीम का, और ये मुकाबला आप आकाशवाणी पर भी सुन सकते हैं। और जिस तरह से ये पूरा मुकाबला होने की उम्मीद है, तो जब पूछा गया हरमन से कि आपको क्या लगता है कि किस तरह से भारतीय टीम की तैयारी है और क्या हो सकता है इस वर्ल्ड कप में, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, या ये कहें कि आप क्या मानते हैं कि आपकी टीम की क्या स्ट्रेंथ है, तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं।
2: I think it's a great opportunity for us to lift our standards and work. We have been working really hard last couple of months, been really great. We played some really good cricket, and before coming here we had a very good camps where we worked really hard. Now it's the time to execute ourselves and give our best on the field, and I think that's what we always love to do. Wherever we are going, we want to play good brand of cricket, and hopefully we'll play to our potential.
3: I think Asia Cup is a platform where you can really test yourself and put yourself under a lot of pressure to perform at a level which you expect a lot from your team, and I think this tournament will definitely give us a lot of experience and the things where we want to express on the field. And I think this tournament, it's very important for us as a team to do well, and especially all the teams, they are the one, the last 2-3 we have seen massive improvement, and whenever we are playing against them, they are not giving anything easy to us. So I think this is going to be very challenging, but at the same time I think all the experience which we have got from the past matches, which is going to help us, and hopefully we'll play our best cricket and enjoy cricket here, because I believe whenever we play as a team and enjoy ourselves on the field, we always do well. And I think this is the time to be there for the team and do well for the team.
1: अगर बात करें इस टूर्नामेंट की, तो पिछले एक दशक में महिला T20 एशिया कप में भारत सबसे ज़्यादा दबदबा बनाने वाली टीम रही है। उसने 2016-17 में इस टूर्नामेंट के T20 प्रारूप के 5 संस्करणों में से 3 बार खिताब जीता है, लेकिन हाल में उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। भारत ने इस साल खेले गए 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से 9 मैच हारे हैं। उसको आखिरी हार हाल में महिला T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट के ग्रुप चरण से बाहर हो गई थी। एशिया कप के तुरंत बाद जापान में एशियाई खेल होंगे, तो अगर भारतीय टीम का देखा जाए तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, लेकिन अगर थाईलैंड से मुकाबला वो करते हैं तो शायद अगर भारत जीतता है तो एक आत्मविश्वास टीम में बढ़ेगा।
0: और एक अच्छी बात यह भी है कि जो भारतीय टीम ने मुकाबले हारे हैं वो टीमें इस एशिया कप में नहीं है, क्योंकि जो भारतीय टीम

0: मुकाबले हारे हैं वो दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन टीमों के साथ हारे हैं। तो जो एशिया कप में टीमें खेल रही हैं उनमें भारतीय टीम बहुत मजबूत है। और वहीं पहले मुकाबले में थाईलैंड की टीम अपना मुकाबला जो उन्होंने हांगकांग के साथ खेला था वो उस मुकाबले को जीत कर अब दूसरे मुकाबले की तरफ आ रही है। और वहीं श्रीलंका ने अपने पहले मुकाबले में यूएई की टीम को बहुत ही आसानी से हरा दिया। यूएई की टीम यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की टीम केवल 79 रन ही बना सकी और निर्धारित 19-20 ओवर्स के खेल में और 19.5 गे की गेंदबाजी के बाद पूरी टीम ऑल आउट हो गई। और वहीं श्रीलंका की ओर से ये लक्ष्य है, 80 रन का लक्ष्य है, केवल 1 विकेट के नुकसान पर 7.5 ओवर में पा लिया गया। तो आज का मुकाबला हालांकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन फिर भी थाईलैंड के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम का आज मुकाबला है। 8 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। और अभिषेक, अच्छी बात यह है कि एक बहुत अच्छा मौका है हमारे खिलाड़ियों के पास अपनी लय में वापस आने का। जैसे आपने बताया कि हम T20 में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ये आत्मविश्वास को ही बढ़ाएगा और खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स भी अच्छे इससे हो सकते हैं। और वुमेन क्रिकेट में जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं वो तो अपने आप में अच्छी बात है ही, लेकिन अच्छी बात अपने आप में है संडे ऑन साइकिल। ये एक ऐसी मुहिम है जो प्रेरित करती है सभी लोगों को कि वो साइकिल चलाएं, और साइकिल चलाने के ढेर सारे बेनिफिट्स हैं और उन सभी को कहीं ना कहीं इस संडे ऑन साइकिल एक जन जागृति मुहिम है। हमारी सहयोगी दीपिका ने जिस तरह से संडे ऑन साइकिल को आज पूरा कवर किया और उन्होंने उसके लिए एक खास रिपोर्ट बनाई है हमारे श्रोताओं के लिए, तो कपिल सुनवा देते हैं हमारे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल
2: फिटनेस का जुनून, साइकिलिंग का उत्साह और राष्ट्रीय खेल दिवस का जोश। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आज कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के विशेष संस्करण के जरिए लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के इस विशेष संस्करण में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वहीं पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम में खेल सचिव, युवा कार्यक्रम सचिव और विदेश मंत्रालय में ईआर सचिव के साथ साथ ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों और गणमान्य अतिथियों ने भी भाग लिया, क्योंकि इस बार का संडेज ऑन साइकिल का 88वां संस्करण ब्रिक्स के सहयोग से आयोजित किया गया। सुबह सुबह बड़ी संख्या में फिटनेस और खेल प्रेमी जुटे, तो आइए सुनते हैं उन सभी को क्या संदेश देते हैं हमारे माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी।
3: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88th संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है। तो चलो हम सब युवा साथियों दिन में 1 घंटे मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन से हटके खेल के मैदान में जाए, साइकिलिंग करें, खेले और अपने स्वयं को फिट रखें।
2: खेल और मनोरंजन जगत की हस्तियों ने भी कार्यक्रम में अपनी भागीदारी से लोगों का उत्साह बढ़ाया। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर वहां उपस्थित थे साइकिल रैली को फ्लैग ऑफ करने के लिए, और साथ ही साथ एमएमए एथलीट और पहलवान संग्राम सिंह और अभिनेत्री मधुरिमा तुल्ली ने साइकिल रैली में भाग लेकर सभी का उत्साह बढ़ाया और फिटनेस अभियान का हिस्सा बने। क्या कहते हैं पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर संडे ऑन साइकिल के इस 88वें संस्करण के लिए, आइए सुनते हैं।
4: ये जो सरकार के द्वारा फिट इंडिया का जो इवेंट है ये एक इतना बेहतरीन इनिशिएटिव है, क्योंकि मेरा मानना है जितना फिट इंडिया रहेगी उतना ही स्ट्रॉन्गर इंडिया रहेगा और उतना ही सेल्फ रिलायंट इंडिया रहेगा। तो मेरा मानना है इसको सिर्फ एक इवेंट के नजरिए से नहीं, एक मूवमेंट के नजरिए से हमें देखना चाहिए। और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है यूथ की, जितने लोग इस इवेंट से या फिर इस इनिशिएटिव से जुड़े हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको एक मूवमेंट बनाए जिससे कि हमारा यूथ और जितने लोग हैं कि वो फिट रह सके, अ फिटर नेशन, अ स्ट्रॉन्गर नेशन।

0: राष्ट्रीय खेल दिवस हमें भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की खेल विरासत और उनके अनुशासन की याद दिलाता है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इसी सोच को आगे बढ़ाता है, जहां साइकिलिंग को फिटनेस, पर्यावरण और सक्रिय जीवन शैली से जोड़ा जा रहा है। एमएमए एथलीट और पहलवान संग्राम सिंह जी का क्या संदेश है, आइए सुनते हैं।
1: बहुत कमाल है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टार्ट किया है, वो इनिशिएटिव मैं कह रहा हूँ कि वो हर इंसान फिट इंडिया एम्बेसडर है, हर इंसान फिट इंडिया आइकन है। तो ये मुहिम को पहले जब मुझे याद है कि कुछ लाखों में थी, आज ये मोर देन 30 करोड़। अच्छा शरीर है तो जिंदगी भी अच्छी है।
0: राष्ट्रीय खेल दिवस भी है, उसको क्या कहना चाहेंगे?
1: सरकार की बहुत कमाल की पहले के ध्यानचंद साहब के, उसके राष्ट्रीय खेल दिवस है हमारा। हर इंसान को खेल खेलना चाहिए, खेल से जुड़े रहोगे, नशे से दूर रहोगे, बाकी चीज से दूर रहोगे, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से दूर रहोगे, तो खेलेगा भारत, तो खेलेगा भारत, फिट इंडिया तो फिट इंडिया।
0: और जब देश के खिलाड़ी, युवा अधिकारी और आम लोग एक साथ साइकिल चलाते हैं तो यह केवल एक कार्यक्रम नहीं रहता, बल्कि स्वस्थ भारत की दिशा में बढ़ता एक सामूहिक कदम बन जाता है। इस अवसर पर अभिनेत्री मधुरिमा टुल्ली कहती हैं,
2: अभी हमने 5 किलोमीटर साइकिलिंग की, बहुत ही मजा आया। साइकिलिंग मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं करती रहूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक एथलीट रह चुकी हूँ। महाराष्ट्र में मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे इंटीरियर में जब गई तो लड़कियाँ तो खैर चलाती हैं, पर मिड 40s की लेडीज भी चला रही हैं अब साइकिल, वो देख के मैं मुझे खुशी। आई थिंक फिट अगर नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं है। काम करें, डेफिनेटली काम तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ 1 घंटा कम से कम अपने अपनी सेहत के लिए निकालें।
0: कार्यक्रम स्थल पर साइकिलों की आवाज, प्रतिभागियों का उत्साह और फिटनेस के संदेश, इन सभी ने माहौल को ऊर्जा से भर दिया। और क्या कहती हैं फिट इंडिया एम्बेसडर दिव्या आहूजा, आइए सुनते हैं।
3: साइकिल में डे 1 से आ रही हूँ, जब से ट्रेसानियन साइकिल स्टार्ट हुई है, और आप सबने देखा इसकी रीच, मतलब कहाँ, ये दिल्ली से स्टार्ट हुआ था, आज पूरे इंडिया में होता है साइकिलिंग। और फिटनेस की रोज आधा घंटा रोज, ठीक है, फिट इंडिया एक मूवमेंट है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्ट करी है एक, और ये जो अमेजिंग इनिशिएटिव है जो मनसुख सर ने लिया है संडे ऑन साइकिल, इससे ज्यादा फन भी क्या हो सकता है अपने आप को फिट रखने का।
0: फर्स्ट फिट इंडिया मूवमेंट संडे ऑन साइकिल से लेके 88
3: हमने ना इसको ग्रो करते हुए देखा है, क्योंकि मुझे आज भी याद है स्टार्ट होने से पहले हमारी ना एक मीटिंग थी ऑनलाइन, जहाँ सर ने हमसे पूछा था कि सब अपने अपने आइडिया दो क्या करना चाहिए। फिर जब ये संडे ऑन साइकिल पे आया, तो आज हमारे साथ सेलिब्रिटीज, सारे के सारे स्पेशल गेस्ट, तो दिस इज रियली अमेजिंग एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस।
0: कम उम्र में सपने देखना, अनुशासन में रहना और फिटनेस को अपनाना, और साथ ही साथ असाधारण प्रतिभा के दम पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, जी हाँ, ये इंट्रोडक्शन है सिनाया बेयानी का, जिनको आज फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं।
4: बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: कितनी मेहनत लगी उसके पीछे?
4: बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है।
0: आपको मोटिवेट किसने किया?
4: मेरे को मोटिवेट मेरे सर ने किया है। मैं जहाँ ब्लॉग सीखने जाती हूँ, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, वो मुझे बहुत सारी ट्रिक सिखाते हैं, और मैं ऐसे ही मोटिवेट होती हूँ। मैं एक कार्निवल में गई थी और मैंने वहाँ से देख के ये शुरू किया।
0: आज आप गौतम गंभीर सर से भी मिली, मंत्री जी से भी मिली, उन्होंने आपको बहुत अप्रिशिएट किया, संग्राम सिंह जी से भी मिली, कैसा लगा आपको?
4: मुझे बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल लगा।
0: इसके आगे आप क्या करना चाहेंगे?
4: इसके आगे मैं हुला हूप कल्चर को स्प्रेड करना चाहूंगी।
0: कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए साइकिलिस्ट से हमने बात करी, आइए जानते हैं वो क्या कहते हैं।
5: काफी चीजें नई एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इंगेजमेंट हो जाते, कम्युनिटी इंगेजमेंट हो जाते, तो इस हिसाब से काफी मजा आया, अच्छा है।
6: इट्स वॉट गुड, साइकिलिंग जो कंडक्ट हुई है वो काफी अच्छा, बाकी तो फिट इंडिया का हमेशा बहुत अच्छा ही रहता है, और ब्रिक्स के साथ ये इन्होंने करा है कोलैब्स, तो बहुत मजा आ गया, इवेंट बहुत अच्छा था। सो इट वॉज रिफ्रेशमेंट भी है बच्चों के लिए काफी ज्यादा, टी शर्ट्स वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड करी है, तो अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा है। और जी, फ्लैग ऑफ के लिए गौतम गंभीर आए, तो फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा है, मतलब किसी इवेंट में इस तरह आते हुए।
0: तो चलते रहिए, खेलते रहिए, फिट रहिए, क्योंकि स्वस्थ भारत ही मजबूत भारत है। कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं दीपिका जसवाल, आकाशवाणी से।
7: हमारे वरिष्ठ सहयोगी दीपिका जसवाल की इस खूबसूरत रिपोर्ट के बाद अब बात कर लेते हैं साल के चौथे ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन की। और यूएस ओपन में आज से मुकाबले शुरू होंगे मेन ड्रॉ के। इससे पहले जो मुकाबले खेले जा रहे थे वो सारे मुकाबले थे जिसमें क्वालिफायर्स खेले जा रहे थे, कि जो खिलाड़ी, जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो एंट्री के लिए आए हुए हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री से आए हैं या अन्य किसी और तरीके से आए हैं, वो क्वालिफाई

0: मुकाबले खेलते हैं और उसको जीतने के बाद वो फिर मेन ड्रॉ का हिस्सा बनते हैं। और आज से अभिषेक मेन ड्रॉ के मुकाबले शुरू होने हैं। और भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करें तो रात 8:30 से ये मुकाबले शुरू होंगे और यूएस ओपन साल का चौथा और अंतिम ग्रैंड स्लैम होता
1: स्लैम
0: है। और ये अपनी रैंकिंग के लिए जिस तरह से खिलाड़ी

0: उसका, तो सभी की यही इच्छा होती है कि वो यूएस ओपन को जीते हैं।
1: वही जैसे हम बात करते हैं जोकोविक की नजर रहेगी उनके 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब पर, और वहीं जेवरेव सबसे बड़ी चुनौती लेकर आएंगे सबके लिए, वहीं अल्कराज वापसी कर रहे हैं इस ग्रैंड स्लैम में। और अगर हम बात करें कुछ प्रमुख खिलाड़ियों की जिन पे विशेषकर नज़र रहेगी, तो जेवरेव हो गए, कार्लोस अल्कराज, फेलिक्स आगर, अलिया मानसे, जोकोविक, लियोविक कोबोली। और अगर महिला वर्ग की बात करें कि वहाँ पे मेन खिलाड़ियों कौन होंगी, एरिना सबालेंका, एलिना रिबाकिना, जेसिका पेगुला, कोको गफ, मीरा आंद्रिया। और अगर हम 2025 या पिछले साल के यूएस ओपन की बात करें, तो पुरुष सिंगल्स खिताब पर कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज ने जानिक सिनर को रोमांचक मुकाबले में हराकर कब्जा जमाया था अपना। वहीं 2025 में ही यूएस ओपन के महिला सिंगल्स के फाइनल में एरिना सबालेंका ने अमांडा अनिमासोमावा को सीधे सेटों में शिकस्त दी थी।
0: और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तो हमने बहुत सारी बातचीत कर ली है, लेकिन अब कुछ बात करते हैं स्थानीय खेलों की। और स्थानीय खेलों में दिल्ली में बहुत ही शानदार क्रिकेट लीग का आयोजन किया जा रहा है, और ये लीग है DPL यानी दिल्ली प्रीमियर लीग। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में ये खेली जाती है, और आज उसका फाइनल मुकाबला है। और फाइनल मुकाबले में जो टीमें पहुंची हैं वो साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स। हालांकि सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्मेंस दी है, और जिस तरह से उनके खिलाड़ियों ने अच्छे स्कोर बनाए हैं, चाहे हम बात कर लें जोंडे सिद्धू की, या बात कर लें आयुष बदोने की, या बात कर लें तेजस बरोका की, सभी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। और उनके सामने होंगे सुपर साउथ दिल्ली सुपर स्टार्स की टीम, जो बीच में अपनी लैक हो गए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर लै पाई। और वहीं दूसरी ओर महिलाओं में प्रिया पुनिया ने कल शानदार शतक बनाया है, साउथ दिल्ली की ही वो खिलाड़ी हैं, और उन्होंने 117 रन की शानदार पारी खेली केवल 66 गेंदों में। लेकिन अब स्टूडियो घड़ियों में बता रही है कि हमें आपसे विदा लेनी होगी। मैं अजय तोमर, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और मेरे युवा साथी अभिषेक कपिल के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने आपसी संबंधों के समूचे आयाम की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
4: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
4: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे। इसके लिए स्कॉलरशिप की भी घोषणा की गई है। इसके बाद श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद ताशकंद से किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे

0: रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 108 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता है। वहीं 28 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेइचिंग में भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंच गई है। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। जर्मनी की टीम चौथा खिताब अपने नाम करना चाहेगी, वहीं स्पेन पहला खिताब जीतने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership, marking a significant step towards in ties between the two countries. Both sides also signed several memoranda of understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors. These include mining, Ayurveda, tourism, economic and financial dialogue, higher education and environment. India and Uzbekistan also agreed to set an ambitious target of $5 billion in bilateral trade by 2030. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his opening remarks, Prime Minister Modi said the elevation of ties is expected to provide a renewed framework for expanding cooperation between New Delhi and Tashkent across various sectors.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Prime Minister Modi said the two countries are also working on a framework for the long-term supply of uranium. Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan following the talks, Prime Minister Modi said both countries have zero tolerance for terrorism, extremism and separatism.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Prime Minister Modi said the two countries will also step up cooperation in the field of sports and work towards the promotion of Hindi in Uzbekistan. As part of the initiative to promote Hindi, a scholarship has also been announced. On the occasion, Prime Minister Modi was also conferred with Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oley Darajali Dostlik, by President Mirziyoyev. Prime Minister Modi dedicated the award to the enduring bond between India and Uzbekistan. Mr. Modi reached Tashkent yesterday on a two-day state visit to Uzbekistan at the invitation of Mr. Mirziyoyev. From Uzbekistan, the Prime Minister will reach Kyrgyzstan this evening to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit at Bishkek tomorrow. Several union ministers, including Defence Minister Rajnath Singh, Home Minister Amit Shah, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and Finance Minister Nirmala Sitharaman, have congratulated Prime Minister Modi on being honoured with Uzbekistan's Supreme State Award. Prime Minister Narendra Modi today shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashwani. In his address, Prime Minister Modi strongly warned against the social perils of drug abuse and highlighted Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign. He also championed women-led economic empowerment through the PM Swanidhi scheme and celebrated growing avenues for women in advanced fields like the space industry. He also praised groundbreaking grassroots innovation in agriculture and digital technology. The death toll from flash floods in Nepal has risen to 768 today, with more bodies being recovered. Over 2,500 people are still missing following the disaster. The Nepal government has issued fresh alert for flood in Bhote Koshi River and urged residents living along the river in Rasuwa, Nuwakot and Dharding districts to remain cautious. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said 108 Indian nationals have been rescued so far in the Himalayan region. The World Health Organization has released $150,000 for Nepal to support urgent health and other needs of communities impacted by the devastating flash floods. In women's cricket, India will take on Thailand in a group stage match of 2020 Asia Cup at Dubai today. The match will begin at 8:30 p.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य नाटिका कृष्णा का मंचन और कला प्रदर्शनी। 29 अगस्त से 4 सितंबर तक मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में श्री राम भारतीय कला केंद्र द्वारा कृष्णा एक नृत्य नाटिका का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में श्री राम भारतीय कला केंद्र की चेयरपर्सन शोभा दीपक सिंह ने बताया,
2: हमने शुरू किया था कृष्ण जन्म से हर साल, और जिससे कि स्टेज के जो दोनों तरफ दो पैनल लगाए और स्टेज में जितना भी डायलॉग गीत हिंदी में है दोनों साइड में पैनल है, जिसमें उसी का अनुवाद अंग्रेजी में भी है। आगे देखें और अपने आप डिसाइड करें, पर एक बार देख लेती है तो सोचते हैं कि हर बार देखें। और अपने बच्चों के साथ
1: प्रस्तुत है कृष्णा नृत्य नाटिका मंचन।

अगस्त से 29 अगस्त तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी परिसर कला दीर्घा में अनकन्फाइंड शीर्षक से कलाकार रवि शैल

0: की पेंटिंग और फोटोग्राफ्स की चुनी हुई कलाकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में कलाकार रविशैल ने बताया,
1: ये जो एग्जीबिशन अनकन्फाइंड जिसका मैंने नाम दिया है, ये मेरा फर्स्ट सोलो शो है इंडिया में। उससे पहले ज्यादातर शोज मेरे सिंगापुर और मलेशिया में हुए हैं। इस पर्टिकुलर शो में जो मेरा थॉट प्रोसेस है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं ब्यूटी रोजमर्रा की लाइफ में जो बहुत सारी चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, हम अगर उनको देखो तो उनमें भी बहुत खूबसूरती होती है। सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है कि हम उसको कैसे देखें। अगर हम चाहें तो उस खूबसूरती को ढूंढ के हम पब्लिक के सामने उसको रख सकते हैं। और दूसरा, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो सब प्रोसेस है, क्योंकि मेरा सारा काम जो है वो अनइंटेंशनली है, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम मैंने स्टेज करके किया हो या उसको कंपोज करके उसको आगे प्रोसेस किया। देर आर सम कॉम्पोजिशंस, बट बेसिकली ऑल माई वर्क इज बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन विच इज ऑलरेडी हैपेंड इज देयर। जिस थॉट की मैं बात कर रहा था कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई इनविजिबल आर्टिस्ट इन सब कॉम्पोजिशंस को बना रहा है, यू नो, वेदर इज टाइम और यू नो समय। उसको जैसे मैंने कहा, बारिश के बाद, जैसे होने के बाद, जब ये धूल मिट्टी जब रिस्क के नीचे आती है तो बहुत सी लाइनें वो क्रिएट कर देती हैं, जो ये प्रोसेस है। और फिर धूप के बाद फिर वही पेंट जो है एक पपड़ी की तरह बन के उतरने लगता है वॉलों से। मैं जो इस प्रोसेस को बड़े गौर से देखता हूँ, उसको ऑब्जर्व करता हूँ और उसको ये समझता हूँ कि ये सब जो हो रहा है, ये एक तरीके से नेचर की डेमोंस्ट्रेशन है।
2: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
3: और अब प्रस्तुत होंगे कुछ ही देर में संस्कृत समाचार, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
4: यम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत उज्बेकिस्तानयोः मध्ये खनन आयुर्वेद पर्यटन रणनीतिक सहभागितां समेत्य बहुषु क्षेत्रेषु सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरं गतानि। मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना पीएम स्वनिधि योजनया महिला सशक्तिकरणं प्रतिपादितं, उक्तञ्च 35 लक्षाधिकाः महिलाः अनया लाभान्विताः। प्रधानमन्त्रिणा मिशन शक्ति सेट इत्याख्यः उपक्रमः प्रतिपादितः, 18 शतदेशानां 12,000 छात्राः उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञास्यन्ति, नूतनोन्मेषं च साधयिष्यन्ति। मादकमुक्त भारताभियानाय घोषवाक्यानि विषय सामग्रीं च निर्मातुं प्रधानमन्त्रिणा मोदिना युवानः अभ्यर्थिताः, अभियानं देशे द्रुतगत्या प्रवर्धते इत्यपि अमुना प्रोदीरितम्। नेपालदेशे भीष्मजलाप्लावेन मृतानां संख्या 68,700 सम्प्राप्ता, प्रायः 25,000 जनाः अद्यापि विलुप्ताः। भारतेन 11 टन्मितां मानवीय सहायता सामग्रीमादाय 4th विमानं नेपालाय प्रेषितम्। अपि च यूएई देशस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे 20-20 एशिया चषक स्पर्धायाम् अद्य सायं भारत थाईलैंड दले परस्परं सम्मुखी भविष्यतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत उज्बेकिस्तान देशाभ्याम् अद्य खनन आयुर्वेद पर्यटनार्थिक सहयोग पर्यावरण उच्चशिक्षादि क्षेत्रेषु परस्पर सहयोग संवर्धनाय सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि। देशद्वयेन 30-2000 यावत् 5 अर्बुद डॉलर मितं व्यापार लक्ष्यं निर्धारितम्, यथि साम्प्रतिक व्यापारस्य 5 गुणितं वर्तते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य सर्वोच्च सम्मानमपि अलभत। इदं सम्मानं देशद्वयस्य मध्ये सहयोग संवर्धने तदीय योगदानाय उपायनीकृतम्। ताशकंद नगरे उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिः शावकत मिर्जियोयेवः प्रधानमन्त्रिणे नरेंद्र मोदिने सर्वोच्च राजकीय सम्मानेन ऑर्डर ऑफ ओलिया दर्जाली दोस्तलिक इत्यनेन सम्मानितवान्।

0: प्रधानमन्त्रिणा सम्मानः भारत उज्बेकिस्तानयोः दृढ़ संबंधेभ्यः समर्पितः। श्री मोदी अवोचत् यत् सम्मानं प्राप्य असौ गौरवम् अनुभवति, अपि च देशद्वयं व्यापक रणनीतिक संरचनायाः अन्तर्गतं निर्णायक लक्ष्य निर्धारणार्थम् अग्रे समेधयिष्यन्ते। राष्ट्रपतिना शावकत मिर्जियोयेफ इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डल स्तर वार्तायां श्री मोदी अवोचत् यत् देशद्वयं निज संबंधान् व्यापक रणनीतिक सहभागिता स्तरं यावत् नयतः। अनन्तरं सहयोगस्य समस्त स्तराणां समीक्षायै विदेशमन्त्रिणा समन्वय समितेः घटना विधास्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रावोचत् यत् विकसित भारताय मादक मुक्त युवाभियानं कृत्स्नेहि देशे द्रुतगत्या संवर्धते। अद्य प्रातः आकाशवाणीतः प्रसारिते मन की बात इत्याख्ये कार्यक्रमे स्वविचारान् उपस्थापयन् श्री मोदी संतोषं प्राकटयत् यत् व्यसनमुक्त युवकानां मादकमुक्त भारतस्य च लक्ष्ययुक्तम् इदम् अभियानं केवलम् औपचारिकं नास्ति, अपि तु बहवः जनाः विशेषतः युवानः महत्या संख्यया अस्मिन् संयुज्यन्ते।
1: नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग विशेषकर हमारे युवा बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है।
0: प्रधानमंत्री न्यवेदयत यत् मादक द्रव्य व्यसनं केवलं एकं जनं न ग्रसते, अपि तु समग्रः परिवारः समाजश्च अस्य दुष्परिणामान् भुङ्क्ते। सः तेषां सर्वेषां भूरिशः प्रशंसां कृतवान् ये मादक विरोधि जागरूकतां प्रसारयन्ति अथ च मादक द्रव्येन पीडितानां सहायतायै अग्रे आगच्छन्ति।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री अवदत् यत् पीएम स्वनिधि योजना माध्यमेन लक्षशः महिलाः नूतनं सामर्थ्यं प्राप्नुवन्ति। सः अकथयत् यत् महिला सशक्तिकरणस्य अस्मिन् उपक्रमे यावती चर्चा भवेत् तावती न दृश्यते। श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिषु प्रायः 46% महिलाः सन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् स्वच्छतायां बहवो गुणाः भवन्ति। सः अवदत् यत् यदा कस्यचित् स्थानस्य स्वच्छता संकल्पः जनसामान्यस्य स्वकीय संकल्पः भवति तदा सः तस्य स्थानस्य समग्र स्वरूपमेव परिवर्तयति।
1: देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई, वहां आकाश और रोहन नाम के दो दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे, एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीन अप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं।
0: श्री मोदी अवदत् यत् अद्य देशस्य कन्यानां स्वप्नाः भूमेः आरभ्य अन्तरिक्षं यावत् विस्तीर्णाः। सः असूचयत् यत् भारतं समग्र विश्वस्मात् सहस्रशः कन्याः एकत्र आनयति याः एतादृशान् स्वप्नान् पश्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् अस्य उपक्रमस्य नाम मिशन शक्ति सेट इत्यस्ति, येन 18 देशानां 12,000 छात्राः नूतनोन्मेषक्षेत्रे उपग्रह प्रौद्योगिकीं ज्ञातुम् अवसरं प्राप्नुवन्ति। प्रधानमंत्री मुंबई नगरस्थेन कृष्ण शेषाद्री इत्यमुना सह संभाषणम् अकरोत्। येन www.bharatrajya.com इति एकं विशिष्टं वेबफलकं निर्मितम्। अनेन वेबफलकेन कस्यापि वर्षस्य चयनेन जनाः सहजतया ज्ञातुं शक्नुवन्ति यत् तस्मिन् काले भारतस्य कस्मिन् भागे कस्य शासकस्य शासनमासीत्। श्री मोदी अवदत् यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरम् इति गीतस्य सार्धशततमी जयन्ती वर्तते, अतः इदं वर्षम् इतोप्यधिकं विशिष्टं महत्त्वमावहति।
1: तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे।
0: मध्य नेपाले आकस्मिक जल प्रलयेन मृतानां संख्या समेध्य 86-87 संवृत्ता। अद्यापि मृतवपुंसि सम्प्राप्यन्ते। अस्यां घटनायां 2500 जनाः विलुप्ताः सन्ति। संकटस्य पंचमे दिने साहाय्योद्धार कर्मचारिणः द्रुतगत्या विलुप्तानां अन्वेषणाय कार्यं कुर्वन्ति। महिलानां एशिया चषक 20-20 क्रिकेट चषक श्रृंखलायां अद्य भारतीय महिला दलं थाईलैंड दलेन सह क्रीडिष्यति। इयं स्पर्धा दुबई नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण रात्रौ 8:30 स्पर्धा आरप्स्यते। दलनायिकायाः हरमनप्रीत कौर इत्यस्याः नेतृत्वे भारतं प्रतियोगितायां स्वस्य अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम।
1: राम।
0: अर्नेस्ट भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए आज 30 अगस्त है और आज के दिन महान उपन्यासकार और प्रखर कवि भगवती चरण वर्मा की जयंती मनाई जाती है। और इनका जन्म देखिए 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर कस्बे में हुआ था।
1: देखिए सुनील भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और साथ ही में भगवती चरण वर्मा की आज जयंती हम सब मना रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया कि उनका जन्म 30 अगस्त 1903 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के सफीपुर गांव में हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें उनका जो झुकाव हमारे आकाशवाणी से भी रहा है, क्योंकि वे ऑल इंडिया रेडियो के कई केंद्रों पर उन्होंने काम भी किया है और इसके बाद फुल टाइम, जिसको कहते हैं पूर्णकालिक स्वतंत्र लेखन के तौर पर भी वे आकाशवाणी से जुड़े रहे हैं।
0: और
1: और
0: इतना ही नहीं,
1: उनकी
0: अरनेस
1: जी
0: भाई
1: जी
0: देखिए कलकत्ता में फिल्म कॉरपोरेशन और मुंबई में कई फिल्म कथा का लेखन कार्य भी उन्होंने किया।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा वो तो जाने माने साहित्यकार थे ही, अगर उनके कुछ बड़े उपन्यास की बात करें जैसे कि चित्रलेखा, जो कि 1934 में आई थी, ये उनका सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय उपन्यास है, जिसमें कि पाप पुण्य और नैतिकता के गंभीर दार्शनिक प्रश्नों को उठाया गया था। इस पर आपको, हमारे श्रोताओं को भी पता होगा कि इसी उपन्यास यानी चित्रलेखा पर ही 2 बार सफल हिंदी फिल्मों का निर्माण भी हुआ।
0: बिल्कुल। और देखिए उन्हें उनके प्रसिद्ध उपन्यास भूले विशिष्ट चित्र के लिए वर्ष 1961 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। साथ ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1971 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा उन्हें राज्यसभा सदस्यता भी मिली थी, जी हाँ, 1978 में।

0: उन्हें देश के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मानद सदस्य के रूप में भी मनोनीत किया गया था। और उन्होंने बहुत सी कविता संग्रह भी लिखा है, जैसे कि मधुकर, प्रेम संगीत और मानव। और उनकी एक प्रसिद्ध कविता है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये आज भी बेहद लोकप्रिय है। तो इस तरीके से हमने याद किया अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भगवती चरण वर्मा की जयंती पर, और हम सबको उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके जो कविता संग्रह हैं, उनके जो उपन्यास हैं, उनको पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो चलिए बातचीत भाइयों से और भी करेंगे। आज पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम, भाइयों की फरमाई समय मिल चुकी है, और आज के जो हमारे पहले कलाकार हैं वो कालू राम यादव और सतीश यादव, और उनको सुनने के लिए जो सबसे पहली फरमाइश मिली है फरीदाबाद से आनंद कुश, शनै लता कुश, आस्था, आशीष कुश, एकता, सिद्धि व रिद्धि की, और साथ ही हमें फरमाइश मिली है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा की।
0: इसके अलावा हमारे पास भी एक संदेश आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार।
1: कालूराम यादव और सतीश यादव को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा और उनका समस्त परिवार।
0: इसके अलावा सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्विनी, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह हैं, और इन्होंने
1: अगली फरमाइश
0: नहीं, इनका मैं ये जगह भी बता देता हूँ कि ये जो सुदर्शन शाह की परिवार है, ये हैं पद्मा टाकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से इनका संदेश आया है।
1: बिल्कुल, साथ ही हमें संदेश मिला है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल राधिका बेबी अनिस्का और उनके परिवार की तरफ से।
0: इसके अलावा गांव हाड़ी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा का भी मैसेज मिला है।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद, और इसको भेजने वाले मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल और उनका समस्त परिवार।
0: और ये अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से संदेश आया है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक का।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है भाई संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से, और ये फरमाइश इन्होंने भेजी है सानी पिंगा वाला चौक जालंधर से।
0: और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना और मोहम्मद कैफ का भी ये संदेश आया है।
1: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कालू राम यादव और सतीश यादव से रागनी। यह किस्सा रहेगा महाभारत का, और भाई ये उस मौके की रागनी है जब पांडव सब कुछ जुए में हार जाते हैं और दुर्योधन की भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। तब उस सभा में भीष्म पितामह, गुरु, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पांचों पांडव सिर झुकाए मौन बैठे हैं, और द्रौपदी की इस बेबसी और सभा के इस अधर्म को देखकर कवि कहता है धर्म कर्म सब चुप बैठे हैं। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी कालू राम यादव और सतीश यादव से, और किस्सा था महाभारत का। और देखिए भाई, बढ़ती हुई आबादी और शहरीकरण की वजह से

0: जोत की जमीन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में खेती के साथ साथ खेती से दूसरे जुड़े जो हमारे कार्य हैं वो भी हमारे भाई ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं। और बात करें मछली पालन की, तो देखिए मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य देखिए मत्स्य क्षेत्र के सतत विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख योजना है। और जिसका मुख्य उद्देश्य है देखिए मछली उत्पादन को बढ़ाना, बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर करना और मछुआरों के आय में सुधार करना है।
1: इसके अलावा ये जो योजना है ये केंद्र सरकार की योजना है और बहुत ही अच्छी योजना है। और यहाँ पर जो 100% जिसको कहते हैं ना कि 100% केंद्रीय वित्त पोषण दिया जाता है। और इसके अलावा यदि केंद्रीय क्षेत्र की समस्याएं हैं, जैसे कि संस्थाएं हैं, जैसे कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड है, आप सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर, या जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं यानी समूह होते हैं उनके साथ आप मिल सकते हैं। और सामान्य वर्ग के लिए परियोजना लागत का 40%, जबकि SC ST और महिला वर्ग के लिए 60% तक जो है सहायता मिलती है। और इसके अलावा इसी से जुड़ी हुई है PM मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, और इस योजना के का जो बजट है वो 6,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। और ये बहुत ही अच्छी योजना है, क्योंकि इससे क्या है ना कि तकनीकी से तरक्की आती है, टेक्नोलॉजी का आपको यूज़ करना सिखाया जाता है, तकनीकी आधुनिकरण होता है देश भर में, जो बायो प्लाक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम RAS जिसको कहते हैं। इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा होता है, जैसे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किस तरीके के तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए, जहाज़ों का आधुनिकीकरण होता है, कोल्ड चेन और आधुनिक फिशिंग हार्बर यानी मत्स्य बंदरगाह और लैंडिंग केंद्रों की स्थापना भी की जाती है।
0: और देखिए भाई, इस योजना का लाभ लेने के लिए अगर दस्तावेजों की बात की जाए तो पहचान पत्र यानी आधार कार्ड, मोबाइल नंबर से लिंक होना, पैन कार्ड, और साथ में देखिए बैंक में आपका खाता होना जरूरी है और उसकी पासबुक और आपके पास होनी चाहिए। साथ ही देखें भाई, जो भूमि जल निकाय के दस्तावेज, जमीन के मालिकाना हक के कागज आपके पास रजिस्टर्ड होने चाहिए। और इतना ही नहीं, देखें भाई जो महिलाओं की अगर बात करें, जैसे कि अभी अर्नेस भाई ने की, तो देखिए समूह स्तर पर भी आप ये कार्य कर सकते हैं। स्वयं सहायता समूह और महिला SHG और मत्स्य सहकारी समितियों के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और महिलाओं की अगर बात करें तो अर्नेस भाई देखिए, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मन की बात कार्यक्रम में कहा कि देखे लाखों जो माताएं बहनें PM स्वादी योजना की लाभ ले रही हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि देखिए महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उन्होंने चर्चा की। और साथ ही योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपना कार्य
1: बिल्कुल। और
0: कर रही।
1: महिलाएं जब सशक्त होंगी तो पूरा समाज सशक्त होगा और इसके साथ ही पूरा देश सशक्त होगा, इसलिए महिलाओं को सशक्त बनाना बेहद जरूरी है। और जो हम बात कर रहे थे इस योजना के बारे में, तो जो हमारे मछुआरे भाई हैं, मत्स्य किसान हैं, मत्स्य श्रमिक हैं, इसके अलावा मत्स्य कार्यों से जुड़े हुई सहकारी समितियां हैं और मत्स्य किसान उत्पादक संगठन हैं, ये सब भी जाके आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदन करने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, जो हमारी आधिकारिक वेबसाइट है PMMSY वेबसाइट पर जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहाँ पर आधार नंबर और बाकी जो जरूरी विवरण है वो भर दिए, और इस तरीके से आप अपनी परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट जिसको DPR कहते हैं वो और बना सकते हैं, और आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो सुनील भाई हमने जानकारी दी है।
0: और आज के हमारे जो अगले कलाकार हैं वो केशव और बबीता, और केशव और बबीता को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है बठिंडा रोड मंडी डबावली से, इसको भेजने वाले राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का भी मैसेज आया है।
0: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बेरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: गांव हाड़ी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा और सार्थक शर्मा का भी मैसेज आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्णा, मुकेश, रामचंद्र और उनके समस्त परिवार की तरफ से। गांव फरासी जिला हिसार से फरमाइश मिली है राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और पुष्पेंद्र कुमार डोडी की।
1: डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका और बेबी अनिष्का का भी आया।

0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली टोरावाला से पंजाब से, ये फरमाइश में मिले गगनदीप थांदी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा जो हमारे एक कबीर रेडियो श्रोता संघ से भी मैसेज आया है, देवशंकर तामुरिया, अजय देव और तुषार देव का।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक।
1: जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकोस्ट्रो, रोजी पर्ल और विले से और उनका पूरा परिवार की तरफ से एक संदेश आया है।
0: फरमाइश हमें मिली है पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रामेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक और संदेश ले लेते हैं जल्दी से। ऊपरकोट मोहल्ला चाखुंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, जवान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कैसे और बबीता से ये रागनी किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का। और ये उस मौके की रागनी है जब राजकुमारी सावित्री अपने विवाह के लिए वर की खोज में निकलती है और घूमते घूमते वह जंगल में पहुंचती है और उनकी मुलाकात सत्यवान से होती है जो अपने अंधे माता पिता के गुजारे के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तब सावित्री उनसे पूछती है, क्या आपका काम लकड़ी काटना ही है? इस बात पर सत्यवान जवाब देते हैं कि वह एक गरीब लकड़हारा है और लकड़ी काट कर अपना गुजारा करता है। साथ ही वह सावित्री को कहता है कि एक राजा की बेटी और उनका वह सत्या उनका कोई मेल नहीं। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

0: अरनेस भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागने सुनी केशव कुमार और बबीता से, और किस्सा था सत्यवान शावित्रे का। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो राजेश कुमार अट्टा, और उनके लिए फरमाइश आपके हाथ में दिखाई दे रही है।
1: बिल्कुल, जो है हमारे पास जो एक फरमाइश आई है मेरठ कंठ से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का। इसके अलावा जो है भिवानी से जगदीश चिंडालिया, राजवीर सतीश ऋतिक का भी संदेश आया है, केला देवी का भी आया है। इसके अलावा जो है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और प्रकाश अरोड़ा का भी संदेश आया है।
0: और फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है भाई, जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो आप 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत बीच जरूर सुनना। और अब आप सभी की पसंद पर सुनते हैं राजेश कुमार अट्टा से ये रागनी।

उन्नीस भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी राजेश कुमार अट्टा से, और किस्सा था रामायण का। और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यही समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरेस्ट चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अभी आपने कार्यक्रम ग्राम संसार सुना और अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और उज़्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज़्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज़्बेकिस्तान में यूपीआई के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुब्रमण्यम जयशंकर और निर्मला सीतारामन ने उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज़्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से

0: देश भर की लगभग 35 लाख महिलाएं अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 768 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। बचाव दल लापता लोगों की तलाश और फंसे हुए लोगों को निकालने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित हैं। पेचिंग के भारतीय दूतावास उनसे सीधे और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से संपर्क में है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में आज रात 8:30 बजे भारत का सामना थाईलैंड से होगा। भारत ग्रुप ए में थाईलैंड, हांगकांग और पाकिस्तान के साथ है। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप के फाइनल में आज रात 8:00 बजे वर्तमान चैंपियन जर्मनी का सामना स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंटरनेट चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: इसी जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम राम, राम। गणेश भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर है। देखिए, सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती रही हैं और अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी एक योजना की शुरुआत 2015 में की गई, परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करना, साथ ही देखिए मिट्टी की उपजाऊ शक्ति और गुणवत्ता में सुधार करना है।
1: इसके अलावा इस योजना की और क्या क्या खासियत है, क्या बड़ी बातें हैं, अगर उसकी हम बात करें तो जो क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है, यानी योजना के तहत किसानों को 20 हेक्टेयर या 50 एकड़ के समूहों में एक क्लस्टर टाइप का बना दिया जाता है, इससे संसाधन को साझा करने में और लागत कम करने में बेहद मदद मिलती है। और इसके अलावा एंड टू एंड सपोर्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि सरकार किसानों को जैविक बीज, प्राकृतिक खाद के उत्पादन से लेके पैकेजिंग तक, ब्रांडिंग और फिर बाजार में बेचने तक हर कदम पर सरकार सहायता देती है।
0: और देखिए भाई, इसके लिए जो अगर आप इसमें इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आवश्यक दस्तावेज की अगर बात करें तो आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में, निवास प्रमाण पत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड या बिजली का बिल आपके पास होना जरूरी है। साथ ही भूमि के जो दस्तावेज की अगर बात करें तो खसरा, खतौनी या जमीन के जो मालिकाना हक का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। साथ ही आपके पास देखिए भाई बैंक खाता होना जरूरी है और आधार कार्ड से लिंक आपका मोबाइल नंबर होना जरूरी है और पासपोर्ट साइज के जो आवेदन पत्र के लिए दो फोटो भी जरूरी।
1: बिल्कुल सुनील भाई, इसके साथ ही ये भी बता देते हैं कि वित्तीय सहायता क्या क्या मिलती है, लाभ क्या होता है। तो 3 वर्षों में मिलने वाली 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता राशि मिलती है, जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि 31,000 रुपये जैविक इनपुट है, जिसमें कि जैविक खाद, नीम तेल, पंचगव्य और जैविक बीज खरीदने या फिर उसका ऑन फॉर्म तैयार करने के लिए सीधे किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये पैसा दिया जाता है। वहीं दूसरी किस्त 8,800 रुपये की है, जो प्रमाणन और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के पर्पज से किसानों के जैविक खेती को ट्रेनिंग देने और क्लस्टर के सर्टिफिकेशन के खर्च के लिए दिया जाता है। वहीं तीसरा जो इसकी कड़ी है, उसमें 10,200 रुपये मूल्यवर्धन और विपणन यानी मार्केटिंग, जिसमें कि फसल कटाई के बाद मूल्य संवर्धन, जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, जिसमें कि ब्रांडिंग, पैकेजिंग और उसे बाजार तक पहुँचाने के लिए दिया जाता है।
0: और देखिए भाई, इसके लिए आप पोर्टल पर जाकर आधिकारिक वेबसाइट माई स्कीम पर आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आप अपने नज़दीकी ब्लॉक या जिला स्तर के कृषि विकास अधिकारी कार्यालय जाकर ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी योजना है भाई, आप स्वयं भी ऐसी योजना का लाभ उठाएं और दूसरे जो किसान भाई उनको भी जागरूक करें और इस तरह की योजनाओं का लाभ उठाएं। अनुरेश भाई, देखिए हमने कहा था कि भाई एक फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है, और अतुल सबसे जो पहले जो आज के कलाकार है विनोद कुमार है, और विनोद कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, ये भी फरमाइश हमें मिली है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की।
1: इसके अलावा गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा, अलका मिड्डा का आया है।
0: और हनुमानगढ़ जिले से हमें गांव कलाना से एक और खत हमें मिला है, ये मिला है विक्रम, सचिन, सतीश और योगेश का।
1: इसके अलावा दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू का भी संदेश मिला है।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, वो मिली है कनेरा मोहला पटियाला से, और उसको भेजने वाले मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, करण बत्ता और हार्दिक बत्ता।
1: गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र सिंधु, अनीता सिंधु, राहुल, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा और मैक्स का भी संदेश मिला है।
0: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरोवर, बेबी गरोवर और उनका समस्त परिवार।
1: और फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिश और शाहिद मिखाइल मुजावर का भी मैसेज आया है।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है, वो मिली है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
1: और इसके साथ ही एक और संदेश जल्दी से ले लेते हैं, जो कि आया है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पालेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, और इनका नाम है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है शाहू नगर से, इसको भेजने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर और उनका समस्त परिवार।
1: रघुनाथपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का भी संदेश आया है।
0: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर से, रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा और उनका समस्त परिवार।
1: और इसी क्रम में एक और मैसेज आया है दत्तरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का।
0: ये अगली फरमाइश हमें मिली है नूर महल महसोल सीतामढ़ी बिहार से, उसको भेजने वाली है मुर्शद जहानाज, तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
1: इसके अलावा एक और संदेश आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसोल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन, बेगम इशरत, वसीम अकरम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा का।
0: विनोद कुमार को ही सुनना चाहते हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा और उनका समस्त परिवार।
1: और इसी क्रम में एक मैसेज आया है दत्तरेंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का।
0: और ये फरमाइश हमें मिली है जटवाड़ा गाजियाबाद से सीसपाल अकेला की।
1: और इसी क्रम में एक और संदेश लेते हैं जमानिया गाजीपुर से, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल का।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं विनोद कुमार से ये उपदेश।

0: तो सुनील भाई, अभी हमारे किसान भाइयों ने सुना और विनोद कुमार की आवाज़ में ये जो है बहुत ही अच्छा रागनी, और इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और हम और भी अपने कुछ संदेश लेंगे, और उनकी जो दूसरे हमारे कलाकार हैं अतुल कुमार, उनकी जो है सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आया है, और ये आया है विनोद कुमार गांव माजरा हरियाणा से, और इन्होंने ये लिखा है कि वो चने की बुआई करना चाहते हैं और इसके लिए क्या सही समय है, और साथ ही में चने की कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं, और चने के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त मानी जाती है। और एक एक इसी से जुड़ा सवाल ये भी है कि चने का जो पेड़ होता है, जो पौधा होता है, उसमें कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, रोग या जो कीट पतंगे लग जाते हैं, ये भी है। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं सुनील भाई कि ये हमारे ये श्रोता जानना चाहते हैं विनोद कुमार जी कि आखिरकार चने की फसल की कुल देख रेख किस तरह से करना चाहिए ताकि उसका उत्पादन अच्छा हो सके।
1: आप माजरा हरियाणा से बात कर रहे हैं, सिंचित क्षेत्र से बात कर रहे हैं। तो चने की जो बिजाई का सही समय जो है वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर सबसे सही और उचित माना जाता है। वैसे सिंचित क्षेत्रों में दिसंबर माह के तीसरे सप्ताह तक भी बिजाई की जाती है, लेकिन जो सही समय की अगर आप बात करें तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का समय सही माना जाता है। जहाँ तक उन्नत किस्मों की आपने बात की है तो देखिए भाई, पूसा 256, पंतजी 114, KWR 108, K850 वैविजय किस्में उन्नत किस्में मानी जाती हैं। यदि आप काबुली चने की बिजाई करना चाहते हैं तो भाई पूसा 267, L550 और C104 सबसे उन्नत किस्में मानी जाती हैं। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भी भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि भाई जहाँ से भी आप बीज ले, उपचारित बीज ले, और यदि बीज उपचारित ना हो तो भाई उपचारित अवश्य कर लें। जहाँ तक निराई गुड़ाई की बात है तो देखिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए भाई बिजाई के 5 से 6 सप्ताह के बाद निराई गुड़ाई अवश्य कर देनी चाहिए। और चने की जो फसल, जहाँ तक भाई आपने जलवायु की बात की है तो शुष्क एवं ठंडी जलवायु इसके लिए उचित मानी जाती है। और चने की फसल में मुख्य रूप से दीमक, फली छेदक, झुलसा रोग, उकता रोग और इस तरह की जो बीमारी लग जाती है। साथ ही आगे चल के भाई देखिए पाले भी पड़ता है, और पाले से भी आपको बचाना है। साथ ही दीमक से रोकथाम के लिए भूमि का उपचार करना बहुत ही जरूरी है। जहाँ तक कटाई, फसल की कटाई व गढ़ाई की बात

0: है तो देखिए पत्ते में फलियां पीले वे भूरे रंग के हो जाएं, तो पत्तियां गिरने लगें, तो दाना सख्त हो जाए, तो इस सब बातों का आपने ध्यान रखना है, उस समय आप फसल की कटाई कर लें। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे भाई, कीट व बीमारियों से फसल को बचाएंगे, समय पर निराई गुड़ाई करेंगे, तो आप ले पाएंगे चने फसल से भरपूर उत्पादन।
1: बिल्कुल सुनील भाई, आपने तो पूरी ही जानकारी दे दी और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और उम्मीद है कि न केवल विनोद कुमार बल्कि हमारे और भी जो किसान भाई बहन हैं जो चने की खेती करना चाहते हैं तो उनको ये जानकारी बेहद लाभदायक सिद्ध होगी और उनको बेहद पसंद आई होगी। तो अब अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और संदेश लेते हैं।
0: तो देखिए भाई, अगली जो हमारे कलाकार हैं वो अतुल कुमार, और अतुल कुमार को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता वोट निखिल कांगड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नलवेश्वर नगर महाराष्ट्र से PS नवांकर, निर्मला और विशाल की। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और इसके अलावा एक और संदेश आया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राजेश शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ साइना और निवान शर्मा का। और मेहर नगर उमड़खेर महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रणीता और अर्जुन का आया है।
0: साथ
1: और
0: ही हमें फरमाइश मिली है सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ की। और सादुल शहर राजस्थान के अलावा हमें जो और फरमाइश मिली है वो कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से मिली है, ओम प्रकाश राय, उषा राय और उनके समस्त परिवार की तरफ से। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन प्रभजोत की फरमाइश भी हमें मिली है।
1: और साल्हे भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से जीतू ध्रुव, केवल, किरण, दिव्यांशी, खेमुखरू का भी आया है। और एक और संदेश आया है रानी गांव नगरी छत्तीसगढ़ से ही है, खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम सेजल साहू का। और छत्तीसगढ़ से ही हसदा नंबर दो से कमलेश साहू, जितेंद्र साहू, पायल साहू का भी संदेश आया है।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है GTB मार्केट अहमदाबाद से, और इसको भेजने वाले हैं रवीना, आफिया और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: इसके अलावा जो है एक और संदेश आया है हमारे पास, और ये आया है खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो कोयल और पीयूष सिक्का, कोयल डुग्गू भाविका सिक्का का। और इसी क्रम में एक और संदेश आया है गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कांगड़ा, राजबाला,
0: अतुल
1: कार्तिक
0: कुमार को ही
1: वेदांश।
0: सुनना चाहते हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौसार सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू।
1: और एक और संदेश आया है रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब का। और आज
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, अल्लाव्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हमें फरमाइश मिली है महाराजा कीर्तन पूरी गोस्वामी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश मिली है छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवगन, कौशल्या और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और हमारे इस कार्यक्रम को बेहद पसंद किया है और प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई भी दिया है अनिल मोहन, PTI संसद मार्ग से जी। तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए।
0: तो चलिए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं अतुल कुमार से ये उपदेश।

0: है।
1: गणेश भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद का उपदेश सुना अतुल कुमार से। और देखिए भाई, मौसम की बात करें तो तापक्रम आने वाले समय में 34 से 30 डिग्री अधिकतम रहने की उम्मीद है, और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 28 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ऐसे में भाई देखिए, जिन किसान भाइयों ने ज्वार आदि चारे की फसल लगा रखी है उसकी कटाई कर लें, साथ ही यदि खेत खाली और भाई सूरजमुखी की फसल लगाना चाहते हैं तो इसमें देरी ना करें, और धान में उर्वरक की मात्रा अगर ना दी हो तो भाई अवश्य इस समय दे दें। इसी प्रकार धान, ज्वार, अरहर, मूंग, उड़द आदि फसल लगाना

0: चाहते हैं और उनमें से खरपतवार अवश्य निकाल दें। साथ ही देखिए भाई, आम व अमरूद के नए बाग लगाना चाहते हैं और अभी ना लगाए हों तो भाई इसमें भी देरी ना करें। और अरनेस भाई, अब बात आती है कल के कार्यक्रमों की, तो कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी का आनंद ले सकेंगे। साथ ही भाई देखिए, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में चर्चा करेंगे सशक्त पंचायत, समृद्ध गांव और विकसित भारत का भविष्य, और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं के लिए सरकारी योजनाओं के अवसर के बारे में जानकारी देंगे। अगर बात करें 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत की, तो कृषि क्षेत्र में बाढ़ प्रबंधन के विकल्प के बारे में जानकारी देंगे।
1: और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम का भी समय समाप्त हो रहा है, तो हम अपने सभी किसान भाइयों को कहते हैं राम राम। और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं।
2: जैसे
1: जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है,
2: तो लेन देन
1: वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं।
2: ओ,
1: जैसे UPI से।
2: अच्छा।
1: हाँ, और सुनो, एक और नियम है।
2: वो क्या है मम्मी जी?
1: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
2: आम भी ना मम्मी जी।
3: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
4: हर लेन देन अब है आसान।
5: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35 लाख महिलाओं को लाभ मिला। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुलभ बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी। कहा, दिल्ली सरकार का संकल्प, राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज साउथ दिल्ली सुपरस्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग और विशेषकर युवा बड़ी संख्या में नशा मुक्त युवा और नशा मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
6: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
5: श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियों के सपनों की उड़ान अंतरिक्ष तक पहुंच रही है।
6: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है, और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
5: प्रधानमंत्री

0: ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा तैयार करने और युवा संगीतकारों से ऐसे गीत बनाने को कहा जो नशा मुक्त जीवन का संदेश दे।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 137वें मन की बात कार्यक्रम का आज दिल्ली में 6339 स्थानों पर भाजपा नेताओं, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सामूहिक रूप से सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त युवा, पीएम स्वनिधि में महिलाओं की भागीदारी और वोकल फॉर लोकल जैसे मुद्दों पर बल दिया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, भाजपा के मीडिया सह प्रमुख प्रदीप भंडारी, निवर्तमान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और प्रवीण खंडेलवाल सहित कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों से कार्यक्रम को सुना। श्री पांडा ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बना है। इतने लंबे समय तक किसी नेता द्वारा किसी देश के करोड़ों लोगों के साथ इस तरह सीधे संवाद करने का उदाहरण बहुत दुर्लभ है। इसके अलावा श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी के हर जिले, विधानसभा और बूथ स्तर पर नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगी। स्कूल कॉलेजों में सेमिनार, खेल प्रतियोगिताएं और युवा चौपाल आयोजित कर युवाओं को खेल, संस्कृति और सेवा से जोड़ा जाएगा। दिल्ली के कानून और न्याय मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राउस एवेन्यू कोर्ट में मजबूत भारत के निर्माण में अधिवक्ताओं की भूमिका विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लिया। श्री मिश्रा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में वकीलों और कानूनविदों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि देश में सकारात्मक बदलाव और विकास की दिशा में तेजी से कार्य हो रहा है। इस दौरान श्री मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को अधिवक्ताओं के साथ सुना। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने दिल्ली मास्टर प्लान 2047 MPD के कार्यान्वयन में व्यापक सार्वजनिक भागीदारी को सुगम बनाने और इसे अधिक आसानी से समझ में आने योग्य बनाने के लिए डिजिटल आउटरीच उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है। एक रिपोर्ट।
2: इस पहल के भाग के रूप में DDA ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नया किया है सेक्शन के अंतर्गत MPD 2047 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक व्यापक सेट उपलब्ध कराया है। इनमें लैंड पुलिंग, पारगमन उन्मुख विकास और झुग्गी झोपड़ियों के पुनर्वास समेत प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी गई है। प्राधिकरण ने MPD 2047 फीडबैक सुविधा भी शुरू की है जिसके जरिए नागरिक और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। साथ ही मास्टर प्लान को सरलता से समझने के लिए दृश्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। ये डिजिटल पहल प्राधिकरण के 3 महीने से हितधारक जुड़ाव कार्यक्रम की पूरक है जिसके अंतर्गत MPD 2047 के विभिन्न पहलुओं पर 20 बैठकें निर्धारित की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी एजेंसियों और अन्य संबंधित हितधारकों को प्रमुख कार्यान्वयन क्षेत्रों सहित शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र के विकास पर चर्चा के लिए एक साथ लाना है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: दिल्ली सरकार ने बताया कि राजधानी के ओखला, भलसवा और गाजीपुर लैंडफिल पर अब तक लगभग 2 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक कचरे का प्रसंस्करण कर 100 एकड़ भूमि रिक्लेम किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वैज्ञानिक और समयबद्ध रोड मैप के माध्यम से वर्षों पुरानी समस्या को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल मौजूदा कूड़े के पहाड़ों को हटाने पर ध्यान नहीं दे रही है बल्कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा पैदा न हो इस पर भी काम कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने भविष्य में नए कूड़े के पहाड़ बढ़ने से रोकने के लिए 4 नए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने 72 घंटे के अंदर ऑपरेशन चक्र के अंतर्गत आबकारी मादक पदार्थ और मनोप्रभावी पदार्थ शस्त्र तथा जुआ अधिनियम के अंतर्गत कुल 154 मामलों में 193 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
3: ये ऑपरेशन 72 घंटे का ऑपरेशन था जिसको हमने नाम चक्र 72 दिया था। ये 24 से 27 अगस्त की रात तक का ऑपरेशन रहा था जिसमें पूरे जिले के हर थाने, हर सब डिवीजन और सारी ऑपरेशन टीम्स ने इसमें काम किया, जिसके तहत 154

0: FIRs दर्ज हुई और 193 लोग अलग अलग केसेस में अरेस्ट हुए हैं। इसमें हमारा फोकस था ऑर्गेनाइज क्राइम पे, आर्म्स एक्ट, ड्रग्स, एक्साइज और गैम्बलिंग पे।
1: पुलिस ने आबकारी अधिनियम मामलों में 63 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 10,000 क्वार्टर से अधिक अवैध शराब और एक कार बरामद की गई। वहीं मादक औषधि और मनोप्रभावी पदार्थ NDPS अधिनियम मामलों में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 2.5 किलोग्राम मादक पदार्थ और 700 से अधिक नशीली दवाएं बरामद की है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम मामले में 22 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 22 चाकू, 3 देशी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही जुआ अधिनियम के अंतर्गत 50 मामले में 87 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 1,69,750 रुपए की राशि और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा अभियान के दौरान 4 चोरी के 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार अभियान का उद्देश्य अवैध शराब, मादक पदार्थ, हथियार और जुआ गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आपराधिक नेटवर्क को कमजोर करना था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजस्थान के कोटा से हिमांशु भाई सिंडिकेट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इनमें से 2 आरोपी दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हत्या, हत्या के प्रयास तथा फायरिंग के कई मामलों में वांछित और इनामी अपराधी घोषित थे। पुलिस ने दोनों वांछित आरोपियों के अलावा उनके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है, जिन पर आरोपियों को पनाह देने और पैसों की हेराफेरी करने का आरोप है। दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में 11 से 13 सितंबर तक होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए व्यापक योजना बनाई है। मीडिया से बातचीत में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इस दौरान यातायात डायवर्जन, प्रभावित रास्तों और समय के बारे में विस्तृत जानकारी पहले से ही जारी की जाएगी।
2: समिट 3 दिन है, उसके टाइमिंग फिक्स है। उस दौरान हमारे डायवर्जन पॉइंट्स रहेंगे, साइनेजेस रहेंगे, हमारी एडवाइजरी रहेगी और पब्लिक को हम कोई भी ऐसा अलग मूवमेंट कहीं होता है तो जहां भी हम डायवर्जन करते हैं अल्टीट्यूड रूट्स को उनको बताएंगे कि यहां पे डायवर्जन है तो इन रूट से आप बताइए, तो किसी अल्टीट्यूड रूट्स को आप सजेस्ट करेंगे जिससे कि वो अपना कम्यूट कर सके। ठीक है, ट्रैफिक का जो उल्लंघन जो भी करेगा डेफिनेटली हम लोग उस पर एक्शन लेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह 2026 में शामिल होंगी। देश भर में स्थित NIFT के 18 परिसरों के स्नातक छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करने और अपनी शैक्षणिक यात्रा के समापन पर एक साथ एकत्रित होंगे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर उद्यमियों, कारीगरों और शिल्पकारों को शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के संकल्प ने छोटे उद्यमों को नई ऊर्जा, पहचान और बाजार दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि राष्ट्रीय राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े, नए बाजारों तक पहुंचे, अधिक रोजगार सृजित करे और विकसित भारत की यात्रा में अपनी बड़ी भूमिका निभाए। वहीं श्री सिरसा ने कहा कि लघु उद्योग रोजगार सृजन, स्थानीय उद्यमिता और आर्थिक विकास की मजबूत नींव है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 88वें संस्करण में हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ब्रिक्स के सहयोग से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया। डॉ. मांडविया ने कहा कि साइकिल चलाना स्वास्थ्य के साथ साथ प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को कम करने में भी मददगार है। डॉ. मांडविया ने युवाओं से रोजाना कम से कम 1 घंटा खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए देने की अपील की।
3: आज देश में 25,000 से अधिक स्थानों पर 88 संडे ऑन साइकिल एडिशन का प्रारंभ हुआ। देश में साइकिलिंग एक क्रेज बन रहा है। संडे ऑन साइकिलिंग धीरे धीरे धीरे जनता में पैशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। साइकिलिंग ए बेस्ट एक्सरसाइज है। साइकिलिंग पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। साइकिलिंग फिट रहने का मंत्र है। साइकिलिंग ट्रैफिक का भी समाधान है।
1: दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट का फाइनल मुकाबला साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है। साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स ने पहले क्वालिफाई

क्वालीफायर में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को 15 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि एलिमिनेटर के रास्ते दूसरे क्वालीफायर मुकाबले में प्रवेश करने वाली सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने पुरानी दिल्ली की टीम को 72 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का उल्लेख किया। कहा, इस योजना से 35

0: शुरू की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर शुभकामनाएं दी, कहा दिल्ली सरकार का संकल्प राजधानी का हर छोटा उद्यम आगे बढ़े। और दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग के फाइनल में आज दिल्ली सुपर स्टार और सेंट्रल दिल्ली आमने सामने होंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ, 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ये आकाशवाणी दिल्ली है। लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ कवि श्री मदन राज।
7: नमस्कार। इस काव्य संगोष्ठी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर शशांक सुप्रिय जी दसियों कहानियों के रचयिता हैं और कविता मेरा ऑक्सीजन है, कविता में मेरे रक्त में है, यह मेरी धमनियों में बहती है, इस तरह का आत्मकथ्य लेकर चल रहे हैं। दूसरे हमारे पास हैं डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी, जो गीत और छंदों की मलिका हैं, संघर्षों की आदि हैं, मानवतावादी हैं, अनेक पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हैं और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आगे हैं डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी, जो श्रृंगार और वीर रस के कवि हैं और इनका विशेष रुझान वृक्षारोपण करोधरा का बहुत प्रसिद्ध रचना है। चलिए अब हम बुलाते हैं डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी को, जो गीत और छंदों की मलिका हैं। इनकी कुछ पंक्तियां मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। कभी तो होगी सुबह, कभी तो मंजिलों तक जाएंगे, निरुद्देश्य नहीं बैठेंगे, चाहे संघर्ष करते मर जाएंगे। धधक रही जो ज्वाला मन में, उसको नहीं बुझाएंगे, ठान लिया है मन में जो, करके ही दिखलाएंगे, करके ही दिखलाएंगे। ऐसे संघर्षों की आदि मानवतावादी डॉक्टर शिल्पा राजपूत।
8: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर्वप्रथम मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ भगवान शिव के चरणों में एक छंद रूपी पुष्प, तो सुनिएगा।
9: गले मुंड माल धरे हिमगिरी वास करे, गले मुंड माल धरे हिमगिरी वास करे, जटाओं से बहती जिनके गंगा धार है, भूतो संग भूतनाथ नंदी रहे सदा साथ, भूतो संग भूतनाथ नंदी रहे सदा साथ, व्याघ्र छाले बैठे भस्म जिनका श्रृंगार है। शशि शेष सुशोभित, शशि शेष सुशोभित डमरू त्रिशूल संग, शशि शेष सुशोभित डमरू त्रिशूल संग, कंठ में विराज रहे शेष नाग हार है, और गले में गरल धारे सबके तारन हारे, गले में गरल धारे सबके तारन हारे।
7: सुंदर।
9: देवों के देव महादेव जग के सार हैं, देवों के देव महादेव जग के सार हैं।
7: वाह।
8: आगे मैं आप एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगी।
7: स्वागत है।
8: समाज में जो देखती हूँ उसी हिसाब से मैं अपनी कविताएं अपनी रचनाएं करती हूँ, तो एक रचना है माता पिता पर, आजकल के माहौल को देखते हुए सुनिएगा।
9: उम्र

0: वाह,
1: धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नारी हूं तो एक छंद चार लाइनों की नारी पर रखती हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगी।
0: स्वागत है।
1: बीते गए वो जमाने, सुनती थी रोज ताने, दहलीज पार अब आने लगी नारियां, बस रेल वायुयान चलाती है सेना तान, बस रेल वायुयान चलाती है सेना तान, धरती से आसमान छाने लगी नारियां।
0: वाह क्या बात है।
1: तोड़ डाला ये भरम पुरुषों से नहीं कम, राजनीति में भी खुल के आने लगी नारियां, और धारे खाकी तन पे जान दे वतन पे, धारे खाकी तन पे जान दे वतन पे, दुश्मन को तारे दिखाने लगी नारियां, दुश्मन को तारे दिखाने लगी नारियां। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नर से बढ़कर नारी एक नहीं दो दो मात्राएं, आजकल लड़कों से भी आगे बढ़ रही हैं आजकल की छात्राएं। बहुत सुंदर अभी आपने जो है राजपूत जी को सुना। अगले कवि के रूप में मैं

0: आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शशांक सुप्रिया जी को, जो एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं। उनके लिए दो शब्द हैं कि मेरे वजूद का बस इतना सा फसाना है, मेरे वजूद का बस इतना सा फसाना है, तेरी यादों का मुझ में एक अंश पुराना है, एक अंश पुराना है। श्री शशांक सुप्रिया जी,
1: धन्यवाद। मेरी पहली कविता का शीर्षक है कलयुग। एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी।
0: वाह।
1: एक बार एक कांटे के शरीर में चुभ गया एक नुकीला आदमी, कांटा दर्द से कराह उठा। बड़ी मुश्किल से उसने उस आदमी को अपने शरीर से बाहर निकाल कर फेंका, तब जाकर कांटे ने राहत की सांस ली, तब जाकर कांटे ने राहत की सांस ली।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
1: मेरी अगली कविता का शीर्षक है वह अनपढ़ मजदूरनी।
2: बहुत अच्छा।
1: उस अनपढ़ मजदूरनी के पास थे जीवन के अनुभव, मेरे पास थी कागज कलम की बैसाखी।
2: बढ़िया।
1: मैं उस पर कविता लिखना चाह रहा था जिसने रच डाला था पूरा महाकाव्य जीवन का। सृष्टि के पवित्र ग्रंथ सी थी वह, जिसका पहला पन्ना खोलकर पढ़ रहा था मैं।
2: बढ़िया।
1: गेहूं की बालियों से भरा जीवन का रस थी वह, और मैं जैसे आंगन में गिरा हुआ सूखा पत्ता। उस कंदील की रोशनी से उधार लिया मैंने जीवन में उजाला, उस दिए की लौ के सहारे पार की मैंने कविता की सड़क, कविता की सड़क।
2: धन्यवाद।
1: मेरी अगली कविता है विडंबना। कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी रोशनी है फिर भी कितना अंधेरा है, कितनी नदियां हैं फिर भी कितनी प्यास है, कितनी अदालतें हैं फिर भी कितना अन्याय है, कितने ईश्वर हैं फिर भी कितना अधर्म है, कितनी आजादी है, कितनी आजादी है फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम, फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है गलती। शुरू से ही मैं चाहता था चांद सितारों पर घर बनाना, आकाश गंगाओं और निहारिकाओं की खोज में निकल जाना, लेकिन एक गलती हो गई, आकाश को पाने की तमन्ना में मुझसे मेरी धरती खो गई। एक कविता देखें, अंतर। महंगे विदेशी टाइल्स और सफेद संगमरमर से बना आलीशान मकान ही तुम्हारे लिए घर है, जबकि मैं हवा सा यायावर हूं, जबकि मैं हवा सा यायावर हूं, तुम्हारे लिए नरम मुलायम गद्दों पर सो जाना ही घर आना है, जबकि मेरे लिए नए क्षितिज की तलाश में खो जाना ही घर आना है, नए क्षितिज की तलाश में खो जाना ही घर आना है।
0: बहुत सुंदर, वाह क्या बात है।
1: अगली कविता है कठिन समय में। बिजली के नंगे तार को अचानक छूने पर मुझे झटका लगा, बिजली के नंगे तार को अचानक छूने पर मुझे झटका लगा, क्योंकि तार में बिजली नहीं थी।
0: वाह।
1: क्योंकि तार में बिजली नहीं थी। मुझे झटका लगा इस बात से भी कि जब रोना चाहा मैंने तो आ गई हंसी, जब रोना चाहा मैंने तो आ गई हंसी, पर जब हंसना चाहा तो आ गई रुलाई।
2: क्या बात।
1: जब हंसना चाहा तो आ गई रुलाई। बम विस्फोट के मृतकों की सूची में अपना नाम देखकर फिर से झटका लगा मुझे, इतनी आसानी से कैसे मर सकता था मैं, इतनी आसानी से कैसे मर सकता था मैं इस भीषण दुर्व्यवस्था में, इस नई बराबर जगह में, अभी होने को अभिशप्त था मैं, जब मदद करना चाहता था दूसरों की, लोग आशंकित होते थे यह जानकर, संदिग्ध निगाहों से देखते थे मेरी मदद को, गोया मैं उनकी मदद नहीं उनकी हत्या करने जा रहा था, गोया मैं उनकी मदद नहीं उनकी हत्या करने जा रहा था, बिना किसी स्वार्थ के मैं किसी की मदद कैसे और क्यों कर रहा था, यह सवाल उनके लिए मदद से भी बड़ा था। बिना किसी स्वार्थ के मैं किसी की मदद कैसे और क्यों कर रहा था, यह सवाल उनके लिए मदद से भी बड़ा था। गलत जगह पर सही काम करने की जिद लिए मैं किसी प्रहसन में विदूषक सा खड़ा था। मैं किसी प्रहसन में विदूषक सा खड़ा था।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है।
1: एक अंतिम कविता मेरी, कल रात सपने में। कल रात मेरे सपने में गांधारी ने इनकार कर दिया आंखों पर पट्टी बांधने से। कल रात मेरे सपने में गांधारी ने इनकार कर दिया आंखों पर पट्टी बांधने से। एकलव्य ने नहीं काटा अपना अंगूठा द्रोण के लिए।
0: वाह वाह।
1: सीता ने मना कर दिया अग्नि परीक्षा देने से। द्रौपदी ने नहीं लगने दिया स्वयं को जुए में दांव पर।
0: बेहतरीन।
1: पुरु ने नहीं दी ययाति को अपनी युवावस्था। कल रात इतिहास और मिथिहास की कई गलतियां सुधरी मेरे सपने में, मेरे सपने में। धन्यवाद।
0: बहुत सुंदर। अभी आपने डॉक्टर सुशांत सुप्रिया जी को सुना। बहुत बेहतरीन रचनाएं आप लोगों ने सुनाई। अब हमारे बीच में आ रहे हैं वरिष्ठ कवि डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी। आप श्रृंगार और वीरस के कवि हैं। इनके सम्मान में दो पंक्तियां। आपके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। आपके सावन में शरारत ये मेरे साथ हुई। मेरे घर छोड़ के कुल शहर में बरसात हुई। मेरा घर छोड़कर कुल शहर में बरसात हुई। डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी जी,
3: धन्यवाद। श्रृंगार रस का एक गीत प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है प्रिया तुम कुछ बोलो होली। है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली। पास पड़ोसी जाग रहे भावी ने किवाड़ खोली। 4 बजे का समय गगन में अनुपम लाली है। मुर्गा बांग दे रहा कव का उपवन खाली है।
0: क्या बात।
3: चंदा इठलाता चांदनी से फूलन से भौरे। है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली। हमें सुहानी लगे तुम्हारी सारी ही काया। इसीलिए तो स्वप्न लोक में भी तुमको पाया। वायु मंद मंद बहती है स्मृति आती है। फूलों पर भमरों को देख कर याद सताती है।
0: क्या बात है।
3: काली कोयलिया बागन में, काली कोयलिया बागन में कूक कूक बोले। है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होली। ऋतु बसंत की छटा निराली चौदिश हरियाली। पीली पीली सरसों पूली खेतनु में न्यारी। बेला ढाक गुलाब चमेली सरसिज हर साये। तरु बसंत के स्वागत में नव नव किस ले लाए।
0: क्या बात।
3: तरु बसंत के स्वागत में नव नव किस ले लाए। पीली साड़ी पहन मेदिनी मधुरिम रस घोले। है प्रभात को समय प्रिया तुम कुछ बोलो होले।
2: बहुत अच्छा।
3: पास पड़ोसी जाग रहे भावी ने किवाड़ खोले।
2: बहुत
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
3: दूसरी कविता का शीर्षक है पर्यावरण बचाओ।
0: वाह।
3: वृक्षारोपण करो धरा का रोज नया श्रृंगार करो। पर्यावरण बचाओ प्यारे प्रकृति का उद्धार करो। पीपलाम नीम बढ़ के तुम अंधाधुंध बागान करो। पर्यावरण स्वच्छ बनाकर प्राण वायु संचार करो। हरे भरे जंगल की धरती इस पर ना तुम बार करो। वृक्ष हमारे जीवन साथी मत काटो उपकार करो।
2: बहुत बहुत।
3: जन्म दिवस पर

0: धरा देख रही तुम उसको ना बेहाल करो। हरी भरी धरती का सुंदर स्वर्णिम सपना साकार करो। जल संरक्षण करो हमेशा जल जीवन का सार करो। सीमित जल उपयोग करो जल बचाओ हर बार करो। जल की बूंद सुधा होती है तुम उसको ना बेकार करो। जल की बूंद सुधा होती है तुम उसको ना बेकार करो। नदियों को कूड़े कचरे से तुम मत अब बदहाल करो। अब तो सोच बदल लो प्यारे अपना तो कुछ ख्याल करो। वृक्ष लगा कर जन जन को तुम शुद्ध वायु उपहार करो। वृक्षारोपण करो धरा का रोज नया श्रृंगार करो। वृक्षारोपण करो धरा का रोज नया श्रृंगार करो।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा।
0: और कविता का शीर्षक है मेरी माटी मेरा देश।
1: हाँ।
0: सब देशों से न्यारा है भारत देश।

0: मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन सब भाई भाई, सबका मान बराबर है, ना कोई तुच्छ कदावर है। अखिल विश्व में भारत देश सप्तम नंबर पर आता है, गंगा यमुना सरस्वती सरयू से सच्चा नाता है।
1: बढ़िया, बहुत।
0: उत्तर में है खड़ा हिमालय, दक्षिण हिंद महासागर है, भारत नहीं राष्ट्र छोटा है, 36 राज्यों के कुल वे हैं, अगर सही से गिनती कर लो जिले 797 हैं। हर क्षेत्रों की अपनी भाषा अपनी संस्कृति होती है, जींस टॉप टी शर्ट कहीं की पहनावा कुर्ता धोती है, लिट्टी चोखा पूर्वांचल का खान पान शाकाहारी है, दिल्ली का यहाँ पर मोमोज असम सिक्किम से भी भारी है।
2: क्या बात है, क्या बात है।
0: भारत की जलवायु सदा मानसूनी ही कहलाती है, यही यहाँ पर मौसम का भी नियमित परिवर्तन करवाती है। भारत देश हमेशा हमको प्राणों से भी प्यारा है, सब देशों से न्यारा है, भारत देश हमारा है।
2: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, लाजवाब।
1: अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ उनको जिन्होंने अभी तक हमें आमंत्रित किया। खास रैंक के कवि हैं, उनकी एक पुस्तक आ चुकी है गिरगिट, इनका नाम है मदन लाल राज। तो स्वागत है मदन लाल जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कुछ चंद क्षणिकाएं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहली क्षणिका का शीर्षक है गिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध। गिद्ध नौचने में सिद्ध, दूर दूर तक प्रसिद्ध। आजकल वह भी सोचने लगा है, मुझसे अच्छा तो आदमी नौचने लगा है। आजकल वह भी सोचने लगा है, मुझसे अच्छा तो आदमी नौचने लगा है। अवनी से अंबर तक अब वह लुप्त प्राय है। अवनी से अंबर तक अब वह लुप्त प्राय है, क्योंकि गिद्ध ही आदमी का पर्याय है। क्योंकि गिद्ध ही आदमी का पर्याय है। अगली क्षणिका है घोड़ी का दुस्साहस। लगा कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी से सरक गई। लगा कि जैसे पृथ्वी अपनी धुरी से सरक गई, दूल्हे को देखते ही जब एक घोड़ी बिदक गई। दूल्हे को देखते ही जब एक घोड़ी बिदक गई, ना जाने कैसे उसको ये एहसास हो गया। ना जाने कैसे उसको ये एहसास हो गया, वर पक्ष की नियत का आभास हो गया। वर पक्ष की नियत का आभास हो गया। अच्छे खासे भोले भाले दूल्हे से सेंट की खुशबू आ रही है। अच्छे खासे भोले भाले दूल्हे से सेंट की खुशबू आ रही है, लेकिन घोड़ी कहती है दूल्हे के शरीर से दहेज की बू आ रही है।
1: बहुत बढ़िया।
2: लेकिन घोड़ी कहती है कि दूल्हे के शरीर से दहेज की बू आ रही है। एक छोटी सी रचना और देखिए।

0: साल की सर्दी का जवाब नहीं, हकीकत है दोस्तों ख्वाब नहीं, इस साल की सर्दी का जवाब नहीं, हकीकत है दोस्तों ख्वाब नहीं कि किसी विरहिणी के नैनों से प्रेमी की याद में दो आंसू निकल गए, प्रेमी की याद में दो आंसू निकल गए, कसम खुदा की खाकर कहता हूं कि गोरे गोरे गालों पे आते जम गए, कसम खुदा की खाकर कहता हूं कि गोरे गोरे गालों पे आते जम गए। तीसरी कविता है, एक ततैये ने मुझे काट लिया, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली, काटने के लिए पांच कवियों में से मुझे छांट लिया।
1: बहुत बढ़िया।
0: एक ततैये ने मुझे काट लिया, पता नहीं कब की दुश्मनी निकाली, काटने के लिए पांच कवियों में से मुझे छांट लिया। जब ततैये ने मुझे काटा तो मैंने उसको डांटा, जब ततैये ने मुझे काटा तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा तुझको आती नहीं शर्म करते हुए ऐसे कर्म, तब वह मुझसे कहने लगा रहने दे मध्य लेक्चर, ज्यादा बकवास करोगे तो दोबारा कर दूंगा पंचर।
1: क्या बात,
0: ज्यादा बकवास करोगे तो दोबारा कर दूंगा पंचर।
2: बढ़िया काव्य पाठ।
0: मेरी अगली कविता का शीर्षक है यंत्र, सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, फिर शुरू होती है घटा गुणा भाग दौड़, लगातार गतिशीलता बढ़ाती है दिल की धड़कन, सुबह का होना चिंताओं का समीकरण, फिर शुरू होती है घटा गुणा भाग दौड़, लगातार गतिशीलता बढ़ाती है दिल की धड़कन, मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय, मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय, मशीनी युग में शाम का सुहानापन लाता है शिथिलता, मशीनों की खटखट और धुआं सांस का पर्याय, मशीनी युग में शाम का सुहानापन लाता है शिथिलता, अकर्मण्यता के इंसान महज एक यंत्र बनकर रह गया है, अकर्मण्यता के इंसान महज एक यंत्र बनकर रह गया। मेरी अगली कविता का शीर्षक है क्रांतिकारी चिड़िया, चिड़िया ने जब जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई, चिड़िया ने जब जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई, तो कौवे ने करे कांव कांव और बाज ने आंख दिखाई, चिड़िया ने जब गिद्ध की नियत पर उंगली उठाई तो कौवे ने करे कांव कांव और बाज ने आंख दिखाई, चिड़िया के चरित्र पर काली कोकरिक ने भी कई सवाल उठाए, चिड़िया के चरित्र पर काली कुकरी ने भी कई सवाल उठाए, कई सवाल उठाए,
1: क्या बात।
0: इधर लोमड़ी ने भी गिद्ध की परोपकारिता के कई उदाहरण गिनवाए, इधर लोमड़ी ने भी गिद्ध की परोपकारिता के कई उदाहरण गिनवाए, जंगल राज में कबूतर के सेवा चिड़िया का गवाह कौन था, जंगल राज में कबूतर के सेवा चिड़िया का गवाह कौन था, गिरगिट की सरपंची में उल्लू बेचारा मौन था, गिरगिट की सरपंची में उल्लू बेचारा मौन था, दिन के उजाले में चमगादड़ों ने गिद्ध की वकालत की, दिन के उजाले में चमगादड़ों ने गिद्ध की वकालत की, फिर तो रटंतु तोते ने भी गिद्ध की हिमायत की, फिर तो रटंतु तोते ने भी गिद्ध की हिमायत की, चिड़िया को तो हारना ही था, चिड़िया को तो हारना ही था, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी के विरुद्ध झूठ फरेब और मक्कारी आपस में मिली थी,
2: बहुत अच्छी,
0: सच्चाई और ईमानदारी के विरुद्ध झूठ फरेब और मक्कारी आपस में मिली थी, चिड़िया जा उड़ जा, चिड़िया जा उड़ जा, पहुंच ऐसे देश, प्रेम भाईचारे और न्याय का जहां फैला हो संदेश,
2: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
0: प्रेम भाईचारे और न्याय का जहां फैला हो संदेश, पर यह समस्या का हल नहीं, समाधान खोज कल नहीं, पर यह समस्या का हल नहीं, समाधान आज खोज कल नहीं, चिड़िया तू जहां कहीं भी जाएगी शोषकों की प्रजाति को ही पाएगी, चिड़िया तू जहां कहीं भी जाएगी शोषकों की प्रजाति को ही पाएगी, इसलिए बहुत ऊंचा उड़ ना पीछे हट ना पीछे मुड़,
2: बढ़िया बहुत अच्छी,
0: इसलिए बहुत ऊंचा उड़ ना पीछे हट ना पीछे मुड़, हौसला और हिम्मत पैदा कर और जा बैठ गिद्ध की पीठ पर, हौसला और हिम्मत पैदा कर और जा बैठ गिद्ध की पीठ पर, छोटी ही सही अपनी चौंस से गिद्ध की गर्दन लहू लुहान कर, छोटी ही सही अपनी चौंस से गिद्ध की गर्दन लहू लुहान कर, हौसले पर गुमान पर सिद्ध अपना स्वाभिमान कर, हौसले पर गुमान कर सिद्ध अपना स्वाभिमान कर, वार पर वार कर शोषक का संहार कर, वार पर वार कर शोषक का संहार कर, चाहे जान चली जाए पर

0: बेचारी बच ना पाए।
1: वाह,
0: वार पर वार कर शोषक का संहार कर चाहे जान चली जाए पर व्याभिचारी बच ना पाए, पर व्याभिचारी बच ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बढ़िया काव्य, बहुत बढ़िया।
0: साथियों, अभी आप सुन रहे थे एक बेहतरीन काव्य संगोष्ठी जिसमें हमारे बहुत ही वरिष्ठ कवि और कवित्रियों ने हिस्सा लिया। काव्य संगोष्ठी में जो कवि और कवित्रियां भाग ले रही थी उनमें सर्वश्री डॉक्टर विशंबर दयाल अवस्थी, डॉक्टर शिल्पा राजपूत जी, सुशांत सुप्रिया जी ने आज हिस्सा लिया। हम सब आप सभी लोगों का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। गोष्ठी का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ कवि श्री मदन राज। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग था वंदना का और प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 8:30 हो चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत का। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन कार्यक्रम की, इस जबरदस्त गीत के साथ।

0: के आगे गराज, गराज के ये मैकेनिक।
1: देखो मुझे पापा ने तेरे कहा उसले रानी, जैसे भी हो शादी तुमसे करनी है ये ठानी।
0: इसके आगे मैं नहीं बता सकती, इनसे पूछ लो।

0: ट्री बना के
1: फिर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंगर दंग
2: बाद में
3: और जब भी नाचे कोई तो सामने से अपने भी पैर थिरकने लगते हैं। और कहानियां कुछ ऐसी होती हैं जो कभी कभी याद रह जाती हैं, और कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि वो ताज़ा हो जाता है।

कहीं कोई सरेंडर हो जाता है और कभी किसी को कहीं सरेंडर कर देना पड़ता है, और ऐसे ही अब हमें सरेंडर करना है। घड़ी के आगे सुइयां बता रही हैं कि अब वक्त हो चला है कि आपसे लें इजाजत। यह है कार्यक्रम का अंतिम गीत।

और अब प्रस्तुत है आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक छोटी सी रूपरेखा। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 8:45 पर आप सुनेंगे देश और दुनिया की खबरों पर आधारित समाचार संध्या। ठीक 9 बजे समय होगा इवनिंग न्यूज का

0: 9:30 पर समय होगा कार्यक्रम अनुगूंज का, जिसमें आज आप सुनेंगे महान लेखिका अमृता प्रीतम, मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जिंदगी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बातें और उनकी आवाजें भी। ठीक 10 बजे समय होगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का, जिसमें आप सुनेंगे वॉयलिन वादन जी रघुवेंद्र प्रसाद का, और 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, और 11:10 पर समय होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, यूरेनियम आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक समझौते पर सहमति जताई और 2030 तक $5 अरब के व्यापार का लक्ष्य निर्धारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। श्री मोदी 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी नदी के किनारे बाढ़ की नई चेतावनी जारी की। मृतकों की संख्या 780 से अधिक हुई। अब तक 149 भारतीयों को बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने $1.5 लाख की आपातकालीन सहायता जारी की। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने आज खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। ताशकंद विश्वविद्यालय में संस्कृत की चेयर स्थापित करने के साथ हिंदी के लिए लाल बहादुर शास्त्री के नाम से 100 छात्रवृत्तियों की घोषणा की गई। भारत ने अराल सागर क्षेत्र में वनीकरण के लिए $10 लाख का अनुदान देने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान में UPI के इस्तेमाल के लिए भी समझौता किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है।
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश खेलों और हिंदी को प्रोत्साहन देने के क्षेत्र में सहयोग के लिए मिलकर काम करेंगे।
2: दोनों देशों के युवाओं, विशेषकर स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के बीच एक्सचेंज को बढ़ावा देना हमारी

0: उच्च प्राथमिकता है। दोनों देशों के बीच टूरिज्म बढ़ाने के लिए आज प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन पर सहमति बनी है। मुझे खुशी है कि उज्बेकिस्तान में हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए आज हम स्कॉलरशिप की घोषणा करने जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तोलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज़्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यह सम्मेलन शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। भारत वर्ष 2017 से SCO का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे संगठन के मंच पर सुरक्षा, संपर्क और अवसर के क्षेत्र में भारत की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेंगे। प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन से इतर SCO के सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। अपनी बिश्केक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी 6वें विश्व नॉमेड खेलों के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। यह आयोजन मध्य एशिया की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का उत्सव है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने उज़्बेकिस्तान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और भारत तथा उज़्बेकिस्तान के बीच चिरस्थायी मैत्री को प्रगाढ़ करने के सतत प्रयासों का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री मोदी के कूटनीतिक सिद्धांतों से नए मार्ग खुल रहे हैं और वे ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि श्री मोदी का ये 36वां वैश्विक सम्मान है। इससे पता चलता है कि उनके नेतृत्व को दुनिया भर में सराहना मिल रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नशा मुक्त भारत के लिए प्रभावशाली नारा, गीत और संदेश तैयार करने की अपील की।
4: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि PM स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
4: PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। PM स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज मिशन शक्ति सेट के माध्यम से हजारों देश की बेटियां अंतरिक्ष तक पहुंच रही हैं।
4: आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।
1: श्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में एवोकाडो की खेती करने वाले कडप्पा के वरदराज का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के इस मौसम में वोकल फॉर लोकल का समर्थन करने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। लखनऊ में पीएम सेतु इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि देश अपनी रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी में बुनियादी कायाकल्प का साक्षी बन रहा है।
5: आज हम डिफेंस सेक्टर में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा डिफेंस प्रोडक्शन लगातार बढ़ रहा है। जब मैं मिनिस्टर बना था तो डिफेंस प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली 46,000 करोड़ था। आपको जानकर खुशी होगी अब हम लोग 1,80,000 करोड़ के आसपास हैं। हमारा एक्सपोर्ट 600 करोड़ था। आज हमारा एक्सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक पहुंच गया है। हम इंडिजिनस डिजाइन को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर तथा एमएसएमई की भागीदारी बढ़ा रहे हैं।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। अब तक प्रभावित इलाकों से 8,186 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 227 विदेशी नागरिक हैं। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। पिछले दो दिनों में 598 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंचे हैं। 900 भारतीय नागरिक चीन में सुरक्षित है। पेचिंग में भारतीय दूतावास उनसे संपर्क में है। भारत से आज 11 टन राहत सामग्री लेकर चौथी उड़ान काठमांडू पहुंची। इससे पहले भारत 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है। इस बीच भारत से भेजी गई विशेष सुरंग बचाव टीम ने आज नेपाली सेना की टीम के साथ मिलकर चिलिमे और लांगटांग क्षेत्र की जल विद्युत सुरंगों में खोज और बचाव अभियान चलाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद या ब्लॉकेड नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। बेल्जियम में पुरुष हॉकी विश्व कप का फाइनल मुकाबला वर्तमान चैंपियन जर्मनी और स्पेन के बीच जारी है। दो क्वार्टर की समाप्ति तक मुकाबला गोल रहित बराबरी पर है। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। और एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत और थाईलैंड के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 14वें ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं।

0: किर्गिस्तान के बिश्केक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में मादक पदार्थों के सेवन के खतरों के प्रति आगाह किया। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, अंतरिक्ष उद्योग में लड़कियों की भागीदारी और कृषि नवाचार को सराहा। और पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी और स्पेन आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Uzbekistan elevate bilateral ties to comprehensive strategic partnership, seal long-term uranium supply pact and set $5 billion trade target by 2030. Prime Minister Narendra Modi conferred Uzbekistan's highest state honor, reaches Kyrgyz Republic to take part in 26th SCO summit at Bishkek. Prime Minister Modi warns of perils of drug abuse in Mann Ki Baat program, celebrates women's economic empowerment, girls entering space industry and agricultural innovation. Nepal issues fresh flood alert along Bhote Koshi River. 149 Indians rescued so far as death toll crosses 780. WHO releases $150,000 emergency aid. And in men's hockey, Germany and Spain locking horns for coveted World Cup title in Belgium. Now the news in detail. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In its remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress, and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the Uzbekistan president following the talks, Prime Minister Modi said maintaining a zero-tolerance policy towards terrorism, extremism and separatism will remain their shared resolve.
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: Mr. Modi said India and Uzbekistan will jointly organize a business summit involving business leaders from both the countries.
2: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम तीन सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए roadmap बनाना चाहिए।
1: Prime Minister Modi said the two countries will also set up cooperation in the field of sports.
2: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। भारत और उज्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक साझेदारी तक लेकर गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक 5 अरब डॉलर की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम SCO के 26वें सरबरा इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मुनशियात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरी शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटेकोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। आलमी इदारे सेहत WHO ने 150,000 अमरीकी डॉलर की हंगामी इमदाद जारी की है। और मर्दों की हॉकी में बेल्जियम में वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। भारत और उज्बेकिस्तान ने आज अपने ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकत दारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सिविल न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे में बाहमी तावुन के हिस्से के तौर पर उज्बेकिस्तान से भारत को यूरेनियम की सप्लाई के लिए एक तवील मुद्दती इंतजाम के बारे में भी इत्तफाक किया है।
1: दोनों पक्ष मिलकर एक बिजनेस समिट का आयोजन करेंगे जिसमें दोनों देशों के बिजनेस लीडर्स शामिल हो। यूरेनियम की सप्लाई के लिए दोनों पक्ष लॉन्ग टर्म व्यवस्था बनाएंगे। आज हम 3 सिस्टर सिटी और सिस्टर स्टेट अरेंजमेंट कर रहे हैं। हमें इनका पूरा पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए रोड मैप बनाना चाहिए।
0: नायाब मादनियात की कानकनी के लिए मुमकिना मकामात के बारे में भी तबादले ख्याल किया गया। दोनों मुल्कों ने साल 2030 तक दो तरफा तिजारत को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ियोयेव के दरमियान वफ्द की सतह की बातचीत के बाद ये फैसले किए गए हैं। दोनों रहनुमाओं ने 11 मुफाहमत नामों का तबादला किया जिनका मकसद कानकनी, आयुर्वेद, सियाहत, सकाफत, इक्तसादी और मालियाती मुजाकरात और तालीम समेत अहम शोबों में दो तरफा तआवुन को बढ़ाना है। मुजाकरात के दौरान अपने बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत उज्बेकिस्तान मजबूत शराकत दारी वस्ती एशिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक ताकतवर मुहर्रिक होगी।
1: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज हमने हमारी साझेदारी के इस नए स्वरूप में तेज गति और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ने का एम्बिशियस एजेंडा तैयार किया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
0: मुजाकिरात के बाद उज्बेकिस्तान के सदर के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी खिदे को दरपेश संगीन चैलेंजेस हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन खतरात को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी एक मुश्तरका अज़्म होगी।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर

0: चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान दोनों मुल्कों के कारोबारी रहनुमाओं की एक कारोबारी समिट का मुश्तरका तौर पर इनेकाद करेंगे। वजीर आजम मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक खेलों से मुतालिक तावुन को भी मजीद बढ़ाएंगे।
0: स्पोर्ट्स भी हमारे सहयोग के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में उभर रहा है। पिछले वर्ष गोवा में 20 वर्षीय उज्बेक ग्रैंड मास्टर सिंदारोव ने वर्ल्ड कप जीता। अब नवंबर में उनका मुकाबला भारत के 20 वर्षीय चेस चैंपियन गुकेश के साथ होने वाला है। एक बिसात पर जब ये दो युवा सितारे आमने सामने होंगे तो जाहिर है इस मुकाबले पर पूरी दुनिया की नजर होगी।
1: जनाब मोदी ने उज्बेकिस्तान के तलबा के लिए 100 लाल बहादुर शास्त्री स्कॉलरशिप का ऐलान किया ताकि इस वस्ती एशियाई मुल्क में हिंदी जबान को फरोग दिया जा सके। उन्होंने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में संस्कृत चेयर कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौके पर जनाब मोदी को सदर शवकत मिर्जियोयेफ ने उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ ओली दर्जली दोस्त लीग से सरफराज किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन समेत कई मरकजी वजीरों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से सरफराज किए जाने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये बावकार एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत और भारत उज्बेकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के लिए उनकी मुस्तकिल कोशिशों का इतराफ है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इसे हर भारतीय के लिए फख्र का अजीम लम्हा करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत की सिफारती पॉलिसी नई सरहदें तय कर रही है, आलमी खित्ते जनूब की आवाज को मजबूत बना रही है और अक्वामे आलम के दरमियान ताल्लुकात मुस्तहकम करके इंसानियत की फलाह बहबूद के भारत के तहजीबी मकासद को आगे बढ़ा रही है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जय शंकर ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती को गहरा करने की मुस्तकिल कोशिशों का इतराफ है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि यह एजाज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजबूत बनाने की कोशिशों और भारत के बढ़ते हुए आलमी रुतबे की अक्कासी करता है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए फख्र का लम्हा है और भारत और उज्बेकिस्तान के दरमियान पायदार दोस्ती की एक रोशन मिसाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंच गए हैं। बिश्केक के अपने दो रोजा दौरे के दौरान वजीर आजम शंघाई तावुन तंजीम SCO के रुकन ममालिक के रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें करेंगे। वो 1 सितंबर को SCO के 26वें सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी बिश्केक में शंघाई तावुन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। ये इजलास शंघाई तावुन तंजीम की 25वीं सालगिरह के मौके पर हो रही है। भारत 2017 से इस तंजीम का रुकन है। वजीर आजम इस इजलास से खिताब करेंगे। इस दौरान वो सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और मौके के सिलसिले में भारत की तरजीहात को उजागर करेंगे। वजीर आजम इजलास के मौके पर SCO रहनुमाओं के साथ दो तरफा मीटिंगें भी करेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम 6ठे वर्ल्ड नॉम्ड गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे, जो वस्ती एशिया के मालामाल सकाफती विरसे का जश्न मनाने के लिए मुनक्कद किए जा रहे हैं। बिश्केक से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में लोगों से अपने ख्यालात का इजहार किया। अपने खिताब में उन्होंने मुनशियात के इस्तेमाल के समाजी नुकसानात के खिलाफ सख्त इंतबाह दिया और विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम को उजागर किया। उन्होंने PM स्वनिधि स्कीम के जरिए खवातीन की क्यादत में माशी खुदमुख्तारी पर जोर दिया और खलाई सनत जैसे जदीद शोबों में खवातीन के लिए बढ़ते हुए मौके की तारीफ की। वजीर आजम ने ज़राअत और डिजिटल टेक्नोलॉजी में अवामी सतह पर होने वाली अहम इख्तराअत की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम मुल्क भर में रफ्तार पकड़ रही है और मुनशियात से पाक नौजवान और मुनशियात से पाक भारत का मकसद महज एक रस्मी बात नहीं है, बल्कि इस मुहिम से बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ रहे हैं।
0: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं? जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का

0: मैसेज हो या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाए जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मनुष्यात की लत सिर्फ एक फर्द को नहीं बल्कि पूरे खानदान और मुआशरे को मुतासिर करती है। उन्होंने मनुष्यात के खिलाफ बेदारी पैदा करने और नशे की लत में मुब्तला अफराद की मदद करने वाले लोगों की तारीफ की। वजीर आजम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में पीएम स्वनिधि योजना के रोल को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने की इस पहल पर मजीद तवज्जो दी जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि पीएम स्वनिधि योजना के तकरीबन 46% मुस्तफिदीन खवातीन हैं और मुल्क भर में तकरीबन 35 लाख खवातीन अपने कारोबार को वसत देने के लिए इस स्कीम से फायदा उठा रही हैं।
0: पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। मेहनत खूब थी लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया।
1: सफाई सुथराई के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि जब किसी इलाके को साफ रखने का अज़्म अवाम की इज्तिमाई वाबस्तगी बन जाता है तो ये अमल इस मकाम की शिनाख्त को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सफाई सुथराई से मुतालिक ऐसी कोशिशें दूसरों के लिए मुसलसल तहरीक का बाइस बन रही हैं। वजीर आजम ने मिशन शक्ति सेट का भी जिक्र किया जो हजारों लड़कियों को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और खलाई शोबे में इख्तराअत के मौके फराहम कर रहा है। नेपाल में अचानक सैलाब आने से मरने वालों की तादाद 781 तक पहुंच गई है। वहां मजीद लाशें मिली हैं। तकरीबन 2500 अफराद अब भी लापता हैं। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा होने वाले खतरात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतालिक अथॉरिटी NDRRMA ने बताया कि मुतासिर जिलों से 8186 अफराद को बहिफाजत निकाला गया है जिनमें 227 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। नेपाल हुकूमत ने भोटे कोशी दरिया में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। हुकूमत ने रसुआ नुवाकोट और धार्डिंग जिलों में दरिया के किनारे आबाद लोगों से मोहतात रहने के लिए कहा है। अथॉरिटी ने दरिया में सैलाब का दबाव बढ़ने की इत्तला दी है। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने बताया कि नेपाल में अचानक सैलाब आने के बाद से अब तक 149 भारतीय शहरियों को बचाया गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब जायसवाल ने कहा कि तकरीबन 50 भारतीय शहरियों के साथ राबता कायम हो गया है जिनसे इससे पहले राबता कायम नहीं हो पा रहा था। वजारत खारजा ने कहा है कि 275 भारतीय शहरियों के लापता होने की खबर है जबकि भारत निजात तकरीबन 128 अफराद अब भी लापता हैं जिनके पास दीगर मुल्कों की शहरियत है। भारत सैलाब से मुतासिर नेपाल में बचाव और राहत के काम में लगातार मदद कर रहा है। भारत ने सैलाब से मुतासिर नेपाल के लिए 68.5 टन इमदादी सामान भेजा है और तलाश और बचाव की कार्रवाइयों में मदद के लिए तकनीकी टीमें फॉरेंसिक माहरीन और जरूरी अशिया भी रवाना की हैं। इस दौरान आलमी सेहत तंजीम WHO ने नेपाल में सैलाब से मुतासिर लोगों की मदद के लिए जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के सेहत के इमरजेंसी फंड से 150,000 अमरीकी डॉलर जारी किए हैं। WHO के जुनूब मशरकी एशियाई खित्ते के दफ्तर के ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर नीलेश बुद्धा ने कहा कि इस इमरजेंसी फंड से फौरी जरूरियात की तकमील में मदद मिलेगी। बेल्जियम के वावरे में बेल्फियस हॉकी एरिना में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल दिफाई चैंपियन जर्मनी और स्पेन के दरमियान खेला जा रहा है। जर्मनी 2023 में जीता हुआ अपना खिताब बरकरार रखने के साथ साथ चौथा वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश कर रहा है जबकि स्पेन हॉकी वर्ल्ड कप का अपना पहला खिताब हासिल करने के लिए खेल रहा है। अब से कुछ देर पहले तक जर्मनी 1-0 से आगे था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और उज़्बेकिस्तान अपने बाहमी ताल्लुकात को जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी तक ले गए। दोनों मुल्कों ने तवील मुद्दती यूरेनियम सप्लाई मुआहदे पर दस्तखत किए और 2030 तक $5 अरब की दो तरफा तिजारत का हदफ मुकर्रर किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को उज़्बेकिस्तान के आला तरीन सरकारी एजाज से नवाजा गया है। जनाब मोदी बिश्केक में शंघाई ताउन तंजीम SCO के 26वें सरबराह इजलास में शिरकत के लिए जमहूरिया किर्गिज पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में मनुष्यात की लानत से खबरदार किया। उन्होंने खवातीन की माशी खुद मुख्तारी, खलाई सनत में लड़कियों की शमूलियत और जरिए शोबे में जिद्दत तराजी को सराहा। नेपाल ने भोटे कोशी दरिया से मुत्तसिल इलाकों में सैलाब का ताजा अलर्ट जारी किया है। अब तक 149 भारतीयों को बचाया जा चुका है। हलाकतों की तादाद बढ़कर 781 हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म।
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज।

कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय बीत जाने के बाद भी हमारे बीच रहती हैं। वे इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमसे बातें करती हैं, कभी कविता के जरिए, कभी खेल के मैदानों की यादों के जरिए और कभी अपने जीवन के अनुभवों के जरिए। इन आवाजों में एक पूरा इतिहास सांस लेता है और जब बरसों बाद ये आवाजें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ कल आज से कुछ कह रहा हो। शायद इसलिए आवाज हमारी पहचान होती है।

0: फिराक गोरखपुरी, मेजर ध्यानचंद और अमृता प्रीतम। आज ये तीनों महान हस्तियां हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाजें हमारे साथ हैं। आकाशवाणी के अभिलेखों में सुरक्षित इन आवाजों के माध्यम से आज हम उन्हें फिर याद करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनके जीवन को समझेंगे और जानेंगे कि इतने वर्षों के बाद भी उनकी आवाजें हमें क्यों प्रेरित करती हैं। आइए समय की इस दूरी को कुछ देर के लिए मिटाते हैं और सुनते हैं उनकी आवाज। इन तीनों की दुनिया अलग थी। एक शायर थे, एक महान खिलाड़ी और एक प्रसिद्ध लेखिका। लेकिन इन तीनों में एक बात समान थी, इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई और अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ी जिससे आने वाली पीढ़ियां आज भी प्रेरणा लेती हैं। सितारों से उलझता जा रहा हूं, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूं, तेरे गम को भी कुछ बहला रहा हूं, जहां को भी समझता जा रहा हूं। अब सुनते हैं एक ऐसी आवाज जिसने उर्दू शायरी को अलग पहचान दी।
1: शायरी तो हसास तरीके तो कोई बात कह देने का नाम, शायरी महज इजहार नहीं, शायरी रूहानी लिहाज से एक तामीर, तकरीफ की फोटोग्राफी।
0: 8 अगस्त 1896 को गोरखपुर में जन्मे फिराक गोरखपुरी

0: का नाम था रघुपति सहाय। वे उर्दू के मशहूर शायर और लेखक थे। उनकी शायरी में प्रेम, प्रकृति, जीवन और इंसानी रिश्तों की गहरी समझ दिखाई देती है।
1: किसी का कौन हुआ यूं तो उम्र भर, फिर भी ये हुस्न इश्क तो धोखा है सब, मगर फिर हजार बार जमाना इधर से गुजरा है, नई नई से है कुछ तेजी रह गुजर।
0: फिराक की खासियत ये थी कि उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और संस्कृति की सहज झलक मिलती है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए इंसान और इंसान के बीच के रिश्तों को समझने की कोशिश की। उनकी भाषा और सोच में भारत की उस साझा संस्कृति की झलक मिलती है, जहां अलग अलग भाषाएं और परंपराएं होते हुए भी भावनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं।
1: उन्हीं के दिल हैं अमीने रमूज आजादी, जो जानते हैं असीरी है एक फन से यार।
0: फिराक की आवाज में भी वही अपनापन महसूस होता है जो उनकी शायरी में दिखाई देता है। भारत की खूबसूरती भी यही है। यहाँ भाषाएं अलग हैं, बोलने का अंदाज अलग है, लेकिन भावनाएं एक जैसी हैं।
1: मैंने ये नगमे गाते गाते कितनी दूर निकल आया, आयनात की हर सरहद नजरों से छुपी जाती है। अलविदा ऐ जन्म साथियों, अलफिराक ऐ हम असरो, एक अनसुनी पुकार दूर से मुझको कहीं बुलाती है। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साज बजाओ, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को।

शब्द अलग हो सकते हैं, लहजे अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात दिल से निकलती है तो वो हर दिल तक पहुंचती है। शायद यही फिराक की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने भाषा की सीमाओं के पार जाकर इंसान को इंसान से जोड़ दिया। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। मेरी नजरें भी ऐसे कातिलों का जानो ईमान है, निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।

0: The final of the Olympic hockey. The wonderful Indian team in the white shorts, who so far have scored 30 goals to naught in the tournament, are playing Germany. India score. The final result was India 8, Germany 1.
1: भारतीय हॉकी की कहानी उस दौर की कहानी है जब भारत की प्रतिभा और खेल कौशल ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया था। और इस गौरवशाली यात्रा के सबसे उज्जवल अध्यायों में एक नाम था मेजर ध्यानचंद। उनके लिए हॉकी महज एक साधना थी। गेंद पर अद्भुत नियंत्रण, खेल की गहरी समझ और गोल करने की असाधारण कला ने उन्हें दुनिया के महानतम खिलाड़ियों की पंक्ति में ला खड़ा किया। लेकिन ध्यानचंद की असली महानता उस खेल संस्कृति और विरासत में थी जो वे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ गए। 29 अगस्त उनकी जयंती को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिन उन असंख्य खिलाड़ियों के परिश्रम, अनुशासन और समर्पण को सम्मान देने का दिन भी है जो अपने खेल के माध्यम से देश का गौरव बढ़ाते हैं। ध्यानचंद से जुड़ी अनगिनत कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित है। तस्वीरों में दर्ज उनका व्यक्तित्व, मैदान से जुड़े किस्से और उनकी उपलब्धियां हमें उस स्वर्णिम दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन जब इतिहास के पन्नों से निकलकर उनकी आवाज हमारे सामने आती है तो वो दौर और भी जीवंत हो उठता है। आइए सुनते हैं मेजर ध्यानचंद की अपनी आवाज आकाशवाणी के अभिलेखों से।
2: फॉरेन कंट्री जो हॉकी सीखी है उसमें शक नहीं है कि हिंदुस्तान के जरिए सीखी है। मैंने देखा है वहाँ कि हॉलैंड के अंदर और जर्मन के अंदर जिस वक्त हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए जाते थे ग्राउंडों पर, तो उनके टेलीविजन वगैरह, फोटोग्राफ्स वगैरह ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन लेने के लिए हमारे पीछे पीछे लग जाते थे। लेकिन हम लोग खिलाड़ी थे, हमको इन बातों के भी जरा सा भी ख्याल नहीं होता था कि क्या है। एक फ़ोटो मांग लेते थे, बाकी वो अपना सीक्रेट हर एक चीज़ लड़कों को खिलाने के लिए खींच लेते थे। और वो फोटोज़ स्क्रीन के ऊपर अपने बच्चों को, ये मैंने 63 में देखा, जब मैं 63 में बर्लिन में गया फिर ये देखा, बच्चों को वो स्क्रीन के ऊपर उसको उनको शो करते थे और उनको उसी वक्त साथ में बोलते भी जाते थे कि देखो ये हाथ इधर रखना है, ये पैर इधर है और ये सिर इधर है, बाल को जब ड्रिबल करना है तो उसका हेड किधर होना है, फलान। ऐसा करने के बाद उन लोगों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली कि हम अब हिंदुस्तान का मुकाबला करने लगे। मैंने देखा है रिसेंटली यूरोप कंट्री के खेलों को कि वो हमारे मुकाबले में थोड़ा थोड़ा ड्रिबलिंग करने लगे हैं बजाय हिट मारने के, अब ड्रिबलिंग भी शुरू कर दिया उन लोगों ने। तो इसमें शक नहीं है कि सीखा हम लोगों से है और इसमें हमारे लोगों की, हमारे हिंदुस्तान की अभी तक वो कंट्री तारीफ करती है कि हाँ हिंदुस्तान जो खेलती है हॉकी वो हिंदुस्तान के सिवा और कोई नहीं खेल सकता।
3: बादलों के महल में मेरा सूरज सोया हुआ है और उस महल का कोई दरवाज़ा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, और सदियों के हाथों ने जो पगडंडी बनाई है वो मेरे चिंतन के पैरों के लिए बहुत संकरी है। मैं अपने सूरज के पास कैसे पहुँचूँ जो बादलों के महल में सोया हुआ है।
1: अभी आपने सुनी अमृता प्रीतम की आवाज। उनकी बातों में एक सादगी है और इसी सादगी में उनके अनुभवों की गहराई भी दिखती है। अमृता प्रीतम ने ऐसे समय में लिखा जब समाज में महिलाओं के लिए अपनी बात खुलकर कहना आसान नहीं था। उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा, उन्होंने बंटवारे का दर्द लिखा, उन्होंने औरत के मन की बात लिखी और सबसे बढ़कर उन्होंने अपने तरीके से जीने और लिखने की हिम्मत दिखाई। 31 अगस्त 1919 को जन्मी अमृता प्रीतम भारतीय साहित्य की ऐसी आवाज थी जिन्होंने प्रेम, रिश्तों, अकेलेपन और अपने समय की पीड़ा को बहुत सहज शब्दों में लिखा। उनकी लेखनी में एक खास बात थी, वे दिल की बात कहने से कभी पीछे नहीं हटी।
3: हमारे देश के 7 पवित्र स्थान 7 पुरियां कहे जाते हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, कांची, काशी, अवंती और द्वारापुरी। इनमें से द्वारापुरी सागर के किनारे थी, जो कृष्ण के देह त्यागने के सातवें दिन सागर में अलोप हो गई थी। बाद में वो द्वारका के नाम से दूसरे स्थान पर बस गई, पर अपने मूल स्थान से वो लोप हो चुकी है। मैं सोचती हूँ कि सागर में लोप हो चुकी द्वारावती हर इंसान के मैं का वो टुकड़ा है, जिसकी तलाश हर इंसान के मैं को करनी होती है और उसका इतिहास खोजना होता है। इसी मैं की तलाश में मैंने जाना कि मेरे में और एक ब्राह्मण में क्या फर्क है। यही कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मेरे में और एक क्षत्रिय में भी यही फर्क है कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ। मेरे में और एक वैश्य में भी यही फर्क है कि मैं वैश्य नहीं हूँ। इसी तरह मेरे में और एक शूद्र में भी यही फर्क है कि मैं शूद्र नहीं हूँ। और जाना कि मेरे में और एक हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई में भी यही फर्क है कि मैं हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई नहीं हूँ। मेरे मैं की एक पवित्र पुरी द्वारावती फिर कौन से पानी में लोप हो गई, यही खोजते हुए मैंने अपनी द्वारावती का भेद पा लिया कि मैं चरक जाति की हूँ। हमारे प्राचीन काल में चरक उसे कहा जाता था जिसका मुतालिया, जिसका अध्ययन जिंदगी में कभी खत्म नहीं होता था। वो तमाम जिंदगी इलम को, ज्ञान को ग्रहण करता था और तमाम जिंदगी उस इलम को, ज्ञान को बांटता रहता था। मैंने इलम के लिए अपनी प्यास को समझ लिया तो अपनी जाति पहचान ली और जान लिया कि दो हाथों से जो अर्जित करना है वही हजार हाथों से बांट देना है।
1: आज इतने वर्षों बाद भी अमृता प्रीतम की बातें हमें अपनी सी लगती हैं, शायद इसलिए कि उन्होंने अपने समय की उन भावनाओं को शब्द दिए जिन्हें महसूस तो बहुत लोग करते थे लेकिन कह नहीं पाते थे। प्रेम हो, बिछड़ने का दर्द हो, विभाजन की पीड़ा हो या एक स्त्री के मन और अपनी पहचान की बात, अमृता प्रीतम ने हर विषय को बहुत सच्चाई और बेबाकी से लिखा।
3: अर्ध नारीश्वर का फलसफा खो गया तो दास्ता पैदा हुई, शिव शक्ति जैसा चिंतन खो गया तो जड़ता पैदा हुई, धर्म खो गया तो प्रतिकर्म में से मजहब पैदा हुआ, आत्मा खो गई तो शरीर एक वस्तु बन गया, मजहब और सियासत बहुत बड़े माध्यम बन गए जिनके हाथों वस्तु बन चुके इंसान का व्यापार होता है।
1: उन्होंने अपने जीवन में भी अपनी राह खुद चुनी और अपनी पहचान बनाई। यही वजह है कि उनका साहित्य केवल एक दौर की कहानी नहीं रह गया, उनकी रचनाएं कई भाषाओं में पढ़ी और अनुदित हुई। अलग अलग प्रदेशों के पाठकों ने उनमें अपने जीवन और अपनी भावनाओं की झलक देखी। शायद यही किसी लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। उनकी बात उनके दिल से निकलती है लेकिन पहुंचती है हर दिल तक। अमृता प्रीतम के साथ तो आकाशवाणी का रिश्ता और भी खास है। अमृता प्रीतम ने दिल्ली में आकाशवाणी की पंजाबी सेवा में काम किया था और 1961 तक जुड़ी रहीं, यानी जिस आकाशवाणी के अभिलेख आज उनकी आवाज को हमारे लिए संभाल कर रखे हुए हैं, कभी उसी आकाशवाणी का हिस्सा बनकर अमृता प्रीतम ने भी श्रोताओं तक अपनी बात पहुंचाई थी।
3: मेरी तमाम दुनिया सपनों की दुनिया है, इसे तकसीम करूं तो एक हिस्सा जागती आंखों के सपनों से भरा हुआ है और दूसरा सोई हुई आंखों के सपनों से। जिंदगी का यथार्थ क्या है और क्या हो सकता था, इसी यात्रा को मैं नाम देती हूँ मैं से लेकर मैं तक की यात्रा, यानी अपने ही छोटे मैं से लेकर अपने ही बड़े मैं तक की यात्रा। यूनान के लेखक निकोस काजांजाकिस ने मेरे इस एहसास को बड़े खूबसूरत अल्फाज दिए थे, क्रिएट एन आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू रिजेंबल इट। मैंने काजांजाकिस के इन अल्फाज को गुरु मंत्र की तरह धारण किया है और जो सोचती रही लिखती रही वो एक यात्रा है, अपने छोटे मैं से लेकर अपने बड़े मैं तक पहुंचने की। कह सकती हूँ कि ये एक अक्षर की यात्रा है, छोटे मैं से लेकर बड़े मैं तक की यात्रा, गुलामी से स्वतंत्रता तक की यात्रा, नफरत से मोहब्बत तक की यात्रा, जड़ से चेतन तक की यात्रा, अक्षर से अर्थ तक की यात्रा, और महदूद से लामहदूद तक की यात्रा, यानी सीमित से असीम होने तक की यात्रा।

0: समय बीत जाता है, लोग चले जाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें रह जाती हैं। और जब वे आवाज़ें फिर सुनाई देती हैं तो लगता है जैसे बीता हुआ समय कुछ पल के लिए लौट आया हो। एक ने अपने शब्दों से जिंदगी को आवाज़ दी, एक ने अपने खेल से देश का गौरव बढ़ाया और एक ने अपनी शायरी से दिलों में जगह बनाई। रास्ते अलग थे लेकिन मंजिल एक, अपने हुनर को पहचानना, उसे साधना और ऐसा काम करना जो वक्त बीत जाने के बाद भी लोगों को प्रेरित करता रहे। अमृता प्रीतम की लेखनी से हम अपने मन की बात कहने की हिम्मत सीखते हैं। मेजर ध्यानचंद से मेहनत, अनुशासन और अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा सीखते हैं। और फिराक गोरखपुरी से भाषा और संस्कृति की सीमाओं से ऊपर उठकर इंसान को समझना सीखते हैं। समय बदलता रहेगा, पीढ़ियां बदलती रहेंगी, लेकिन इन महान व्यक्तित्वों से मिलने वाली सीख कभी पुरानी नहीं होगी। नई पीढ़ी इनके जीवन से सीखती रहेगी और अपने सपनों को पूरा करने का साहस पाती रहेगी। ये तीनों आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन इनकी यादें हैं, इनके शब्द हैं, इनके अनुभव हैं और सबसे बढ़कर इनकी आवाजें हैं। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मगर आवाज वो ठहर जाती है। यही तो है अनुगूंज, वक्त के साथ तस्वीरें धुंधली पड़ जाती हैं, नाम यादों में कहीं पीछे छूट जाते हैं, लेकिन आवाज अपने होने की एक निशानी छोड़ जाती है।
1: अभी आप आकाशवाणी अभिलेखागार द्वारा निर्मित कार्यक्रम अनुगूंज सुन रहे थे। वाचन आशुतोष कुमार, शीर्षक गीत राजेश राज और गायक जितेंद्र सिंह, शोध आलेख एवं निर्देशन मोनिका गुलाटी।

0: राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन वादन। जी, राघवेंद्र प्रसाद कर्नाटक वायलिन वादक हैं और ये आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। दिल्ली में जन्मे जी राघवेंद्र प्रसाद ने कर्नाटक वायलिन वादन की बारीकियां अपने गुरु कलैमा मणि श्री वी एस के चक्रपाणी जी के मार्गदर्शन में सीखी हैं। आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से कर्नाटक संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है, जहां आप रजत पदक विजेता रहे हैं। राघवेंद्र प्रसाद एकल वादन के साथ साथ एक सिद्धहस्त संगतकार के रूप में भी संगीत जगत में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए आपको युवा कलाकार छात्रवृत्ति से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आपको सन 2010 में CCRT छात्रवृत्ति, 2019 में युवा पुरस्कार और युवा उभरते कलाकार का खिताब, 2022 में नाद लय शिखामणि तथा 2023 में संस्कृति मंत्रालय एवं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संयुक्त रूप से गंधर्व विज्ञ सम्मान से नवाजा गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला का परचम लहराते हुए आपने रूस में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भाग लिया और स्विट्जरलैंड के रीटबर्ग संग्रहालय में प्रस्तुतियां दी। देश के प्रतिष्ठित मंचों जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जालंधर का प्रसिद्ध हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, राष्ट्रपति भवन, TTD, नाद नीराजनम, वाराणसी का श्री संकट मोचन मंदिर स्पिकमैके तथा तिरुवैयारू में त्यागराज आराधना महोत्सव में भी इनकी प्रस्तुतियां सराहनीय रही हैं। एक कुशल संगीतकार के रूप में राघवेंद्र ने पद्म भूषण श्री TN शेष गोपालन, मल्लाडी ब्रदर्स, नेवेली श्री संथान गोपालन, श्री OS अरुण, मामलम सिस्टर्स तथा डॉक्टर के वागीश जैसे संगीत जगत के शीर्ष दिग्गजों के साथ सफलतापूर्वक वायलिन संगत की है। आइए सुनते हैं जी राघवेंद्र प्रसाद का कर्नाटक वायलिन वादन। आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री वरुण राजशेखरन संगत कर रहे हैं। जी राघवेंद्र प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ राग मणिरंगू से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभानुजेशा। इसके रचनाकार हैं महाराजा स्वाति तिरुनाल। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रवि वासरी अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वायलिन रिसाइटल बाय जी राघवेंद्र प्रसाद। जी राघवेंद्र प्रसाद is an A-grade violin Carnatic artist of Akashvani and Doordarshan. He has done his master's in Carnatic music from Delhi University. He has learnt basics of violin recital by Kalaima Mani Shri V.S.K. Chakrapani. He is recipient of scholarship to young artist awarded in the year 2019-20 by Ministry of Culture for Carnatic Instrumental Violin. He was awarded scholarship by Center for Cultural and resources training in the field of Carnatic music instrument violin in 2010. Awarded Gandharva Vignaya jointly by Ministry of Culture, Government of India and Art of Living Bengaluru in January 2023, he has performed violin concerts in India International Center, Harivalla Festival Jalandhar, Rashtrapati Bhavan Delhi, Tamil Sangam, Lok Kala Manch, Bharatiya Vidya Bhavan Chennai, and many places in Delhi and Chennai. He has been a part of prestigious Festival of India in Russia, performed in Redberg Museum, Switzerland, and has performed in various countries all over the world. He has also accompanied leading artists like Padma Bhushan and Sangeet Kalanidhi, Shri TN Shesh Gopalan, Malladi Brothers, Shri Vishnu Dev, Neveli Shri Santhan Gopalan, Shri OS Arun, Mambalam Sisters, Dr. Manda Sundarani, Dr. K. Vagish, Dr. T.V. Manikandan, Dr. Kanna Kumar, and other renowned artists. Accompanied in various places like Sangeet Natak Academy, Sri Sankat Mochan Hanuman Temple in Varanasi, Spikmake, IGNCA, Andhra Bhavan, India International Center, India Habitat Center, Chinmay Mission, Telugu and Malayali associations, etc. Today, he is accompanied on Mridangam by Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. G. Raghavendra Prasad begins his violin recital with Rag Mani.

0: ये था जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग मणिरंगु। कार्यक्रम को जारी रखते हुए जी राघवेंद्र प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग वराली। रचना के बोल हैं शेषाचल नायकम। इसके रचनाकार हैं मुथुस्वामी दीक्षितर। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: That was राग मणिरंगु। Continuing his recital, G. Raghavendra Prasad now presents another composition based on Rag Varali. Composition is Shesha Chalanayakam, composed by Muthuswami Dikshitar and is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे जी राघवेंद्र प्रसाद का वायलिन पर बजाया गया राग वराली। अपने कार्यक्रम का समापन जी राघवेंद्र प्रसाद राग बिलहरी इसे कर रहे हैं। रचना के बोल हैं श्री चामुंडेश्वरी पालय माम। इसके रचनाकार हैं मैसूर वासुदेवाचार। ये रचना आदि ताल में निबद्ध है।
1: जी राघवेंद्र प्रसाद कंक्लूड्स हिज वायलिन रिसाइटल विद रागम बिलहरी। Composition श्री चामुंडेश्वरी पालय माम, composed by मैसूर वासुदेवाचार, and is set to आदितालम।

0: आज के कार्यक्रम में आपके साथ मृदंगम पर यशवंत हम्पी होली और घटम पर वरुण राजशेखरन संगत कर रहे थे। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा अब यहीं संपन्न होती है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on Mridangam by Yashwant Hampi Holi and on Ghatam by Varun Rajashekharan. With that, we conclude tonight's Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was earlier recorded in the studios of Akashvani Delhi and was broadcast from the Delhi station of Akashvani.

शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के

0: उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलेक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। श्री मोदी ने इस सम्मान को सभी भारतीयों को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों सभ्यताओं के बीच चिरस्थायी मैत्री का प्रतीक है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
1: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। नेपाल सरकार ने भोटे कोशी नदी में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। जर्मनी ने स्पेन को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। बेल्जियम में खेले गए फाइनल मुकाबले के 44वें मिनट में जर्मनी के मिशेल स्ट्रोथॉफ ने एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज तीसरे स्थान के लिए मैच में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan today decided to elevate their bilateral relationship to comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have also set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memoranda.

श्रोतो, ये गीत हमने लिया था फिल्म आंधी से। आवाज थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ, जो कि हमारे पास लगातार पहुंच रहे हैं। पहला मैसेज आया है खैरागढ़ छग मोतीलाल भीमटे सुशीला भीमटे जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार अमर ताम्रकार दिलीप वर्मा संजय सोनी अरुण कनौजिया पवन यादव सुनील जैन विपिन गुप्ता रज्जन रजक लालू सोना मोना हनी यश सौम्या और उनके मम्मी पापा। आप लिखते हैं जीवन के सफर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का

सजीव चित्रण जीवन को एक और जहां धार्मिक पहलुओं से जोड़ता है, वहीं कृष्ण की लीलाओं में चाहत और मोहब्बत की बातें प्यार करने वालों के लिए बहुत ही अहम होती हैं। हर समय हर अंदाज राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर दिल के करीब होता है। शाम के वक्त जब ऐसे गीत हम कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि दूर पहाड़ों के बीच से किसी की चाहत किसी को पुकार रही है। क्या बात है, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें लिखकर आपने भेजी हैं। अगला मैसेज हमारे पास आया है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंढरपुर से। जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, नसीर मुलानी, चाचा चाची और पूरा मुलानी परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वर्ण सिंह गांव दौलेवाला जिला मोगा पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगला मैसेज मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि आया है रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया, सोनू मोनू रानू का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना, गुरवंश सिंह जौड़ा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी शामिल हो चुके हैं, साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले फरमाइशी गीत की तरफ।

कुछ रिश्ते आवाज़ नहीं देते, फिर भी दिल उन्हें सुनता रहता है। कुछ लोग पास नहीं होते, फिर भी उनका एहसास साथ रहता है।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म शोर से, आवाज थी मुकेश और लता मंगेशकर की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। जिला नवा शहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज चंडीगढ़ सिटी से बिमला अनेजा जी और सतीश अनेजा जी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से आया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। गांव व डाकघर निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर सिंह, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर व करमजीत कौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंदरी लहरे जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज आया है हमारे पास सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। आप लिखते हैं, आदरणीय रचना अग्निहोत्री जी सादर प्रणाम, कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपकी फरमाइश मधुरवाणी, मोहक प्रस्तुति, मन भावन गीत, मस्त कार्यक्रम, मन से बड़े वाली बधाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी वाली बधाई के लिए। अगला मैसेज हमारे पास आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी और विमला अनेजा जी का, आप लिखते हैं, अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें पाने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कान को इतना सस्ता कर दो कि हर कोई उनको पाने की चाहत रखे। क्या बात कही है, बिल्कुल सही कहा, अपने आंसुओं को महंगा कर दो और अपनी मुस्कान को बहुत सस्ता, क्या बात है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया सबकाल और विशाल सबकाल जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे का, अंजलि करवा, बाला साहिब करवा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुकी हैं। और इसी के साथ चलते हैं आपकी फरमाइश के अगले गीत की तरफ।

श्रोताओ, यादों का कोई मौसम नहीं होता, ये कभी भी बरसने लगती हैं। हम चाहे कितना भी मुस्करा लें, कुछ बातें आंखों से कहने लगती हैं।

जो तो ये गीत हमने लिया था फिल्म महल से, आवाज थी लता मंगेशकर जी की। और इसी के साथ चलते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी का आप लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रामदेवरा से दिनेश चौहान जो कि नेत्रहीन है, और डांगरी से बाबूराम जयपाल जो कि दिव्यांग है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू जी का। डुमराव गांव डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से आर राज, एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। 16 नंबर वार्ड गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, पूजा रेखा रघुवंशी, ललिता जगदीश चौहान, चंदा युवराज वानखेड़े, लक्ष्मी रन नारायण, भाऊ खड़से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज आया है हमारे पास नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिस वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार।

आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। चांदूर बिस्वा महाराष्ट्र से, राम भाऊ खड़से, लक्ष्मण खड़से, भरत भाऊ खड़से, शत्रुघ्न खड़से, नारायण भाऊ खड़से, ललिता खड़से, कुमारी वंदना मराठा, भावू मराठा चित्रपट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय श्रीमती रचना अग्निहोत्री जी नमस्ते। मेरी सदैव प्रिय बहन बीमारी से संघर्ष करते हुए असमय ही स्वर्ग सिधार गई। इतनी कम उम्र में उनका निधन हो गया, लेकिन वे मेरे लिए अनगिनत प्यारी और मधुर यादें छोड़ गई जो हमेशा मेरे हृदय में जीवित रहेंगी। मैं आपसे सविनय और हृदय से अनुरोध करता हूँ कि कृपया उनकी पसंद का गीत, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, फिल्म शोर से सुनाएं, जो कि हम ऑलरेडी आपको सुनवा चुके हैं। ये कहना है ए जी श्रीनिवासन श्री कार्यम पीओ त्रिवेंद्रम केरला से। हमें बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपकी बहन का निधन हो चुका है, लेकिन ये भगवान की मर्जी है, हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपकी बहन को अपनी बाहों में ही रखेगा, बहुत प्यारा स्थान देगा। इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर बिहार से जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता, मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना गुप्ता, सानवी गुप्ता का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास आया है। चांदूर बिस्वा महाराष्ट्र से, राम भाऊ खड़से, लक्ष्मण खड़से, भरत भाऊ खड़से, शत्रुघ्न खड़से, नारायण भाऊ खड़से, ललिता खड़से, कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा चित्रपट, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया के साथ मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ क्योंकि आप लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगले मैसेज की तरफ चलने से पहले आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म श्री 420 से। आवाज़ थी आशा भोसले और मन्ना डे जी की। और इसी के साथ चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाह के, ज्योति शाह के, सक्षम शाह के जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है राजेंद्र जाटोलिया, उषा जाटोलिया, दिल्ली नांगलोई से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी भी हम साथ में कार्यक्रम को सुन रहे हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायब और लड्डू भी हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। फुलाई नगर बीड महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा भी हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है पंचकुला से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवाना, लव दीवान, राधे भाविक ढिंगरा का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया गौतम नगर नांदेड़ महाराष्ट्र से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, प्यार भरे नमस्कार के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। संभल

छोटे अंसारी जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। मारहरा दरवाज़ा ईटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सोहेल हसन अब्बासी, यनम अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खान, सबीहा अंजुमन खान हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। नियमित श्रोता ए के पांडे जिला पन्ना मध्य प्रदेश से हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा हमारा कार्यक्रम। बुलंद शहर से एमएस अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिसा नायब और लड्डू हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप लिखते हैं, आज जो कुछ हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए, क्योंकि एक पल की आपदा इंसान से उनका घर, अपनों का साथ और पूरी जिंदगी की जमा पूंजी छीन सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से। श्रीमती रेखा बसंत सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, बेबी अन्विका, तनुश्री गुप्ता और पिहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, वसंत लाल साव भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। प्रमोद कुमार डूडी जी भी साथ में और पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी भी साथ में हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अस्तुपुरा जिला मऊ से मसर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। अलीगंज एटा उत्तर प्रदेश से दीपक शाक्य, ज्योति शाक्य और सक्षम शाक्य भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा जी भी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

0: नाल सा न्याय सबके लिए कानूनी सहायता के लिए कॉल कीजिए 1500 पर।
1: मुकेश जी का नाम आते ही बहुत सी यादें उभर आती हैं। मुकेश जी के साथ मेरे बहुत प्रोफेशनल रिलेशंस बहुत देर से नहीं थे, लेकिन इमोशनल रिलेशंस बहुत ज्यादा थे। मुझे एक दुख है कि मैं उनको बहुत देर से मिला। इतने बड़े सिंगर, इतने महान कलाकार होते हुए उनमें कोई किस्म का ईगो, कोई किस्म की ये बात मैं यहाँ ये ना करूँ वहाँ वो ना करूँ। जब वो किसी से प्यार करते थे तो दिल खोल के करते थे, और उसको जब इसको भाई बोल दिया तो भाई समझते थे। जितने लोगों की मदद जिंदगी में उन्होंने की है, बहुत कम लोगों ने की होगी। मुकेश जैसे इंसान आज के दौर में पैदा ही नहीं होते।
2: कभी कभी मेरे
3: कुछ लोग मिलकर भी अजनबी रहते हैं, और कुछ बिना मिले भी अपने बन जाते हैं। ये दिल का रिश्ता भी बड़ा अजीब है। कुछ नाम उम्र भर याद रह जाते हैं,

श्रोता, ये गीत हमने लिया था फिल्म कभी कभी से और आवाज थी मुकेश जी की। और इसी के साथ चलते हैं मैसेजेस की तरफ जो कि हमारे पास अभी भी लगातार आ रहे हैं। ये मैसेज आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। वनिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। श्रोता, रघुवीर नगर से दिलावर खाना जी, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चिरमिरी कुरासिया कलारी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगला मैसेज, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सीआर कुलकर्णी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। राजेंद्र चतोलिया, उषा

जतोलिया दिल्ली से नांगलोई से हमारे कार्यक्रम को लगातार सुन रहे हैं। पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू जी भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। अगला मैसेज राजेंद्र जातोलिया और उषा जातोलिया जी का नांगलोई दिल्ली से, जो कि हमारा लगातार कार्यक्रम सुन रहे हैं। गांव बिटोड़ा भोयर तहसील मंगरूल पीर जिला वाशिम पश्चिमी विदर्भ से योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल कुशल, गोपाल श्याम गोविंद मस्के और सभी श्रोतागण की तरफ से हमारे कार्यक्रम में ईमेल भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। अगला मैसेज चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा जी का, जो कि लगातार हमारा कार्यक्रम सुनते हैं। चिरमिरी कुरासिया कलारी से कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल भी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। और इसी के साथ खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी जी शांतिनगर सोनीपत से लगातार हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की और छोड़े जा रही हूँ आपके पास एक प्यारा सा आपकी फरमाइश का प्यारा सा गीत।

0: बचाए।
1: सुलभ समाधान, सहज प्रक्रिया, घर वापस सुख से जाएं। न्याय में ना हो कोई बाधा, 1500 पर सहायता पाएं। लोक अदालत, त्वरित, निष्पक्ष और सुलभ न्याय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की

0: के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।
1: नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। देश भर के 18 NIFT कैंपस से स्नातक होने वाले विद्यार्थी अपनी डिग्री मिलने और संस्थान में अपनी अकादमिक यात्रा के समापन का उत्सव मनाने के लिए एक साथ आएंगे। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। थाईलैंड की ओर से नानापत कोचारोइनकाई ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani. The news read by Reshma Tiwari. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 Memoranda of Understanding, MOUs, aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
0: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को, प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज के इस सफर में हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी जादुई संगीतकार जोड़ी की, जिनके नगमों ने 90 के दशक के प्रेमियों के दिलों पर एक छत्र राज किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निखिल विनय, यानी निखिल कामत और विनय तिवारी की जोड़ी। ये दोनों जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, निखिल कामत जिन्होंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी और कानून की पढ़ाई की थी, और विनय तिवारी जो कानपुर के एक संगीत शिक्षक के बेटे थे और जिन्हें सुगम संगीत की गहरी समझ थी। इन दोनों की किस्मत तब बदली जब महान गायिका अनुराधा पौडवाल ने इनकी प्रतिभा को पहचाना और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार से इनकी मुलाकात करवाई। साल 1991 में चंद्र बरोट के निर्देशन में आई फिल्म प्यार भरा दिल से इन्होंने बतौर संगीतकार अपनी धमाकेदार शुरुआत की। आइए इसी फिल्म के इस खूबसूरत गीत से हमारे इस सफर का आगाज करते हैं, जिसने इस जोड़ी की नींव रखी थी। सुनिए ये प्यारा नगमा।

आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम और आज हम बात कर रहे हैं संगीतकार की जोड़ी निखिल विनय की। और अभी ये जो गीत आपने सुना वो मिठास, वो सादगी जो निखिल विनय के संगीत की पहचान बन गई। जी हाँ, शुरुआती दौर में कुछ फिल्मों के बाद साल 1995 में इस जोड़ी के करियर में वो ऐतिहासिक मोड़ आया जिसने उन्हें रातों रात सुपरस्टार संगीत बना दिया, माफ कीजिएगा संगीतकार बना दिया। फिल्म थी बेवफा सनम। इस एल्बम और फिल्म के गानों ने उस दौर में बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी ऑडियो कैसेट्स की करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी थी। और इस फिल्म ने ना सिर्फ निखिल विनय को शिखर पर पहुंचाया बल्कि पार्श्व गायक सोनू निगम के करियर को भी एक नई और बुलंद उड़ान दी। दर्द और बेवफाई के गीतों का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया उसने काफी दिलों को झकझोर कर रख दिया था। चलिए आपको सुनवाते हैं उसी ऐतिहासिक एल्बम का वो अमर गीत जिसे आज भी हर टूटा हुआ दिल गुनगुनाता है।

वाह, सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की इन सुरीली आवाजों के साथ ही गीत और निखिल विनय का वो दर्द से भरा संगीत रोंगटे खड़े कर देने वाला अनुभव है। दोस्तों, अगर हम निखिल और विनय के व्यक्तिगत जीवन और बैकग्राउंड की बात करें तो ये काफी दिलचस्प है। विनय तिवारी का जन्म 9 सितंबर 1962 को पटना में हुआ था और इनका बचपन कानपुर में बीता। इनके पिता संगीत से कहते थे, जिस वजह से घर में संगीत का माहौल मिला। वहीं निखिल कामत का परिवार एकेडमिक और इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से था। निखिल खुद एक लॉ ग्रेजुएट थे, लेकिन संगीत के प्रति उनका जुनून उन्हें इस इंडस्ट्री में खींच लाया। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में विनय तिवारी खुद एक पार्श्व गायक यानी कि प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। वे संगीतकारों के चक्कर काटा करते थे, तब निखिल ने उन्हें समझाया कि एक संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाना ज्यादा बेहतर और आसान हो सकता है। और फिर क्या था, दोनों की ये जुगलबंदी चल पड़ी और इन्होंने टी सीरीज के साथ मिलकर एक के बाद एक कई सुपरहिट एल्बम्स और फिल्मों में काम किया।

अब बात करते हैं साल 2001 की। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी फिल्म तुम बिन ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था और इस फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा आधार था इसका संगीत। जी हाँ, निखिल विनय ने इस फिल्म के लिए ऐसा संगीत रचा जो आज भी युवाओं और संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में रहता है। इस फिल्म में महान गजल गायक जगजीत सिंह की आवाज का जादू भी शामिल था। कहा जाता है कि इस एल्बम की भी मिलियंस में कॉपियां बिकी थी और इसके हर एक गाने ने श्रोताओं के दिलों पर राज किया। आइए सुनते हैं जगजीत साहब की रूहानी आवाज में वो गजल जिसे सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं।

जगजीत सिंह की यह गजल सीधे रूह में उतर जाती है और इसका श्रेय जाता है निखिल विनय के बेहतरीन कॉम्पोजिशन और फैज अनवर के खूबसूरत शब्दों को। तुम्बन के अलावा इस जोड़ी ने हम तुम्हारे हैं सनम, आपको पहले भी कहीं देखा है, मुस्कान और सोनू निगम के व्यक्तिगत एल्बम जान तथा याद जैसे प्रोजेक्ट्स में अपना ऐसा संगीत दिया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि इस दौर में उन पर कुछ गानों को लेकर विवाद या प्लेगरिज्म के आरोप भी लगे, लेकिन उनकी लोकप्रियता और मेलेडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। चलिए तुम्बन फिल्म का एक ही एक और चार्ट बस्टर ट्रैक सुनते हैं जो आपकी इस सफर को और खुशनुमा बना देगा।

दोस्तों, किसी भी कला यात्रा की तरह निखिल विनय के सफर में भी उतार चढ़ाव आए। करीब 15 साल तक साथ काम करने के बाद साल 2006 में ये जोड़ी किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से आपसी सहमति से अलग हो गई। इस अलगाव के बाद निखिल कामत ने स्वतंत्र रूप से वो बेवफा और बेवफाई का आलम जैसे एल्बम में काम जारी रखा, लेकिन जो जादू इस जोड़ी ने एक साथ मिलकर बिखेरा उसकी बात ही कुछ और थी। आप सुन रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और आज हम बात कर रहे हैं निखिल विनय की। आइए एक और गीत सुनवाते हैं जिसमें इन्होंने संगीत दिया है उदित नारायण की आवाज में।

पुरस्कारों और सम्मान की बात करें जो निखिल विनय के जीवन में उन्हें मिले, तो इस जोड़ी को सीधे तौर पर कई कमर्शियल फिल्म फेयर अवार्ड्स भले ही सीमित मिले, लेकिन जनता के दिलों में जो जगह इन्होंने बनाई वो किसी भी बड़े अवार्ड से कहीं बढ़कर है। इनकी कैसेट्स की करोड़ों में बिक्री और 3 दशकों का इनका ये प्रभाव इस बात का गवाह है कि इनकी संगीत जो समय की हर सीमा से परे है। और दोस्तों, आज के इस शो में इतना ही, और अब समय आ गया है इस शो को समेटने का। तो जाते जाते निखिल विनय की ही एक और बेहतरीन रचना आपको सुनवाते हैं। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं निखिल विनय संगीतकार जोड़ी के जीवन सफर पर।

0: हम
1: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
2: प्रधानमंत्री मोदी को

0: इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरी राहत पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understandings aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors, including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue, and Ayurveda. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी strategic partnership के 15 साल हो रहे हैं। विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: Later, at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik, by President Shavkat Mirziyoyev. Mr. Modi reached in Tashkent on Saturday on a two-day visit to Uzbekistan. After concluding his visit, Prime Minister Modi arrived in the Kyrgyz Republic to participate in the 26th

आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर मध्यरात्रि के 1:10। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सुनहरे, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पुराने फिल्मी नगमे। जी हाँ, जो आपके दिल जहन में आज तक बसे हुए हैं, और इस कार्यक्रम के जरिए उन यादों में हम आपको ले जाते हैं जो कहीं तो आपके दिल में है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के इस गीत से।

आपने अभी सुना फिल्म ब्रह्मचारी से मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म गाइड से, जिसमें आवाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है।

फिल्म अनपढ़ से लता मंगेशकर की आवाज़ में और संगीत मदन मोहन का था। अभी आपने सुना, आपकी नजरों ने समझा। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में।

अब फिल्म कभी कभी से आ रहा है ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर ने और संगीत से पिरोया है खयाम ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है कश्मीर की कली, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं। एस एच बिहारी ने इस गीत को लिखा था और संगीत से पिरोया है ओपी नैयर ने।

और अब इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, जो आपका दिल कह रहा है वही बोल इस गीत के हैं।

0: इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी दोस्त कीर्ति को इजाजत। रात्रि के 2 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए

0: पांचवें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी क्षमताओं, कुशल श्रम शक्ति और बढ़ती नवाचार पारिस्थितिकी पर भी बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मणिपुर के मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने राज्य में समाज के सभी वर्गों से बंद न करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए इस तरह की गतिविधियों से कभी कभी अवांछित हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पाली खेली। भारत की शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 Memorandum of Understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashvani yesterday. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Defence Minister Rajnath Singh has said India is moving rapidly towards self-reliance in the defence sector and witnessing a major transformation in its defence industrial ecosystem. Mr. Singh was addressing the PM Setu Industry Conclave at Lucknow in Uttar Pradesh yesterday. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026

0: इसी गीत के साथ नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा और पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान उज्बेकिस्तान में पढ़ाई के लिए जाने वाले भारतीय युवाओं के हित में और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान ओली डराजली दुस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किया जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। श्री मोदी ने भारतीय विशेषज्ञों और छात्रों से बातचीत भी की। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 781 हो गई है। आपदा के 5वें दिन भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ से के बाद नेपाल में अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से फिर संपर्क हो गया है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं, वहीं 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं।

0: क्षेत्रीय स्वास्थ्य आपात कोष से 1,50,000 अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश की सॉफ्ट पावर, वैश्विक समझ और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने वाली दुर्जय शक्ति के रूप में प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने अमेरिका के शिकागो में वाइब्रेंट भारतीय समुदाय कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने प्रमुख बाजार के रूप में भारत की क्षमता पर बल देते हुए कहा कि देश स्वायत्त रक्षा प्रणालियों के विकास, परीक्षण और विनिर्माण का वैश्विक केंद्र है। श्रीमती सीतारामन ने शिकागो में चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ नेतृत्व के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें भी की। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट में भारत ने थाईलैंड को 94 रन से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने 64 रन की शानदार पारी खेली। जवाब में थाईलैंड की पूरी टीम 15 ओवर और 3 गेंद में 65 रन पर सिमट गई। अब भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। India and Uzbekistan have decided to elevate their bilateral relationship to a comprehensive strategic partnership. The two countries have also agreed to establish a long-term arrangement for the supply of uranium from Uzbekistan to India. Both sides have set a target of increasing annual bilateral trade to $5 billion by 2030. The decisions were taken following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and Uzbekistan President Shavkat Mirziyoyev in Tashkent. In his remarks during the talks, Prime Minister Modi said a stronger India-Uzbekistan partnership would be a powerful force for peace, progress and prosperity in Central Asia.
2: इस वर्ष हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 15 साल हो रहे हैं। इस विशेष अवसर पर हमने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $1 बिलियन पार कर चुका है। अब हमने 2030 तक $5 बिलियन व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए हम मार्केट एक्सेस, कनेक्टिविटी, बैंकिंग और पेमेंट जैसे जुड़े विषयों पर व्यवस्थागत रूप से आगे बढ़ेंगे।
1: The two leaders witnessed the exchange of 11 memorandum of understanding aimed at expanding bilateral cooperation across key sectors including mining, culture, education, tourism, economic and financial dialogue and Ayurveda. Later at a joint press conference with the President of Uzbekistan, Prime Minister Modi was conferred Uzbekistan's highest state honor, the Order of Oliy Darajali Dostlik by President Shavkat Mirziyoyev. After concluding his two-day visit to Uzbekistan, Prime Minister Modi reached Kyrgyz Republic to take part in the 26th Shanghai Cooperation Organization Summit in capital Bishkek. Prime Minister Narendra Modi shared his thoughts with the nation in the Mann Ki Baat program on Akashwani. In his address, the Prime Minister strongly warned against the social perils of drug abuse. He highlighted that Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat campaign for a drug-free youth and a drug-free India is gaining momentum with people joining in large numbers. Finance Minister Nirmala Sitharaman said that India is likely to sustain an economic growth rate of 7% or more in the financial year 2026-27, continuing the momentum recorded in the years since the COVID-19 pandemic. Addressing the Indian diaspora in Chicago during her U.S. visit, she said that India was likely to maintain its growth momentum despite geopolitical uncertainties and supply chain disruptions following the U.S.-Iran conflict and the closure of the Strait of Hormuz. President Draupadi Murmu will grace the National Institute of Fashion Technology, NIFT, Combined Convocation 2026 in New Delhi today. Graduating students from 18 NIFT campuses across the country will come together to celebrate the conferment of their degrees and mark the culmination of their academic journey. Union Minister of Textiles, Giriraj Singh, will also be present on the occasion. Nepal has issued a fresh flood alert for the Bhotekoshi River after a rise in its water flow. The National Disaster

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में आप सुनेंगे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना।
1: नमस्कार श्रोताओं, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे एस सिद्धार्थ का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में आइए आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना जया जानकी कांता।

अब हम आपको सुनवाते हैं पुरंदर दास की रचना बंदा देला बरली।

0: इसी के साथ कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना, आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 4:20 होने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे ताल वाद्य कचहरी। मृदंगम पर हैं MV चंद्रशेखर और वायलिन पर R श्रीधर। आपने प्रस्तुत किया है आदि तालम, तीन ताल, विलंबित गत द्रुत और द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे ताल वाद्य कचहरी। कलाकार थे मृदंगम पर MV चंद्रशेखर और वायलिन पर R श्रीधर। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद की मास की नवी तिथि, तदनुसार 31 अगस्त 2026 सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम आओ योग करें। आज आप सुनेंगे योग अश्वासन और तितली क्रिया। 5:20 का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 5:30 सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नदीम अहमद का गाया राग अलहिया बिलावल। के 10 पर सुनेगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन। आप सुनेंगे 6:40 पर। 6:45 का समय रहेगा रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 34। इसके बाद 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार और फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भूषण त्रिपाठी के गाय भजन। 7:30 सुनेगा गीतो भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 का समय रहेगा समाचारों का। 8:45 पर सुनेगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे उदय कुमार मल्लिक का गाया राग ललित। 9:30 आज ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी इंद्रप्रीत कौर। 10:10 पर सुनेगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा हमारी बेड़िया और उसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सबरस। 11:30 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी प्रसारित किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे सितार वादन। कलाकार होंगे सलीम अहमद। 12:10 पर सुनिएगा महिला कार्यक्रम घर आंगन।

0: मिनट पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। आज की फिल्म होगी सांवरिया। 2:30 पर सुनेगा एक ही कलाकार, और आज के कलाकार होंगे बासु भट्टाचार्य। 3:00 मैटनी मेलोडी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। उर्दू मजलिस सुनेगा 3:30 पर। इतिहास प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:00 वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और उज्बेकिस्तान ने आपसी संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया है। उज्बेकिस्तान भारत को यूरेनियम की दीर्घकालिक आपूर्ति के लिए रूपरेखा तय करने और दुर्लभ खनिजों के खनन स्थलों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुआ है। दोनों देशों ने खनन, आयुर्वेद, पर्यटन, आर्थिक और वित्तीय संवाद, व्यापक और रणनीतिक साझेदारी, उच्च शिक्षा तथा पर्यावरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के बीच द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पढ़ाई के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले भारतीय युवाओं के हितों और सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए कई उपायों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद और अलगाववाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर अमल करते हैं।
2: दोनों देशों के बीच करीबी रक्षा और सुरक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास को दर्शाता है। आने वाले समय में हम दोनों देशों की डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच डायरेक्ट लिंकेज, को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। हमारा मानना है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म पूरे क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौती है। इनके विरुद्ध जीरो टॉलरेंस हमारा साझा संकल्प रहा है और आगे भी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी को उज्बेकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान ओली दाराजली दोस्तलिक ऑर्डर भी प्रदान किया गया। ये विदेशी नेताओं को प्रदान किए जाने वाला उज्बेकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद श्री मोदी ने ताशकंद में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में महात्मा गांधी सेंटर का दौरा भी किया। उज्बेकिस्तान की सफल यात्रा के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा के लिए बिश्केक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में शामिल होने के अलावा कई सदस्य देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 788 हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी हैं, अब भी 2,500 से अधिक लोग लापता हैं। आपदा प्रभावित सभी 8 जिलों से शव बरामद किए गए हैं। इस बीच मध्य नेपाल में त्रिशूली नदी में आई एक और बाढ़ के कारण एक सस्पेंशन पुल बह गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अब तक 149 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। पहले लापता करीब 50 भारतीय नागरिकों से अब संपर्क हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन अमरीका के दक्षिण कैरोलिना पहुंची। वे एशविले में होने वाली G20 और इससे जुड़ी बैठकों में हिस्सा लेंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने शिकागो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने सरकार पर उधार और कर्ज के स्तर से जुड़ी चिंताओं पर बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। शिकागो प्रवास के दौरान वित्त मंत्री ने कृषि, रक्षा प्रौद्योगिकी और आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े कई प्रमुख अमरीकी उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें भी की। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख महिलाओं को नई शक्ति प्राप्त हो रही है।
2: नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं?
3: जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो, क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्ले लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो। हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी श्वास भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः श्वास भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी श्वास लें। चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे तीन श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं, शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी तीन श्वास का अभ्यास करें। और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें, कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे तीन श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी एक आवृत्ति, इसी आवृत्ति को दो तीन बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

0: नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम हापुड़िया। आज बात करेंगे सबसे सरल और आवश्यक योग क्रिया की। योग में आसन भी होते हैं, क्रियाएं भी होती हैं। जहां स्थिरता आती है वहां आसन होते हैं, और जहां मूवमेंट रहता है वहां क्रिया होती है। तो आज एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे लोअर बॉडी के हिप्स के नीचे के हिस्से को, वेस्ट से नीचे के हिस्से को सक्रिय रखती है, अकड़न जकड़न से दूर रखती है। अर्थात आप सब समझ गए होंगे, हम बटरफ्लाई की बात कर रहे हैं, तितली अभ्यास की बात कर रहे हैं। तितली आसन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें मूवमेंट है। तितली वाला अभ्यास हम करने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए कुर्सी पर तो हम बैठ नहीं सकते, आवश्यक है एक प्लेन स्थान का चुनाव करके सीधे बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे फैलाएं, दोनों हथेलियों को जंघा के बराबर में रखें, पैरों को थोड़ा हिला लें, आगे पीछे मूव कर लें, पैरों में थोड़ी शिथिलता दूर हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। एक दाहिने पैर को बाईं जंघा के ऊपर उठा के रखें और धीरे धीरे घुटने को पकड़ के एक दाहिने हाथ से दाहिने घुटने को पकड़ें और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ के ऊपर नीचे हिलाएं, ऊपर नीचे करें। श्वास के साथ श्वास लेते हुए नीचे की ओर दबाएं, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर लाएं। कम से कम 15 आवृत्ति ऊपर नीचे 15 बार उसको घुमाएं, ऊपर नीचे करें। ऊपर करते समय अपने वक्ष तक मिलाएं और नीचे ले जाते समय धरती से मिलाएं। 15 आवृत्ति के बाद वापस आ जाएं। इसी क्रिया को फिर दूसरे पैर से दोहराएं, यानी कि दाहिना पैर सीधा और बायां पांव आप उठा करके दाहिनी जंघा के ऊपर रखें, दाहिने हाथ से पैर के पंजे को पकड़ें और बाएं हाथ से घुटने के ऊपर दबाएं, प्रेशर डालें। अर्थात श्वास लेते हुए नीचे की ओर ले जाएं घुटने को और श्वास छोड़ते हुए अपने वक्ष की तरफ लाएं। इस आवृत्ति को भी कम से कम 15 बार दोहराएं। ऊपर नीचे करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि खुलने लगा है हमारी जंघाओं का पेल्विक हिस्सा, पेल्विक फ्लोर। फिर पैर को सीधा कर दें। अब दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, धीरे धीरे खींचते हुए अपने पेल्विक रीजन की तरफ, जंघाओं की तरफ लाएं, पैर मोड़ दें। सुखासन जैसे अवस्था, लेकिन दोनों पैर के अग्रभाग मिले हुए, और दोनों हाथों से पकड़ लें अग्रभाग को, पैर के अग्रभाग तो को दोनों हाथों से पकड़ लें। अपने पेल्विक फ्लोर के ज्यादा से ज्यादा एड़ियों को करीब लाएं और सामान्य श्वास के साथ अपने घुटनों को नीचे ऊपर हिलाएं, अर्थात थोड़ी देर के लिए तितली बन जाएं। अपने घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएंगे, धीरे धीरे आपकी जंघा की मांसपेशियां स्वस्थ होती जाएंगी, पैरों की अकड़न जकड़न दूर होती जाएगी। और मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा अपने देश और विदेश की माता और बहनों से कि उन्हें तो यह अभ्यास रोज करना चाहिए। यह महिला जनित रोगों से मुक्ति दिलाने वाला अभ्यास है। जो महिलाओं को, मेरी माताओं बहनों को प्रॉब्लम होती है मेंसुरेशंस के दौरान, पीरियड के दौरान, और भी कोई महिलाओं के रोग हो सकते हैं, गायनी प्रॉब्लम हो सकती है, उन सब में लाभकारी अभ्यास है ये तितली का अभ्यास। तितली की क्रिया आप दोहराएं और अपने पेल्विक फ्लोर को ज्यादा से ज्यादा शक्तिशाली बनाकर पूरे जंघा को, पैरों को शक्तिशाली बनाएं और जीवन का शक्तिशाली होते हुए ही आनंद उठाएं। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:30 बजने वाले हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे नदीम अहमद का गायन। आपने प्रस्तुत किया है राग अलैया बिलावल। तो लीजिए प्रस्तुत है नदीम अहमद खां का गायन।